0: डेड हर्ट बन जाता है, और तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गांठ के से टूटकर गिर जाते हैं। और इसके बचाव हेतु जो है कीट ग्रस्त पौधों को जिसमें डेड हर्ट दिखाई दे रहा है उसको उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फिर फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए ठूठ हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में उसके जो पिल्लू हैं और पीपा हैं वो उसमें रहते हैं। इसलिए कटाई के बाद जिस खेत में अगर इसका प्रकोप हो गया है तो कटाई के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है ठूठ है उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो इसके वयस्क हैं उस पर आकर्षित हों, और वो चूँकि लाइट ट्रैप के नीचे पानी आप रख दें तो उसमें वो गिरकर मर जाएंगे। फिर तना छेदक का जो ये कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप भी जो 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, और प्रकोप अधिक हो जाए तो 2 से 3 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करें, या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और इस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं।
1: जी मैम, अब मैम आप हमें प्ररोह मक्खी के बारे में बताइए कि प्ररोह मक्खी की क्या पहचान होती है और इसके प्रबंधन के लिए क्या करें।
0: हाँ, ये जो प्ररोह मक्खी है इसे सूट फ्लाई भी कहते हैं, और ये एक तरह की मक्खी है जो घरेलू मक्खी होती है उससे आकार में थोड़ी छोटी होती है, और इसमें जो है इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन नहीं होता है, थोड़ा मोटा बाल घना बाल पाया जाता है, और इसका जो नर होता है उसका एंटीना जो है पीला कलर का होता है, ये इसकी पहचान है। और ये इसका जो पिल्लू होता है वो तना में छेद कर वो खाता है, और ये भी तना में अंदर जाकर बीच के पार्ट को खाता है, और जिससे कि ऊपर वाली पत्ती सूख जाती है जो ऊपर में जो बीच की पत्ती है, तो इसलिए ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये ज्वार तना छेदक जो है वो भी डेड हर्ट काउज करता है, और प्ररोह मक्खी ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्ररोह मक्खी है वो जब पौधे करीब 6 से 8 इंच तक के रहते हैं तभी तक उसका प्रकोप होता है, उसके बाद नहीं होता, और ज्वार तना छेदक का थ्रू आउट द पूरे फसल तक इसका प्रकोप होता रहता है। दोनों में यही अंतर है। और इस कीट से बचाव हेतु जिन पौधों में जो डेड हर्ट पाया गया हो तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और बीजोपचार भी करना चाहिए इस कीट से बचने के लिए। तो क्लोरपाइरिफॉस 3 ml या इमिडाक्लोप्रिड दोनों में से कोई एक कीटनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं। तो अगर इमिडाक्लोप्रिड लेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड का 48 FS का 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए, और प्रकोप खड़ी फसल पर अधिक हो जाए तो रासायनिक कीटनाशी में फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में, या डेल्टा मेथ्रिन का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम ज्वार बाली कीट से क्या हानि होती है और इससे कैसे बचा जाए?
0: ज्वार बाली बग ये जो है ये पतले हरे रंग का होता है, कभी कभी ये धान के ऊपर भी दिखाई देता है, और इसका शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और ये जो है ज्वार धान पे भी मक्का रागी इत्यादि को भी हानि पहुंचाते हैं, और ये जो है इसके वयस्क और जो इसके शिशु होते हैं निम्फ इसको बोलते हैं, वयस्क और इसके जो वयस्क होते हैं और निम्फ तो दोनों एक समान होते हैं, केवल निम्फ में इसके पंख नहीं होते हैं और वयस्क में पंख हो जाते हैं, बाकी रंग दोनों का हरा ही होता है, और ये जो है दोनों वयस्क और निम्फ यानी शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसकर इसको बर्बाद करते हैं, और जिससे पत्तियां सूख जाती हैं, और किसी किसी में बाली में तो दाने ही नहीं लगते हैं। और इसके बचाव हेतु फसल पर नीम बीज चूर्ण जो नीम का बीज है उसका पाउडर बनाकर

0: छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml या थायोमेथेक्सम 25 WG का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम पत्र लपेटा कीट किस प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करें?
0: पत्र लपेटक कीट जो है ये भी, इसका वयस्क जो है वो मौत पतंगा होता है और जिसके पंखों पर भूरी धारियां होती हैं और सफ़ेद जो शरीर इसका सफ़ेद होता है और उस पर भी जो है हल्की भूरी धारियां होती हैं, यानी इसके पंख और शरीर दोनों पे धारियां होती हैं। और ये भी ज्वार है, मक्का है, बाजरा, इवन जो गन्ना है उसको भी हानि पहुँचाते हैं। और इसके जो पिल्लू हैं वो भी शुरू में इसके पत्ती को खुरच खुरच कर खाते हैं, बाद में जैसे जैसे ये जो पिल्लू के साइज मतलब बढ़ते हैं, इस पिल्लू में इसका जैसे विकास होता है तो पत्तियों को क्या करते हैं कि मोड़ करके रेशम सी डोरी जैसा पत्तियों को मोड़ देते हैं और उसके अंदर घुसकर खाते रहते हैं और पत्तियों की जो नोक होती है वो सूख जाती हैं और पत्तियाँ सफ़ेद भी पड़ जाती हैं और देखने से जैसे मालूम होता है कि वो कागज़ हैं, क्योंकि अंदर अंदर वो क्लोरोफिल को खा जाते हैं। और एक पिल्लू लगभग 5 से 6 पत्तियों को खाकर हानि पहुँचाती हैं। और इस कीट से बचाव हेतु जो मुड़ी हुई पत्तियाँ हैं, जो पत्र लपेटक पत्र ये लपेटी हुई जो पत्तियाँ दिखाई देती हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और अगर ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में नीम बीज चूर्ण का भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में पिप्रोनिल 1 ml का 3 प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम एक और कीट लगता है जिसे कहते हैं गुलाबी तना छेदक कीट।
0: हाँ, ये भी तना छेदक जो है वो जैसे ज्वार का जो तना छेदक कीट है उसी की तरह ये भी हानि पहुंचाता है। अंतर ये है कि इसका जो पिल्लू होता है वो गुलाबी रंग का होता है और ये भी उसी तरह से शुरू में तो इसके जो हैं पिल्लू पत्तियों को थोड़ा सा खुरच कर खाते हैं, जैसे ये बड़े हो जाते हैं तने के अंदर घुसकर उसके बीच वाले पार्ट को खाते हैं और इस तरह से पत्तियाँ सूख जाती हैं और डेड हार्ट ये भी काज करता है। तो इसका ये भी जो है ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, जई, गेहूं में भी दिखाई देता है कभी कभी, वो तो धान में भी ये इसको भी हानि पहुंचाता है। और ये जो है जहां से ये प्रवेश करता है वहां पर इस पिल्लू का मल दिखाई देता है और इस तरह से ये जो जिस पौधे पे वो खाते हैं वहाँ वो पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार जो है वो भी रुक जाती है और जब अंदर के पार्ट को खाते हैं तो ये भी जो है डेड हर्ट जो मृत केंद्र बनाते हैं जिसे खींचने से आसानी से खींचा जाता है, ये इसकी पहचान है। और इसका बचाव के लिए मई जून महीने में गहरी जुताई कर देना चाहिए और ये लाइट ट्रैप जो है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक से बचाव हेतु ट्रैप भी लगाना चाहिए जो 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से इसको लगाना चाहिए। और अगर कीटनाशी का प्रयोग करना हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर में या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो मिक्सचर कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम लाही कीट की पहचान कैसे करें?
0: लाही कीट ये हरे काले रंग का जूं जैसा उसको कहते हैं, ये पौधों का जूं है और ये माहू मेचा एफिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है अचानक से 6-7 दिन के अंदर में इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि जो है ये 6 से 7 दिन में इसके वयस्क बन जाते हैं और फिर ये इस तरह से वो इसकी जो है वो अंडे नहीं देती है बल्कि मतलब शिशु ही पैदा करते हैं, इसलिए इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तनों के निचले हिस्से में समूह में रहते हैं, तनों से रस चूसते हैं, पत्तियों से भी रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। विकसित अवस्था में जब इसका प्रकोप होता है तो जब दाने सिकुड़ कर छोटे रह जाते हैं, दाने कभी कभी लगते भी नहीं हैं। इस तरह से इसका जो है वो हानि करते हैं, और इसका बचाव के लिए ये एक लेडी बर्ड बीटल जो कि नारंगी रंग का होता है, इस पे काले धब्बे भी होते हैं या काले लहरदार धब्बे होते हैं, ये इस एफिड को खाते हैं। यानी ये लेडी बर्ड बीटल जो है वो मित्र कीट है, ये जो एफिड है, लाही है, जो चूसकर जो खा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, उनको ये खाते हैं। तो इनको देखने जब भी खेत में अगर रहे तो इसका बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए रासायनिक कीटनाशी का कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मित्र कीट ये जो लेडी बर्ड बीटल है जो इन लाहियों को खाते हैं वो मर जाएंगे। तो इसके लिए अगर छिड़काव करना भी है तो कोई भी नीम आधारित दवा का 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, ये कोई डब्बा हो उसको पेंट करके और उसको लकड़ी गाड़ कर खेत में और उसके उस पर उल्टा लगा देना चाहिए, जिससे कि उस पर ग्रीस पे वो आकर जो है लाही सट जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा उपाय है।
1: जी मैम, मैम बाली मिर्च ये श्रीयन के फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: हाँ, ये जो मिर्च है वो ये भी छोटी मक्खी के जैसा होता है, छोटी मक्खी या मच्छर कहें, दोनों के बीच का जैसा वो छोटा होता है, और इस कीट का जो उदर भाग होता है वो चमकीला नारंगी रंग का होता है और पंख मक्खी जैसा पारदर्शी ही होता है। और ये जो मिज है वो फूलों पर अंडे देते हैं और फूलों के पराग गिर जाते हैं, दानों से उजले पीपा के कोष दिखाई देते हैं, मतलब इस जो पिल्लू होते हैं वो बाद में पीपा बनते हैं तो उसका जो कोष होता है वो भी दानों की जगह दिखाई देता है, और जो पिल्लू दानों को खाते हैं वो दाने खकरी हो जाते हैं। और बाली मिर्च से बचाव के लिए लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए, नीम आधारित कीटनाशी नीम बीज चूर्ण अर्क का 5% का छिड़काव करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशी में इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml यानी आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% दवा का जो कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो ये आपने जिस प्रकार से बताया कि श्रीयन में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
1: तो उम्मीद है हमारे किसान भाई बहन जो श्री अन्न की खेती करते हैं उनके लिए हमारी आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, जो भी बातें मैम ने बताई उन बातों का आप ध्यान रखें, और साथ ही जिस प्रकार से मैम ने कहा कि हमारे कुछ जो कीट होते हैं वो मित्र कीट भी होते हैं, तो उन कीटों का बचाव करते हुए ही आपको प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ तुरंत डॉक्टर से मिलिए, बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है,
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें, पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 90.8 एफएम ग्रीन पर और मैं हूं ईश्वर चंद्रा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसे हम आयुष्मान पीएमजेएवाई के नाम से भी जानते हैं। यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 9 करोड़ से ज्यादा परिवार इसके दायरे में आते हैं और हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। आयुष्मान पीएमजेएवाई योजना गरीब परिवारों को महंगे इलाज के कर्ज से बचाती है और समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराती है। आज के एपिसोड में हम खास तौर पर जानेंगे कि बुजुर्गों के लिए इस योजना में क्या क्या सुविधाएं हैं। साथ ही बात करेंगे कि आशा और एएनएम जैसी स्वास्थ्य कर्मी इसमें क्या भूमिका निभा सकती हैं, अस्पतालों में क्या सहूलियत मिलती है और मरीजों को किस किस तरह की फॉलोअप केयर दी जाती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं टीकन भाभी।
1: आरजे ईश्वर, धन्यवाद। आज बुजुर्गों की बात हो रही है तो हमारे गांव के केदार बाबा की याद आ गई। बाबा की उम्र होगी 72-73 साल। कुछ समय पहले तक खेती करते थे पर अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता था। कुछ महीनों से सीने में दर्द रहता था, सांस भी जल्दी फूल जाती थी, पर बाबा सोचते रहे कि इलाज कैसे कराए, पैसा कहाँ से आएगा। एक दिन हालात ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था। अस्पताल पहुँचते ही कार्ड स्कैन हुआ और तुरंत जांच शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल की नसें ब्लॉक हो रही है। समय रहते उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई और 1 रुपया भी नहीं लगा। पूरा खर्च आयुष्मान योजना ने उठाया। बाबा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बिना पैसे के भी इतना बड़ा इलाज हो सकता है।
0: अरे टीकन भाभी, यहाँ एक बात और साफ कर दीजिए कि आयुष्मान पीएमजे में 70 वर्ष से उम्र के ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को देखकर शामिल किया जाता है और बगैर शर्त इसका इलाज होता है।
1: देखिए, आयुष्मान पीएमजेवाई में 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति देखे बिना ही लाभ दिया जाता है। मतलब चाहे बुजुर्ग गरीब हो या ठीक ठाक हाल वाले, उनकी उम्र 70 साल पार हो गई तो उन्हें सीधे आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिल सकता है। तो 70 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों के लिए ये योजना किसी सहारे से कम नहीं है। बस उनका इलाज जल्दी और अच्छे अस्पताल में हो जाए, यही इस योजना का मकसद है।
0: टीकन भाभी, बुजुर्गों की इस योजना में किन किन बीमारियों का इलाज होता है, साथ ही ये भी बताएं कि क्या इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में या फिर निजी अस्पताल में भी कराया जा सकता है।
1: आरजे ईश्वर, आयुष्मान पीएमजेवाई में बुजुर्गों का सिर्फ बुखार खांसी वाला इलाज ही नहीं होता, बल्कि कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की खराबी, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर रोगों का भी इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर, घुटना बदलवाना हो, कुल्हा रिप्लेस करना हो या फिर न्यूरो की बड़ी सर्जरी, ये सब भी इस योजना में शामिल है। और जहां तक अस्पताल का सवाल है तो इस योजना में देश भर के हजारों निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। मरीज को बस आयुष्मान कार्ड लेकर जाना होता है। अस्पताल में कार्ड स्कैन हुआ नहीं कि कैशलेस और पेपरलेस इलाज शुरू हो जाता है।
0: टीकन भाभी, एक खास बात तो पूछना ही भूल गया, छोटे बच्चों का आयुष्मान पीएमजेएवाई में इलाज कैसे होता है, क्या उनके लिए भी अलग कार्ड बनवाना पड़ता है?
1: अरे नहीं आरजे ईश्वर, छोटे बच्चों का अलग कार्ड नहीं बनवाना पड़ता। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के आयुष्मान कार्ड पर ही इलाज करवा सकते हैं। यानी इस उम्र के बच्चे के लिए अलग कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती है। बस माता या पिता अपना आयुष्मान कार्ड दिखाएं और बच्चे का पूरा इलाज आराम से हो जाता है।
0: तो टीकन भाभी, अब अगला सवाल ये है कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन कौन सी चीज़ें इस योजना में शामिल है, क्या सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं या टेस्ट, खाना, बेड वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आता है?
1: असल में इस योजना की खासियत यही है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो इलाज से लेकर दवा तक सब कुछ कवर होता है। मान लीजिए किसी को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई, अब भर्ती होने से 3 दिन पहले डॉक्टर का परामर्श, ज़रूरी टेस्ट और दवाई, ये सभी योजना के अंदर आ जाते हैं। मतलब मरीज को भर्ती होने से पहले जो जाँच करानी होती है उसका भी पैसा नहीं लगता। फिर जब अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं तो उसका पूरा इलाज योजना के तहत ही चलता है। टेस्ट हो, एक्सरे हो, खून की रिपोर्ट हो, दवाइयां हो, इंजेक्शन हो, सब आयुष्मान पीएमजेवाई में शामिल है। अस्पताल का बेड, आईसीयू या सामान्य वार्ड में रहना, नर्सिंग चार्ज, खान पान सब फ्री है। तो सीधी बात यह है कि पीएमजेवाई योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले, भर्ती के दौरान और इलाज चलने तक हर जरूरी खर्च उठाती है।
0: वाह, बहुत बढ़िया टिकन भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब एक बात और कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी क्या ये योजना मदद करती है?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल करती है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक फॉलो अप इलाज भी आयुष्मान पीएमजेवाई में ही मिलता है, जैसे दोबारा चेकअप, दवाइयाँ या कोई छोटी मोटी जाँच। यानी इलाज के बाद भी चिंता की कोई जरूरत नहीं है।
0: तो भाभी, क्या आयुष्मान योजना पूरे देश में चलती है? मतलब अगर कोई अपने राज्य से बाहर चला जाए तब भी इलाज संभव हो सकता है क्या?
1: अरे हाँ आरजे ईश्वर, बिल्कुल, यही तो इस योजना की खास बात है। आयुष्मान कार्ड वाले लोग भारत के किसी भी लिस्टेड अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, चाहे वे अपने राज्य में हो या किसी दूसरे राज्य में। ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर या फिर जो रिश्तेदारों से मिलने बाहर जाते हैं और वहाँ बीमार पड़ गए। मसलन अगर उत्तर प्रदेश का कोई परिवार दिल्ली, महाराष्ट्र या तमिलनाडु कहीं भी हो तो वहाँ भी इलाज फ्री में करवा सकता है।
0: बिल्कुल। तो टिकन भाभी, एक और बात मेरे भेजे में आ रही है कि सेहत की रक्षा में ANM और आशा की अहम भूमिका होती है, तो क्या आयुष्मान पीएमजेएवाई में भी उनकी कोई भूमिका होती है?
1: देखिए, आशा और ANM की आयुष्मान पीएमजेएवाई में खास जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले तो ये अपने इलाके के सभी परिवार का रिकॉर्ड बनाती है जो आयुष्मान योजना के दायरे में आते हैं। ई कवच ऐप में एक परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रजिस्टर होता है, उसमें परिवार का नाम, उसकी आयुष्मान कार्ड वाली जानकारी सब कुछ भरना पड़ता है। फिर ANM और आशा दीदी घर घर जाकर लोगों को आयुष्मान पीएमजेवाई योजना के बारे में समझाती है, कौन पात्र है, कार्ड क्यों जरूरी है, इसे इलाज कैसे मिलेगा, सब एकदम आसान भाषा में यही लोग समझाती हैं और लोगों को बताती हैं इनके महत्व के बारे में। गांव की मीटिंग में भी अक्सर ये बातें बताती रहती हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ANM और आशा का सबसे जरूरी काम तो तब शुरू होता है जब किसी मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ये दीदियाँ एक हफ्ते के अंदर किसी भी मरीज से मिलने जरूर पहुंच जाती है। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी है, विजिट की जो तारीख बताई गई है, सब चेक करती है और मरीज को ठीक से समझाती है सब कुछ। अगर किसी नवजात को स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट से डिस्चार्ज किया गया हो तो उसकी देखभाल में आशा दीदी तो और भी ज्यादा सतर्क रहती है। माँ को हर छोटी बड़ी बात समझाना बेहद जरूरी होता है। यदि मरीज को अचानक कोई समस्या हो जाए तो तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुँचाने का इंतजाम भी आशा दीदी ही करती हैं। इनका काम यहीं खत्म नहीं होता, ये हर मरीज का रिकॉर्ड रखती हैं, जैसे नाम, आयुष्मान कार्ड नंबर, किस अस्पताल में भर्ती था, कब छुट्टी मिली, अगला फॉलो अप कब करना है, सब लिखकर रखती हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। वैसे भाभी, आजकल सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है, तो आयुष्मान योजना में भी क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे लोगों को घर बैठे मदद मिल सके?
1: हाँ आरजे ईश्वर, आयुष्मान योजना तो ऑनलाइन सुविधा में भी बहुत आगे है। इसमें ऑनलाइन समाधान बहुत आसान बना दिया गया है। सबसे पहले तो 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 14555 यानी कि 14555, किसी भी समय कॉल करिए और अपनी समस्या बता दीजिए, तुरंत जवाब मिल जाता है। फिर इसकी एक वेबसाइट भी तो है, www.pmjy.gov.in। आदमी घर बैठे मोबाइल से ही चेक कर सकता है कि उसका नाम इस सूची में है या नहीं है और कौन कौन से अस्पताल इसमें जुड़े हैं। वेबसाइट पर एक चैट बॉट भी है जिसमें बस आप अपना सवाल टाइप कीजिए और तुरंत जानकारी सामने आ जाती है, जैसे किस अस्पताल में इलाज मिलेगा, कौन सी बीमारी कवर की जाती है, आपके कार्ड की स्थिति क्या है, सब मिनटों में पता चल जाता है। यानी अब लोगों को अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मोबाइल उठाइए और जरूरी जानकारी वहीं मिल जाएगी।
0: अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात। तो टिकन भाभी, अगर किसी को अपने आसपास आयुष्मान पीएमजेएवाई का अस्पताल खोजना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है?
1: इसके लिए आयुष्मान सारथी मोबाइल ऐप है ना, ये सबसे बढ़िया ऐप है इसके लिए। इस ऐप में सब कुछ है। पहले ऐप खोलें, इसके बाद अपनी पसंद की भाषा चुन लें, फिर जिस तरह की बीमारी के लिए विशेषज्ञ चाहिए वो विशेषज्ञता चुन लें, अब आप चाहें तो जिले के आधार पर खोजें या फिर अपने आसपास की दूरी के आधार पर अस्पताल चुन लें। जैसे ही आप अस्पताल चुनते हैं तुरंत गूगल मैप्स खुल जाता है। अब आप रास्ते का पालन कैसे करेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, ये मैप आपको बता देता है। आयुष्मान सारथी ऐप हर समय हर जगह नजदीकी अस्पताल दिखाकर लोगों की मदद करता है।
0: हाँ, तो भागलपुर से जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें लागू होती है। वो भी अपने आसपास के कौन से अस्पताल इसमें रजिस्टर्ड हैं, कौन से अस्पताल तक उनको सुविधा मिल सकती है, किस इलाज का कहाँ पर आयुष्मान कार्ड के तहत आपको इलाज संभव है, ये सब कुछ इन्हीं विधि द्वारा आप देख सकते हैं। तो टीकन भाभी, एक और बात कि आयुष्मान पीएमजेएवाई तो बड़ी अच्छी योजना है, जैसा कि आपने इसके पूरी व्याख्यान की। आप तो रोज लोगों से मिलती हैं, तो लोगों को इससे क्या फायदा हुआ, मतलब जमीनी स्तर पर इस योजना से क्या बदलाव आया, कुछ इसके बारे में बताएंगे क्या?
1: हाँ, इस योजना ने गरीब लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां दूर कर दी। सबसे पहले तो जो परिवार महंगे इलाज के डर से अस्पताल जाने की सोच भी नहीं पाते थे, आज वही लोग बिना झिझक बड़े अस्पताल में जाकर आराम से इलाज करवा रहे हैं।
0: सही बात भाभी, गांव में तो लोग पैसे की चिंता में इलाज टालते रहते थे, और आज के समय में बड़े बड़े अस्पताल, चाहे मेदांता हो, पारस हो, पटना तक जाकर के इलाज करवा रहे हैं।
1: ठीक कहा आपने आरजे ईश्वर, और अब वही लोग समय पर ऑपरेशन करा लेते हैं, दिल का हो, कैंसर का हो या हड्डी का हो। बहुत से बुजुर्ग जिनका सालों से इलाज अटका था, अब अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आराम से इलाज करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार कर्ज में डूबने से बच गए। आयुष्मान पीएमजेवाई ने भरोसा दिया है कि गरीब आदमी भी सम्मान के साथ बिना डर के बड़े से बड़ा इलाज करवा सकता है।
0: तो दोस्तों, आयुष्मान पीएमजेएवाई योजना ने वाकई लाखों परिवारों की मदद की है। कई लोग जो पहले महंगे इलाज के नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, आज बिना पैसे बड़े अस्पतालों में भर्ती होकर शान से सर्जरी करवा रहे हैं। और तो और, जिन अस्पतालों को देखकर जी घबराता था कि ये होटल है या हॉस्पिटल, आज उन्हीं बड़े अस्पताल में आप वहां पर सीना तान कर जाते हैं और अपना पीएमजेएवाई के तहत आयुष्मान कार्ड निकालकर इलाज कराते हैं। तो श्रोताओं, हमारा मकसद भी यही है कि आप तक वो सारी बातें पहुंचे जो आपकी जिंदगी में काम आए, आपकी सेहत सुरक्षित रखे और वक्त पर सही फैसला लेने में मदद करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड के साथ, भरोसेमंद और काम की जानकारी लेकर। पर जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: हेलो नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ स्वस्थ रहे हम में। जी हाँ, स्वस्थ रहे हम में हम बातें करते हैं स्वस्थ रहने की, आपके फिट एंड फाइन रहने की, ताकि हमारे श्रोता खुश रहेंगे तो हम रहेंगे खुश और लेकर आएंगे उनके लिए नए नए कार्यक्रम। जी हाँ, कुछ ऐसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए पेश करते हैं। तो आज की इस कड़ी में आइए, आज स्वस्थ रहे हम कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मशरूम की कुछ बातें। जी हाँ, मशरूम का नाम सुनते ही मुझे पता है कि आपके मुंह में पानी जरूर आया होगा, क्योंकि मशरूम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके नई नई रेसिपीज हम बना सकते हैं। सिर्फ रेसिपीज ही नहीं, टेस्ट ही नहीं, बल्कि इसके स्वास्थ्य के लिए कई फायदे हैं। जी हाँ, हेल्थ के लिए बहुत फायदे हैं। तो आज का हमारा विषय ही है मशरूम और उससे जुड़े हमारे हेल्थ के फायदे। तो आपको मैं बता दूं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शारदा मैम, और ये है वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र बाट से। मैम, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में स्वस्थ रहे हम में।
1: थैंक यू।
0: और इसके साथ ही मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि मशरूम जो है डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जब हम जाते हैं तो प्रोटीन की कमी रहती है तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तुम ये मशरूम लिया करो डाइट में। हम संतुलित आहार लेते हैं तो उसमें भी शामिल करने के लिए कहते हैं डॉक्टर साहब हमें मशरूम को। तो सबसे पहले मशरूम के फ़ायदों के बारे में हम जानें, लेकिन उससे पहले उसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो ये मशरूम कितने प्रकार के होते हैं?
2: वैसे तो मशरूम की करीब 200 प्रजातियाँ हैं, लेकिन 200 जो इसकी प्रजातियां हैं उसकी खेती जो प्रयोगशाला स्तर पर भी की जाती है। और जहां तक हमारे बिहार की बात है तो बिहार में 4 तरह के मशरूम उगाए जाते हैं और पाए जाते हैं, जिसमें जिसको पहला बटन मशरूम, जिसको आप हर चौक चौराहे पे देखती होंगी, बटन के आकार का होता है यह बटन मशरूम,
0: हमारे इर्द गिर्द भी ये मतलब पाया जाता है।
2: और इसकी खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये टेम्परेचर जो तापमान इसके लिए चाहिए वो 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड उगने के लिए चाहिए, और ऐसा तापमान खास करके नवंबर से फरवरी तक ही हो पाता है। इसलिए बिना कंट्रोल, बिना नियंत्रित वातावरण के नवंबर से फरवरी, या ज़्यादा आप कह सकते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक इसकी खेती की जा सकती है।
0: अच्छा, तो ये हुई बटन मशरूम की बात।
2: और दूसरा जो हुआ वो प्लूरोटस मशरूम या ढींगरी मशरूम या एस्टर मशरूम के नाम से जाना जाता है। और ये इस एस्टर मशरूम की खेती आप अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक, या यूं कहें कि इसकी विशेष जो प्रजातियां होती है उसकी खेती आप पूरे साल तक कर सकती हैं।
0: अच्छा,
2: जैसे कि प्लूरोटस सजार काजू है, फ्लोरिडा है, फ्लेविलेटस है, CO2 है, डायजामोर है, तो ये कई प्रजातियाँ हैं जो तापमान का कुछ कम और कुछ ज्यादा पर। तो आप ढींगरी मशरूम या प्लूरोटस मशरूम या जिसको एस्टर मशरूम भी कहते हैं, इसकी खेती आप पूरे साल कर सकते हैं बिना किसी खास व्यवस्था के।
0: अच्छा, और मशरूम की एक खास बात है मैम कि जो भूमिहीन किसान है हमारे,
2: हाँ,
0: वो भी इसे उपजा सकते हैं।
2: और एक और है तीसरे तरह का जो मशरूम, जो दोनों के बीच में, जिसको उगाने का तरीका जो है वो बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम या प्लूरोटस मशरूम के बीच का है, क्योंकि लगाने का तरीका उसका एस्टर मशरूम या ढींगरी मशरूम वाला होता है। और उसमें खास बात है कि केसिंग की जाती है।
0: अच्छा, ये केसिंग क्या?
2: केसिंग की जाती है, मतलब उसका जो सबस्ट्रेट जो होता है उसको कवर कर दिया जाता है। केसिंग मतलब कवर कर देना। क्यों? जब तक केसिंग नहीं करेंगे तब तक ये दूधिया मशरूम या मिल्की मशरूम, या जिसको बोटेनिकल नेम उसका कैलोसाइबी इंडिका है।
0: अच्छा,
2: तो ये तीसरा तरह का मशरूम हुआ, और इसको उगने के लिए 25 से 38 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और ये हमारे यहाँ अप्रैल से लेकर के अगस्त तक इसकी खेती की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के हम जो ये तीनों प्रकार का मशरूम बहुतायत में उगाया जाता है। और एक और मशरूम है जो पैडी स्ट्रॉ मशरूम जिसको कहते हैं, या धान पुआल मशरूम कहते हैं, या उसी को चाइनीज मशरूम भी कहा जाता है
0: जी।
2: और उसकी खेती ज्यादा तापमान पर की जाती है, 35 से 45 डिग्री जब तापमान होता है तब भी उसकी खेती हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ये बिहार में इसकी खेती नहीं होती है। खास करके ये जो बटन मशरूम जो एगेरिकस बायोस्पोरस है, दूसरा प्लूरोटस मशरूम या ढींगरी मशरूम, और तीसरा जो मिल्की मशरूम या दूधिया मशरूम या जिसको कैलोसाइबी इंडिका कहते हैं, इसकी खेती होती है। और ये तीनों प्रकार की खेती जो होती है हमारे यहाँ, वो इसके लिए आप मशरूम तो जान रहे हैं आप लोग कि ये एक कवक है, और ये खाने योग्य कवक है, और इसकी खेती जो होती है वो जिसमें सेलुलोज या लिग्निन पाया जाता है, वैसे पदार्थ पे इसकी खेती की जाती है, उस सबस्ट्रेट पे इसकी खेती होती है। और इसके लिए ना तो बहुत लागत की जरूरत है, ना ही बहुत कौशल की जरूरत है,
0: भूमि की जरूरत,
2: और ना ही भूमि की जरूरत है। और इसीलिए इसको हवा की खेती भी कहते हैं, बिना खेत की खेती भी कहते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि खेती बिना खेत का, तो ये मशरूम के लिए ही कहा जाता है। तो इसकी खेती की जाती है, और घर बैठे जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं वो भी इसको रोजगार का जरिया बना सकते हैं।
0: अच्छा मैम, आपने एगेरिकस मशरूम के बारे में बात की थी, तो मैंने सुना है कि एगेरिकस मशरूम के औषधीय फायदे भी हैं।
2: हाँ,
0: तो उसके बारे में
2: जहाँ तक मशरूम की बात है, ये मशरूम में और कुछ औषधीय मशरूम भी होता है, जैसे
0: जी, उनके नाम बताएं, उनके बारे में बताएं हमारे
2: श्रोताओं। हाँ, जैसे सीटाके मशरूम जिसको कहते हैं, और ये खाया भी जाता है, ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है। और दूसरा एक ऋषि मशरूम है जिसको गैनोडर्मा लुसिडम कहते हैं।
0: अच्छा।
2: और लेकिन इसका सिर्फ औषधीय उपयोग होता है, जो कैप्सूल बनाया जाता है, दवाइयां बनती है, या फोर्टिफिकेशन में काम में आता है।
0: जी जी।
2: तो ये ऋषि मशरूम है। और जहाँ तक आप एगेरिकस बायोस्पोरस मतलब बटन मशरूम की बात कर रही थी, तो हम ये कहेंगे कि प्रोटीन का ये मुख्य स्रोत होता है,
0: भंडार
2: जो जो मशरूम है वो प्रोटीन का भंडार है, खास करके सब्जियों में, जिसमें कि 3.1 कच्चा में, और अगर इसको सुखा दिया जाता है तो 28 से 30 प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है। और इसके इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी जो शरीर में उपलब्ध होने की अवस्था में होते हैं
0: जी।
2: इसके अलावा इसमें विटामिन B1 कहिए, जिसको थायमिन कहते हैं, B2, राइबोफ्लेविन, या नियासिन जो B3 है, पेंटोथेनिक अम्ल, ट्रिप्टोफान, ये सारे पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं।
0: अच्छा।
2: और जहाँ तक कहते हैं कि सोडियम की मात्रा इसमें कम होती है।
0: अच्छा।
2: और पोटासियम की मात्रा ज्यादा होती है, और यही कारण है कि जो रक्तचाप वाले लोग होते हैं, उच्च रक्तचाप वाले, वो भी इसका सेवन करते हैं, और जो मधुमेह वाले रोगी होते हैं वो भी इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें रेशे की अधिकता होती है। और जैसे सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से विटामिन डी पाया जाता है, जो धूप में कहते हैं ना कि बैठने के लिए विटामिन डी लेने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो ये विटामिन डी भी इसमें
0: उपलब्ध
2: पाया जाता है। और इसमें कहने का मतलब है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल शून्य होता है, नहीं होता है, और कोलेस्ट्रॉल के बदले इसमें इर्गेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि जब अवशोषण होता है तो विटामिन डी में बदल जाता है।
0: तो
2: ये मशरूम विटामिन डी का भी
0: एक मशरूम अच्छा
2: विटामिन डी भी पाया जाता है
0: जी। वैसे मैम, अभी हम बात कर लेते हैं वेजिटेरियंस की, तो कहा जाता है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन
2: है, आहार है।
0: बहुत ही
2: अच्छा,
0: और इसके मतलब खाने में स्वाद भी कुछ ऐसे ही लगते हैं। तो मशरूम के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, और अगर मैं यहाँ पर खाने के फायदे की बात करूँ मैम, तो इससे खाने से हमें क्या फायदा हो सकता है, वैसे हम सभी जानते हैं, लेकिन आप विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं तो और ज्यादा अच्छा होगा।
2: बिल्कुल। तो जैसे ये प्रोटीन का स्रोत हुआ, और आप जानते हैं कि हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और फाइबर
0: जी जी
2: होना चाहिए, और ये जब अब जब ये सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं आहार में, तभी वो संतुलित आहार होता
0: जी
2: है
0: जी जी।
2: और मशरूम में जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, आयरन भी है, और आयरन है तो एनीमिया को दूर कर सकता है। तो ये सारे विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, और इसमें कैलोरी, जो मोटापा से ग्रसित होते हैं लोग, इनको कहा जाता है कि कम खाना खाइए, कम कैलोरी वाला खाना खाइए, वो भी 100 ग्राम में सिर्फ 22 कैलोरी ही इससे मिलता है। और जो रेशे हैं वो उनके होने से कम खाइए और लगता है कि पेट भरा भरा है। और कब्जियत तो दूर होता ही है, साथ ही रेशे होने के कारण ये मधुमेह रोगियों के लिए भी लाभदायक होता है।
0: तो मैम यहाँ पर अभी आपने कहा कि इसमें जो है एनीमिया से बचने की शक्ति होती है, तो महिलाओं और बच्चों के लिए कितना हद तक फायदेमंद हो सकता है?
2: बिल्कुल, क्योंकि खास करके जो एनीमिया से ग्रसित होते हैं, जो
0: इसमें आयरन पाया जाता है,
2: जिनमें जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं माहवारी
0: अनियमित होता है,
2: अनियमित होता है नहीं, मतलब माहवारी के दौरान जो खून निकल जाता है वो
0: मतलब हैवी ब्लीडिंग जो
2: हैवी ब्लीडिंग जो होता है या प्रेग्नेंट जो है उनमें भी खून की कमी हो जाती है, या दूध पिलाने वाली माँ है उनमें भी खून की कमी होती है, किशोरियां हैं उनमें खून की कमी होती है, तो इन लोगों के लिए ये प्राकृतिक आहार बहुत ही उपयुक्त और संतुलित आहार है जो उनको इस तरह से खून की कमी से, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं या एनीमिया कहते हैं, उसको दूर करने में बिल्कुल सहायक है।
0: बिल्कुल सही कहा मैम ने। श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनके अंदर और भी ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर एक नया जो शिशु है वो बनने यानी कि बनने की क्रिया में रहता है, तो इसलिए अगर खून अच्छी मात्रा में उनके अंदर हो तो आपका जो शिशु है वो भी स्वस्थ पैदा होगा। तो इसलिए जब भी आप आहार की बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, तो आप सप्ते में एक या दो दिन मशरूम उन्हें ज़रूर दें आहार में। फिलहाल तो यहाँ पर इसके लाभ की बात हो गए मैम, और इसका उपयोग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं?
2: इसका हर तरह से उपयोग करते हैं। जैसे बटन मशरूम जो है उसको हम जो ताजा है उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको सुखा करके इस्तेमाल नहीं करते, उसकी कैनिंग की जाती है, मतलब डिब्बाबंदी करके रखा जाता है।
0: हाँ।
2: तो डिब्बाबंदी जो डिब्बाबंद मशरूम है उसका इस्तेमाल करते हैं
0: जी,
2: और जो प्लूरोटस मशरूम है या मिल्की मशरूम जिसको दूधिया मशरूम कहते हैं, ऑयस्टर मशरूम या दूधिया मशरूम जो है उसको हम सुखा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके विभिन्न उत्पाद बना करके और उसको परिरक्षित करके भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि परिरक्षण आप जानती हैं कि जिस मौसम में होता है उसमें तो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको दूसरे मौसम में भी, जैसे इसको अचार के रूप में, चटनी के रूप में, और डिब्बाबंदी तो कर ही सकते हैं, सुखा करके रख ही सकते हैं, और इसको हम लोग जो नमक के घोल में भी जैसे एक महीने तक हम रख सकते हैं, अगर नमक के घोल में रख दें तो हम मशरूम को इस तरह से ताज़ा रूप में और सुखा करके उसका पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब जब पाउडर फॉर्म में हो जाता है तो हम उसे समोसा बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं, और जब ताज़ा होता है तो उसकी हम सब्जियां बनाते हैं, या जो पुलाव बनाते हैं उस रूप में, या कटलेट बना करके, और जो मशरूम है उसका हम रायता के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका खीर बना सकते हैं, उसका पेड़ा बना सकते हैं, कई मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जो मशरूम हम डालते हैं, दूसरे उत्पाद जो बनाते हैं उसमें उसकी मात्रा जो बेस मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए कि केक बना रहे हैं
0: जी जी,
2: तो केक बना रहे हैं अगर 100 ग्राम हमको मैदा लेना है तो उसमें 20 ग्राम ही हम मशरूम का पाउडर लेंगे, और ये पाउडर मशरूम जो है वो करीब इसमें 90% पानी होता है, तो हम 100 ग्राम सुखाएंगे तो 10 ग्राम पाउडर तैयार होगा
0: जी।
2: तो ये पाउडर के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस जो मशरूम है, चाहे बटन मशरूम हो या प्लूरोटस मशरूम हो, आप कोई भी, जो हम तीनों प्रकार के मशरूम की बात करते हैं कि दूधिया मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम, तीनों से हम अचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं, उसकी डिब्बाबंदी कर सकते हैं, और बटन को छोड़कर बाकी मशरूम को हम सुखा करके भी इस्तेमाल करेंगे दूसरे उत्पाद बनाने के लिए, जो अपने यहाँ लिट्टी बनती है
0: जी,
2: उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रोल बनाते हैं, जो ब्रेड रोल बनाते हैं उसके अंदर भी, या पराठे बनाए तो उसमें भी हम स्टफ करने के लिए, भरने के लिए हम मशरूम का उपयोग कर सकते हैं। और खास करके इसका अचार जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक भी होता है, चूंकि वो नमक और सिरके में मिला करके बनाया जाता है, तो ये बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
0: कहने का मतलब है कि हम इसे संवर्धित तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, मूल्य संवर्धित उत्पाद इसका हम बना सकते हैं, जैसे हम लोग इसका केक बना लें,
0: अचार
2: बना लें, या अचार बना लें, या बिस्किट बना लें, तो इसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे इसका जो पोषक मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा और आमदनी भी हो सकती है अगर हम उसको रोजगार के रूप में लें तो।
0: अच्छा मैम, देखा गया है कि हर जो किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है, एक तो लाभ और एक हानि, तो क्या इसके कुछ एलर्जीज हैं या फिर कुछ हानि भी हैं?
2: अभी तक जो रिसर्च हुआ है, जो अनुसंधान हुआ है, उसमें मशरूम की हानि कहीं भी नहीं पाई गई है, कहीं नहीं देखी गई है। सिर्फ जिसको ज्यादा प्रोटीन न खाने के लिए दिया जाता है वैसे लोग थोड़ा कम से
0: परहेज कर सकते,
2: थोड़ा परहेज करें, लेकिन जहाँ तक यह है मधुमेह वाले वो इसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत आसानी से, और उनका ये रोग रोधी का काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना और हमारे श्रोताओं आपने जाना कि कैसे मशरूम हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो फिलहाल तो इसके कुछ भी हानि नहीं है, इसलिए आप आराम से अगर खाना चाहते हैं इसे तो बिल्कुल घबराएं नहीं। आप अपने घर में इसे लाएं, किचन में लाएं और बनाएं इसके अलग अलग रेसिपीज़। मैम ने जैसे बताया कि आप इसे संवर्धित, मूल्य संवर्धित तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों को अगर जो है आप देना चाहते हैं रोल्स वगैरह तो आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं। प्रोटीन के साथ उन्हें अच्छी जो पोषक तत्व है वो भी मिल जाएंगी और साथ ही उन्हें खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें हमें हर दिन कुछ अच्छी अच्छी बातें, आपकी स्वस्थ रहने की बातें, हेल्दी बातें लेकर मैं हाजिर होंगी। सुनते रहिए मुझे, आरजे अनु को।

0: दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
3: कौन सी कहानी टीकी?
2: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
4: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
2: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
4: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
2: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
4: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
10: हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आम का मौसम लगभग जा चुका है और फल तोड़ाई भी लगभग हो चुकी है, और फल तोड़ाई के बाद भी जरूरी होता है कि आप बागों का उचित प्रबंधन करें ताकि अगले वर्ष अधिक फल हो, अगले वर्ष भी आपको मुनाफा अच्छा हो। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, यानी कि फल तोड़ाई उपरांत आम के बागों का प्रबंधन किस प्रकार करें। इस बारे में विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैम। आप हैं विश्वविद्यालय प्रोफेसर उद्यान विभाग फल से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद उमा।
11: मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि अभी आम के बागों से सभी किस्मों के फल तोड़ाई हो चुकी है, तो अभी प्रबंधन कैसे करना चाहिए जिससे कि अगले वर्ष अधिक मात्रा में फल हो?
12: सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ कि फल तोड़ाई के बाद पौधों में खाद एवं उर्वरक का कमी हो जाता है, एवं पौधों के समुचित विकास एवं फलन के लिए नियमित रूप से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर वृक्षों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनसे कम उपज प्राप्त होता है तथा फलों की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की हो जाती है। पानी के जरिए ही वृक्षों के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जल जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन इत्यादि कामों में आवश्यक होता है। इसके बिना ये सब कार्य जो है अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के अभाव में वृक्षों की बढ़वार एवं फलत पर गहरा असर पड़ता है। पौधे भूमि से पोषण एवं जल के माध्यम से ही लेते हैं तथा यह जल पौधों को पाले से भी बचाता है। समुचित सिंचाई एवं उर्वरक से फलों का उपज, स्वाद, मिठास, गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। जल एवं पोषक प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि कब दी जाए, कहाँ दी जाए एवं कितनी मात्रा में दी जाए, ताकि जल एवं पोषक का अधिकतम उपयोग तथा मिट्टी एवं पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जल एवं पोषक प्रबंधन के साथ साथ

0: डालियों की हल्की कटाई छटाई भी आवश्यक है। यह कार्य भी फल तुराई के तुरंत बाद ही करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता युक्त फल एवं अधिक फलन के लिए आवश्यक है कि पौधे के मांग के अनुरूप उसका पोषण प्रबंधन किया जाए। पौधे की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए सभी 16 अनिवार्य पोषक तत्वों की पूर्ति आवश्यक है। सही समय पर सही उर्वरक एवं सही मात्रा का प्रयोग करके गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: तो मैम, उचित समय क्या होता है जब आम के पौधों में पोषण की मात्रा देनी चाहिए?
0: आम में पोषण देने का उचित समय जुलाई अगस्त माह है, लेकिन पोषक तत्वों का अधिक वर्षा से होने वाली क्षति को देखते हुए कंपोस्ट की पूरी मात्रा एवं उर्वरक की 75% मात्रा जुलाई में और शेष मात्रा का प्रयोग अप्रैल के प्रथम माह में करना लाभप्रद है।
1: मैम, जब हम एक वयस्क पौधे की बात करते हैं तो आम के एक वयस्क पौधे में कुल खाद की कितनी मात्रा होनी चाहिए?
0: आम के वयस्क पेड़ में अनुशंसित खाद एवं उर्वरक की मात्रा इस प्रकार है। इसे प्रति पौधे खाद एवं उर्वरकों की मात्रा में 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 1.5 किलोग्राम म्यूरियट ऑफ पोटास एक वयस्क पेड़ के लिए अनुशंसित है। यह मात्रा 10 साल के बाद स्थिर हो जाता है। 10 साल के ऊपर जो पौधे हैं उसमें यही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ लगेगा। इस तरह से उर्वरक का डोज दिया जा सकता है।
1: अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की। तो मैम, आम के बागों में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: पौधों की सिंचाई के समय हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई कब करनी चाहिए और कितनी मात्रा में की जानी चाहिए। अब सबसे पहला है सिंचाई कब करें। उद्यान की सिंचाई की आवश्यकता स्थान विशेष की वर्षा के परिणाम एवं वितरण, मिट्टी के प्रकार एवं बनावट, वातावरण की आर्द्रता और तापमान पर निर्भर करती है। चिकनी मिट्टी को बलुई मिट्टी की अपेक्षा एक बार में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, परंतु बलुई मिट्टी में लगे हुए बाग की सिंचाई कम अंतराल पे और कम मात्रा में देनी चाहिए, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। एक बार में इतना ही पानी दिया जाए जो संपूर्ण जल क्षेत्र को जड़ क्षेत्र को अच्छी तरह नम कर सके। जहाँ वर्षा कम होती है और इसका वितरण भी अनियमित हो तो सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। सिंचाई जल की आवश्यकता वृक्ष की आयु पर भी निर्भर करता है। आम के वृक्ष फल देने की स्थिति में आने के बाद बाग की सिंचाई का व्यवस्था बदल जाता है। फल देने वाले वृक्षों को नवंबर से मार्च तक आमतौर पर सिंचित नहीं करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह इस अवधि में फूल धारण करने के लिए आवश्यक आंतरिक क्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए इस अवस्था में सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि में सिंचाई करने से संभव है कि वृक्षों में मंजर कम आए या फूल आने के बाद झड़ जाए। अतः यह जान लें कि फलने वाले वृक्षों की सिंचाई, फल निकलने एवं स्पष्ट रूप से दाने लग जाने के बाद ही करना लाभकारी होता है। फलों के लगने तथा विकास के दौरान किसी भी अवस्था में पानी की कमी से फलों का विकास प्रभावित होता है तथा फल झड़ने की समस्या भी आती है। फल लगने के उपरांत 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि फल पूर्णतया विकसित ना हो जाए। एक बार की सिंचाई में इतना पानी अवश्य देना चाहिए कि वृक्षों का संपूर्ण जड़ क्षेत्र नम हो जाए। आम जैसे बहुवर्षीय वृक्षों की जड़ें काफी गहराई तक जाती है, परंतु प्रभावी रेशेदार जड़ों का अधिकांश भाग मिट्टी की सतह से 60 सेंटीमीटर की गहराई तक होती है। सिंचाई इतनी अवश्य करनी चाहिए ताकि जड़ क्षेत्र में पर्याप्त पानी बना रहे और पौधे का विकास ठीक प्रकार से हो। आवश्यकता से ज्यादा या कम सिंचाई पौधे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब सिंचाई किस प्रकार करें, तो सिंचाई करने का है जैसे कि पारंपरिक सिंचाई विधि है या आधुनिक सिंचाई विधि है। अब पारंपरिक सिंचाई की बात करें तो इसमें फ्लड इरिगेशन है या क्यारी विधि से है, नाली विधि से है और रिंग विधि से है, थाला विधि से जिसको बोलते हैं। इन सबों में थाला विधि सर्वोत्तम पाया गया है। इसके लिए वृक्ष के चारों तरफ दो से तीन फीट की दूरी पर थाला बनाकर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। आधुनिक सिंचाई पद्धति में ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर मेथड से पौधे का सिंचाई किया जा सकता है। इस विधि से करने पर जो सिंचाई जल का बहुत सेव होता है, बचता है। इस तरह से किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं अपने बगीचे का।
1: तो किसान भाई बहनों, जो बागवानी करते हैं और आम के फल की तुड़ाई हो चुकी है, तो इस प्रकार से आप अपने बगीचों का प्रबंधन जरूर करें तो अगले वर्ष भी अच्छी गुणवत्ता वाले और अधिक फल आएंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं, उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT presents the audiobook Khel Yog, textbook of physical education and well-being for class 5.
1: Page number 26, chapter 2, Kicking and Receiving. Have you ever played football? In football, we kick the ball to our teammates and also receive the ball from them. Kicking is an essential skill where we use our feet to direct the ball towards a specific target or direction. Receiving is equally important as it involves controlling the ball with our feet when it comes to us, ensuring we don't lose possession. Let's explore how to kick and receive a ball effectively using our feet. After learning these skills, we'll enjoy playing some fun games. On the bottom of this page, there is an image in which a girl is preparing to kick a football. Page number 27, Kicking. On this page, there are various steps of kicking that are depicted via images and also explained stepwise. Let me explain all these steps. Step number 1. Stand 5 meters behind the ball and keep your eyes focused on it. Step number 2. Run towards the ball. Step number 3. Keep the non-kicking leg to the side of the ball and then kick the ball using the inner part or the top part of the kicking foot. Step number 4. Swing the arms sidewards and follow through in the direction of the kick. Notes for the teacher. Ensure the following while the children practice kicking. 1. Stance. Relaxed shoulders while approaching the ball. 2. Approach. Approach the ball and calculate the stride length. 3. Kicking. Swinging back the kicking leg as required and bringing it fast to kick the ball. 4. Follow through. The arm goes sidewards. The kicking leg and the body go forward in the direction of the ball. It should be smooth and without any jerk. Page number 28. Receiving. On this page, various steps of receiving are depicted via images and also stepwise details is being written. Let me explain these steps. Step number 1. Stand and anticipate the direction and speed of the ball. Step number 2. Approach the ball and take your position while raising the leg on which you want to receive the ball. Keep the other leg firmly on the ground. Step number 3. Receive the ball with the inside of the foot and move the leg slightly backwards while receiving. Step number 4. Balance your body as the ball touches the ground and try to dribble the ball after receiving. Notes for the teacher. Ensure the following while the children practice receiving skills. 1. Stance. Legs and shoulders should be relaxed. Run towards the ball and keep the body in line with the ball. 2. Anticipate and be ready. Anticipate the path of the ball and approach the ball where you want to receive it. 3. Receiving. Shift the body weight on the non-receiving foot. Always receive the ball on the instep of the receiving foot and on contact, take the foot slightly backwards. 4. Follow through. Keep the body low and maintain balance by shifting the body weight as required. Page number 29. BM7 Friendly Goal. Required material, football and cones. On the top left of this page, there is a big and beautiful school building. This school building is completely surrounded by several beautiful plants. How to play? form teams of 3 students each. Place 2 cones 5 to 7 meters apart and ask 2 students to stand in front of the cones and one at the center. The student at the center will stand with feet apart, posing as a goal. The student is free to change their position. On the sound of the whistle, a student standing near the cone will try to kick the ball between the legs of the student standing at the center, and the other player will receive it. The ball should be hit below knee height. Change positions quickly to provide the opportunity to all 3 players. On the right center of this page, there is an image that depicts 3 students that are playing friendly goal. One student is standing on the left, one on the right, and one in the center. The student on the right is kicking the ball between the legs of student at the center, and the left student is preparing to receive it. Purpose: to develop accuracy in kicking. Variation: vary the distance between the students. Use both legs alternately. Students can also juggle the ball in the air 2 to 3 times before kicking. Circle time: discuss steps to ensure safety of the student standing at the center while kicking. As a student standing at the center, how would you stand to ensure your own safety? Page number 30, BM 8, clear the center. Required material: marking powder and footballs. On the top left of this page, there is an image in which there is a rising sun surrounding by beautiful clouds. Many beautiful houses are also there with attached solar panels that are surrounded by several trees. How to play? Form 2 uneven teams. Team A will have 4 to 5 students and Team B will have 12 to 15 students. Form circles as given in the picture. Team A will stand inside the circle with each player. On the bottom of this page, there is an image in which 2 teams of students are there. On the bottom right of this page, there is an image in which 2 teams of students are there in ground. The students of one team are wearing yellow t-shirt and pink pants. The students of other teams are wearing green t-shirt and blue pants. 2 concentric circles are marked on the ground. 3 students of same team are placed in the inner circle and they are kicking the football outside the circle, and 3 students of the other team are outside these circles and they are trying to catch the ball. One student of the team that is inside the circle is also standing outside these circles. Page number 31. Having 1 football each, and Team B will stand outside the outer circle. At the sound of the whistle, Team A will kick the balls outside the circle as far as possible. Team B students will try to retrieve the footballs quickly and kick them back into the circle carefully so that they do not go out of the circle. Rotate the students in the inner circle to provide an opportunity to all. Note for the teacher: ensure that the students retrieve the ball only with their legs. Purpose: to develop response time with leg-eye coordination. Variation: vary the number of students in each team. Vary the size of the playing area. Use different sounds to start, pause, and stop the game. Circle time: suggest new rules for playing the game to make it more difficult and interesting. On the bottom left of this page, there is an image in which 5 students are standing in the ground, out of which 4 students are of one team, which are wearing yellow t-shirt and pink pants, and one student is of the other team, which is wearing green t-shirt and blue pants. The students wearing yellow t-shirt are trying to retrieve the ball, and the student wearing the green t-shirt is trying to kick the ball. Page number 32, BM9, wall goal. Required material, cones and footballs. On the top left of this page, there is a big and beautiful school building. This school building is completely surrounded by several beautiful plants. How to play? Form teams of 5 students each. Provide 1 football and a cone to each team. The student will place the cone at a distance of 5 feet from the wall and place the ball next to the cone. The aim is to kick the ball onto the wall in a way that it will rebound and hit the cone. If a team successfully hits the cone, they can move the cone 1 foot further and continue kicking. Mark a line at 10 feet. If the students cross it, they will receive 1 point. The team with the maximum points will win the game. Did you know? Rubber balls bounce from any hard surface primarily due to its elasticity and momentum. Page number 33. On the top of this page, there is an image that depicts a grass field in which a girl is kicking the ball on the wall and it bounces back to hit the cone. Purpose: to develop a sense of force and work the angles while kicking. Variation: vary the number of students in each team. Use different objects in place of cones to change the hitting target. Keep the object at different rebound angles. Circle time: discuss ways of hitting the ball on the wall so that it rebounds straight back or at different angles. Realize the difference in the force applied for hitting the cones placed at different distances and angles. Page number 34, BM10, foot cricket. Required material, football. On the top left of this page, there is an image in which there is a rising sun surrounded by beautiful clouds. Many beautiful houses are also there with attached solar panels that are surrounded by several trees. How to play? Form 2 teams. Toss a coin to choose batting or fielding. Set up the ground, wickets and pitch as done in the game of cricket. Bowlers and fielders will use their hands to roll the ball for bowling or to field. On the bottom right of this page, there is an image that depicts foot cricket. There is a ground in which wickets and pitch are being set up. 5 students are there in the ground along with a coach. 1 student is a wicket keeper. 1 of them is trying to catch the ball and the remaining 3 are fielders. Page number 35. The batter will use their leg to kick the ball. Fielders will use their hands to receive the ball. The rest of the rules are the same as cricket. The team with the maximum runs at the end will win the game. Purpose: to develop teamwork and coordination among teammates. Variation: vary the number of students in each team. Vary the size of the playing area. On the bottom left of this page, there is an image that again depicts foot cricket. There is a ground in which wickets and pitch are being set up. 5 students are there in the ground, out of which 1 is standing in front of wicket and kicking the ball to the other side. 1 student is wicket keeper and remaining 3 are fielders. Circle time: share ideas on how to play better as an individual and as a team. Page number 36, BM 11, kick in the square. Required material, football, marking powder. On the top left of this page, there is a big and beautiful school building. This school building is completely surrounded by several beautiful plants. How to play? Mark 6 rectangles of different sizes on the ground and mark a line 5 to 7 meters apart from the squares. Form teams of 4 to 5 students each. Give each team a football and they will line up behind the kicking line. The teacher will give a target to students to kick the ball into one of the squares. On the bottom right of this page, there is an image that depicts ground in which two students are trying to kick the ball into one of the target squares. Page number 37. Both teams will try one by one to kick the ball inside the designated square. Whichever team kicks in the square first will get a point. This will continue until a team gets 10 points and is declared a winner. Purpose: to develop leg-eye coordination, sense of space and sense of force with respect to distance. Variation: vary the size, shape and weight of the ball. On the bottom left of this page, there is an image that depicts the other half of the playground in which three squares are there and football is hitting the one of the designated square. Circle time: realize the difference in force applied while kicking the ball in squares of different sizes. Page number 38, BM 12, hit the potato. Required material, tennis balls and footballs. On the top left of this page, there is an image in which there is a rising sun surrounded by beautiful clouds. Many beautiful houses are also there with attached solar panels that are surrounded by several trees. How to play? Form teams of 8 students each. Place 2 cones 10 meters apart in the center. Place 1 student each with a tennis ball next to the cones. On the bottom of this page, there is an image that depicts a playground in which there are 3 students. The students on the left and right side are kicking tennis balls and one in the center is kicking football. A cone is also placed in front of the student on the left side. Page number 39. Place 3 students at a distance of 5 to 7 meters from the cone on both sides and provide 3 footballs to each team. The students standing at the cones will roll the tennis ball across the cones and the students with the football will try to hit the moving tennis balls. If a student hits a tennis ball, that student will exchange places with the student rolling the ball and the game will resume. Purpose: develop a sense of space with respect to moving objects and accuracy. Variation: vary the number of students in each team. Vary the size of the rolling targets. Vary the pace of rolling. On the bottom left of this page, there is an image which depicts a playground in which there are 2 students. One of them is kicking the football and the other one is trying to catch the tennis ball. Circle time: share the difficulties you faced while hitting the moving target and how you dealt with them. The teacher will give a target to students to kick the ball into one of the squares.
0: Khel Yog. You were just listening to this audiobook, textbook of physical education and well-being for class 5. Narration, Meha Kheda. Sound recordist, Manju Kumari. Assistance in production, Chetna Sharma. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is presented to you by CIET NCERT, New Delhi,
2: India. Bell dena. इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था. इसकी यही प्रॉब्लम है.
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से.
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं. बुड़बात
2: खांसी?
3: हाँ.
2: इसको तो एक आध महीना हो गया.
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप. चलिए चलिए चलिए.
2: डॉक्टर, खांसी तो है.
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए. 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है.
2: टीबी?
3: हाँ. तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए.
2: ठीक है.
3: टीबी किसी को भी हो सकता है. अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए. नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है. समझ गए भाई साहब आप? आइए. 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए. टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार.
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल. लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ. माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ. तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल. अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात. अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ. टीका सुरक्षित है. टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है.
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.
8: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है.
9: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है. भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं. आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
10: हर घर सूर्य घर.
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर.
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर.
12: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक.
11: उन्नत कृषि. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं. और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ मक्का की बात होगी. किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से. सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
13: धन्यवाद उमा जी. नमस्कार किसान भाइयों. आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है. आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है. और इनसे किसान भाई मक्का की खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
11: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
13: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
11: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
13: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से यह कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
11: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के?
13: सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
11: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
13: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं, उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं, एक भूटा 10 रुपए से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपए में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
11: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
13: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी 2.5 एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
11: और बुआई की विधि क्या?
13: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरा पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिमा, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
11: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में। हाँ,
13: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप च्वाइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है। ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
11: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
13: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास 3 चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें, और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
11: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
13: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है। वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भूटे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
11: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
13: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पे बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी

0: दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है, तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा, और चूंकि नाली पे किए हैं मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है। नहीं सिंचाई की जरूरत है खेत में, पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
1: जी सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
0: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए, लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है, तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें, इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें, बीज पैकेट खरीदें उसका रैपर देखें, और उस बीज के थैले को बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है, और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
1: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं पौधा घना करते हैं तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है, इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें, और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही, और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया।

0: यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 के पाठ 7 मेरी किताब के अभ्यास बातें किताबों की पर आधारित ये कार्यक्रम।
1: बच्चों, कहानी सुनना तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? हाँ, रानी को भी बहुत अच्छा लगता है। रानी के दादाजी ने आज उसे राजा रानी की कहानी सुनाई और फिर रानी से बोले,
2: तो बताओ रानी, राजा रानी की कहानी कैसी लगी?
3: बहुत अच्छी लगी दादाजी। दादाजी, एक और कहानी सुनाओ ना।
2: नहीं बेटा, अब तुम मुझे कहानी सुनाओ।
3: नहीं दादाजी, आप सुनाओ।
2: मुझे भी तुमसे कहानी सुनने का बड़ा मन करता है। ठीक है, कहानी ना सही तो अपनी मनपसंद किताब के बारे में बताओ।
3: किताब? हाँ, मुझे अपनी हिंदी की किताब बहुत अच्छी लगती है।
2: अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारी हिंदी की किताब में?
3: दादाजी, मेरी हिंदी की किताब में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं और चित्र हैं।
2: अच्छा?
3: हाँ, ये सब मुझे बहुत पसंद है।
2: तो फिर बेटा, किताब से कोई कहानी या कविता सुनाओ ना।
3: ठीक है, कौन सी सुनाओ? वैसे तो मुझे सभी कहानियाँ पसंद है। क्यों ना मैं आपको भालू ने खेली फुटबॉल ये कहानी सुनाऊं?
2: भालू ने खेली फुटबॉल?
3: हाँ।
2: वही ना जिसमें भालू शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लेता है और अपने पैरों से उसे ऊपर उछाल देता है।
3: दादाजी, वही वाली।
4: जब दादा और पोती बात ही कर रहे थे तब रानी ने एक मुखौटा पहना जो बादल की तरह बना हुआ था। मुखौटा पहनकर रानी बोली,
3: गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़।
2: अरे ये क्या, मेरा बेटा तो बादल का मुखौटा पहनकर बादल बन गया। ये किसने बनाया?
3: दादाजी, ये मुखौटा मैंने बनाया है। किताब में रंग बिरंगे चित्र हैं। उन्हीं चित्रों को देखकर मैंने ये मुखौटा बनाया है। और दादाजी, मेरे कई दोस्तों ने भी मुखौटे बनाए हैं।
2: अच्छा
3: दादाजी, मुखौटे, मिट्टी के नमूने और खिलौने हम सब बनाते हैं और अभिनय करते हैं तो हमें बहुत मजा आता है।
2: अच्छा, ला दिखाओ अपनी किताब, देखूं तो कितने मुखौटे बने हैं तुम्हारी किताब में।
3: ये लीजिए दादाजी।
2: अरे ये तीनों मुखौटे बड़े बड़े जानवरों के हैं। हाथी, शेर, भालू के मुखौटे।
3: अच्छे लग रहे हैं ना दादाजी?
2: अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुखौटा रूपी बादल भी हमें कुछ सुनाए। क्या सुना रहा है मेरा छोटा सा बादल?
3: गड़ गड़ गड़ गड़। मैं हूँ बादल। काले मेघा पानी दे, गुड़धानी दे, बरसो खूब जमा जम जम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे।
2: शाबाश बेटा, बहुत अच्छा।
4: तो बच्चों, तुम भी कोई मुखौटा बनाओ और सुनाओ मुखौटे पर आधारित कविता, ठीक है?
0: बातें किताबों की। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT, विषय संयोजन सह आचार्य डॉ. रमेश कुमार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT, आलेख डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा, कलाकार वैभव श्रीवास्तव और सुनील लोहिया, बाल कलाकार ऋतिका, ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंतशुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आपको अपने स्कूल का पहला दिन तो याद होगा। पता है, मुझे भी अपने स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छे से याद है। आपके स्कूल की भी कुछ यादें आपके साथ होंगी, मेरे स्कूल की भी कुछ यादें मेरे साथ हैं। तो क्यों ना हम आज अपने अपने स्कूल की यादों को साझा कर ले। कुछ आप कहें और कुछ मैं कहूं, और फिर कुछ मैं कहूं और फिर कुछ आप कहें। तो शुरू करें आपके और हमारे स्कूल का पहला दिन। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे नन्हे मुन्ने श्रोता हैं जो अभी तक स्कूल ही नहीं गए। ये लीजिए, ये बात तो मैं भूल ही गई, न जाने कैसे ये दिमाग से बात निकल गई। तो कोई बात नहीं, जो स्कूल कभी नहीं गए वे ये भी जान लेंगे कि स्कूल में होता क्या है और क्या क्या होता है, कौन कौन लोग स्कूल में होते हैं और टीचर या दीदी बच्चों के साथ कितनी मस्ती मारती हैं। तो हम शुरू करें आपके और हमारे स्कूल का पहला दिन। तो क्या मैं शुरू करूं अपनी बात? ठीक है, तो आपने इजाजत दी है तो फिर आपका हुक्म मैं सिर आंखों पर रखती हूं और शुरू करती हूं अपने स्कूल के पहले दिन से। ये जुलाई का समय था और तारीख मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन शायद 1 या 2 जुलाई रही होगी। नहीं, शायद हमारे जमाने में स्कूल खुलता था शायद 15 या 16 जुलाई से। चले छोड़िए तारीख में क्या रखा है, मजा तो इस बात में है कि स्कूल का पहला दिन कैसा गया। स्कूल का पहला दिन था और मैं अपने पापा के साथ स्कूल गई। मम्मी घर में थी, वो भाई को संभाल रही थी। तो स्कूल के पहले दिन मुझे मेरे पापा ने स्कूल छोड़ा, पैदल पैदल नहीं, साइकिल पर। मुझे अपने पापा के साथ साइकिल पर बैठने में बड़ा मजा आता है, तो जब तब मुझे मौका मिलता है मैं कूद कर उनकी साइकिल में पर बैठ जाती हूँ और फिर हम घूमने निकल जाते हैं। तो पापा और मैं बतियाते गपियाते स्कूल की ढेर सारी बातें करते करते स्कूल पहुंच गए। तो मैं और मेरे पापा क्लास में गए। क्लास में माधवी दीदी बैठी हुई थी। माधवी दीदी ने मुझसे मेरा नाम पूछा, वे मुस्कुराई और उन्होंने मुझे एक टॉफी दी। तो मैंने मन ही मन सोचा कि भाई भी तो घर पर है, तो क्यों ना एक टॉफी मैं भाई के लिए ले लूं। तो मैंने माधवी दीदी से कहा, दीदी क्या आप मुझे एक और टॉफी दे देंगी? पापा ने मेरी तरफ घूर के देखा कि एक टॉफी तो मिली गई है, ये दूसरी टॉफी क्यों मांगी जा रही है। तो माधवी दीदी ने कहा, तो आपको 2 टॉफी चाहिए? मैंने कहा, नहीं मुझे तो एक ही टॉफी चाहिए। तो माधवी दीदी ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा, आपको तो एक टॉफी मैंने पहले दे दी है। तो मैंने कहा, हाँ मेरे पास तो एक है, तो मुझे एक टॉफी अपने भाई के लिए चाहिए। माधवी दीदी खूब जोर से हंसी और उन्होंने हंसते हंसते मुझे एक और टॉफी दे दी। तो ऐसा कुछ था मेरा स्कूल का पहला दिन। तो बच्चों, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? आपको कौन छोड़ने गया था स्कूल में, कुछ याद है? और आप स्कूल के लिए तैयार कैसे हुए थे? स्कूल जाने के लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं, सुबह का नाश्ता करना पड़ता है, बस्ता संभालना पड़ता है और फिर हम स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर जिनकी अभी उम्र नहीं हुई है स्कूल जाने की, लेकिन सबके मन में स्कूल की कोई ना कोई तस्वीर तो होती ही है। प्यारे बच्चों, आपका स्कूल का पहला दिन कैसा गुजरा, आप हमसे जरूर साझा कीजिए। क्यों ना हम स्कूल में चले? ठीक है, तो हम चलते हैं एक स्कूल में। ये स्कूल पता है किसका है? ये स्कूल है कल्याणी का। कल्याणी कौन? वही कल्याणी जो मेरे पड़ोस में रहती हैं। छोटी सी चुलबुली सी कल्याणी हमेशा इधर उधर न जाने कहां कहां भागती रहती हैं। कहीं टिककर बैठती ही नहीं है। उनकी माँ को ये लगता है कि कल्याणी जब स्कूल जाएंगी तो क्लास में ये बैठेंगी कैसे। पर कल्याणी को स्कूल जाकर खूब मजा आया, क्योंकि दीदी ने कभी टोका ही नहीं कि तुम इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो। दीदी ने पता है क्या कहा बच्चों से? कि सारे बच्चे जाकर मैदान में खूब खेलो, जिसको जो करना है वो करो, दौड़ो भागो, एक दूसरे के पीछे दौड़ो, एक दूसरे को पकड़ो, स्टापू खेलो, जो खेलना है वो खूब मजे से खेलो। मैंने तो ऐसा स्कूल कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं तो अपने स्कूल को ही देखकर ये बात कहूंगी ना, लेकिन मुझे मालूम है बच्चों, आपका स्कूल बहुत अच्छा है। वहाँ खेलने की तरह तरह की चीजें हैं जिनसे आप खेलते हैं। झूले भी तो हैं आपके स्कूल में। ये बात तो किसी ने मुझे बताई ही नहीं, लेकिन मुझे तो सब पता है कि आपके स्कूल में क्या क्या है। आपके स्कूल में झूले हैं, आपके स्कूल में खूब सारी खेलने की चीजें हैं, एक खूब बड़ा सा मैदान है, और कल्याणी ने तो मुझे ये भी बताया कि एक ऐसा बड़ा सा कमरा है जहाँ पर खूब सारे शीशे लगे हैं देखने के लिए, आईने लगे हैं, और हारमोनियम है, तबला है, सितार है, ड्रम है, और हम खूब नाचते और गाते हैं। तो कल्याणी ने अपने स्कूल का पहला दिन कैसे बिताया पता है बच्चों? नहीं पता? तो जो मुझे कल्याणी ने बताया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कल्याणी जब अपने पापा के साथ स्कूल पहुंची तो नंदिनी दीदी ने कहा, कल्याणी आपका ही नाम है ना? कल्याणी ने नंदिनी दीदी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद नंदिनी दीदी ने कल्याणी का हाथ पकड़ा और वो उसे प्यार से क्लासरूम में ले आई। पता है क्लासरूम में और क्या क्या था? क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। और क्या कर रहे थे बच्चे? सारे बच्चे आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे, एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे। आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप भी तो नाम पूछते हैं। तो सारे बच्चे एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे, नाम जान रहे थे, कौन कहाँ रहता है ये भी पूछ रहे थे, और वो कहाँ रहते हैं अपने बारे में बता रहे थे। तो कल्याणी ने सारे बच्चों को देखा और सारे बच्चों ने कल्याणी को देखा। सारे बच्चों ने तालियां बजाई कल्याणी के आने पर। तो कल्याणी बहुत खुश हुई और कल्याणी जाकर बैठ गई बबली के पास। बबली उनके पड़ोस में रहती थी। कल्याणी ने बबली को देखा और बबली ने कल्याणी को देखा। तो बबली ने कहा, कल्याणी तुम किसके साथ आई हो? कल्याणी ने कहा, मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। अच्छा, तो अंकल आपको छोड़ने आए हैं स्कूल? कल्याणी ने कहा, हाँ। तो क्या वे चले गए? मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो नंदिनी दीदी क्लास में ले आई थी, शायद चले गए हो, उन्हें ऑफिस भी तो जाना है। देखो कल्याणी, हमारी क्लास कितनी अच्छी है, तुमने देखा इस क्लास में कितनी सारी किताबें हैं? तो बच्चों, उस क्लास में ढेर सारी किताबें रखी हुई थी, तरह तरह की किताबें, रंगीन चित्रों वाली किताबें, और कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें, और कुछ किताबें ऐसी थी जिसमें कोई कहानी कविता तो थी ही नहीं, केवल चित्र ही चित्र थे, केवल तस्वीरें ही तस्वीरें थी। और मुझे तस्वीरों वाली किताबें बहुत पसंद आती हैं। तो सारे बच्चे नंदिनी दीदी को घेर कर बैठ गए। अच्छा सोचिए बच्चों, आगे क्या हुआ होगा? नंदिनी दीदी ने कोई पाठ शुरू किया होगा पढ़ाने के लिए, जैसा आमतौर पे होता है? नहीं, नंदिनी दीदी की क्लास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया, सबका एक एक करके नाम पूछा और फिर उन्होंने अपना नाम बताया। तो इस तरह से बीत रहा था हमारे स्कूल का पहला दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन इस क्लास में तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है बच्चों। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों से पूछा, उन्होंने बच्चों की पसंद पूछी कि वे आज क्या करना चाहते हैं। हमेशा नंदिनी दीदी ऐसे ही करती हैं, वे बच्चों से ही पूछती हैं कि अच्छा बताओ हम क्या करें आज। तो बच्चे बताते हैं, नंदिनी दीदी आज हम कोई गीत गाएं। तो बच्चों, नंदिनी दीदी ने सब बच्चों को एक गीत सुनाया। तो हम भी सुने वो गीत। ये गीत कुछ ऐसा था।

गए। कैसा लगा गीत आपको? ये गीत तो मुझे लगता है सब बच्चों ने सुना होगा। नंदिनी दीदी ने सब बच्चों के साथ ये गीत गाया और बच्चों ने भी नंदिनी दीदी के साथ इस गीत में खूब आनंद लिया, खूब मजे किए। और पता है उसके बाद जॉन ने नंदिनी दीदी से क्या कहा? जॉन ने कहा, दीदी दीदी अब हम एक और गीत गाएंगे। अच्छा बताओ कौन सा गीत गाएंगे? वही जो आपने पहले उस दिन सुनाया था। मैंने कब सुनाया था? नन्नी दीदी आपको याद ही नहीं आ रहा, जब आप मुझे स्कूल के बाहर मिली थी तो एक गीत गुनगुना रही थी, वही गीत सुना दीजिए ना। तो नंदिनी दीदी ने अपने दिमाग पे जोर डाला और सोचा उन्होंने कि मैंने कौन सा गीत गाया था, मैं कौन सा गीत गुनगुना रही थी। तभी नंदिनी दीदी को वह गीत याद आ गया। तो बच्चों, नंदिनी दीदी ने बच्चों के साथ मिलकर एक और गीत गाया। तो लीजिए सुनिए आप वह गीत।

0: कैसा लगा आपको गीत? भाई मुझे तो बहुत मजा आया। तो मुझे मालूम है कि हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं को भी यह गीत बेहद पसंद आया होगा। आप भी ऐसे गीत गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। देखिए भाई, गाना हो तो जी भर के गा लीजिए। अब उसमें सुर है, लय है, ताल है, इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप तो जी भर के गाइए, खूब मजे से गाइए, आनंद के साथ गाइए। अब जब हम अपने दिल से गाते हैं गाना तो वो सबको पसंद आता है, पर हम तो अपने लिए गाते हैं ना गाना, तो बस आपको जो गीत आता है आप गुनगुनाइए। अभी ये गीत खत्म ही हुआ था तो रूबीना ने कहा, नंदिनी दीदी क्या आप एक और गीत सुना सकती हैं? तो पता है बच्चों क्या हुआ, नंदिनी दीदी ने कहा ठीक है हम एक और गीत गाते हैं। तो फिर सब ने मिलकर एक और गीत गाया और ये गीत आप भी सुनिए।
1: घंटी बजती तबला बोले घुंघरू छनके

0: तो कैसा लगा आपको ये गीत? अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो बस गीतों के सहारे ही आज स्कूल का पहला दिन बीत रहा था। तभी अचानक अमरजीत की नजर गई दरवाजे पर। पता है वहाँ कौन था? वहाँ एक छोटी सी बिल्ली झांक रही थी। कहाँ? अरे भाई, क्लास के अंदर। लेकिन ये बिल्ली क्यों आई क्लास के अंदर? क्लास में तो कोई चूहा नहीं था। कल्याणी ने कहा कि मुझे लगता है ये बिल्ली भी गाना सुनने आई है, तो इस बिल्ली को भी गाने का आनंद लेने देते हैं। तो बच्चों, बिल्ली झांक रही थी, सब बच्चों की नजर नंदिनी दीदी की तरफ थी, लेकिन कल्याणी की नजर कहाँ थी? उस छोटी सी बिल्ली पर। छोटी सी बिल्ली गीत खत्म होते ही भाग गई। तभी दीपक उठा और वह कहानियों की किताब के पास चला गया। उसने अपनी पसंद की खूब सारी कहानियों की किताबें देखी और एक किताब उठाकर वह नंदिनी दीदी के पास ले आया। अच्छा सोचो बच्चों, दीपक ने किताब क्यों उठाई और उसने वह किताब नंदिनी दीदी को क्यों दी होगी? सोचिए, क्यों दी होगी आखिर किताब उन्होंने नंदिनी दीदी को? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पहचाना। दीपक दरअसल वो कहानी सुनना चाहते थे नंदिनी दीदी से। तो नंदिनी दीदी ने कहा, ठीक है, अब हम गीत के बाद एक कहानी कहते हैं। और फिर नंदिनी दीदी ने बहुत मजे से एक कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते सब हूं हूं कर रहे थे। नंदिनी दीदी ने कहानी कहना शुरू किया। एक गांव था, गांव में एक किसान रहता था, किसान के दो बच्चे थे, वे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बस नंदिनी दीदी कहती जा रही थी कहानी और सारे बच्चे हुंकारा भर रहे थे। ये हमारी आदत ही पड़ जाती है, जब हम कहानी सुनते हैं तो मुंह से ये निकल ही जाता है। इसका मतलब ये भी था कि सारे बच्चे बहुत ध्यान से नंदिनी दीदी की कहानी सुन रहे थे और कोई बच्चा सो नहीं रहा था। सोचिए, जब कोई बच्चा सो जाएगा तो वह हुंकारा कैसे भरेगा, और जब आवाज नहीं आएगी तो नंदिनी दीदी को ये पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कहानी नहीं सुन रहा और उसे नींद आ गई। लेकिन आप सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सोते हैं कहानी सुनते हैं और कहानी सुनते सुनते हम गहरी नींद में सो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो खूब जोरदार से खर्राटे मारना शुरू हो जाते हैं तो दादी नानी को पता चल जाता है कि बच्चा सो गया। लेकिन स्कूल में ऐसा क्यों होता है कि हमसे ये उम्मीद रखी जाती है कि जब हम कहानी सुने तो बहुत अलर्ट होकर सुने, अटेंटिव होकर सुने, हुंकारा भरे और सोए नहीं। लेकिन अगर कहानी सुनते सुनते किसी को नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, तो नींद आनी थी तो हमें आ गई। इसका मतलब है कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनाई जा रही है। तो बच्चों, स्कूल के पहले दिन यही सब कुछ हुआ। तो आपको याद है स्कूल में क्या क्या हुआ? मेरे स्कूल में नहीं, कल्याणी के स्कूल में। हम तो कल्याणी की बात कर रहे थे ना, तो फिर सोचिए कि कल्याणी का स्कूल का पहला दिन कैसे बीता। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले कल्याणी अपने पापा के साथ स्कूल गई। तो फिर उन्हें कौन मिला? उन्हें मिली नंदिनी दीदी, वही नंदिनी दीदी जो कक्षा एक को पढ़ाती हैं। फिर नंदिनी दीदी कल्याणी को क्लास में लेकर आई। अच्छा बताइए बच्चों, क्लास में क्या था? क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। अच्छा, तो बताइए बच्चों कि बच्चे क्या कर रहे थे? शाबाश, सारे बच्चे आपस में हंस बोल रहे थे, एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे। तो बच्चे नाम क्यों पूछ रहे थे? अरे भाई, बच्चे पहली बार मिले थे एक दूसरे से, इसलिए परिचय और दोस्ती बढ़ा रहे थे। फिर क्या हुआ क्लास में? फिर सब बच्चों ने फरमाइश की नंदिनी दीदी से कि हम गीत गाएंगे, आप हमें अच्छा सा गीत सुना दीजिए। तो फिर नंदिनी दीदी और बच्चों ने मिलकर गीत गाया। अच्छा, फिर नंदिनी दीदी ने कहानी क्यों सुनाई, याद है आपको? प्यारे बच्चों, नंदिनी दीदी ने दीपक की कहानी सुनाई। वही दीपक जो कहानी की किताब उठाकर लाए थे, उन्होंने नंदिनी दीदी को किताब दी और कहा कि दीदी हमें ये कहानी सुना दीजिए। तो फिर नंदिनी दीदी ने बच्चों को कहानी सुनाई और इस तरह से आज का स्कूल का पहला दिन कल्याणी का समाप्त हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी स्कूल का दिन पहला बीत गया। ऐसा नहीं है, हमने तो आपको सिर्फ नंदिनी दीदी के साथ बिताया हुआ स्कूल का पहला दिन बताया है। अभी तो स्कूल में बहुत कुछ हुआ। टन टन टन टन टन टन घंटी बजी और सब बच्चों ने अपना अपना टिफिन खोला और भोजन किया। जो बच्चा भोजन नहीं लेकर आया था, सारे बच्चों ने अपने हिस्से का भोजन उनको देना शुरू किया। उसमें एक बच्चा था नंदू। तो नंदू आज भोजन लेकर नहीं आया था, तो सब बच्चों ने नंदू से कहा, ये लो नंदू, तुम मेरे साथ भोजन कर लो। कल्याणी ने कहा, अमरजीत ने कहा, रोहित ने कहा, बबली ने कहा, दीपक ने कहा और झुमके ने कहा। तो नंदू सबके साथ भोजन करने लगे और फिर सब बच्चों ने अपने हाथ धोए, खाना खाया और फिर उसके बाद वे खेलने के लिए चले गए। खेलते खेलते एक घंटा बीत गया और फिर टन टन टन टन टन टन की आवाज आई और सारे बच्चे वापस क्लास में आ गए। यहाँ क्या देखते हैं, क्लास में एक बहुत बड़ी सी दरी बिछी हुई है और एक हारमोनियम है, तबला है। नंदिनी दीदी के साथ दो और नए लोग आए हैं। बच्चों, आपको पता है ये नए लोग कौन थे? नहीं पता? तो मैं बता रही हूँ कि दो नए लोग थे उसी स्कूल के संगीत शिक्षक। एक का नाम था गर्वित और दूसरे का नाम था मयंक। तो गर्वित और मयंक ने, एक ने हारमोनियम संभाला और एक ने तबला संभाला। और फिर नंदिनी दीदी ने कहा कि आज हम सिर्फ गीत गाएंगे। तो सारे बच्चे मिलजुल कर गीत गाने लगे, लेकिन इस बार गीत गाने के लिए लय ताल का सारा सामान क्लास में मौजूद था। तो सब बच्चों ने मिलकर तबले की ताल पर गीत गाए और पता है बच्चों क्या हुआ, गीत गाते गाते बहुत सारे बच्चे उठे और नाचने लग गए। और इसके बाद जो धमाल मचा क्लास में, सारे बच्चे गीत पर नाचने लगे। नंदिनी दीदी देखकर बहुत खुश हुई, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि आज बच्चे इतना खुश हैं। तो उन्होंने पता है मनी मन क्या सोचा, उन्होंने बच्चों मनी मन ये सोचा कि ये सारे बच्चे हमेशा ऐसे ही स्कूल में हंसते रहें, गाते रहें, खुश रहें और ऐसे करते करते वे धीरे धीरे पढ़ना लिखना भी सीख जाएंगे। तो ऐसा था कल्याणी का स्कूल का पहला दिन। आपको कल्याणी के साथ स्कूल का पहला दिन बिताया हुआ कैसा लगा? मुझे मालूम है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप भी कल्याणी के स्कूल की बातों को अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, दादी को, नानी को, सबको बताइएगा कि कल्याणी का स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं और फिर हम आपके साथ दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को उषा दीदी का नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने सुनी कक्षा एक की ध्वनिशाला। विषय विशेषज्ञ थी प्रोफेसर उषा शर्मा, NCERT। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
2: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
6: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
4: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
6: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
13: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
14: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
15: हर घर सूर्य घर।
16: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
17: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
16: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
17: आपकी सेहत की बातें,
16: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
17: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
16: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
17: वो कहाँ पर?
16: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
17: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
16: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं, उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवा सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा

0: बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: नमस्कार, मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
4: तो मैम सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है। मक्का तो हम जानते हैं पर स्वीट कॉर्न क्या है।
5: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आमतौर पर इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में इसका उपयुक्त खेती नहीं हो सकता है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उसमें 400 मीटर तक अन्य किसी दूसरी वैरायटी की किस्म नहीं लगानी चाहिए। और जब हम बात करें कि 400 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का किसी और किस्म का नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने लगा दिया है 400 मीटर के सर्कल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप अपनी बुआई करें, ताकि नरमंजर आने में 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो खेत की जुताई को पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 20 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। बुआई के समय को हम लेकर बात करें तो उत्तरी भारत में खरीफ में जून से जुलाई और रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जानी चाहिए।
4: और बुआई के साथ मैम ये सवाल भी आता है कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए।
5: जी, बीज की मात्रा के बारे में मैं बताऊंगी कि सामान्य मिठास वाली, इसे स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसके लिए बीज की मात्रा है 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और अधिक मिठास वाली मक्का जिसे सुपर स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसे 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। जहाँ तक पंक्तियों और पौधों से पौधों की दूरी की बात हम करें बुआई के समय, तो स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। पौधों की संख्या, उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67,000 प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहां तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए तथा तना छेदक से बचाव के लिए फिप्रोनिल 6 ml प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का सही तरीका अगर हम बात करें तो बीज कतारों में और मेड़ों पर बोने चाहिए। स्वीट कॉर्न की सभी किस्मों के बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मिठास वाली सुपर स्वीट वैरायटीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। आरंभ में प्रत्येक स्थानों पर 2 बीज डालें ताकि गर्मी में अंकुरण के 10 दिन एवं सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक स्थानों पर एक ही पौधा रहने दें।
4: और मैम बीज की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दीजिए।
5: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें।

0: से भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न और सिंजेंटा की सुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं और इनकी मिठास भी 15-20% मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कहाँ लगाई जाती हैं, अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊंगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
1: और मैम, कटाई का क्या समय होता है, क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
0: खरीफ में इसे 70-75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं, और रबी में 80-85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110-130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं और 250-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं, इसलिए ये हमारे अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक हेक्टेयर खेत में 150-170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60-80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60-80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फास्फोरस पोटास जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में डालें, और 10% नाइट्रोजन बुआई के समय, 20% नाइट्रोजन 4-5 पत्तों की अवस्था पर डालें, 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर एवं 30% नाइट्रोजन पुष्पण की अवस्था पर डालें जब उसमें नर मंजरी मादा मंजरी आने लगती है, और 10% नाइट्रोजन भुट्टे की दूधिया अवस्था में जिस समय दूध बनता है उस अवस्था में डालें। उर्वरक को बीज के 7-8 सेंटीमीटर के करीब डालना चाहिए।
1: और मैम, खरपतवार का कैसे प्रबंध करना चाहिए, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
0: जी, खरपतवार प्रबंधन के लिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और अन्य खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एट्राजिन 1-1.5 केजी को 500-600 लीटर पानी में घोलकर एक हेक्टेयर में बुआई के तुरंत बाद, लेकिन अंकुरण के पहले छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है, हल्की मिट्टी में 7-8 सिंचाई एवं भारी मिट्टी में 4-5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
1: किस तरीके से फसल कटाई करनी चाहिए और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सिंचाई में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के में जब पुष्पण और दाना भराव का समय होता है उस समय हमें नमी बरकरार रखनी है खेत में, और सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जमीन में नमी बरकरार रखें। एवं कीट प्रबंधन की मैं चर्चा कर लूँ, कीट प्रबंधन के लिए आप तना छेदक कीट है इसे नियंत्रित करने के लिए पौधा जमने के 10 दिन बाद 85% वेजिटेबल पाउडर वाला कार्बोलिल को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गोब में छिड़काव करें। और अंतर्वर्ती फसलें भी इसमें ली जाती हैं विभिन्न प्रकार की, ये खासियत है। तो इसमें आप सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर, गोभी, पालक, धनिया इत्यादि सफलतापूर्वक आप उगा सकते हैं। और स्वीट कॉर्न को मेड़ के दक्षिणी भाग में एवं अंतर्वर्ती फसल को मेड़ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी अंतर्वर्ती फसल की लगाने की स्थिति में 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंतर्वर्ती फसलों की खेती शहर के आसपास के क्षेत्रों में करने से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। और फसल कटाई की बात आपने छेड़ी थी तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगी कि बीज के अंकुरण के लगभग 45 दिनों के बाद नर मंजरी आती है एवं इसके 2-3 दिनों के बाद मादा मंजरी आती है, और गर्मी के मौसम में परागण के 18-22 दिनों के बाद स्वीट कॉर्न के भुट्टे की तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब आप इसकी तुड़ाई करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे रेफ्रिजरेटेड वैन में ही हम ट्रांसपोर्ट करें, और सर्दी के मौसम में परागण के 25-30 दिनों के बाद भुट्टे की तुड़ाई की जा सकती है। इस अवस्था में तुड़ाई की अवस्था को पहचानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से मादा मंजरी के सूखने की अवस्था में इसे हम पहचान सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया है, और जब हम छिलका हटाते हैं तो दाने में दूध भरा होता है, इसे दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, तो इस अवस्था में हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। हरे भुट्टे के तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे के चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम में करें ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे और ये ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि मिठास बनी रहे। कटाई उपरांत प्रबंधन की बात करें तो भुट्टे की तुड़ाई के बाद इसे तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर स्वीट कॉर्न के भुट्टे का 50% शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रो कूलिंग एवं पैकेजिंग कर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का ही प्रयोग करें। और ये सारी खासियत है स्वीट कॉर्न में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इसे काफ़ी चाव से खाया जाता है, इसके विभिन्न व्यंजन बनते हैं, तो और इसका सीड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, तो किसान भाई इसका बीज को बेच सकते हैं, बीज बनाकर या इसकी खेती करें और इसे काफ़ी लाभान्वित हुए।
1: यानी कि स्वीट कॉर्न उगाने के बाद तो फायदे होते ही हैं और साथ में बीज भी बेचकर किसान भाई बहन बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उम्मीद है कि जो भी मक्के की खेती करने की सोच रहे होंगे वो स्वीट कॉर्न के बारे में भी सोचेंगे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी,
0: धन्यवाद।
1: आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बात
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया,
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए, बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
9: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
10: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
9: और लाइट बिल के
10: अब 0 रुपए कैसे दूं?
9: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
11: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरी बेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरी जोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
13: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। आज के समय में मिट्टी की जरूरत और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है हमारी कि हम जैविक खेती को अपनाएं। और बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती को अपना भी रहे हैं और ऐसे में उनके मन में सवाल आता है कि जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार झा। आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैविक खेती क्या होता है।
1: देखिए, आज की जरूरत है। जैविक खेती को विषमुक्त खेती भी कहते हैं, यानी जो बिना जहर वाली जो खेती है, जिसमें ऐसे उत्पाद पैदा हो जिसमें कोई जहरीला चीज ना हो, उसको हम जैविक खेती कहते हैं। हाँ, परिभाषा के रूप में यदि जानना चाहे तो यह है कि कृषि की वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कृत्रिम कीटनाशकों या आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जैविक पदार्थ है उसका ही हम प्रयोग करते हैं और उससे जो खेती होती है उसको हम जैविक खेती कहते हैं।
0: जी, तो सर जैविक खेती के फायदे क्या क्या है?
1: बहुत समचीन प्रश्न है। जैविक खेती आज की नीड है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है, आने वाली जनसंख्या को यदि भोजन मुहैया करवाना है तो मिट्टी को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम 140 करोड़ के आसपास हैं, उम्मीद करता हूं कि 2050 तक हम बढ़ करके लगभग 170 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। और इस 170 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करवाना, वह भी ऐसी मिट्टी से जिस मिट्टी में कि लगभग 6 पोषक तत्व तो हमारी मिट्टी में कम हो गया है। जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वह तो हर एक किसान लगभग प्रयोग कर रहा है। यूरिया, DAP, पोटास तो प्रयोग ही कर रहा है। बहुत सारे किसान जिंक भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं बोरन भी प्रयोग करते हैं बोरेक्स के रूप में। साथ ही साथ यदि आप देखें तो कहीं कहीं सल्फर का प्रयोग करते हैं। यानी 6 तत्व तो किसान भी जान रहा है कि वो लिमिटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ जो शोध हुआ है, जो मिट्टी की जांच हुई है, उसे यह भी पता चला है कि हमारा जो लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, मॉलिब्डिनम है, यह भी जल्दी ही कम होने वाला है। और उस सारी चीजों के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कि कार्बन हमारी मिट्टी में कम हो गया हुआ है। आज से 70 साल पहले लगभग हमारी मिट्टी में 1% के आसपास कार्बन था, जो घट करके अब बामुश्किल 0.3-0.4% रह गया है। और यह इतना जल्दी कार्बन बढ़ता नहीं। 4-5 साल तक यदि हम ढांचा पलटते हैं तो बामुश्किल 0.1-0.2% कार्बन हमारी मिट्टी में बढ़ता है। हम चाहते हैं वायुमंडल में कार्बन कम रहे। मैं चाहता हूं कि मिट्टी में कार्बन बढ़े, लेकिन हो गया है उल्टा। हमारे वायुमंडल में कार्बन बढ़ता चला जा रहा है, हमारी मिट्टी में कार्बन कम हो रहा है। और यह तभी दूर होगा जबकि हम ऐसी चीजों को अपनी मिट्टी में डालें जिसमें कार्बन हो, चाहे वह हरी कोई चीज, यानी कि कहने का मतलब हरी खाद पलटे, या चाहे जो हमारे जैविक खाद हैं, चाहे वो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे नाडेप कंपोस्ट हो, इन सारी तरह की चीजों को हम अपने मिट्टी में डालें जिससे कार्बन बढ़े। यह निहायत ही जरूरी है। और आने वाली जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा यदि हम चाहते हैं कि उसका सुनिश्चित हो सके, तो इसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें करें।
0: जी सर। सर, अगर हम मिट्टी की उर्वरता के बारे में बात करें तो जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
1: अब यह पिछले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ ये है कि जैसे आपने एक चीज पूछा था कि जैविक खेती के क्या फायदे, तो एक तो पहली बात कि हानि रहित शुद्ध और पौष्टिक भोजन हमें मिल सकता है तो जैविक खेती से मिल सकता है। पर्यावरण का यदि संरक्षण होना है, वह भी जो हमने अभी पद बताया भी, वह भी हो सकता है तो जैविक खेती से हो सकता है। और लंबी अवधि तक यदि उपजाऊ जमीन चाहते हैं तो वह भी हमें मिलेगा तो जैविक खेती से मिलेगा। अब यह है कि जैविक खेती में मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन कैसे होता है? तो एक तो पहली चीज कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पूरी तरह बंद होता है इसमें। हालांकि कुछ रसायन ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, ये सारी चीजें अलाउड हैं, कुछ केमिकल्स अलाउड हैं, लेकिन जिसका कि हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं है वही सिर्फ केमिकल्स हमारे लिए अलाउड हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें पूरी तरह बंद होता है। इससे क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों के चलते जो हमारी मिट्टी में कोई विषाक्त चीजें आ रही हैं वो विषाक्त चीजें नहीं आएंगी। दूसरी बात, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब का प्रयोग उसमें होता है, जिससे क्या होता है कि ये लंबे समय तक हमारी जो है उर्वरता बनी रहती है। साथ ही साथ जो एक चीज है, जो लाभदायक जीव जीवाणु हमारे मिट्टी से कम हो गए हुए हैं उनकी संख्या बढ़ती है। एक चीज मैं बताऊं कि जितने लाभदायक जीवाणु हैं उनको एनर्जी सोर्स के रूप में कार्बन चाहिए, और कार्बन मिलेगा तभी जब कोई कार्बनिक पदार्थ उसमें हम डालेंगे। तो वह कार्बनिक पदार्थ जब उसमें आ जाता है तो उससे वह लाभदायक जीव जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, यदि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिताजी या दादाजी हैं, उनसे पूछिए कि कभी आपने राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया था, कभी एजोटोबैक्टर कल्चर का प्रयोग किया था, कभी पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया था, तो कहेंगे नहीं, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि ये लाभदायक जीव जीवाणु हमारी मिट्टी में थे। और क्यों थे? क्योंकि इसमें कार्बन था, कार्बन ज्यादा होने से उसकी जल धारण क्षमता भी ठीक ठाक होती है। साथ ही साथ उसमें जो दूसरा फायदा होता है वह यह है कि उसको जो खाने के लिए चाहिए एनर्जी सोर्स जो चाहिए वो एनर्जी सोर्स भी वहां से मिल जाता था, इसीलिए लाभदायक जीव जीवाणु वहां पर थे। यहां केचुआ आपके मिट्टी में खूब थे, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, लेकिन आज या तो तालाब तक सिमट के रह गए हैं या बगीचा तक सिमट करके रह गए हुए हैं। तो जो लाभदायक जीव जीवाणु है उनकी संख्या भी कम हो गई है। और तीसरी बात, जो फसल चक्र हम अपनाते हैं जैविक खेती में, उसमें बीच में कहीं ना कहीं दलहनी फसल को जरूर रखते हैं, और ये दलहनी फसल बड़ी अच्छी चीज है। ये समझिए अपने आप में यूरिया बनाने की फैक्ट्री है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ला करके हमारी मिट्टी में डालता है। भाई हम क्या करते हैं, बूस एंड एबर प्रोसेस से जो हम यूरिया वगैरह वगैरह बनाते हैं वहां पर भी तो यही करते हैं। और यहां पर यदि हम इस चीज को देखें तो यहां पर भी यह काम जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं और उसके शरीर में जो एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, उसके कारण यह सामान्य तापक्रम में हो जाता है। जबकि यूरिया के फैक्ट्री में देखिएगा तो 300-400 डिग्री टेम्परेचर वहां पैदा किया जाता है और उससे बनता है, लेकिन यहां पर सामान्य तापक्रम पर ही बन जाता है। तो ये सारे फायदे हमारे हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जैविक खेत में मिट्टी की उर्वरता, तो इनसे उर्वरता हमारी काफी बढ़ती है।
0: जी सर। सर अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बात करें तो जैविक खेती जब हमारे किसान भाई बहन अपनाते हैं तो उस क्रम में क्या क्या कृषि कार्य करने चाहिए जिससे पोषक तत्व का प्रबंधन हो सके?
1: तो एक चीज तो अभी हमने बताया कि फसल चक्र का चयन बहुत ही बढ़िया करना चाहिए। क्या बढ़िया होगा? जब बीच में हम कोई दलहनी फसल लेते हैं तो फसल चक्र हमारा ठीक ठाक है। तो इसीलिए एक तो पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। अब आप लोग ढैंचा वगैरह वगैरह का प्रयोग करते हैं, आप जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो है कम से कम 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल देता है, मोटा मोटी 100 किलोग्राम डाल देता है, यानी कि 220 किलोग्राम के आसपास यूरिया हमारी मिट्टी में डाल देता है। जी तो सोचिए कि कितना फायदा का काम कर रहा है। तो पहली तो बात हमने कहा कि फसल चक्र में दलहनी फसल का समावेश निश्चित रूप में करना चाहिए। दूसरी बात, खेती में हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, निश्चित रूप में करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे उस समय हल से खेती होती थी, बैल से खेती होती थी, तो उस समय जो बैल का गोबर था वो हमारी खेती में जाता था, लेकिन अब बैल से तो खेती हो नहीं रही है। तो अब क्या है कि हर एक किसान के पास गोबर नहीं है जो गोबर का खाद बनाने की बात करेंगे, तो इसीलिए उनको चाहिए कि कम से कम हरी खाद का प्रयोग करें। तो हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि बायोमास, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये पौधा कार्बन को अपने शरीर में रखा और उसको जब हमने मिट्टी में पलट दिया तो वो कार्बन हमारी मिट्टी में आ गया, तो यह भी हमको फायदा हो गया कि कार्बन मिल गया। और साथ ही साथ यदि वो दलहनी फसल है, वह जो हरी खाद वाला फसल है वह भी यदि दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी किया, साथ ही साथ उसकी जड़ नीचे स्तर तक जाती है तो जो नीचे स्तर में हमारे पोषक तत्व हैं उसको भी खींच करके ऊपरी सतह में ला देता है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी है फसल सामान्यतः उसी से पोषक तत्व लेकर के अपना काम चलाता है और आगे बढ़वार करता है।
0: जी सर। सर अभी आपने हरी खाद के बारे में बात की, तो हरी खाद में कौन कौन से फसल हमारे किसान भाई बहनों को लगाने चाहिए और कब लगाने चाहिए, साथ ही उसके फायदे के बारे में आप हमें विस्तार से बता दीजिए।
1: देखिए ऐसा है कि जो हरी खाद के रूप में है, सनई का भी प्रयोग होता है, धैंचा का भी प्रयोग करते हैं, उर्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लोबिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं ग्वार का प्रयोग किया जाता है, ज्वार का भी प्रयोग किया जाता है, बाजरा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो सामान्य रूप से है जो अच्छी बात होगी वह ढैंचा का प्रयोग होगा। ढैंचा का प्रयोग सामान्यतः या अप्रैल से जुलाई के महीने में इसकी बुआई की जाती है और इसका बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि यह लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर आपको बायोमास दे देगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि 90 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यह स्थिरीकृत करता है। आप वायुमंडल में देखिए तो लगभग 78-79% हमारा नाइट्रोजन है, लेकिन वह नाइट्रोजन फसल के लिए किसी काम का नहीं है। तो अब उस फसल को उसके उपलब्ध रूप में जब तक हम परिवर्तित नहीं कर देते हैं, जैसे हम धान नहीं खाते हैं, धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात पकाते हैं तब खाते हैं, इसी तरह से यह नाइट्रोजन जो वायुमंडल में गैस के रूप में है वह हमारे किसी काम का नहीं है। उसको जब हम नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में परिवर्तित करते हैं तभी वह पौधे को उपलब्ध हो पाता है। तो यह उपलब्ध करवाने का काम भी करता है, इसलिए ढैंचा सबसे बढ़िया होगा। वैसे तो हमने बताया कि ये कई चीज हैं, सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, ग्वार, ये सब के सब प्रयोग किए जाते हैं।
0: जी सर। सर जो जैविक खेती अपनाते हैं वो कई तरह के जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में, हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि उसमें कितना एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है।
1: देखिए एक चीज बात बताऊं कि वास्तव में कहीं बाहर से नहीं लाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट ही बनाया तो वह केचुआ कहीं बाहर से नाइट्रोजन को लाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो कुछ भी आप जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं उस सबस्ट्रेट में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, इसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस होगा, पोटास होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, यदि सामान्य जो कंपोस्ट प्रयोग किया जाता है उसमें 0.4 से लेकर 2% तक नाइट्रोजन होता है, 0.4 से 1% के बीच में लगभग फास्फोरस होता है और 0.5% से लगभग 3% तक लेकर के पोटास होता है। इसी तरह से जो नाडेप कंपोस्ट है इसमें आपको 0.75% यानी 0.25% से लेकर 0.25% तक नाइट्रोजन होगा, 0.7 से लेकर 0.9% तक फास्फोरस होता है, 1.2 से लेकर 1.4% तक पोटास होगा। खली भी प्रयोग में लाया जाता है, तो खली को यदि देखिए तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, 2.5% से 8% तक नाइट्रोजन होगा, 1 से लेकर 3% तक फास्फोरस होगा, पोटास भी 1.2 से लेकर 2.2% के बीच में होगा। कहीं कहीं जो हड्डी का चूड़ा है उसका भी प्रयोग किया जाता है, तो जो हड्डी का चूड़ा है उसमें 3 से लेकर 4% तक नाइट्रोजन होता है, 20 से 25% तक फास्फोरस होता है। जो मछली का खाद बनाते हैं उसमें यदि देखिएगा तो 4 से लेकर 10% तक नाइट्रोजन होता है और 3 से लेकर 9% तक फास्फोरस होता है और 0.3 से लेकर 1.5% तक पोटेशियम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग चीजों में अलग अलग है, लेकिन जो हमारा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है, सामान्य वर्मी कंपोस्ट में तो उतना नहीं होता है। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वह भी कहता है कि यदि इसमें 1% नाइट्रोजन है तो ठीक है जी, 1% या उससे ज्यादा होना चाहिए, फास्फोरस 0.8% या उससे ज्यादा होना चाहिए, पोटास 0.8% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो बनाता है वह समृद्ध केचुआ खाद बनाता है और समृद्ध केचुआ खाद में आपको खुशी होगी जान करके कि 2% के ऊपर ही रहता है, 0.25% या उससे ज्यादा हमारे पास नाइट्रोजन होता है, साथ ही साथ इससे फॉस्फोरस भी 2.5% से लेकर 3.5% तक होता है, साथ ही साथ इससे पोटास भी 1% के ऊपर होता है। तो यह जो बर्मी कंपोस्ट है वह चूंकि समृद्ध केचुआ खाद है इसीलिए इसमें ज्यादा होता है और किसानों को इसका निर्माण भी करना चाहिए और इसका प्रयोग भी करना चाहिए।
0: जी सर। सर अब हम गोबर की सड़ी खाद की बात करते हैं और साथ ही इसकी तुलना में अगर हम वर्मी कंपोस्ट, हमारे किसान भाई बहन वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें तो उसके क्या फायदे होते हैं?
1: देखिए जो गोबर की खाद है, गोबर का खाद कौन बनाता है? जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वही बनाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एक्नोमाइसिट्स हो, यही सब बनाते हैं। तो वह बनाया कौन? सूक्ष्म जीवाणु। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसको सूक्ष्म जीवाणु भी बना रहा है, साथ ही साथ केचुआ भी बनाता है। तो एक मोटी सी बात समझिए, जो केचुआ के शरीर से जो कुछ भी निकल रहा है, जैसे पेटोट्रॉपिक जेली निकला, तो वह क्या है कि जलवाष्पन को रोकने का काम करता है। तो वह जो आपने बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया तो वह ज्यादा पानी को ऊपर नहीं जाने दिया, वह मिट्टी में ही रखा। इसी तरह से जो उसमें एंजाइम्स या हार्मोन्स इस सब चीज का जो सिक्रीशन करता है, उसका जो श्रावण करता है, वह भी हमारे वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो गोबर के खाद की तुलना में हमारा वर्मी कंपोस्ट ज्यादा बढ़िया होता है। अब यदि हम पोषक मान के आधार पर आते हैं तो गोबर के खाद में देखिएगा तो उसमें लगभग 0.5% नाइट्रोजन होता है, और अभी ही हमने बताया कि वर्मी कंपोस्ट में 2.25% समृद्ध केचुआ खाद में नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस ही उसमें 0.2% यानी 0.25% के आसपास है, जबकि हमारा जो समृद्ध केचुआ खाद है उसमें 2.5 से लेकर 3% है। पोटास भी वहां सिर्फ 0.5% है, यहां पर लगभग 1% के आसपास है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जहां पर यदि 0.5% है तो 4 क्विंटल मुझे गोबर का खाद का प्रयोग करना पड़ता था, उसके स्थान पर यहां पर मुझे सिर्फ 1 क्विंटल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान को जब कम मात्रा में प्रयोग करना होगा तो वह उसका प्रयोग कर पाएगा, और यदि ज्यादा मात्रा में हम उसको कह दें तो उतना उसके पास उपलब्ध ही नहीं है, तो प्रयोग नहीं हो कर पाता है, और इसीलिए इसका प्रयोग घटता जा रहा है। तो यह सबसे बड़ा फायदा है।
0: जी सर। सर अब हम बात करते हैं जैव उर्वरक के बारे में, तो जैविक खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और किस किस जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं?
1: देखिए, जैव उर्वरक ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाए, उर्वरक किसके लिए करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ऐसा जीवित चीज जो उर्वरक के रूप में प्रयोग हो उसको जैव उर्वरक कहते हैं। तो अब इसमें देखिए कि जैव उर्वरक के रूप में जो नाइट्रोजन कौन कौन देगा, तो दलहनी फसल में देता है राइजोबियम या ब्रेडी राइजोबियम, राइजोबियम ही समझिए, किसान भाई हमारे ये राइजोबियम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, तो राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसमें दलहनी नहीं है, जिसकी जड़ में गांठ नहीं बन रहा है, उसमें अजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में है। एक है सिम्बियोटिक यानी सहजीवी, तो सिम्बियोटिक में जड़ में गांठ होता है, तो उसका फायदा क्या होता है कि वह जो रहने का मकान है और खाना है उसने दलहनी फसल ने दे दिया, इसके एवज में इसने नाइट्रोजन फिक्स कर दिया, तो यह ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी 36 किलो से लेकर के 600 केजी पर हेक्टेयर या वो कर सकता है, उसका फिक्सेशन कर सकता है, स्थिरीकरण कर सकता है। इसी तरह से दूसरा हो गया आपको जो अजोटोबैक्टर या पीएस इसकी एजोस्पर्म की बात किया, तो उसके जड़ से जो रस निकलते हैं उससे करता है। तीसरी बात कि जहां पर मान लीजिए वह भी बात नहीं है तो वहां फ्री लिविंग होता है, यानी जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो उसको खाने की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना। यदि खाने की व्यवस्था खुद कर लिया, जैसे नीलहरी शैवाल हरा होता है तो अपना खाना खुद बना लेता है, तो जो खाने की व्यवस्था खुद कर ले रहा है वो नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा फिक्स करेगा, 25 केजी से लेकर के 40 केजी तक वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। लेकिन जो जैसे ड्रग्सिया है, बजरंगिया है, ये सब खाना नहीं बना सकता है, तो ये बहुत कम मात्रा में करता है। इसी तरह से अजोला है, अजोला जो है यह आपको एक फर्न होता है अजोला नाम का, उसी के बीच में नीलहरी शैवाल रहता है, तो ये काफी नाइट्रोजन आपको फिक्स करता है। तो ये कई तरह के आपके ये हैं। तो ये तो मैंने नाइट्रोजन की बात कहा। इसके अतिरिक्त यदि देखिए तो जो फास्फोरस हमारी मिट्टी में है वो काफी है, लेकिन पौधे उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जो फास्फोरस उसका प्रयोग यदि नहीं ये नहीं कर पाते हैं वो जो हमारी मिट्टी में, तो कुछ फास्फोरस घुलनकर जीवाणु आते हैं, पीएसवी या पीएसएम के नाम से लोग कहते हैं, तो ये फास्फोरस घुलनकर जीवाणु जो है वो फास्फोरस को घुलाने का काम करते हैं। इसी तरह से पोटास मोबिलाइजर है, पोटास को घुलाने का काम करेंगे। इसी तरह से जिंक मोबिलाइजर भी आ गया हम मार्केट में, तो जिंक को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखिए तो जैव उर्वरक कई तरह के हैं, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम भी करते हैं, फास्फोरस को घुलाने का भी काम करते हैं, पोटास की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं, जिंक को भी की भी उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं। अब लेकिन सबके प्रयोग का मोटा मोटी तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तरीका क्या अलग है? एक तो बीज उपचार आप करते हैं, तो जब बीज उपचार आप करते हैं, अब मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए राइजोबियम का कोई प्रयोग करता है तो 50 से 100 ग्राम उसने गुड़ को लेकर के 0.5 लीटर पानी में उसको घोल लिया, गरम कर लिया, गरम करके फिर ठंडा कर दिया। अब जब ठंडा हो गया तो उसमें 200 ग्राम कल्चर आपने प्रयोग कर दिया, अब प्रयोग करके उसको 5-10 किलो बीज पर आपने डाल दिया, अब उसको हल्के हाथ आपने मिला दिया जिससे कि वह कल्चर का उसके ऊपर लेप लग जाए, बस यही काम करना है, और लेप लग गया तो छाया में ही उसकी बुआई कर लिया। ये काम आप एजियोस्पर्म में भी कर सकते हैं, ये काम आप एजियोस्पर्म का थोड़ा तरीका अलग होगा, तो आप इसमें भी कर सकते हैं, एजियोस्पर्म में भी कर सकते हैं, इवन पीएसवी का भी प्रयोग इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मिट्टी में सीधा प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, कम से कम 3.5 से 4 kg पर एकड़ की मात्रा आपको डालनी पड़ेगी। हाँ, कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि वह बिचड़ा का प्रयोग उपचार करते हैं, तो बिचड़ा का यदि उपचार करना है तो आप 4 लीटर पानी में 1 kg कल्चर डाल करके उसी में जो बिचड़ा है उसकी जड़ को भिगा करके 15 मिनट आपने रख दिया, और उसको रख करके उसके बाद आप बाहर निकाल करके तब उसको आप रोपाई कर दिए। लेकिन यदि कोई कंद का प्रयोग करता है, जैसे कंद है, आलू ही है, उसको यदि उपचारित करना चाहता है तो वहां 15 लीटर पानी में आप 1 kg कल्चर डालिए, और उसको डाल करके 15 मिनट के लिए उसको डुबा करके छोड़ दिया, फिर छाया में निकाल करके रख दिया, उसके बाद उसकी आपने रोपाई कर दी। तो ये सब तरीके हैं, जो तरीके का प्रयोग करते हैं तो काफी हमारा नाइट्रोजन भी बच जाता है, और हमारी मिट्टी में जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या भी बढ़ती है। और विशेष विस्तार में जानने के लिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय उनके बगल में है, उनके लिए हर समय तैयार है, वो यहाँ आए और जो संबंधित वैज्ञानिक हैं उनके संपर्क में आकर के उसको विधिवत प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली सीखें, तब जा करके वो ज़्यादा विधिवत उसको कर सकते हैं।
0: जी सर। सर, अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: हमने तो संदेश दे दिया कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। भैया मेरे, अब यह बताओ कि यहाँ बीकानेर से एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से पंजाब से बीकानेर के लिए, उसमें इतने कैंसर पेशेंट्स रहते हैं कि उसमें उसका नाम ही लोग कैंसर ट्रेन रख दिया है। तो यदि आप खेती करते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपनी पत्नी को यदि बिना जहर की खेती नहीं फसल दे सकते हैं, ऐसा अनाज नहीं दे सकते हैं जो बिना जहर वाला है, तो खेती करने से क्या फायदा मेरे भाई? कम से कम मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिना जहर की खेती करो। यही मेरा संदेश है कि कम से कम यदि अपने लिए भी बिना जहर का यदि नहीं कर सकते हैं तो खेती में फायदा नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं खेती छोड़ दो, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि यदि टाटा बिरला को भी कोई कहता होगा तो

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये तो सभी को पता है। यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है, तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है, पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा विदेशों में, देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है। और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है बहुत ही रिलीजियस नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है। और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे उनमें से एक हमारा ये अंग देश था। और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण। और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे, मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके भाग्य उदय हो जाते थे, इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए, तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर बन गया। और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं, यानी कि जहाँ लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है। कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था, तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है यानी कि गंगा नदी, गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है। और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है। उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर। जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना, मुगल कालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना तो एक ऐसा भी वक्त था जब

भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना अंग प्रदेश के नाम के पीछे अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझें, मान्यताओं को समझें, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ RJ अनु और हाजिर हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। और आज विशेष विषय है हमारे पास, और ये विषय है मुर्गियों का आवास और खाने पीने का प्रबंधन। जी हाँ, यहाँ पर खेती की बात तो हम करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे पशुपालक भाई हैं और जो समेकित कृषि प्रणाली में भी इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जैद हुदा जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि विज्ञान केंद्र से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले जहाँ तक हमारा विषय है, वो मेन फोकस चाहता है कि आवास और खाने पीने का प्रबंधन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि मुर्गियों का आवास कैसा होना चाहिए।
12: किसान भाइयों, मुर्गियों के लिए आवास प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप मुर्गियों को आप तीन तरीके से पालते हैं, जैसे आप फ्री रेंज सिस्टम में पालते हैं, जब आप मुर्गी पालन बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के रूप में करते हैं, तो उसमें आपको मुर्गियों की आवास की कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती है। आप घर में किसी भी साइड में एक छोटा सा घर बना लेते हैं और शाम में मुर्गियों को उसमें बंद करते हैं और सुबह खोल देते हैं। इस तरह के मुर्गियों के पालन में कोई आवास, विशेष आवास व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। मुर्गी पालन जब हम डीप लीटर सिस्टम में करते हैं और केज बैटरी सिस्टम के अंतर्गत करते हैं, तो इसमें आवास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप मुर्गी पालन डीप लीटर सिस्टम में करते हैं या आप ब्रॉयलर, मुख्यतः उसमें हम लोग ब्रॉयलर मुर्गी पालन काम करते हैं, तो हम इस बातों का ध्यान देंगे कि हमेशा आवास के लिए जगह का चयन हमेशा ऊंची जगह हो जहां पानी न जमा होता हो। दूसरा, वो बिल्कुल आप घर बनाएंगे तो कोशिश करें कि वो हवादार हो। दूसरा कि जो अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध है तो आप मुर्गी का घर ऐसे बनाएं कि उसका लंबा सिरा जो है पूरब और पश्चिम की तरफ रखें। कोशिश करें कि वहाँ पर कोई छायादार नहीं हो, हवा पूरी तरह से जाए, आगे एक तरफ से दूसरी तरफ जाए। आवास में आपको ये ध्यान देना है कि इस तरह का प्रबंधन चाहे घर की दरवाजे का हो चाहे खिड़की का हो, जिससे कि कोई जंगली जानवर आपके घर में नहीं जा पाए। आवास में हम लोग जब डीप लीटर सिस्टम में मुर्गियों को पालते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं, जब हम ब्रॉयलर फार्मिंग की बात करते हैं तो प्रति वयस्क मुर्गी एक स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है ज़मीन को। तो आपको जितनी ब्रॉयलर मुर्गियां पालनी हो उस हिसाब से उतने स्क्वायर फीट का घर आप आसानी से बना सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखें कि मुर्गी पालन चाहे आप अंडा उत्पादन के लिए कर रहे हों चाहे आप मांस उत्पादन के लिए कर रहे हों, तो ये आप ध्यान देंगे कि अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अगर आप अपने आवास के अंदर मेंटेन कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, चाहे अंडा देने की क्षमता हो चाहे उसके मांस की क्षमता हो। तो आप आजकल बहुत सारे ऐसे घर बन रहे हैं जहाँ वातानुकूलित तापमान को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कोल्ड स्टोरेज में कैसे आप तापमान को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह बहुत सारे आजकल मॉडर्न तरीके से घर बन रहे हैं जिसमें बड़ा बहुत सरल विधि से आप तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, थर्मोस्टेट लगा के पानी का फ्लो दे करके, और एक रहता है वो आप देख लेंगे तो उसमें 25 डिग्री के आसपास से तापमान जहाँ अधिक होता है उसमें पानियाँ चलने लगते हैं और धीरे धीरे एयर फ्लो आवास के अंदर जाता है। तो ऐसा करने से आप बहुत कम खर्च में ये तकनीकी अगर आप सीख लेंगे तो अपने मुर्गियों के घर का जो तापमान है वो 25 डिग्री के आसपास कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी अपनी मुर्गियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
11: जी, तो डॉक्टर साहब अब यहाँ पर जानते हैं आहार प्रबंधन यानी खाने पीने की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब हम मनुष्य की बात कर लेते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कहा जाता है 6 महीने तक दूध पीने के लिए और उसके बाद 6 महीने के बाद जो हल्के फुल्के भोजन है वो देने के लिए। तो जब मुर्गियों की बात आती है तो मुर्गियों के लिए भी मुझे लगता है कुछ ऐसे ही आहार प्रबंधन होंगे, जैसे कि मुर्गी का बच्चा है या फिर वो थोड़ा बड़ा होता है या फिर वो वयस्क हो चुका है, तो उसके लिए क्या कुछ अलग अलग आहार प्रबंधन है?
12: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुर्गियों के बच्चे जब अंडे से चूजे बाहर निकलते हैं तो उसको लगभग 48 से 72 घंटे तक उसको किसी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। और क्योंकि जहां वो बच्चे निकलते हैं अब तक आने में कभी 24 घंटे कभी 48 घंटे कभी 72 घंटे तक उनके अंदर जो एक योग सैक होता है उसी से उसको एनर्जी और पोषण मिलता रहता है, लेकिन 48 घंटे या 72 घंटे के बाद आपको ये ध्यान देना है कि उस क्यों जब आपके घर पर आए तो कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है कि आप उसको, वो बिल्कुल भूखा रहता है जब आप लाएं तो कोई अपने लकड़ी के बुरादे के ऊपर फर्श के ऊपर मैंने 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान अगर ठंडा है तो उसको मेंटेन रखें, ऊपर पेपर बिछा दें और उसके ऊपर पहली बार आप बिल्कुल मक्के का दर्रा पतला दर्रा ही प्रयोग करें पहले दिन, और कोई भी अगर गर्मी का मौसम है तो आप उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर हो गुड़ का घोल बनाकर ये ज़रूर दें। और दूसरे दिन से मुर्गियों के खाने में भी 3 तरह के खाने होते हैं, एक प्री स्टार्टर राशन होता है, दूसरा स्टार्टर राशन होता है और तीसरा फिनिशर राशन होता है। तो आप आजकल मुख्य रूप से हमारे मुर्गी पालक मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं या फिर अंडा उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं, तो प्री स्टार्टर भोजन बिल्कुल आवश्यक है। दोनों अवस्था में आप पहले कम से कम 2-3 दिनों तक प्री स्टार्टर राशन आप अपनी मुर्गियों के बच्चों को दें, उसके बाद फिर ग्रोअर या स्टार्टर राशन जिसे हम कहते हैं उसको आप, अगर मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसको 26 से 30 दिन के आसपास आप ग्रोअर राशन दें और 30 दिन के बाद ब्रॉयलर उत्पादन में आप फिनिशर राशन दें जो ग्रोअर राशन से थोड़ा कम महंगा होता है जिससे आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी होगी और वजन भी ज़्यादा मिलेगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि और मुर्गी का खाना आप खुद भी बना सकते हैं। मुर्गी का खाना बनाने में बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते होंगे कि मुख्य रूप से मुर्गियों के भोजन में मक्के का बहुत बड़ा रोल है। 45-55% तक मक्का लोग मुर्गी के खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सोयाबीन की खल्ली है, राइस चूर्ण है, मछली का चूर्ण है और ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ हैं जो आप अगर सीख सकते हैं तो आप अपने बगल के विशेषज्ञों से इसको सीख लें। और जो आप बाज़ार से दाना खरीदते हैं उसकी अपेक्षा कम से कम 2-3 रुपये प्रति केजी कम से कम आपको ज़रूर सस्ता राशन आप बना सकते हैं, जिससे आपके उत्पादन क्षमता में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यकीनन आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
11: अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक इनके आवास प्रबंधन की बात है यानी घर बनाने की, तो हम देखते हैं कि कई बार किन्हीं किन्हीं घर में जो बालकोनी है या फिर छत के ऊपर जो छज्जे होते हैं उन पर वो लकड़ियों से घेर कर उनका जो घर है वो बना देते हैं। लेकिन जहाँ तक व्यवसाय के तौर पर अगर इनका पालन किया जा रहा है तो आप बताएं हमें कि घर बनाने के समय जो हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
12: देखिए, घर अगर दो मुख्य रूप से दो वजहों से हम लोग मुर्गी पालन करते हैं, एक तो मीट के लिए और दूसरा अंडे के लिए। तो अगर मांस उत्पादन के लिए बात करते हैं तो आप जरूर डीप लीटर सिस्टम लकड़ी के बुरादे पर मुर्गी पालन करते हैं और मुख्य रूप से उससे 30-35 दिनों के अंदर हम लोग उसको बेच देते हैं। और उसमें हम लोग को बस ध्यान रखना है कि आप जब घर बनाते हैं तो ऊंची जगह ही हो और 2 फीट के आसपास ज़मीन से नीचे से ईंटे की जुराई कर लें और आप पूरा जाली डाल करके बहुत कम लागत में आप डीप लीटर सिस्टम में ब्रॉयलर उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जब हम केज बैटरी सिस्टम, जब हम लेयर उत्पादन की बात करते हैं तो लेयर उत्पादन और ख़ास करके कॉमर्शियल लेयर उत्पादन जो अंडा का हम लोग आजकल कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके लिए केज बैटरी सिस्टम काफ़ी माने रखता है। और जो केज बैटरी सिस्टम है और डीप लीटर सिस्टम में, दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं। केज बैटरी सिस्टम में आपको इनिशियल लागत ज़्यादा आएगी क्योंकि एक 14x21 इंच के एक केज में आप 5 लेयर बर्ड्स को रख सकते हैं, जिससे में आपको काफ़ी, आप 130x35 फीट के लंबे चौड़े शेड में लगभग 5,000 मुर्गियों को केज बैटरी सिस्टम में आप पाल सकते हैं, लेकिन इतने छोटे से स्पेस में आप इतने ब्रॉयलर मुर्गियों को नहीं पाल सकते। तो शुरुआती लागत तो केज बैटरी सिस्टम में जब हम अंडा उत्पादन के लिए बात करते हैं तो ज़्यादा आती है, लेकिन जब आप लंबी अवधि के लिए उसमें करेंगे तो उसमें लेबर का मैनेजमेंट कम हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रोग के प्रबंधन में कमी आ जाती है, बीमारियों के रोकथाम में आसानी होती है, मेडिकेशन देने में आसानी होती है, वैक्सीन देने में आसानी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लंबी अवधि में जब हम अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो केज बेस्टेड सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है और आप इसको कर सकते हैं, कम जगह में बहुत ज़्यादा मुर्गियों का पालन कर सकते हैं।
11: ओके, तो यहाँ पर आपने जाना है घर बनाने समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके बाद अब आवास प्रबंधन की बात है तो आवास व्यवस्था, जो मुर्गी पालन अगर जो कर रहे हैं वो उन्हें बताएं कि आवास व्यवस्था कितने तरह के होते हैं।
12: देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मुर्गी पालन के लिए आवास व्यवस्था 3 तरह से आप कर सकते हैं। फ्री रेंज सिस्टम में, जिसके लिए कोई विशेष रूप से मुर्गी पालन जो छोटे किसान हैं करते हैं, 4-5 मुर्गियां रखते हैं, उसके लिए कोई विशेष आवास बनाने की आवश्यकता नहीं होती। डीप लीटर सिस्टम, जो आप लकड़ी के बुरादर पर मांस उत्पादन या फिर अंडा उत्पादन का कार्य करते हैं, तो वो डीप लीटर सिस्टम में आप अपने घर को बना सकते हैं मुर्गी पालन के लिए। और तीसरा, सेमी इंटेंसिव या केज बैटरी सिस्टम, जो बड़े अंडे उत्पादन के लिए हम लोग काम करते हैं, तो केज बैटरी सिस्टम का घर हम लोग बना सकते हैं। घर में हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके पास ज़मीन है तो एकदम, मैंने पहले ही कहा है कि मुर्गियों के लंबा सिरा जो आप घर बनाते हैं वो पूरब और पश्चिम की तरफ हो, सीधे सूरज की रोशनी जाने से आपको दिक्कत होगी। तो ऐसा होगा, घर के अगल बगल लंबे पेड़ ना होने दें, कोशिश करें कि आप अगर गर्मियों का दिन है तो घर के ऊपर थोड़ा पानी का फव्वारा लगाएं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम है तो आप अपने जालियों पर जूट का बोरा लगाकर उसको भिगोएं। और सबसे बेहतर है कि आप अगर कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड आप पोल्ट्री फार्मिंग बड़े स्केल पर कर रहे हैं तो आप अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए तकनीकी सीखें और उसको करें।
11: तो सुना आपने हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों की किस तरीके से आप मुर्गियों का जो आवास प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही आहार प्रबंधन कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। आशा है कि आप इन बातों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, यानी कि अगर आप मुर्गी पालने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर इसे इन बातों को शामिल करें और ध्यान रखें जिन जिन बातों को कहा गया है यहाँ पर। और आज डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
13: अरे यार फिर पिट गया बिल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
14: कब से?
13: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
14: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
13: खांसी?
14: हाँ।
13: इसको तो एक आध महीना हो गया।
14: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
13: डॉक्टर, खांसी तो है।
14: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
13: टीबी?
14: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
13: ठीक है।
14: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
15: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
16: कौन सी कहानी टीकी?
15: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
17: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
15: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
16: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
15: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
18: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
19: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
19: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अल्प उपयोगी सब्जी के बारे में जो स्वाद, पोषण और स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी बहुत ही मदद करता है, यानी कि बहुत अच्छी संभावना है आय बढ़ाने में। इस फसल का नाम है गार्लिक चाइव। किसान भाइयों, आज के समय में खेती के सामने कई सारी चुनौतियां आती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, तापमान में भी अक्सर आप देखते हैं कि उतार चढ़ाव होता है, पानी की कमी तो बहुत बड़ी समस्या है, और खेती की बढ़ती लागत, बाजार में अच्छी कीमत वाली फसलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और ऐसे समय में हमें ऐसी फसलों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कम क्षेत्र में उगाई जा सकती है और बार बार उपजते, पोषण से भरपूर हो और बदलती जलवायु में भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर सके। और गार्लिक चाइव एक ऐसी ही संभावनाशील फसल है, और इसके बारे में यानी कि गार्लिक चाइव के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी से। मैम, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, BAU सबौर से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद उमा। ये आज के श्रोताओं के लिए, जैसे किसान भाइयों बहनों, आपके लिए एक नया क्रॉप है, आपने पहली बार सुना होगा इस गार्लिक चाइव के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम ट्यूबरोसम, और यह प्याज और लहसुन वाले कुल जैसे एमिलडेसी, इसकी एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय सब्जी है। इसकी हम लोग देखा जाए तो पत्तियाँ इसकी लंबी होती है, पतली होती है और हरी होती है, जिस तरह से लहसुन और प्याज का होता है। बट इसमें क्या होता है, ये हम लोग बार बार इसको काट कर हम लोग खाया जा सकता है, और इसका सुगंध एवं एकदम से लहसुन की तरह लगता है, जिसके वजह से इसको गार्लिक चाइव बोला गया है। इसको हम लोग तड़के पे खाते हैं, आलू चोखा में आप डाल सकते हो, सूप में डाल सकते हो, चटनी बना सकते हो, नूडल्स वगैरह में, यानी कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी पत्तियों की कटाई के बाद पौधे पुनः बढ़ते हैं, तो इसीलिए उचित प्रबंधन के साथ एक ही खेत से कई बार हरी पत्तियों की उपज प्राप्त की जा सकती है।
5: जी मैम, अगर हम पोषण की दृष्टि से बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है?
11: जी बिल्कुल उमा। तो और देखा जाए कि आज उपभोक्ता केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं चाहता, बल्कि ऐसा भोजन चाहता है जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो। इसी कारण पोषण युक्त सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो इनमें से जो गार्लिक चाइफ है, इसकी जो हरी पत्तियां है, इसमें विभिन्न विटामिन, खनिज तत्व, आहार फाइबर तथा जीव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा पे उपलब्ध है, कैरोटीनॉइड्स तथा विभिन्न सल्फर भी भरपूर मात्रा में पाए गए हैं, जिससे हम लोग देखा जाए कि लहसुन के पत्तियों से भी ज़्यादा इसमें मात्रा पाया जाता है।
5: जी, और अगर हम बिहार के दृष्टि से बात करें तो ये बिहार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है?
11: बिहार में सब्जी उत्पादन की अच्छी संभावना है, ये सब हम सब जानते हैं। यह छोटे और सीमांत किसान बड़ी संख्या में है, और कम क्षेत्र में अधिक मूल्य प्राप्त करने वाली फसलों की आवश्यकता रहती है। तो गार्लिक चाइव को खेत के साथ साथ हम लोग किचन गार्डन, पोषण वाटिका और छोटे व्यवसायिक प्लॉट में भी उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ताजी विशिष्ट और स्वस्थ वर्धक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। यदि किसान स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट और प्रत्यक्ष उपभोक्ता बाजार से जुड़ते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे, यहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से विशेष सब्जियों से अतिरिक्त आय प्राप्त करने की संभावना बन सकती है।
5: और मैम, हमने जलवायु अनुकूल के बारे में भी बात की, तो जलवायु अनुकूल कितना है गार्लिक चाइव?
11: जलवायु परिवर्तन के दौर में हमें केवल अधिक उत्पादन देने वाली फसलों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जलवायु सहिष्णु और विविधीकृत फसल प्रणालियों को अपनाना चाहिए। गार्लिक चाइव अपेक्षाकृत मजबूत फसल है और उचित प्रबंध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। इसकी बार बार पत्तियों की कटाई की क्षमता किसान के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकती है। हालांकि देखा जाता है कि किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फसल की सफलता के लिए सही किस्म, उपयुक्त मौसम, मिट्टी, सिंचाई, पोषण और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए बिहार के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसके वैज्ञानिक परीक्षण और स्थानीय उत्पादन तकनीक का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी दिशा में हमारे BAU सबौर में भी इसका शोध शुरू हो चुका है।
5: जी मैम। मैम अब हम इसकी खेती की बात करते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई बहन गार्लिक चाय की खेती करते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
11: अगर देखिए, जैसे कि गार्लिक चाय है, इसके लिए हम लोग को अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। खेत में पानी का

0: रासायनिक दवाओं का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही और अनुचित मात्रा में ही करना चाहिए, जबकि इस फसल में पाया गया कि बहुत ही कम किसी कीटाणु या कोई बीमारी का प्रभाव पड़ता है।
1: जी मैम, आजकल हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहन और हम लोग भी जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं और जैविक खेती को ही अपनाना चाहते हैं, तो गार्लिक चाय में जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, आज किसान खेती की लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में भी सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो गार्लिक चाय की खेती में हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और अन्य जैविक स्रोतों के समन्वित उपयोग पर ध्यान दिया जा सकता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में, पोषण तत्व की उपलब्धता बढ़ाने और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली विकसित कराने में भी मदद मिल सकती है।
1: जी मैम, अगर हमारे किसान भाई बहन आमदनी बढ़ाना चाहें गार्लिक चाय की खेती की मदद से, तो क्या मूल्य संवर्धन भी किया जा सकता है?
0: देखिए किसान भाइयों, केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दें। तो गार्लिक चाय की ताजी पत्तियों को साफ करके छोटे पैकेटों में बाजार में बेचा जा सकता है और इसको हम लोग अलग दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। तो स्थानीय मांग, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, इसमें अधिकतम इसका मांग ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर अन्य राज्यों से भी लोग रहते हैं और वहां पर इसकी डिमांड जो होता है वो ज्यादा रहता है। तो इसके अनुसार हम लोग इसको उपयोग मसाला मिश्रण, सूखी पत्तियों या अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों में भी इसको किया जा सकता है। इससे किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमी मिलकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा कर सकते हैं। और इसको हम लोग इसी में ही नहीं, पोषण वाटिका में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। गार्लिक चाय केवल व्यवसाय किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार के लिए उपयोगी है, हो सकता है। इसको हम लोग घर की पोषण वाटिका में लगाया जा सकता है, थोड़ी सी जगह में इसे उगाकर परिवार को ताजी हरी पत्तियां उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे भोजन में विविधता आती है और परिवार के आहार में भी हरी सब्जियां की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
1: जी मैम, तो क्या गार्लिक चाय में अभी भी अनुसंधान की जरूरत है?
0: बिल्कुल, गार्लिक चाय को बिहार में एक संभावनाशील अल्प उपयोगी सब्जी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसके विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। इसी दिशा में हमारे बीएयू साबौर में इसकी शोध शुरू हो चुका है, जिससे बिहार के अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों में इसकी किस्मों की मूल्यांकन, रोपण समय, पौध दूरी, सिंचाई, पोषण प्रबंधन, मल्चिंग, जैव उर्वरक, जैविक खाद को तथा कटाई प्रबंधन पर व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही इसके पोषण गुणवत्ता, बाजार मांग, उत्पादन लागत, लाभ लागत अनुपात और उपभोक्ता पसंद का भी हम लोग अध्ययन शुरू किया गया है।
1: जी मैम, मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी मेरे किसान भाई और बहनों, खेती में सफलता केवल परंपरागत फसलों से ही संभव नहीं है। समय की मांग है कि हम फसल विविधीकरण को अपनाएं और बाजार तथा पोषण की मांग के अनुरूप नई एवं अल्प उपयोगी फसलों को अपनी खेती में स्थान दें। गार्लिक चाय ऐसी ही एक फसल है जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन और अतिरिक्त आय, इन सभी क्षेत्रों में संभावनाएं दिखाई देती है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि किसी नई फसल को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले किसान भाई स्थानीय स्तर पर छोटे क्षेत्र में इसका परीक्षण करें, बाजार की मांग को समझे और कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग की सलाह जरूर ले।
1: जी मैम, तो किसान भाई बहन जैसे कि मैम ने कहा, बाजार की मांग को समझना चाहिए और जो नई फसल है उसमें भी आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शोध करें, यानी कि नई फसल, नई सोच और नया बाजार, यही भविष्य की टिकाऊ खेती का आधार है। गार्लिक चाय जो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे अल्प उपयोगी गार्लिक चाइव जैसी अल्प उपयोगी सब्जी फसलें हमारे खेतों में विविधता ला सकती है, हमारे भोजन को अधिक पौष्टिक बना सकती है और किसानों के आय के लिए नए अवसर खोल सकती है। आइए हम ऐसी फसल को बढ़ावा दें जो पोषण से भरपूर हो, बदल

0: जलवायु के अनुकूल हो और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बने। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हमारे किसान भाई बहनों को एक नई फसल के बारे में जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं।
1: धन्यवाद उमा, मुझे भी आपने ये अवसर दिया है।
0: जी मैम, तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: कोलेरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूलें 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहें उन्नत कृषि।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंतशुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किस प्रकार से परवल की खेती की जाती है और क्या समस्याएं आती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी ही बातों के बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आरवी वर्मा। सर, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, आप हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि परवल के क्या फायदे होते हैं।
1: देखिए, परवल जो है, जिसको कुकुरबिटेसी कहते हैं या लतेर वाले जो है फैमिली जो कहते हैं, उस फैमिली का एक ऐसा पौधा है जो लगभग 7 से 8 महीने तक फल देता है। और यह फल समझिए इमरजेंसी पीरियड में भी देता है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर जब पानी आता है उस समय, और अन्य सब्जियां सब खत्म जब हो जाती हैं, तो उस समय भी मार्केट में आपको जो है परवल मिलता है। और परवल की उपयोगिता ही बहुत ही ज़बरदस्त है। परवल एक ऐसा फ्रूट है, समझ लीजिए फ्रूट इस वेजिटेबल में आता है ये, कि इसमें जो है एक तो सबसे पहले कि इसमें विटामिन A, B और C पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एनर्जी इसमें बहुत कम होती है, जिससे आप शुगर फ्री के शुगर वाले पेशेंट को भी आप इसको दे सकते हैं। इसमें फैट की मात्रा बिल्कुल कम 0.3% के आसपास होती है, इसलिए जो मोटापा जो है उसको भी कम करता है। ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारी जो होती है उसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं, लो एनर्जी के कारण जो है। तो ये लो एनर्जी कारण जो बहुत सारे रोगों में कभी कभी आप देखते हैं जॉइंटिस जब हो जाता है, तो उसमें भी हम परवल का चोखा या परवल की जो है सब्जी हम रिकमेंड करते हैं कि आप परवल की सब्जी लीजिए, तो ये हल्की होती है। इसके तमाम इसके एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी वेट को आपको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो परवल की आप देखते हैं स्वीट्स भी बनते हैं आजकल, जो परवल की मिठाई बनती है, तो परवल की ये तमाम सारी उपयोगिताएँ हैं। और ऐसी फसल भी है जो आपको 7 से 8 महीने तक फल भी देती है। तो इन सब सारी उपयोगिताओं को देखते हुए परवल का स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है, और परवल की खेती हमारे ख्याल से किसान भाइयों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। इसकी खेती सफलतापूर्वक आप करें, इससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
0: जी सर, लाभदायक होती है, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं भी आती है, तो परवल की खेती में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं?
1: हाँ, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परवल की खेती में। देखिए, एक तो होता है सेक्स की प्रॉब्लम उसमें, कि उसमें जो है नर और मादा दोनों जो है अलग अलग होते हैं। ये डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस प्लांट मतलब जिसमें एक पौधे पर होगा तो केवल नर ही होगा और दूसरे पर होगा तो केवल मादा ही होगा। और हमेशा फल जो होता है वो मादा पुष्प पे ही आता है, नर पुष्प पे नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसान भाई के खेत में ऐसा भी पौधा दिखाई पड़ता है कि जिसमें केवल फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है, तो किसान भाई क्या करते हैं, उसको खेत से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जब नर पौधा नहीं रहेगा तो पोलिनेशन की समस्या हो जाती है, और पोलिनेशन नहीं होगा तो पता चला आपके पौधे में फूल तो आ रहा है लेकिन वो फूल जो है पीला होकर के फिर से सूख जा रहा है। इसका कारण यही है कि वहाँ पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये डायोसियस पौधा है, और जब भी लगाना है इसको तो नर और मादा दोनों ले जाके लगाना है, और दोनों को लगाने का एक जो अनुपात होता है वो 9:1 का अनुपात होता है। यानी 9 पौधे अगर मादा आप ले जाते हैं तो एक पौधे नर आप ज़रूर ले जाइए, इससे उसका रेशियो मेंटेन रहता है और परागण के लिए पौधे को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि इसका जो है बहुत दूर 1.5 किलोमीटर तक दूर तक इसका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, बट उतना दूर से परागण आएगा और परागित करने में उसको समय लगेगा, फिर जो है नहीं आएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए वहाँ आपकी जो प्रोडक्टिविटी घट सकती है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 9:1 का रेशियो आप उसमें रखें। 9:1 रेशियो रखेंगे तो उसका जो है पोलिनेशन अच्छा होगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी और आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। दूसरी बड़ी समस्या इसमें ये होती है, एक तो ये आगे प्लांटिंग रेशियो कि 9:1 में आप प्लांटिंग करिए, इससे आपको नर और मादा का जो है 9 मादा और एक जो है नर, तो इससे आपके ऊपर। दूसरा ये होता है इसमें कि देखिए इसमें सीड प्रोपोगेशन हम नहीं करते हैं। कभी कभी ये किसान भाई कहते हैं कि उन्हें हम बीज से ही कर लें, तो बीज से करने में समस्या ये होती है कि जो आप एक तो पहले बीज इसका ऐसा होता है कि आप जैसे पकने के बाद इसको निकालिएगा, दो मिनट के लिए हवा में छोड़िएगा तो फिर जमेगा ही नहीं। तो उसमें ये होता है कि तुरंत उसका फल पका हुआ निकालिए, तुरंत उसको जमीन में लगाना होता है। एक तो समस्या ये है, दूसरी समस्या ये है कि इसके बीज को अगर लगाते हैं तो उसमें 50% नर आ जाता है और 50% मादा आ जाती है। और ये नर और मादा का अनुपात जो 50-50% जो हो जाता है लगभग जो है, यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि उसमें फ्लावर या फूल नहीं आ जाता है। तो फूल आने के लिए आप साल भर इंतजार करिएगा, साल भर आप खेत को फंसा के रखिएगा, अब तब जब फूल आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये तो नर है और ये मादा है, तो आपके खेत की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा चीज ये कि ये लंबा समय लेता है, क्योंकि एक साल भर की बताया हमने कि इसको ये पूरा साल भर चलता रहता है। ये बायनियल मतलब ये जो है पेरेनियल पौधा है, एक बार लगाइएगा तो 3 साल तक इससे काटिएगा, कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो है लंबे समय तक चलता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी जो हमको बीज से इसका जो है प्रोपेगेशन नहीं करना है, इसका प्रोपेगेशन हमेशा कटिंग से करना है जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो अच्छी फलत देने वाली हो, जो उपयुक्त मतलब प्रजाति हो उसी को लेना है, अन्यथा आपकी जो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और पैदावार घट सकती है।
0: तो सर हमें विस्तार से बताइए कि प्रवर्धन कैसे करें।
1: हाँ, इसके प्रवर्धन के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमने बता दिया कि एक जो है 9:1 रेशियो में आपको नर और मादा लेना है। अब नर और मादा में अब क्या लेना है, एक तो इससे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, सीड से प्रोपगेशन नहीं करते हैं। तो जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो इसमें हम उसकी वाइन लेते हैं, और वाइन कैसी होगी, एकदम मेच्योर वाइन हो जो साल भर पुरानी हो गई हो। ऐसा नहीं कि टेंडर वाइन लीजिएगा, टेंडर वाइन लीजिएगा तो वो जो है सूख जाएगा। तो हमेशा आपको मेच्योर, जो मेच्योर वाइन होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा जब मेच्योर वाइन हो जाती है जनरली जो जड़ से निकलती है, देखिए जब खूब मेच्योर हो जाती है तो थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, हल्की सी व्हाइटिश हो जाती है, जो ग्रीनिश रहती है उसका रूप बदल के हल्का सा लाइट व्हाइटिश कलर में आ जाता है, तो समझिए कि वाइन पूरी तरह से मेच्योर हो गई है। तो सबसे तो पहले कि आपको 1 ईयर ओल्ड मेच्योर वाइन सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, उस वाइन को अगर काट लीजिए, काटने के बाद उसको कितना लंबा रखेंगे, तो कम से कम जो है उसको 50-60 सेंटीमीटर उसको लंबा रखिए। और उसको क्या करिएगा, उसको अंग्रेजी का 8 जो होता है उसके आकार में आप उसको मोल्ड कर लीजिए, 8 के आकार का बना लीजिए, और दोनों सिराओं को फिर मोड़ दीजिए, 8 के आकार के जो दोनों लास्ट की सिराएं हैं उसको आपस में मोड़ दीजिए, और बीच में उसे मिट्टी डाल करके जो है बीच में मिट्टी से उसको एक गड्ढा खोद करके, गड्ढा खोदने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप इसका कल्टीवेशन करें तो सॉयल आपकी एकदम सैंडी लोम सॉयल हो, जिसमें बालू की मात्रा बढ़िया हो, उसमें इसकी उपज जो है ज्यादा अच्छी होगी। कड़ी मिट्टी लेंगे तो उसमें इसकी उपज थोड़ी कम हो जाएगी, और उसमें अगर बालू कड़ी मिट्टी है या लोमी मिट्टी है तो इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि आपको जो उस मिट्टी में जो है बालू, गंगा बालू अगर मिलता है तो गंगा बालू और आपका जो है बर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, थोड़ा सा फ्यूराडान मिला करके उसको बढ़िया से उसका पिट बना लें, फिर उस पिट में लगाएंगे। तो वो जो है आप जो है 50-60 सेंटीमीटर लंबा जो वाइन लिए थे उसको 8 के आकार में बना लिया, और उसके दोनों को वाइन्स को आप ऊपर ले लेते हैं छोर को जो है, और साइड से जो है मिट्टी में दबा करके उसको पूरी तरह से उसको दबा देते हैं, हल्का हल्का सा वो दिखाई पड़ता है जो सूर्य की रोशनी उसको मिलते रहे, हल्का सा ऊपर से दिखाई पड़ता है, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। लगाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसके साथ कोई मरोगत मत करिए। अगर उसमें मान लीजिए आपने प्रेस नहीं किया है, बढ़िया से दबाया नहीं है, तो होता क्या है कभी कभी जब आप पानी देते हैं तो उसमें होल बन जाता है, तो जब होल बन जाएगा तो वहां से हवा चला जाएगा, और हवा जाएगा तो उसके सूखने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, पौधा लगेगा। आप कहेंगे कि हमने पौधा लाया था स्वस्थ लगाया लेकिन चला नहीं, तो इससे देखना है लगाते समय उसकी वाइन्स को खूब बढ़िया मिट्टी से दबा दिए, ताकि मिट्टी का संपर्क उससे खूब अच्छी तरह से हो जाए और उसका जो नमी बराबर मिलती रहे। तो ये करना, लगाने के बाद आप उस पर मल्च डाल दीजिए, मल्च डालने के बाद उसको जो हल्की सी सुबह शाम सिंचाई करते रहिए। तो ये तो इससे हम प्रोपगेशन करते हैं वाइन से, सीड से हम नहीं करते जैसा पहले बता दिया था। तो इसका प्रोपगेशन हम वाइन से ही करते हैं, वाइन 1 ईयर ओल्ड वाइन्स लेते हैं, मेच्योर वाइन लेते हैं, 50-60 सेंटीमीटर लगते हैं, जिसमें 7 से 8 कम से कम नोड हो, इसको ध्यान में रखना है, कि इसलिए कि नोड से ही जो है जड़ें निकलती हैं। तो जब नोट्स नहीं रहेगा तो जड़ें नहीं निकलेंगी। अगर एक नोट्स लगाइएगा तो एक नोट्स मान लीजिए वीक हो गए या खत्म हो गए तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए 6 से 7 उसमें नोट रखिए, जिससे कोई भी नोट्स उसमें चलेगी, रूट्स निकल जाएगी तो पकड़ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि हमने बताई, एक तो ये बता दिया वाइन से आपको लगाना है तो आप अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर वो भी 15 अक्टूबर के आसपास लगा जब टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर स्प्राउट नहीं करेगा, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने डारमेंट रहती है, अक्टूबर लास्ट अक्टूबर से लेकर के नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने डारमेंट रहती है, इसमें आप लगाएंगे तो नहीं चलेगा। दूसरा इसका तरीका एक और है, मान लीजिए आपके पास जो है सैपलिंग, दूसरा तरीका है सैपलिंग तैयार करना। आप कुछ नहीं है, मान लीजिए आपकी वाइन ख़त्म हो रही है तो आप क्या करिएगा, आप अक्टूबर या सितंबर या जनवरी, सितंबर या अगस्त कभी भी जो है आप उसकी सैपलिंग तैयार कर लीजिए। सैपलिंग तैयार करने के लिए 2 तरीके हुए, एक तो आप पोली बैग ले लीजिए, पोली बैग में 2 से 3 नोड लेकर के उसको जो है अंदर जो है पोली बैग मिट्टी भरे रहते हैं उसमें आप उसको दबा दीजिए तो उससे वो स्प्राउट कर जाएगा, स्प्राउट कर जाएगा तो वो चलेगा। उस आप जो है सैपलिंग को आप रखे रहिए, उसके देख रेख करते रहिए। जैसे मान लीजिए आप नहीं लगा पाए, आपका खेत खाली नहीं है, तो आप फरवरी में आपका खेत खाली हो तो आप उसको फरवरी में सीधे उस सैपलिंग को खेत में ले जाइए और उसमें लगा दीजिए, वो बहुत बढ़िया चलेगा, उसमें स्प्राउटिंग बहुत फास्ट होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ कवर करेगा, आपका फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा। तो आप जो है सैपलिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें 2 से 3 नोट जरूर रखिए, एक नोट पे मत लगाइए उसको, और 2 से 3 नोट रहेगा तो उसमें रूटिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो सैपलिंग से आप जो है फरवरी में भी आप इसको लगा सकते हैं और फ्रूटिंग ले सकते हैं।
0: जी सर, तो अब आप हमें ये बताइए कि प्रबंधन का सही समय क्या है।
1: हाँ देखिए, इसका जो है जब ये हम इसको जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो बहुत अच्छा महीना है, इसमें स्प्राउटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर काट करके वाइन वैसे भी लगा दिएगा या उसको दबा दीजिएगा तो चल जाएगी, लेकिन इस समय चूंकि परवल जो है एकदम अपने पीक फ्रूटिंग स्टेज पे होता है, इसलिए कोई भी किसान अपने खेत से वाइन आपको नहीं देगा। लेकिन ये आपका मार्च से स्टार्ट होकर के और अक्टूबर तक फ्रूटिंग देता है, देखिए 7 से 8 महीने फल देता है, तो जब सितंबर के लास्ट तक जो है समझिए इसकी फ्रूटिंग जो है ऑलमोस्ट जो है वीक हो जाती है, इकोनॉमिक नहीं रहती है। अक्टूबर में इसको लगाने का समय जो है सबसे बढ़िया क्या होता है कि अक्टूबर में आप जो है जो वाइन्स जैसे हमने बताया, लगाने की विधि जैसे हमने बताई है, आप जो इसको खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करके इसमें 2 तरीके से, एक तो आप पंडाल विधि से भी आप लगा सकते हैं, मचान विधि जिसको कहते हैं, पंडाल बना लीजिए, और या तो एक ऐसे पोल गाड़ करके सीधा 2-2 मीटर की दूरी पे आप पोल गाड़ करके उस पर रस्सी तान करके वैसे भी लगा सकते हैं, या ओपन फील्ड कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं। अब ये लगाने के लिए मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 2-2 मीटर दूरी पर लगाइएगा, तो 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइएगा। अगर फील्ड में लगाना है तो आप 2-2 मीटर की दूरी पर लगाइए बेहिचक, इसलिए कि इसकी वाइन जब फैलती है तो जगह जगह पर अपनी रूट्स को ज़मीन में पकड़ती जाती है, तो जो एरिया खाली रहता है उसको आसानी से वो कवर कर लेता है। लेकिन जब आप जो है पोल पे लगाइएगा तो पोल पे हमेशा जो है 2 मीटर पोल से पोल की दूरी होगी और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होगी। तो इन दोनों केसेस में अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं तो कम से कम आपको जो है 5,000 कटिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पोल पे लगाते हैं तो 5,000 कटिंग जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फील्ड कंडीशंस में लगाते हैं इसे ओपन में 2x2 पे लगाते हैं तो लगभग 2,500 आपके कटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये देख लेना हमको कि किस विधि से आप लगा रहे हैं उसमें कितनी हमको कटिंग मिल रही है, कितनी अगर नहीं भी मिली है, कम भी मिली है जो है, तो आप फील्ड में लगा दीजिए, आप उससे अगले साल उसको प्रोपगेट कर लिए, उससे आप वाइन बना लीजिए अगर अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है तो।
0: जी सर, अब बात करते हैं खाद और सिंचाई की। तो
1: हाँ देखिए, अच्छा प्रश्न है, इसमें जो है जितनी भी कुकुरबिटेसी सब्जी होती है, लतेर वाली सब्जियां होती है, एक जनरल फंडामेंटल बता दें कि इन सब्जियों में जो है नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं देते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा देंगे, और लेकिन इसके देने से पहले हम 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद भी इसमें देंगे। उसके अतिरिक्त ये होगा आपका 160 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन, इसलिए हम जनरली कुकुरबिट्स में 80 के आसपास चलती है, लेकिन इसमें हमने 100 इसलिए कहा कि चूंकि ये लंबे अवधि की क्रॉप है, हमने बताया कि एक बार आप मार्च में लगाते हैं या अक्टूबर में लगाते हैं तो चलती है, फिर अक्टूबर तक चलती है, तो ये लंबी अवधि की क्रॉप है, इसलिए मैं थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो 100 किलोग्राम है। इससे ज़्यादा जहाँ भी नाइट्रोजन की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो समझिए उसमें नर पुष्प की संख्या ज़्यादा आती है। हालांकि नर इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि नर अलग ही होता है और मादा अलग होता है, लेकिन जनरल कुकुरबिट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आप खाद जो है 20 से 25 टन FYM, 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस या 60 kg पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसमें देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास संभव है तो इसमें आप जो है नीम की खली ये थोड़ा सा जो है नहीं ज़्यादा मिलता है तो 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास जो है प्रति प्लांट नीम की खली से मिला दें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। खास करके जो है परवल में निमेटोड की एक समस्या आती है जो लगातार 2-3 दिन तक आप छोड़ दें, 2-3 साल तक छोड़ देते हैं तो वो सब समस्याओं से समाधान इसका होता रहेगा।
0: सर अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं?
1: अब देखिए इसमें वैसे तो बिहार में जो है इसकी बिहार वेस्ट बंगाल ये सब तमाम तरह की जो है प्रजातियां हम उगाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो है उपजाऊ प्रजातियां हैं, जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, उसमें जैसे राजेंद्र परवल 1 अपने यहाँ बहुत ज़्यादा, राजेंद्र परवल है, राजेंद्र परवल 2 है, अभी नई वेराइटी अभी गवर्नमेंट से रिलीज हुई अपने यहाँ की जो है सबौर परवलन है, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसमें धारी नहीं होता है, उसमें सीड्स कम होते हैं, मिठाई के लिए भी अच्छी है और जो है सब्जी के लिए भी अच्छी है। तो एक सबौर परवल 1 है, दूसरा स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण रेखा है, तो ये सब जो है प्रजातियां जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, इन सब उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के आप इसका कटिंग प्राप्त कर लें और इनको लगा करके इसकी आप खेती करें, ज़्यादा उपजाऊ हैं और ज़्यादा आपको उपज देंगी, आपके लिए लाभदायक होंगे।
0: सर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि कीट और व्याधि कौन कौन से होते हैं परवल में और कैसे बचें?
1: देखिए जनरल जो है एक जो है शुरू में जो सबसे कीट लगता है जिसको हम बोलते हैं रेड पम्पकिन बीटल, ये तो सारे कुकुरबिट्स का एक पेस्ट हम इसको बोलते हैं, तो ये रेड पम्पकिन बीटल होता है, ये जो जैसे हालांकि इसमें तो कॉटिलीडर नहीं निकलता है, इससे निकलता है स्प्राउटिंग होती है, तने से स्प्राउटिंग होती है इसके, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुकुरबिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, रेड पम्पकिन बीटल आता है जो कॉटिलीडर लीफ निकलती है उसी को खा जाता है, पौधा मर जाता है। लेकिन इस खेत में चूंकि हमारा चलता है स्टेम से निकलता है, इसलिए इसमें उसकी इनिशियल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम इसकी नहीं रहती। इसकी प्रॉब्लम फ्रूटिंग स्टेज में आकर के एक फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे जबरदस्त रहती है। ये फ्रूट फ्लाई क्या करती है, कभी कभी किसान भाई के प्रश्न आते हैं कि भाई हमारे फल तो लग रहा है लेकिन वो सड़ जा रहा है, पक जा रहा है, तो उसकी समस्या में हमने बताया कि जो फ्रूट फ्लाई है ये भी एक कारण है। एक तो कारण ये है कि हमने बताया कि आपने जो प्लांटिंग रेशियो अगर मेंटेन नहीं किया है, नर और मादा का अनुपात अगर मेंटेन नहीं किया है, तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं रहा, वो भी एक समस्या है, और दूसरी समस्या जैसे ये फ्लावर आपका फ्रूट जब लगता है उसमें ये जो है फ्रूट फ्लाई उसमें डंक मार देता है और फिर उसमें जो है सड़न पैदा होने लगती है, पीला पड़ जाता है, तो ये दोनों समस्या है। इसके निदान के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है फिरामोन ट्रैप, एक फिरामोन ट्रैप आता है, आप फिरामोन ट्रैप ले लीजिए, 5-6 ट्रैप ले लीजिए, 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है, और उसको जो है चारों कोने पे बीच में लगा दीजिए। वो क्या करता है कि जितने भी जो है ये जो है मेल जितने भी आपका जो है फ्रूट फ्लाइज है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, और उस फिरामोन ट्रैप में ल्यूर जो होता है वो जो है पॉइजनस होता है, ये जैसे उसमें मेल जाता है उसी में वो मर जाता है, तो इससे होता क्या उसकी प्रजनन जो है रुक जाती है और फिर बाद में वो फैल नहीं पाता है। तो एक तो फ्रूट फ्लाई की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या उसमें फ्रूट फ्लाई की आती है, दूसरा कभी कभी ये स्टेम ब्लाइट की भी समस्या आती है, स्टेम ब्लाइट कर स्टेम रॉट की जो है कभी कभी उसका तना भी सड़ने लगता है, रोग के बारे में अगर कहें तो कभी कभी उसके गमोसिस की प्रॉब्लम आ जाती है, तने निकल जब पुराने हो जाते हैं तो वहाँ से गम जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में किसान भाई जो है कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लें, कापर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% यानी 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके उस पर 2-3 छिड़काव कर दें, उसका जो है कंट्रोल हो जाएगा, वो पौधा आपका अच्छी तरह से चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं। तीसरी इसमें जो है निमेटोड की है। ये हमने बताया कि ये पेरेनियल क्रॉप है, तो पेरेनियल क्रॉप है तो चूंकि एक साल लगाते हैं और ये ऐसी फसल है कि एक साल लगाते हैं और इसको 3 साल तक काटते हैं। देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि एक साल लगाइए 3 साल काटिए, लेकिन 3 साल का और पहले साल की तुलना में दूसरे और तीसरे साल फलत ज्यादा अच्छी आती है। तो ये बात हमको ध्यान देखनी है कि जो है अगर पहले साल हम इसको लगाते हैं तो दूसरी साल उसका मेंटेनेंस करें, और दूसरी साल से जनरली जब 2 साल से ज्यादा होता तो निमेटोड की समस्या शुरू हो जाती है। निमेटोड क्या होता है, उसके अंदर गांठ बना लेता है, उसके जड़ों में गांठ बना लेता है और पौधे का जो सिस्टम होता है जो उस पे जिससे पानी ऊपर जाता है वो पूरा ब्लॉक कर देता है, जिससे खनिज लौड ऊपर जाता है सब उसको ब्लॉक कर देगा तो पौधे को मिलेगा नहीं, तो अंत में क्या होता है पौधा ऊपर से सूखने लगता है। तो इस तरह की समस्या जब आती है तो ये निमेट तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप तो नीम वाला जो है हमने बताया कि नीम की खली उसका आप प्रयोग करते रहें, फ्यूराडान भी समय समय पे जो है पर पौधे आप 10 से 15 ग्राम या 2 से 3 ग्राम आप जो है देते रहिए समय समय पे ताकि उसमें इस तरह की समस्या ना आए, और उसके मिट्टी को हमेशा उसके थोड़ा सा कभी जांच करते भी रहिए कि इसमें निमेटोज की समस्या नहीं आ रही है। तीसरा है उसको रोटेशन भी करते रहे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए तो 3 साल तक 4 साल तक 5 साल तक वहीं छोड़े रह रहे हैं। आप 3 साल के बाद फील्ड को बदल दीजिए, क्रॉप रोटेशन कर लीजिए। इससे करने से क्या होता है कि वो निमेटोड अपना घर नहीं बना पाता है और उसमें जो निमेटोड की समस्या नहीं रहती है, तो क्रॉप रोटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये भी हमको देख लेना है। तो ये सब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो इसमें जो आती हैं, बाकी तो ये जो है पेरेनियल क्रॉप है, चलती रहती है।
0: सर अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को जो परवल की खेती करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए परवल की खेती के लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है कि ये पेरेनियल क्रॉप है और एक बार जब लगाते हैं तो 8 से 9 महीने तक ये फसल देती है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहूंगा कि जब भी आप इसको लगाइए तो इसमें सेक्स रेशियो इसका प्लांटिंग रेशियो जो है जरूर मेंटेन रखिए जो 9 संबंध है 1 के अनुपात में होगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जब भी आप जो है इसको लगाते हैं तो 3 साल के बाद एक खेत से दूसरे खेत में इसको ट्रांसफर जरूर कर दें, और संभव है तो 100 ग्राम जो है नीम की खली उसमें जरूर दिया करें। इस तरह से अगर आप तकनीकी अपनाते हैं तो आपको जो है इससे लगभग जो है 250-300 के आसपास आपको उपज पैदावार मिल जाएगी जो आपको 8 महीने तक देती है, और इमरजेंसी क्रॉप के रूप में भी आपको ये फ्रूट देती है, फल देती है, सब्जी देती है, तो इससे आप जो ज्यादा से ज्यादा आय कमा सकते हैं।
0: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, अगर आप परवल की खेती करते हैं तो जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से खेती कीजिए और कुछ बातों का ध्यान रखें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पपोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
10: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 के पाठ 7 मेरी किताब के अभ्यास बातें किताबों की पर आधारित ये कार्यक्रम।
1: बच्चों, कहानी सुनना तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? हाँ, रानी को भी बहुत अच्छा लगता है। रानी के दादाजी ने आज उसे राजा रानी की कहानी सुनाई और फिर रानी से बोले,
2: तो बताओ रानी, राजा रानी की कहानी कैसी लगी?
3: बहुत अच्छी लगी दादाजी। दादाजी, एक और कहानी सुनाओ ना।
2: नहीं बेटा, अब तुम मुझे कहानी सुनाओ।
3: नहीं दादाजी, आप सुनाओ।
2: मुझे भी तुमसे कहानी सुनने का बड़ा मन करता है। ठीक है, कहानी ना सही तो अपनी मनपसंद किताब के बारे में बताओ।
3: किताब? हाँ, मुझे अपनी हिंदी की किताब बहुत अच्छी लगती है।
2: अच्छा, ऐसा क्या खास है तुम्हारी हिंदी की किताब में?
3: दादाजी, मेरी हिंदी की किताब में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं और चित्र हैं।
2: अच्छा?
3: हाँ, ये सब मुझे बहुत पसंद है।
2: तो फिर बेटा, किताब से कोई कहानी या कविता सुनाओ ना।
3: ठीक है, कौन सी सुनाओ? वैसे तो मुझे सभी कहानियाँ पसंद है। क्यों ना मैं आपको भालू ने खेली फुटबॉल ये कहानी सुनाऊं।
2: भालू ने खेली फुटबॉल?
3: हाँ।
2: वही ना जिसमें भालू शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लेता है और अपने पैरों से उसे ऊपर उछाल देता है।
3: दादाजी, वही वाली।
4: जब दादा और पोती बात ही कर रहे थे तब रानी ने एक मुखौटा पहना जो बादल की तरह बना हुआ था। मुखौटा पहनकर रानी बोली,
3: गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़।
2: अरे ये क्या, मेरा बेटा तो बादल का मुखौटा पहनकर बादल बन गया। ये किसने बनाया?
3: दादाजी, ये मुखौटा मैंने बनाया है। किताब में रंग बिरंगे चित्र हैं। उन्हीं चित्रों को देखकर मैंने ये मुखौटा बनाया है। और दादाजी, मेरे कई दोस्तों ने भी मुखौटे बनाए हैं।
2: अच्छा
3: दादाजी, मुखौटे, मिट्टी के नमूने और खिलौने हम सब बनाते हैं और अभिनय करते हैं तो हमें बहुत मजा आता है।
2: अच्छा, ला दिखाओ अपनी किताब, देखो तो कितने मुखौटे बने हैं तुम्हारी किताब में।
3: ये लीजिए दादाजी।
2: अरे ये तीनों मुखौटे बड़े बड़े जानवरों के हैं। हाथी, शेर, भालू के मुखौटे।
3: अच्छे लग रहे हैं ना दादाजी?
2: अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुखौटा रूपी बादल भी हमें कुछ सुनाए। क्या सुना रहा है मेरा छोटा सा बादल?
3: गड़ गड़ गड़ गड़। मैं हूँ बादल। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसो खूब जमा जम जम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे।
2: शाबाश बेटा, बहुत अच्छा।
1: तो बच्चों, तुम भी कोई मुखौटा बनाओ और सुनाओ मुखौटे पर आधारित कविता। ठीक है,
0: बातें किताबों की। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT, विषय संयोजन सह आचार्य डॉ. रमेश कुमार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग NCERT, आलेख डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा, कलाकार वैभव श्रीवास्तव और सुनील लोहिया, बाल कलाकार ऋतिका, ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो और मयंक कुमार, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं उन पशुपालक भाई बहनों के बारे में जो इस बात से परेशान होंगे कि जब उनके फार्म से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उसका किस तरीके से वो प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से वो उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे भी वो मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते

0: हम डॉक्टर ज्योति माला साहू से। मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पशु अपशिष्ट प्रबंधन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है।
1: देखिए, पशु अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है पशुओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, जैसे गोबर, गौमूत्र, बिछावन की सामग्री और अन्य जैविक अवशेषों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से संग्रह करना, भंडारण करना, उनका उपयोग करना और निपटान करना, यह पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पशुशाला स्वच्छ रहती है और जहां स्वच्छता होगी वहां रोगों का खतरा कम होगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी घटता है, साथ ही साथ इसका उपयोग हम जैविक खाद बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं जिससे खेती की लागत कम होगी और पशुपालकों की अतिरिक्त आय भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ की दृष्टियों से ये अत्यंत आवश्यक है।
0: जी मैम, अगर उचित प्रबंधन ना किया जाए तो क्या ये पर्यावरण पर प्रभाव डालता है?
1: देखिए, उचित प्रबंधन ना करने पर इसका पर्यावरण पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ ही साथ मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि खुले में पड़ा हुआ पशु अपशिष्ट जो होते हैं वो दुर्गंध फैलाते हैं, मक्खियाँ, मच्छर और अन्य रोगकारक जीवों को वो उनकी संख्या को बढ़ावा देते हैं। इससे मानव में डायरिया, हैजा, टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा होता है, साथ ही साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और खास करके इस मौसम में जो अभी चल रहा है बारिश का मौसम, तो वर्षा के दौरान क्या होता है कि पशु अपशिष्ट जल स्रोतों में मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं जिससे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और खुले में इस तरह से अगर अपशिष्ट हैं तो उनके सड़ने से मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि वायु का प्रदूषण करती है और जलवायु परिवर्तन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए अगर पशु अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, उपचार और उपयोग किया जाता है तो हम जलवायु परिवर्तन पे काम कर सकते हैं, इन पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और इससे मीथेन जैसी हानिकारक गैसें का उत्सर्जन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके उपयोग से जैसे कि अभी देख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस है, तो इनके उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर से निर्भरता कम हो सकती है और इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करके हम रासायनिक उर्वरकों पर भी जो निर्भरता है उनको कम कर सकते हैं।
0: तो मैम, प्रबंधन के कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं?
1: देखिए, जो भी पशुपालक भाई बहन है वो गोबर को खुले में ना फेंकने के बजाय अगर इन्हें गड्ढों में या इकाइयों में डालकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर सकते हैं, है ना। इसमें आता है कंपोस्टिंग जिसमें गोबर एवं अन्य पशु अपशिष्ट को नियंत्रित परिस्थितियों में सड़ाकर खाद बनाई जाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग जिसमें केचुओं की सहायता से, इसमें एक विशिष्ट प्रजाति का केचुआ आता है जो लाल रंग का होता है, इसे एसिना फेटिडा कहते हैं। तो इनकी सहायता से गोबर या अपशिष्ट को विघटित किया जा सकता है। तीसरी वैज्ञानिक विधि है गोबर को बायोगैस संयंत्र में डालकर उससे मीथेन उत्पन्न करना और इस मीथेन का उपयोग हम खाना बनाने में या बिजली उत्पादन करने में कर सकते हैं। इस बायोगैस संयंत्र से निकलती है स्लरी जिनका उपयोग हम डायरेक्ट खेत में कर सकते हैं और स्लरी में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अलावा गौमूत्र को अलग से एकत्र करके जैविक तरल खाद जिसे जीवामृत कहते हैं वो बनाया जा सकता है जो कि जैव कीटनाशक, एक अच्छा जैव कीटनाशक है। इसके अलावा डेयरी फार्म से निकलने वाले जो भी गंदे पानी होते हैं उनका उपचार किया जा सकता है, तो इसके लिए सेटलिंग टैंक बिठा सकते हैं, ऑक्सीकरण पॉन्ड बना सकते हैं और बायोफिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं, तो पानी का उपचार कर सकते हैं और इन उपचारित पानी को पुनः सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे गोबर हैं उनके गोबर के कंडे बनाए जा सकते हैं और एक महत्वपूर्ण है बायोचार, इसको बनाया जा सकता है जो कि एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोगी है।
0: मैम, बायोचार क्या होता है?
1: देखिए, बायोचार एक ठोस पदार्थ है जो कि कार्बन से परिपूर्ण होता है। यह गोबर, फसल अवशेष, लकड़ी के टुकड़े, पत्तियां और अन्य जैविक पदार्थों को एक सीमित ऑक्सीजन में, या कह लो कि कम हवा में गर्म करके बनाया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पायरोलिसिस। अब ये सारे अवशेषों को भट्टी में डाला जाता है जिसका तापमान होता है 300 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया में जो जैविक पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह जलने के बजाय कार्बन युक्त बायोचार में बदल जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं। तो यह मिट्टी में लंबे समय तक रहता है और यह पानी और पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है और साथ ही साथ यह सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार करता है और यह बायोचार खास करके अम्लीय मिट्टी के सुधार में सहायक होते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी बहुत लाभदायक है। ये
0: मैम बायोगैस संयंत्र के लिए कितना गोबर लगता है और गैस कितना बनता है और लागत कितनी होती है इसकी?
1: देखिए बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर की जो मात्रा होती है वो संयंत्र के आकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोग्राम ताज़ा गोबर और उतनी ही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह गोबर लगभग 1 से 2 गाय या भैंस से आसानी से मिल जाता है और इसी प्रकार अगर 2 घन मीटर का संयंत्र हो तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन हमें चाहिए होगा। अब उत्पादन की बात करें तो 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 घन मीटर गैस बनती है जो कि लगभग 1 LPG सिलेंडर के एक हिस्से के बराबर ऊर्जा देती है। तो उसी तरह से हिसाब लगा लेंगे कि अगर 2 से 3 घन मीटर संयंत्र है तो यह होगा कि एक परिवार के दैनिक खाना बनाने की जरूरत को वो पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं कि समय की, तो कितना समय लगता है अगर एक बार बायोगैस संयंत्र बैठा दिए तो संयंत्र को चालू करने के बाद गैस बनने में लगभग 30 से 45 दिन लगते हैं क्योंकि गोबर को सड़ाकर उनका गैस बनाना है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। और इसके बाद प्रतिदिन गैस बनती रहती है अगर गोबर और पानी की सही मात्रा उसमें डाली जाए तो। अब लागत की अगर हम बात करें तो एक घरेलू संयंत्र से लागत लगभग 25,000 से 60,000 रुपये तक हो सकती है और बड़े संयंत्र की लागत उससे अधिक हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई योजनाएं हैं तो उनसे सब्सिडी भी मिल सकती है जिससे वास्तविक खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हर महीने LPG गैस पर जो होने वाला खर्च है वो बच जाता है और साथ ही साथ जैविक खाद भी मिल जाती है जिससे खेती का खर्च भी कम हो जाता है।
0: जी मैम, तो क्या इस क्षेत्र में सरकार की भी कोई योजनाएं हैं और क्या कोई ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है हमारे पशुपालक भाई बहन को?
1: जी हाँ, पशु अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार सहायता प्रदान कर रही है। बिहार राज्य की बात करें तो पहले योजनाएं थी बायोगैस संयंत्र बैठाने के लिए, पर अभी फिलहाल ये योजना बिहार सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, इसके तहत ये योजना है जो बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए सहायता देती है। इसके अलावा गोबर धन स्कीम के माध्यम से गोबर और जैविक कचरे को धन में बदलने, बायोगैस और जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि और पशुपालन विभाग समय समय पर प्रशिक्षण दे रही है, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। तो पशुपालकों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि वे अपने जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित या फिर कोई भी संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और उनसे होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो मैम, क्या पशु अपशिष्ट का खाद और ईंधन के अलावा भी किसी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है?
1: जी हाँ, बायोगैस के अलावा पशु अपशिष्ट से कई और लाभकारी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बाजार में हाल ही में कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की काफी अच्छी मांग है और इसके अलावा गोबर से गोबर के उपले, दिए, अगरबत्ती और प्राकृतिक पेड़ जैसी कई वस्तुएं बनाई जा सकती है जो कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। और आजकल गोबर आधारित जैविक खाद और ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में इनके मांग में काफ़ी तेजी बढ़ रही है जिससे किसान सीधे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकता है। तो इस प्रकार पशु अपशिष्ट को केवल कचरा ना मानकर अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है।
0: अंत में आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं पशुपालकों को ये संदेश देना चाहूंगी कि वे वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें।
0: तो पशुपालक भाई बहन, जो भी आपके एनिमल फार्म से वेस्ट आता है उसका आप उपयोग करें, सदउपयोग करें, और इससे न केवल आपको फायदा होगा बल्कि पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई।
1: धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
3: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो आओ।
4: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
5: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
4: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
5: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
6: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
7: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
8: क्या क्या क्या?
5: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
8: अच्छा,
7: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
9: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
9: 11 दोस्त?
5: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
9: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
9: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
9: टीकी, तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
9: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है। और बढ़ते उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है, लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इनटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है, और इसलिए आपको हॉट फ्लैक्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं।
सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी होता है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें। और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को ज़रूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। और इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिएं, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो ज़रूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए, तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्री नख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: धन्यवाद उमा।
12: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
13: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है, और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैगन में होते हैं। और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में, जो बैगन की चोखा, लिट्टी के साथ में बैगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है, बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं। और इसके लिए जो है बिहार में बैगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैगन भी आता ही है, और इसीलिए बिहार के किसान भी बैगन खूब उगाते हैं। और बैगन सालों भर चलती है, ऐसे सब्जी है, और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है। और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैगन काफ़ी रंगों में होता है, हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है, और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो चेंज होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैगनी वाले को, भरता के लिए तो बैगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबोर सदाबहार है, ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबे किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अर्का शीरीष है, अर्का कुसुमाकार है, अर्का नीलकंठ है, अर्का आनंद है, और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबोर कृष्णकली भी शामिल है।
14: मैम, अगर अब हम बुवाई की बात करें तो बुवाई करने की क्या विधि होती है?
13: बैगन को लगाने के लिए एक हेक्टेयर फसल के लिए लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित किस्म की हो। यहीं पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग 250 ग्राम एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है, जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है। और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को, और दो जो जैसे क्यारी बनती है तो दो लाइन के बीच में लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। और बीज, क्योंकि बैगन के बीज काफ़ी छोटे होते हैं, तो लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है, और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं। और ये जो पौधा है उसका रुपाई का समय होता है 1 महीना लगभग बाद में, यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में। और इसके जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में, तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है, इसीलिए जो है उसका रुपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है, तो उस फसल को हम लोग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में जिसकी बुआई करते हैं, और 1 महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रुपाई करते हैं।
14: मैम, अगर हम बात करें खेत की तैयारी की, तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
13: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रुपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट में लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम, और पोटैश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर डोज के तहत में
14: जी। और रुपाई की विधि क्या होती है?
13: बैगन की बिजड़ा जब एक महीने के लगभग हो जाते हैं उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रोपाई करते हैं। तो रोपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रोपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात होती है, तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है। तो इसीलिए शाम के वक्त में रोपाई करते हैं, और रोपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं, और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रोपाई करेंगे और दो पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर, और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है, और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं दो पंक्तियों के बीच में, और दो पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना किस्म होते हैं उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके एक महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
14: मैम, खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
13: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रोपाई के 30 दिन 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
14: मैम, सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
13: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौधे की वृद्धि जो है ये उस सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5% जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की वजन भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध की रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, और सारे पौधों में जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-D के 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं 1-1 हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
14: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
13: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं, और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है, अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे, और जब शरतकालीन जो फसल होता है जब हार्वेस्ट होने लगते हैं फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को एक एक सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पे जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर एक एक सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद एक सिंचाई, हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
14: मैम, किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खर पतवार बहुत उगाते हैं, तो खर पतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
13: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंडीमिथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव करते हैं ये पौध रोपण से पहले, तो भी जो है काफ़ी हद तक जो है ये शुरुआती जो है 2-3 महीने तक में जो है खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
14: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
13: बैगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है। सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते हैं बैगन का वो है तना एवं फल छेदक। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तना एवं फल छेदक के उसके लिए जो है फसल चक्र को हम लोग अपना सकते हैं। तो उसमें एक बार अगर बैगन लगाते हैं तो उसके बाद में तुरंत ही हम बैगन नहीं लगाएंगे, हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे एवं तुरंत ही हम लोग बैगन नहीं लगाएंगे। एक बार बैगन लगाने के बाद में उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरा कोई फसल लगाए। हम लोग कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं या फिर कोई मटर वगैरह ये सब भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन बैगन को हम लोग फिर जो है 2 से 3 साल ना लगाएंगे तो एक ही खेत में, तो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है कीड़ा जब लगता है पहले तो वो पौधे के तना में लगता है, तो जब पौधे के तना में लगेगा तो ऊपरी भाग हम देखेंगे कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है, तो जहाँ तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं उसको, तना को छांट देते हैं, तो उसमें देखेंगे उसके अंदर में जो है कीड़ा है, तो उतने भर हम तना को छांट देंगे और तना को खेत में फेंक के नहीं रखेंगे, उसको एक गमले में या किसी में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और सारे खेत में वो तना का छटाई अच्छे से करने के बाद में जो है उसको एक मिट्टी के अंदर में दफना देंगे, तो उससे भी जो है ये कीड़ा का मैनुअल जो है हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है बैगन के कीड़े के भी ये तना और फल छेदक का फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग 12 ट्रैप की इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है तना एवं फल छेदक का अच्छे से सप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% प्लस क्लोरपाइरीफॉस 50% का जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दवा आता है तो उसको हम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग अल्टरनेट कर सकते हैं, इंडोक्सा कार्ब मिलता है एक दवा, उससे वो भी 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं, या फिर स्पाइनोसैड करके एक दवा आता है उसके 0.5 मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। याद हमको रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर केमिकल की छिड़काव करते हैं तो तुरंत ही हम लोग जो है उसका कटाई या फल की तोड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम केमिकल की छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग 5 दिन रुक के फिर फल की तोड़ाई करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमने आज फल की तोड़ाई किया सुबह में, शाम में इसके छिड़काव कर दिया, फिर 5 दिन रुक गए उसके बाद में तोड़ाई किया।
14: और मैम, रोग भी काफ़ी लगते हैं बैंगन के फसल में, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
13: बैगन के फसल में शुरुआती एक जो रोग है नर्सरी का वो है डैम्पिंग ऑफ, वो काफ़ी लगता है, तो इसके लिए जो है नर्सरी को हम लोगों को पहले तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बीजों को लगाने से पहले बीज की उपचार करना पड़ेगा। बीज को हम लोग थायरम या कैप्टन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करके लगा सकते हैं, या फिर जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से कार्बेंडाजिम से भी हम लोग बीज की उपचार कर सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग ऑफ अगर जो सीडलिंग जब लगाए बीजड़ों पे अगर आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग मेटालैक्सिल प्लस मैंकोजेब नाम की केमिकल है वो मिलता है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करेंगे। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो बैगन में बैक्टीरियल विल्ट की प्रकोप होती है जो कि जीवाणु मुरझा रोग बोलते हैं। तो इस समय पे हम देखेंगे कि बैगन में जब फूल आने लगते हैं इस समय पे मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं ये रोग पहली बार फील्ड में देखा जाता है। तो इसके लिए जो है खेत की तैयारी के समय पे ही जो है जुताई के समय पे अगर 15 से 20 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर देते हैं या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब क्रॉप खत्म हो गई पिछली तो उस समय पे डीप प्लाउइंग करते हैं तो उसमें गहरी जुताई करके नीचे की जो मिट्टी है ऊपर लाते हैं तो उससे भी जो है नीचे की जिसे भी जो भी कीटाणु जीवाणु मिट्टी का था वो सूर्य की किरणों से जो है हाई सनलाइट जब पड़ता है उसकी जो ताप होती है उससे भी वो मर जाता है तो उससे भी वो कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से और 4.5 क्विंटल चूना भी उसके साथ साथ में मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इससे जो है मिट्टी का शोधन होता है क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट का जो जीवाणु है वो उसी में रहता है तो उससे वो खत्म हो जाता है। और साथ साथ में खेत का जल निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए और अगर फिर भी फसल में आ जाता है तब जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम के साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसके साथ साथ में 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में ये साथ में घोल करके हम लोग उसका अच्छे से पर्णीय छिड़काव करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो पौध के जड़ के पास में इसका छिड़काव अच्छे से होना चाहिए जिसको ड्रेंचिंग हम लोग बोलते हैं वो चीज़ करना ज़रूरी है।
14: मैम अब बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। अगर हम बात करें तुड़ाई की सबसे पहले तो तुड़ाई किस तरीके से और कब करनी चाहिए और उपज कितना होता है बैंगन का?
13: हाँ तो बैंगन का तुड़ाई हम तब करेंगे जब फल अच्छे से मुलायम रहे, पूरे साइज आ गया लेकिन फल मुलायम हो और कड़ा ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि कड़ा अगर हो जाता है बैंगन में बीज भी ज़्यादा भर जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता है। तो ध्यान देना होगा कि सही स्टेज पे इसकी तुड़ाई किया जाए। तो फल को जो है हम लोग चाकू से या कोई तेज़ यंत्र से या हाथ से भी जो है तोड़ेंगे और तुड़ाई करने के बाद में फलों को छटाई करके विपणन के लिए विभिन्न आकार के टोकरियों में रखेंगे। तुड़ाई को या तो हम लोग सुबह करेंगे वही सबसे सही समय है या फिर हम शाम के समय पर करेंगे, बीच में हम लोग नहीं करेंगे। और अगर हम लोग अच्छे से हम लोग खेती करते हैं बैंगन का तो किसान भाइयों को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
14: तो किसान भाई बहनों अगर आप अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
13: धन्यवाद उमा।
14: तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अभी इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
15: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर

0: 11 दोस्त।
1: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, फल वर्गीय सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम स्वागत है आपका।
7: सबसे पहले मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगी कि नर्सरी की उपयोगिता क्यों क्या है और हमें ये करना ही क्यों चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फल है, फलों की नर्सरी है, वहाँ ग्राफ्ट, शायन के मात्र पौधे, रूटस्टॉक और पपीता जैसी बीज प्रवर्धित फसल की पौध के उत्पादन के लिए आवश्यक है। युवा पौधों को चाहे बीज से या वनस्पतिक प्रजनन द्वारा प्रवर्धित किया गया हो, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिकूल तापमान, भारी वर्षा, सूखा हवा, विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों से बचाना होता है। यदि बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं तो अंकुरण अक्सर खराब होता है और युवा पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और परिपक्व होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फल की फसलों को खेत में रोपने से पहले नर्सरी में प्रचारित और किया जाना चाहिए और उगाया जाना चाहिए। तो जो हमारी नर्सरी है, उस जो ये फलों की नर्सरी है, इसको हम तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि नर्सरी की साइट का चयन कैसे करें, दूसरा नर्सरी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और तीसरा कि नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करें। तो नर्सरी के लिए साइट का चयन काफ़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी के स्थान का उसकी समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्सरी के लिए स्थान और स्थान के चयन के लिए विचार किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं: जलवायु, स्थान पर मध्यम जलवायु और लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम होना चाहिए, विशेष रूप से तेज़ जलवायु, उतार चढ़ाव या तेज़ हवा का वेग या ओलावृष्टि की घटनाओं के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करने वाले स्थानों से बचना चाहिए। दूसरा है स्थलाकृति, जिसे हम टॉपोग्राफी भी कह सकते हैं। अगर जो सबसे कुशल उपयोग के लिए नर्सरी के लिए भूमि को समतल किया जाना चाहिए, बाढ़ या पाले की आशंका वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, नर्सरी के लिए निचले इलाकों का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मिट्टी जो हो हमारी गहरी बलुई दोमट से चिकनी दोमट।

0: मट बनावट वाली और पर्याप्त जल धारण क्षमता करने वाली होनी चाहिए और ये कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए। अधिकांश फल पौधों के लिए इष्टतम जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से 7.2 के आसपास है। 7.5 से अधिक अगर पीएच मान है तो इस साइट को चुनने से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पानी, एक आदर्श नर्सरी साइट में रोपण और बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा होना चाहिए। नर्सरी के निकट या भीतर एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए जिससे हम सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकें और नई पौधे के लिए सिंचाई का पानी लवण रहित होना चाहिए। जो पांचवा और इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कीट पतंगों और रोग पैदा करने वाले जीवों की व्यापकता, गंभीर कीटों या बीमारियों, निमेटोड या खरपतवारों की उपस्थिति को पहले ही जांच लेना चाहिए और अगर किसी मिट्टी में इन सब की बहुत व्यापकता है तो हमें इस साइट को नहीं चुनना चाहिए। अब हम आते हैं कि फल नर्सरी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी नर्सरी साइट को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके चारों बगल फेंसिंग या बाड़ लगा लेना चाहिए। फेंसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोल बना बना के उसके ऊपर वायर या तार चढ़ा सकते हैं या फिर आजकल एक नेचुरल फेंसिंग वाला भी पॉइंट है जहाँ पर आप करौंदा जैसे फलों को नेचुरल फेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सड़क और रास्ते होने चाहिए आपके नर्सरी में ताकि जो आपके जो भी प्रवर्धित पौधे हैं उनको जल्दी से मार्केट तक लेके जाया जा सके। और तीसरा कार्यालय या फिर सह भंडार जहाँ से आप सारे चीज़ों को मैनेज कर सके। उसके बाद आता है मदर प्लांट ब्लॉक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो फल का प्रवर्धन होता है वो या तो ग्राफ्ट से होता है या तो लेयरिंग से होता है या बडिंग या कटिंग से होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मदर प्लांट का ब्लॉक हो या शायन बैंक का ब्लॉक हो। इस और ये जो मदर प्लांट है हमारा ये डिपेंड करता है कि हमारे बाज़ार में किस वैरायटी की मांग ज़्यादा है। जिस वैरायटी की भी मांग ज़्यादा हो उसी वैरायटी का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें नर्सरी में। किसी भी नर्सरी की सफलता काफ़ी हद तक आगे के गुणन के लिए मात्र पौधों के प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है और इसे अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित नर्सरी से ही खरीदा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रणाली की। फल नर्सरी में पौधों को सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर के साथ पॉली बैग में उगाया जाता है। अतः ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का होना पानी की बर्बादी को कम करता है और साथ ही साथ पौधे को आवश्यक मात्रा में जल भी प्रदान करता है। छठी जो बात है वो है सीड बेड तैयार करना, जो बीज की क्यारियाँ तैयार करते हैं। नर्सरी में यह घटक पौध और रूटस्टॉक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें जल स्रोत के पास बिछाया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक लंबाई के साथ इनकी जो चौड़ाई हो है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए और दो बेड के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो 60 सेंटीमीटर का जो स्पेस है इसे बीज बोने, निराई करने, पानी देने, छिड़काव करने और पौधे उठाने में आसानी होती है। अगर दूसरा जो तरीका है नर्सरी में पौधे तैयार करने का, एक तो सीड बेड हो गया और दूसरा है पॉली बैग। पॉली बैग में पौध और रूटस्टॉक उगाने के लिए नर्सरी बेड की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों की वृद्धि में एक रूपता के साथ साथ मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाती है। प्रत्येक बेड 500 के आसपास ग्राफ्ट या गूटी रखा जा सकता है और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है पॉटिंग मिश्रण या पॉटिंग यार्ड। तो जो भी हमारा नर्सरी का एरिया है वहाँ पे हमारा एक पॉटिंग यार्ड होना चाहिए जहाँ पे टाइम टू टाइम जो हमारा पॉटिंग मिक्सर है वो तैयार होते रहना चाहिए। पॉटिंग एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण में एक भाग मिट्टी, एक भाग नदी के किनारे का रेत और एक भाग FYM होना चाहिए। इसका अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग FYM, इनको मिला के या इनको जो आपका पॉटिंग यार्ड है वहाँ पे मिला करके आप पॉली बैग में भर सकते हैं और इसमें बाद में आप जो भी बीज डालना चाहें वो आप डाल के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि जो ये पौधे हैं नर्सरी के, ये कभी कभी हम पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस में तैयार हुए पौधे होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो उनको डायरेक्ट फील्ड में ले जाने से पहले अगर आपके पास शेड नेट की फैसिलिटी है तो आप उसको शेड नेट में लेके जाइए, क्योंकि शेड नेट में क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनको थोड़ा सख्त होने का टाइम मिलता है, वरना पॉली हाउस से तुरंत बाहर ले जाने पर, फील्ड में लेके जाने पर उनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसीलिए अगर पॉली हाउस में आप पौधे उगा रहे हैं तो उसको पहले आप शेड नेट में लेके जाइए, वहाँ पे 1-1.5 महीना रखिए और फिर 1-1.5 महीने के बाद आप उसको फील्ड कंडीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है क्यारी की तैयारी। जहाँ पे भी हम क्यारी की तैयारी करेंगे वहाँ पे खरपतवार का उन्मूलन, मिट्टी को समतल करना और खेत को जोतना शामिल है। खेत की 2 बार गहरी जुताई करने से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार तथा अन्य वनस्पतियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। जुताई करते समय मिट्टी में पाए जाने वाले पत्थरों और जड़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वे पौधे के विकास में बाधा डालते हैं। सूखी घास और झाड़ी सामग्री को जलाने से कीड़े और खरपतवार की समस्या को कम करने में मदद मिलती है और बची हुई खनिज समृद्ध राख बीज बिस्तरों की उर्वरता को की में सुधार करती है। अब जब हमने खेत की तैयारी कर ली है तो हम जो हमारा बेड है, सीड बेड है, उसको उसका लेआउट करना और समतलीकरण करना हम कर सकते हैं। अन्य आकारों की तुलना में आयताकार बेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। बीज शैया की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि बीज शैया में प्रवेश करने किए बिना निराई गुराई का कार्य किया जा सके। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 1-1.5 मीटर ही होनी चाहिए और आप इसकी लंबाई 12.5 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 12.5 मीटर से ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। नर्सरी में उपयोग की जाने वाली बीज क्यारियों के 3 प्रकार होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे ऊंचे बिस्तर बनाने चाहिए, मतलब 10-15 सेंटीमीटर ऊंची सीड बेड बनाइए। जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर नीचे सीड बेड बना सकते हैं, और जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे समतल क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। देन फिर अब क्यारियों में बुआई कैसे करें। तो क्यारियों में बुआई करने के लिए जो आपका सीड बेड तैयार हुआ है, जो जिसके लिए आपका सीड बेड के लिए आपका जो भी फार्मयार्ड मैन्योर या पॉटिंग मिक्सर का जो तैयार मिश्रण था उसको डाल के आपने क्यारियाँ जो तैयार की हैं उसमें आपने बीज को बोना है। बीज को बहुत गहरा नहीं बोना है, जब बहुत छोटे बीज होते हैं तो उनको 1-1.5 सेंटीमीटर की ही गहराई में बोना चाहिए, और अगर थोड़े बड़े सीड्स हैं, बड़े बीज हैं, तो उनको थोड़ा गहरा रोपा जा सकता है। पॉली बैग अगर आप क्यारियों में नहीं कर रहे हैं तो इसको आप पॉली बैग में करेंगे। तो पॉली बैग में करने के फ़ायदा यही है कि जब भी आप इसमें से पौधे को निकाल के फील्ड में लेके जाते हैं या फिर आपसे कोई खरीद के लेके जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी जड़ होती है उसको बहुत कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसका जो हेल्थ रहता है वो बढ़िया बना रहता है, और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में तब भी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। फिर हम करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जनरली जो होता है वो 3 समय हम बुआई कर सकते हैं। एक तो फरवरी मार्च का महीना हो जाता है, एक जुलाई अगस्त का महीना हो जाता है, और एक सितंबर अक्टूबर का महीना हो जाता है। तो सबसे बढ़िया समय जो हमारे हमारे रीजन के लिए है वो जुलाई अगस्त का महीना है, जब वर्षा ऋतु होती है। और अगर हम नर्सरी में बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या लेयरिंग की भी बात करें तो इन सबको वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिए। एक जो प्रैक्टिस है जो नर्सरी में की जाती है वो प्रिकिंग होती है। इससे क्या होता है कि बेहतर जड़ और अंकुर के विकास के लिए पौधे को एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बेड या पॉली बैग या गमले में स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रिकिंग से जड़ की वृद्धि बढ़ती है और कई प्रजातियों में बेहतर और कुशल जड़ प्रणाली तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो बुआई के तुरंत बाद बीज क्यारियों में पानी देना चाहिए। पॉलीबैग गमलों को गुलाब के सिर के डिब्बे से सिंचित किया जा सकता है, या पॉलीबैग या गमलों में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे धसे हुए बिस्तरों में रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ सिंचाई को अपनाया जा सके। और जहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है, वहाँ पे आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करके पानी के बर्बादी को बचा सकते हैं। फिर बात आती है निराई गुड़ाई, नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करे और उनके बढ़ने से निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, फूल आने से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनके पुनर्जनन को नियंत्रित किया जा सके। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति और उगाई जा रही प्रजातियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नर्सरी से पौधे उठाना कैसे है। नर्सरी से पौधे हटाने के लिए सबसे पहले जो पौधे की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आप किसी को बेच सके या फिर आप इसको मार्केट तक भेज सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिंचाई देना होगा, पानी देना होगा। इससे क्या होगा, पौधे के जड़ों, विशेषकर बारीक जड़ों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सावधानी से इन पौधों को उठाया जा सकता है। मिट्टी की गेंद को विभाजित होने से बचाने के लिए जड़ों को मिट्टी की गेंद के साथ घास या अन्य सामग्री में लपेटना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के बाद और खेत में रोपने से पहले छाया में रखना चाहिए और परिवहन के दौरान उन पर पानी छिड़कते रहना चाहिए।
1: 3 नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के,
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 50 से 55 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू8 और वाकुला इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
4: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी ने।
3: लिखते हैं, कठिनाइयां रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
4: तो आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
3: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
4: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
3: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
4: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
3: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं, उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
3: जी,
4: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
3: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
4: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गाँव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई ना कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
3: बिल्कुल,
4: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं
3: जी।
4: तो श्रोताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
3: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओ, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
4: जी हाँ श्रोताओ, लोंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है। तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में
3: जी।
4: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
3: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
4: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
3: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
4: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे भारत में होते हैं और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
3: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में। और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांग नागा जनजाति निवास करती है। कोयांग समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
4: तो श्रोताओ, यदि कभी आपने कोयांग पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे
3: जी।
4: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
3: कोयांग जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
4: श्रोताओं, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांग के योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
3: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांग समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
4: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
3: जी,
4: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
3: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओ, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
4: जी, तो श्रोताओ, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं, लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
3: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
4: तो श्रोताओ, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
4: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
3: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
4: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
3: सरितपुर की कहानी।
5: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे बच्चों का क्या हो रहा है, हमारे घर के सारे सामान बेच
6: दिया है, हमारे हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद,
7: फसल बह गई।
8: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बागीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
7: लो भाई, पहुंच गए सरेदपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
9: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
7: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
8: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आम तौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
7: अरे काट काट काट, मैं मेरा भी क्या देख रहा काट।
10: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
8: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
11: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
8: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
7: अरे काट काट काट, तो और काट, 10 से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
10: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
8: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
7: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
12: अरे मर गए इस बार गर्मी में जान लेडीज गर्मी ने।
8: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
10: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
7: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारी फसल
10: सारी फसल बह गई।
13: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा।
10: चलो जल्दी
13: ऊपर जाना होगा।
10: चलो जल्दी ऊपर,
13: हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
10: चलो चलो चलो,
13: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना।
12: सांप वाप ना आ जाए।
14: ध्यान से संभल कर।
8: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
15: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
3: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है, जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा है जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो है पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो, अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
0: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
1: वर्ष था 1977 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
0: जी ओ एम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
4: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
2: थैंक यू सर।
4: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
2: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
4: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
2: आप? धन्यवाद सर। लेकिन
4: अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
2: सर।
4: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
2: थैंक यू सो मच सर।
1: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
5: आज तो बड़ा मजा आएगा दौड़ देखने में।
6: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही
5: है।
6: हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे ये क्या हुआ?
1: पीटी उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
0: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था, लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गई। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
0: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी जैसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक है।
0: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
1: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
0: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
1: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
8: चेतना,
7: जगबंधु
8: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
11: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: जल देने का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ हम भूमि की सतह को मुलायम करते हैं, जिसके कारण है जो कि हमारे जुताई में आसानी हो।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मृदा को लवण से दूर करने के लिए, साथ ही मिट्टी को मुलायम करने के लिए, ताकि किसान भाइयों को जुताई करने में आसानी हो, तो ये उद्देश्य है जल प्रबंधन का। आगे और भी बातें होंगी डॉक्टर साहब से, हम आगे जानना चाहेंगे कि धान की खेती में सबसे पहले कि सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई की विधि कैसी होनी चाहिए, जिस तरीके से जिस तरीकों को अपना कर, यानी कि सिंचाई के विधि के तरीकों को अपना कर हमारे किसान भाई आसानी से जल प्रबंधन कर सके।
0: सामान्यतः धान की फसल में वर्षा न होने पे या कम होने पे, जब मृदा में नमी सेचुरेशन की अवस्था से कम होने लगे, मतलब संतृप्त अवस्था से कम होने लगे, तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा के पानी के अच्छे उपयोग के लिए हमें चाहिए कि धान की खेत की मेड़ खूब मजबूत होनी चाहिए। अब हम सिंचाई की विधियों की बात करें तो एक विधि है कंटिन्यूस फ्लडिंग की, जहाँ पे जल प्लावन की स्थिति हम लगातार बनाते हैं। इस विधि में खेत में सदैव पानी को हम भर के रखते हैं ताकि मृदा संतृप्त रहे। मृदा अपचयन के कारण खाद्य तत्वों की उपलब्धता इस स्थिति में बढ़ जाती है और खरपतवार नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण है जो कि फसल का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। मृदा की सतह पर हम सामान्यतः 2.5 से 5 सेंटीमीटर पानी को रोपनी से फसल के पकने तक की अवधि के लिए हम इसमें रखते हैं। विशेष परिस्थिति में जहाँ जीवांश की मात्रा अधिक होती है वहाँ, और जहाँ जल निकास नहीं होती है, वहाँ अगर ज़्यादा दिन तक ठहरा हुआ पानी रहता है तो उस स्थिति में पौधों में कुछ रोग लगने के कारण होते हैं। इस स्थिति में सामान्यतः देखा गया कि पानी के स्तर अधिक होने के कारण कभी कभी कल्लों की संख्या कम होती है और पौधे की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसके गिरने की संभावना बढ़ती है और फसल का उत्पादन कम होता है। दूसरी अवस्था है जहाँ कंटिन्यूस फ्लडिंग हो, लेकिन साथ ही साथ हम ड्रेनेज जल निकास की सुविधा रखते हैं। इस विधि में फसल की सभी अवस्थाओं में पानी भरा रहता है, लेकिन बीच में हम एक दो बार जल निकास करके मृदा को असंतृप्त करते हैं। इस प्रकार के जल निकास से मृदा के घोर अपचयन की अवस्था में सुधार होता है, विषैले पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा रोगों में कमी आती है, जड़ों का विकास में सहायता मिलती है तथा फसलों के गिरने की संभावना कम होती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन अच्छा होता है। एक तीसरी विधि होती है कंटिन्यूस सेचुरेशन का, जहां पे हम लगातार जल संतृप्त अवस्था में रखते हैं। इस विधि में फसल के दौरान जल मृदा को संतृप्त अवस्था से नीचे नहीं जाने देते। इस विधि में फसल की जल मांग पूरी हो जाती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अवगुण है कि इस स्थिति में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण श्रम की मांग बढ़ती है, और श्रम की मांग जब ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ देखा जाता है कि उपज जो लागत है, लागत में वृद्धि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संतृप्त जल प्लावन और या हम कहें कंटिन्यूस फ्लडिंग जहाँ हो और साथ ही साथ बीच में जल निकास की व्यवस्था हो, वो विधि जल प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त।
1: तो सर ने बताया किसान भाइयों यहाँ पर कि जल निकास की व्यवस्था जहाँ पर होगी वहाँ पर अच्छी तरीके से जल प्रबंधन किया जाएगा। धान की खेती में सिंचाई की विधि थी ये, और इसके बाद सर यहाँ पर कुछ बातें होती है ध्यान देने योग्य, बातें जो कुछ छोटी मोटी बातें होती है जिससे अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं भी रुकावटें नहीं आती है जल प्रबंधन में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल प्रबंधन के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं क्या जो जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए?
0: देखिए, जल प्रबंधन में जल धान है जो कि पूरी तरह से हम जानते हैं कि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। संपूर्ण जीवन काल में हम कहते हैं कि खेत में जल का खड़ा रहना अति आवश्यक है जी। और ये अनौक्षीकृत स्थिति होती है, इस कारण स्फूर, लोहा और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है, खरपतवार की संख्या में कमी आती है, इससे हम धान को एक सही वातावरण देते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि धान के लिए दैनिक जल की आवश्यकता 6 से 10 मिलीमीटर प्रतिदिन है। इस प्रकार हम कहते हैं कि धान के संपूर्ण जीवन काल में 1200 से 1500 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है, और सामान्यतः ये पाया गया कि अगर हमको 1 किलोग्राम धान की का उत्पादन करना है तो हमें 2000 से 2500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर हम जल की आवश्यकता की बात करें कि कब कब जल की आवश्यकता होती है, तो ये देखा गया

0: कि जनरली हम पौधशाला तैयार करने के लिए हमें 50 से 60 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है, लेकिन खेत की तैयारी के दौरान 200 से 250 मिलीमीटर एवं रोपाई से पैनिकल निकलने तक 400 से 550 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पैनिकल निकलने से फूल होने तक सामान्यतः 400 से 450 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है एवं पुष्पन से पकने तक 100 से 150 मिलीमीटर। अगर हम गहराई की बात करें तो सामान्यतः हम कहते हैं कि जब आप धान लगाते हैं तो जल की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये अवस्था हमको शुरू के 7 दिनों तक कम से कम मेंटेन रखना चाहिए। पुनः हम कहते हैं कि कल्ला निकलने के समय 22 से 45 दिन तक भी जल की स्थिति जल ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब हम बात करें बाली निकलने की या पुष्पन की अवस्था उस समय हम 4 से 5 सेंटीमीटर जल की गहराई रखें तो वो उपयुक्त होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पकने की अवस्था में हमें जल पकने की अवस्था या कहें पुष्पन की अवस्था के 3 सप्ताह के बाद हमको खेत से पानी पूरी तरह से निकाल देना चाहिए एवं उसको केवल संतृप्त अवस्था में ही रहने देना चाहिए।
1: तो कुल मिलाकर बातें हुई यहाँ पर डॉक्टर साहब कि हमें जल की मात्रा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि धान की क्रांतिक अवस्थाएँ क्या होती हैं।
0: देखिए क्रांतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिस समय फसल को उस चीज की आवश्यकता विशेष कर हो। जल की क्रांतिक अवस्था का मतलब हो गया कि उस अवस्था में यदि नमी की कमी होगी तो फसल के उत्पादन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उपज
1: नमी रहना अनिवार्य है
0: या बहुत जरूरी है नमी रहना। अगर नमी की मात्रा घट जाएगी तो उपज में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। अब जब धान की क्रांतिक अवस्था की बात करें तो कल्ला निकलने का समय पहली क्रांतिक अवस्था है, दूसरा हम कहें बाली निकलने की अवस्था, फिर हम कह सकते हैं बाली निकलने के समय एवं फूल लगने के समय। ये 4 अवस्था है जो जहाँ पे नमी की स्थिति कम से कम संतृप्त अवस्था में होनी चाहिए। सामान्यतः देखा गया कि अगर सक्रिय कल्ले निकलने की अवस्था में नमी की मात्रा घट जाती है तो उपज में 30 से 40% की कमी आती है। वहीं अगर रिप्रोडक्शन स्थिति में नमी की कमी हो जाती है तो हम उपज में 50-60% की कमी भी दर्ज कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों आप इस बात का खास ख्याल रखें कि नमी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए अगर आप धान की अच्छी तरीके से खेती करना चाहते हैं तो। और इसके बाद सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल की दक्षता बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
0: सामान्यतः जल की दक्षता बढ़ाने का मतलब हुआ कि हम किस तरह से कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा उपज ले सकें। सामान्यतः हम देखते हैं जितना जल देते हैं जल का बहुत सारा भाग है जो कि या तो बह के निकल जाता है या कहीं एक जगह पे जमा हो जाता है। तो दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें कदवा एवं समतलीकरण करें अपने खेतों की। अगर खेत समतलीकरण करेंगे तो खेत में एक समान पानी रहेगा और उस स्थिति में हमें जल की आवश्यकता कम होगी। सामान्यतः हमको जब खेत की तैयारी करें तो हमको ट्रैक्टर चालित केज व्हील सहित एमबी प्लाउ से जुताई करनी चाहिए। सामान्यतः एमबी प्लाउ से 1 जुताई एवं डिस्क हैरो से 2 बार पडलिंग करने से फसल की स्थापना अच्छी होती है। सामान्यतः ये भी करें कि रोपा के समय खेतों में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी न रखें, क्योंकि अगर पानी अधिक रहेगा तो रोपाई की गहराई ज़्यादा होगी, परिणाम स्वरूप कल्ला कम निकल सकता है। रोपाई के बाद अगले 7 दिनों तक हम 2 सेंटीमीटर खड़ा जल अवश्य रखें। उसके बाद पूरी फसल की अवस्था तक आप चाहें तो 5 सेंटीमीटर खड़ी जल रख सकते हैं। जड़ विकास एवं कल्ला निकलने के समय जल की कमी होने से कल्ला कम निकलता है जिसके कारण पौधों की संख्या में कमी आएगी और अंततः उत्पादन पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बूटिंग और पकने की स्थिति में 5 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा खड़ी जल रहने की अवस्था में जल की हानि होगी, जड़ की हानि होती है एवं लीफ में सेनेसेंस हो सकता है जिसके कारण बाली में भरे हुए दानों की संख्या कम होगी, मतलब आपका उत्पादकता पे असर पड़ेगा। समय के अनुसार हमको जल निकास की अवस्था भी रखनी चाहिए एवं कटाई के 10-15 दिन पहले हमको सिंचाई रोक देनी चाहिए। तो हम धान के जल प्रबंधन में इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारी जल की दक्षता बढ़ेगी।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि रोपाई की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल्ला कम आएगा। और भी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया आप सभी को, और आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों और बहनों की डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और धान में जल प्रबंधन आप अच्छे तरीके से करेंगे और धान की खेती बहुत ही अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: आगे और भी बातें होती रहेंगी हमारे किसान भाइयों से। अगले विषय, अगले चर्चा के साथ आप सभी से यूं ही मिलती रहूंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
7: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरी बेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम ज्योति D96 पंतशुभ्रा इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें,
10: अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
11: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी के साथ। हमारे ही पास के गांव में रामकिशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और इसी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।
2: सेहतिया भैया, सबसे पहले तो यही बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है?
3: बहुत अच्छा सवाल है आरजे उमा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है जो एक कीटाणु से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज़्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियाँ आदि।
2: सेहतिया भैया, ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है?
3: आरजे उमा, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है।
2: तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है?
3: हाँ उमा, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
2: अच्छा सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती।
3: नहीं आरजे उमा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता।
2: सेहतिया भैया, आम तौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है, क्या ये सही है?
3: नहीं आरजे उमा, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए।
2: अच्छा भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है?
3: हाँ, किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज़्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें एचआईवी है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है, या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों को नियमित रूप से जाँच करवानी चाहिए, भले लक्षण हो या ना हो।
2: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो कि उसे टीबी है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
3: सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे एक्सरे, खांसी की जांच। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
2: और भैया ये इलाज कितना लंबा चलता है?
3: आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि इलाज बीच में छोड़ना नहीं, बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है।
2: सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा हुआ है।
3: हाँ बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है, जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं।
2: अच्छा भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बातें तो साफ कर दी, लेकिन गांव में टीबी को लेकर बहुत सारी गलत बातें भी चलती रहती है, क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं?
3: हाँ बिल्कुल आरजे उमा, गलत फहमियां ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है इलाज के रास्ते में।
2: अच्छा भैया, बहुत लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, उसके पास मत बैठो, ये कितना सही है?
3: यह बिल्कुल गलत है आरजे उमा। टीबी छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े साझा करने से या खाना साझा करने से नहीं फैलती। टीबी सिर्फ हवा से फैलती है। जब कोई बिना इलाज वाला मरीज खांसता या छींकता है, इलाज शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद मरीज दूसरों के लिए खतरा नहीं रहता।
2: भैया कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि ये तो गरीबों की बीमारी है, ये भी सही है क्या?
3: यह भी गलत है, टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर, गरीब, जवान, बुजुर्ग, किसी को भी। हाँ, कमजोर और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ज्यादा और जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है।
2: भैया ये बात तो आपने साफ कर दी कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो भगवान की सजा है, ये ऐसा कुछ होता है?
3: यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे उमा। टीबी एक बीमारी है, जैसे बुखार, मलेरिया, डायबिटीज। यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं।
2: भैया और जो लोग इलाज कराते भी हैं, उन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं, पूरी इलाज नहीं करवाते।
3: यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ दी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप से लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। इसलिए पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है।
2: भैया लोग पूरा कोर्स करने की सोचते भी हैं, लेकिन उनके मन में डर का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे।
3: सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज मुफ्त देती है, जांच, दवा, फॉलो अप सब मुफ्त है। ऊपर से 1,000 रुपया प्रतिमाह पोषण सहायता भी मिलती है।
2: पर भैया कुछ लोग तो ये ही मान चुके हैं कि टीबी से बचा ही नहीं जा सकता, टीबी हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता।
3: बिल्कुल, यह सबसे गलत सोच है। हम फिर से कह रहे हैं, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए।
2: तो सेहतिया भैया, अगर हम एक लाइन में कहें तो
3: मैं यही कहूंगा कि टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए।
2: और भैया टीबी से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है?
3: बहुत कुछ कर सकता है। मरीज से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हिम्मत देना है, इलाज पूरी करने में मदद करना है, गांव में जागरूकता लाना है, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को पहुंचाना है, खुद निक्षय मित्र बनना है। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है।
2: अच्छा सेहतिया भैया, लोगों के मन में कोई बात तब अच्छे से बैठती है जब उन्हें कोई उदाहरण दिया जाए, आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो लोगों को हिम्मत दे।
3: हाँ उमा, हमारे जिले में शबनम नाम की एक महिला थी, उन्हें पहले टीबी हुआ था। उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ठीक लगने लगा। कुछ महीनों बाद बीमारी ज्यादा खतरनाक रूप से लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज्यादा दवाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निक्षय मित्र ने उनका साथ दिया। आज शबनम पूरी तरह से ठीक है और खुद लोगों को प्रेरित करती है कि इलाज पूरा करो।
2: यानी कि इलाज अगर पूरा किया जाए तो टीबी ठीक हो जाता है। अच्छा सेहतिया भैया, अंत में श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश?
3: हाँ आरजी उमा, ऐसे ही एक और मिसाल है हमारी टीबी चैंपियन रेखा। रेखा को जब टीबी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी देखभाल नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिलने लगे, यहाँ तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इस सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी, उन्होंने सोचा जो दर्द मैंने सहा वह और कोई न सहे। आज वह एक टीबी चैंपियन है। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं।
2: सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती है कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है।
3: हाँ उमा बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। और मेरा यह कहना भी है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह इलाज योग्य बीमारी है। जांच कराएं, इलाज पूरी करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी कहानियां भी सुनाई, जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही सीख भी मिलेगी। तो साथियों याद रखिए, न शर्माना न घबराना, टीबी की जाँच करवाना, सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: साथियों आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी बातें जानना जरूरी है। तो गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ, पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। नमस्कार, मैं हूं RJ अनु, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर हर रोज की तरह अपने वादे को पूरा करते हुए हम आ चुके हैं। वैसे दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं लेकर आती हूं खेती से जुड़ी उन्नत बातें, तो आज भी आप सभी के बीच ऐसी ही कुछ उन्नत बातें मैं प्रस्तुत कर रही हूं। वैसे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, खासतौर पर हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे, आज का विषय क्या होने वाला है? तो बता दें, आज का जो विषय है वो हमारा खासतौर पर अभी जो सीजन है वो है दलहनी फसलों का, और इसके बारे में किसान भाइयों को जानना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम आज हम लेकर आ रहे हैं, सीजन को देखते हुए लेकर आ रहे हैं। तो आज के जो विषय हैं वो है दलहनी फसलों में बीज शोध प्रक्रिया। आपको बता दें, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिजीत घटक। और इस विषय पर सबसे पहले, हम जाने से पहले सर से हम कुछ जो है सवाल जवाब करना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
7: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि दलहन में कौन कौन सी जड़ वाली बीमारियाँ होती हैं? अगर हमारे किसान भाई बीमारियों के बारे में जान लेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि वो अपनी दलहनी फसल जो है उनकी सुरक्षा कैसे करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी जड़ वाली बीमारियां हैं।
9: जी बिल्कुल, होता यूं है कि जो दलहन हम लोग फसल लगाते हैं तो उसमें कई तरह की बीमारियां होती है। तो सबसे पहले जब ये बिछड़ा के रूप में होता है तभी कई पौधे मरते हुए दिखते हैं
10: जी।
9: तथा जब पौधा बड़ा होता है तब भी इनमें कई तरह की बीमारियां लगती हैं। तो जैसे कि इसमें जड़ जड़ में लगने वाली बीमारियों के बारे में हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, जो कि आपके दलहन में बहुत ज़्यादा ही एक हानिकारक चीज़ है, जो कि आपके यील्ड को घटा देता है, फसल को घटा देता है, उत्पादन को घटा देता है। इनमें कई सारी बीमारियां हैं, जैसे कि उकठा रोग है जो कि सबसे ज़्यादा ही कॉमन है, बहुत कॉमन है उकठा रोग है। उकठा की तरह और भी कई बीमारियाँ हैं जो कि जड़ों में लगती है, जैसे कि कुछ सड़न बीमारियां होती है। आप लोग किसान भाई ऐसा देखे होंगे आपके खेत में कि जब आप चना या मसूर बोते हैं तो उसके बाद करीब करीब 3 सप्ताह से लेकर के 5 सप्ताह के बीच में, जब मौसम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, मान लेते हैं कि 25 नवंबर के पहले पहले तक, मतलब आपने अगर उसकी भी बुआई आखिर की अक्टूबर में या नवंबर के शुरुआत में की है तो आपके ये बीमारी दिख सकती है, जिसमें कि आपका पौधा पीला पड़ने लगता है और उसको जब आप उखाड़ेंगे तो उखाड़ने के बाद देखिएगा कि जैसे उसके जड़ों के नीचे मतलब जहाँ से आपका जमीन है उसके नीचे देखिएगा जड़ में जैसे एकदम पोलियो हो गया है। ऊपर का हिस्सा तो एकदम बिल्कुल ठीक है लेकिन उसका जो जड़ है, मुख्य जड़ है खासकर, वो एकदम ही पतला और सिकुड़ सा जाता है, जैसे एकदम पोलियो सा हो जाता है, उस तरह से एकदम दिखेगा। ये बीमारी शुरुआती दौर में ही ज़्यादा आती है जब आपका टेम्परेचर तापमान ज़्यादा रहता है। धीरे धीरे जब तापमान घटने लगती है, जो कि दिसंबर में मान लेते हैं, जब तापमान घटने लगती है तब ये बीमारी नहीं आती है। इसके अलावा बीच में फसलों के बीच में, जैसे कि आप आखिर में या बीच में हो, दिसंबर जनवरी हो या फरवरी के शुरुआत में ही हो, तो इसमें उकठा बीमारी बहुत होती है। उकठा बीमारी के पहचान यही है कि उसमें भी जो निचली पत्तियां हैं वो अपने आप झड़ने लगती है, पीला होने के बाद फिर वो भूरा हो जाती है और फिर वो झड़ने लगती है और धीरे धीरे पूरा पौधा ही पीला पड़ जाता है और वो पौधा फिर सूख जाता है।
10: अच्छा।
9: अपने सिरे से वो गिर जाता है या कभी कभी अगर वो खड़ा भी रहता है तो वो बहुत अच्छा उत्पादन नहीं देता है या बिल्कुल भी नहीं दे पाता है, अपना उत्पादन नहीं दे पाता है। तो और ये तीसरी एक बीमारी है जो कि आखिर में आती है, मौसम के आखिर में होती है, जबकि जिस समय की मौसम का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, आप ऐसा मान सकते हैं कि होली से 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले, यानी कि फरवरी के आखिर से लेकर के शुरुआती मार्च में के दौरान, जब तापमान ऊपर हो जाता है और ऐसी स्थिति में जब आपका जमीन में और ऊपर भी मॉइस्चर नहीं रहता है, नमी नहीं रहती है, नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ऐसे वक्त पर ये बीमारी बहुत जल्दी आती है, ज़्यादा आती है। ये इस बीमारी को आप जब उखाड़ेंगे, पौधे को उखाड़ेंगे तो उसमें जड़ों, एक तो जब आप पौधे को उखाड़ेंगे वो बहुत आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा, वो आपके अनुभव से ये बात समझ में आएगी,
10: मतलब मिट्टी को मजबूती से वो पकड़ नहीं पाता है,
9: बिल्कुल नहीं पकड़ पाता है। उसमें होता है ये है कि जो पौधे की छोटी छोटी जो सारी जड़ें होती है, जड़ें होती हैं, वो बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो बिल्कुल सड़ जाती है और वो जो छोटी शाखाएं होती है यही पौधे को एक्चुअली मिट्टी में पकड़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अब वो जड़ें सब खत्म हो जाती हैं तो जिस वजह से खाली आपका मुख्य जड़ ही बचा रहता है और जो कि सड़ चुका होता है। जब आप पौधे को उखाड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी से ऐसे पौधे उखड़ के बाहर आ जाएंगे। बाहर से तो लगेगा कि जैसे उखटा ही हुआ है लेकिन ये एक तरह से कोयला जैसे सड़ गलन है। मैं कोयला इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप उखाड़ेंगे पौधे को तो उसके जड़ के ऊपर में कोयला जैसे चूर्ण पड़ा रहेगा, ऊपर में एक काला काला जैसा दिखेगा, उसको अगर आप अपने हाथ में रगड़ेंगे तो भी आपको हाथ में काला काला कोयला जैसा चूर्ण आपके हाथों में आ जाएगा। तो ये 3 तरह की मुख्य रूप से जड़ में लगने वाली बीमारियां
10: हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर इसके पहचान की बात की जाए तो हमारे किसान भाई इसके मतलब कैसे आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि आपने जिन जिन रोगों के नाम बताए तो अगर वो पहचानना चाहेंगे तो कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण होंगे इसके?
9: ऊपरी तौर पर तो देखने में आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्योंकि तीनों पौधे एक ही जैसे दिखने में लगते हैं
10: जी।
9: सबसे बड़ी बात कि ऐसी बीमारी पूरे पौधे पूरे खेत में एक साथ नहीं फैलती है।
10: अच्छा।
9: या तो ये किसी गुच्छे में फैलती है कि जैसे 8-10 पौधे में हो गया, फिर ये धीरे धीरे अपनी एरिया जो है बढ़ाती रहती है, संख्या बढ़ाती रहती है, या ऐसा हो सकता है कि किसी खेत में एक सिरे से शुरू हुआ तो अगले सिरे में धीरे धीरे ये फैलती चली जाती है। दूसरी बीमारियों की तरह नहीं है कि एकाएक पूरा पूरा का पूरा खेत खराब हो गया, तो आपको पहले एक चेतावनी मिलती है प्रकृति द्वारा कि ये बीमारी आ चुकी है, तो आप उसमें संभल सकते हैं। तो पहला तो लक्षण यही हो गया कि एकाएक नहीं बढ़ेगा, वो किसी झुंड में आती है एक जगह पे और फिर ये धीरे धीरे फैलती है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि जब एक बीमारी आती है एकदम शुरुआती दौर में, जबकि बिचड़ा के रूप में आपका पौधा है, उसको आप उखाड़ेंगे तो देखिए जैसे पोलियो जैसा हो गया। दूसरा बीमारी है जो इसको उखटा कहते हैं, उसको जब आप उखाड़ेंगे पौधा, और पौधा तब काफी बड़ा हो चुका होता है, तो उसको उखाड़ने के बाद उसको अगर बीज से आप मुख्य जड़ को फाड़ेंगे तो उसमें देखिएगा कि भूरा भूरा, अंदर में भूरा भूरा जैसा आपको लाइनिंग दिखेगी, भूरा एक धारी दिखेगी, तो ये दूसरी तरह की पहचान हो गई। और तीसरी बीमारी ऐसी है कि जिसमें मैंने बताया कि जब आप उसको बहुत आसानी से उखाड़ेंगे, बहुत आसानी से वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसके जो छोटी जड़ें हैं वो सारी खत्म हो चुकी होती है, और दूसरी बात जो मुख्य जड़ है उसके ऊपर में कोयला जैसा चूर्ण आपको दिखेगा। तो ये तीन तरह की मुख्य पहचान।
10: अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप समझ जाएं कि आपके जो दलहन फसल है वो रोग से ग्रसित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, अब रोग से ग्रसित होने की बात हो चुकी है, तो अब रोकथाम की बात हम करते हैं। तो इन रोगों से जो हमारे किसान भाई हैं वो दलहनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं, अपने फसलों को?
9: इसके लिए बीज का शोधन ही सबसे अच्छा उपाय है। अच्छा। और सबसे सस्ता उपाय है, क्योंकि एक बार जब ये बीमारी लग जाएगी, क्योंकि आप किसान भाई जान रहे हैं ये बीमारी जड़ों के नीचे हो रही है, मतलब मिट्टी के नीचे हो रही है, जड़ों में लग रही है, तो आप ऊपर से कुछ छिड़काव करके उस जड़ों को ठीक नहीं कर सकते। तो इस वजह से जड़ को निकलने से पहले ही बिल्कुल जब बीज है तो बीज को ही शोधन करना चाहिए, और उसके बाद इसको खेतों पर ले जाके इसको लगाना चाहिए।
10: अच्छा, तो डॉक्टर साहब बीज शोधन की बात यहाँ पर आपने की है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बीज शोधन की सही प्रक्रिया क्या होती है?
9: हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काम का चीज है। किसान भाई इनको बहुत ध्यान से सुने इस चीज को, क्योंकि आप लोग भी बीज शोधन करते हैं, बहुत समय से करते आ रहे हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो शायद सही तरीके से कभी कभी नहीं करते हैं। हम लोग भी जिस जिस खेतों में जाते हैं, किसान लोगों से हम लोग इंटरेक्ट होते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी बहुत सारे किसानों से हम लोग मिलते हैं, तो बाद में यही पता चलती है कि उनका तरीका गलत होता है। करते तो ठीक है, उद्देश्य सही है, लेकिन तरीका गलत है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बीज को शोधन करने के लिए आप दो तरीके का शोधन कर सकते हैं, जो कि सबसे आसान है। एक तो केमिकल से, रसायन से, और दूसरा है बायो एजेंट से, जिसको आप जैव जीवनाशी बोलते हैं इससे।
10: अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, क्या केमिकल से जो बीज शोधन किया जाता है, क्या उसके कुछ डिसइफेक्ट या फिर दुष्प्रभाव भी हैं?
9: दुष्प्रभाव लंबे समय में अगर आप एक ही तरह का केमिकल अगर इस्तेमाल करेंगे, रसायन इस्तेमाल करेंगे लंबे समय तक, एक ही रसायन हर साल वही दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं ये हमारे मिट्टी को तो खराब करती ही है। इसी वजह से अभी नए समय में जो हम लोग बायो एजेंट या जैव जीवनाशी की बात बोलते हैं, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन इसमें अंतर है, फर्क है। जब आप रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखता है, आपको तुरंत उसी सीजन में आपको उसका असर दिखेगा, लेकिन जैव जीवनाशी का इस्तेमाल जब करेंगे तब आपको बहुत सारी और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और ये होते होते कम से कम 3 से 4 साल शायद ले लेगी, जब आपका पूरा खेत ठीक से आपकी बात सुनेगा, जब आप जैव जीवनाशी की बात करेंगे तो।
10: तो सही मुझे लगता है जैव जीवनाशी, अगर बहुत जल्दी अगर फसल की जो उत्पादकता पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीज शोधन के लिए रासायनिक तरीके से ही सही होगा।
9: हाँ, रसायन से आप जा सकते हैं। आपको मैं दोनों प्रक्रिया को थोड़ा सा विस्तृत में बताना चाहूंगा।
10: जी जरूर बताएं।
9: जैसे कि रसायन को मैं पहले शुरू कर रहा हूँ, आप लोग किसान भाई एक बात का ध्यान रखिए, आप लोग जब बीज शोधन करते हैं तो बीज शोधन करने के बाद आप तुरंत ही खेत में ले जाके, या खेत में ही यूं कहें कि आप लोग खेत में ही बीज का शोधन करते हैं, और आधा घंटा या एक घंटा पहले ही बीज का शोधन करते हैं और तुरंत ही उसको फिर बो देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि जब बीज शोधन करते हैं, एक तो वो बीज शायद सही से सूख नहीं पाता है, और दूसरी बात उसके आवरण पर एक आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक आप आवरण दे रहे हैं बीज के चारों तरफ लगने के लिए, तो उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि बीज भी सही तरीके से उसको ले सके और फिर अपना परफॉर्म कर सके खेत में, मिट्टी में। तो बीज शोधन करने के लिए एक तो तमाम तरीके का केमिकल है, रसायन है, उपलब्ध है बाजार में। तो मैं आपको कुछ केमिकल का नाम बताना चाहूँगा, जैसे कि कार्बेंडेजिम है, थीरम है, या खाली कार्बेंडेजिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास दोनों का है, उपलब्धता है, थीरम है और कार्बेंडेजिम है, तो आप थीरम चने के लिए अगर बात करें तो थीरम आप 2 ग्राम लीजिए और कार्बेंडेजिम 1 ग्राम लीजिए। 1 किलोग्राम बीज को शोध करने के लिए 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडेजिम कहा मैंने, इसको लेकर के आप बीज में मिला सकते हैं। मिलाने के बाद मतलब उसमें कुछ बूंद छिट्टा दीजिए पानी का, और फिर बढ़िया तरीके से मिला लीजिए, जितना कि उसमें चिपक जाए इतना ही पानी दिया जाए। ऐसा नहीं, इतना पानी नहीं देना चाहिए कि वो बहने लगे। और ये काम आपको कम से कम रात में कर लेना चाहिए। अगर अगले सुबह में आपको उसकी बुआई करनी है तो रात में कर लीजिए, तो आपको 10-12 घंटे आराम से मिल जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि बीज को काम करने के लिए बेहतरीन मौका मिल पाएगा। तो आपको इसको शोधन करने के लिए सीधी सीधी बात है, कोई भी प्लास्टिक का ट्रे हो घर में, या कुछ इस तरह का प्लास्टिक का बर्तन हो, पात्र हो, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात, हाथ में हमेशा ग्लव्स वगैरह पहननी चाहिए, क्योंकि नाखून सबके हो सकता है उस समय कटे हुए ना हो, या हम लोग खाना खाते हैं नाखून कटे होने के बावजूद भी हमारे नाखून में या साइड में उंगलियों में ये दवाई जो है, दवाई कह रहे हैं एक्चुअली में ये जहर है।
10: हाँ, वैसे केमिकल्स हैं तो डेफिनेटली इससे थोड़ा सा हमें अपने आप अपने हाथों को थोड़ा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि
9: बिल्कुल
10: उसी हाथों से हम खाना भी खाते हैं,
9: हाथों से खाना खा रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम अपने शरीर को या बच्चों के शरीर को कहीं पे हम लोग टच कर रहे हैं, बच्चों का शरीर का जो त्वचा है और ज्यादा मुलायम और सेंसिटिव होता है, तो उसमें दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो आप लोग ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक का पॉलिथीन बिहार में बैन है, बंद हो गया है। तो आप दूसरा कपड़ा भी अंदर में आ जाएगा, दूसरा कोई भी सामान जैसे बाहर से आ रहा है तो उसका भी कोई खोली इस तरह का अगर मिलता है तो आप उसको लेकर के हाथ का कवर में कर सकते हैं, या एक बार आप ग्लव्स खरीद भी सकते हैं, उसमें कोई बहुत महंगी ग्लव्स का नहीं आता है, रखे रहिएगा आपको बार बार वो काम आता रहेगा। तो उसको लेकर के आप सीधे प्लास्टिक के बर्तन के ऊपर, ट्रे के ऊपर में, मैं 1 किलोग्राम बीज की बात कर रहा हूँ, आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। अगर चना है तो जैसे मैंने बोला 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडेजिम। अगर आपके पास थीरम उपलब्ध नहीं है, खाली कार्बेंडेजिम है तो भी, जो कि बहुत ही कॉमन है, सब जगह आपको मिल जाता है, तो कार्बेंडेजिम अगर आप ले रहे हैं तो 2.5 ग्राम आप कार्बेंडेजिम लीजिए और इसको पानी की बूंदों के साथ उसमें मिलाइए, बहुत बड़े तरीके से मिला लीजिए। शाम में मान लीजिए 8 बजे हो, 7 बजे हो, ये काम कर लीजिए। फिर रात में खाना खाने के बाद जब आप सोने जा रहे हैं 9 बजे 9:30 बजे, तब एक बार और बढ़िया से पलटाई कर दीजिए।
10: अच्छा।
9: और रात भर में उसको सूखने दीजिए, सुबह उठने के बाद फिर से एक बार उसकी पलटाई कर दीजिए। जब जब आप पलटाई कर रहे हैं ये ध्यान में रहे कि आपके हाथ में ग्लव्स या इस तरह का कोई प्रोटेक्टिंग आवरण होना चाहिए। तो करने के बाद इसको बढ़िया से जब ये सूख जाएगा, होता क्या है किसान भाई लोग जब इसको इस्तेमाल करते हैं खेत में, उसमें नमी रह जाती है और उस नमी रहने के बाद वजह से होता क्या है कि उस जगह से वो दवाई हट जाता है, जो रसायन है वो हट जाता है, और ऐसी जगहों से फिर जीवाणु या और दूसरे रोग जनक है जमीन में जो कि पाए जाते हैं नेचुरली, वो आपको अटैक कर देते हैं वहाँ पे बिचड़ा में। तो अब हो जाएगा क्या, बहुत बेहतरीन तरीके से जब सूख जाएगा और आपको 10-12 घंटे का समय भी मिल गया, तब ऐसे बीजों को ले जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खेत में सीधे। अब मैं दूसरी विधि पर आता हूँ, जो कि है जैव जीवनाशी का इस्तेमाल करके आप कैसे बीज शोधन कर सकते हैं। किसान भाई आप लोग ट्राइकोडर्मा नाम से सभी लोग जानते होंगे ट्राइकोडर्मा, और नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए, ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है, फफूंद है बेसिकली, ये फफूंद है और लेकिन ये जैव जीवनाशी भी है, दूसरे जो रोग जनक है उनको मारते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको कम से कम इसको 12 घंटा 14 घंटे का समय देना चाहिए। जैसे कि ये इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो शाम में 4 बजे, अगर कल आपको बुवाई करनी है तो आज शाम में 4 बजे इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा। ये आपको किसी भी दुकानों में भी मिल जाती है, हमारी यूनिवर्सिटी में मिलती है, और ऐसी भी कोई जो बिलीव करने वाली संस्थान है ऐसी जगहों पे मिल जाएगी। जैसे अगर आप वेस्ट बिहार में हैं तो आपके नज़दीक में मऊ है, मऊ में एक इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊ में है, यूपी हो गया वो, आप वहाँ से ले सकते हैं। बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ

0: दुकानदार आपके बिलीव का हो, दूसरी बात है ये जैव जीवनाशी है, ये इसमें क्या है कि जीवित ऑर्गेनिज्म है, जीवित आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसको जब आप लेंगे तो दुकान से जब ले रहे हैं तो ये देखिए कि ये कहीं बाहर में तो नहीं रखा हुआ था ये पैकेट, जहाँ पे धूल धक्कड़ धूप भी आ रही है, धूल भी आ रही है, ऐसी जगहों से उठाकर दे रहा है, तो ऐसी प्रोडक्ट को, ऐसी पैकेट को लेने से नहीं लेना चाहिए आप।
1: अच्छा
0: अंदर में अगर फ्रिज में रखा है तो सबसे अच्छा है, या कहीं छाँव में ठंडी जगहों पर रखा है तो सबसे अच्छा है, तो ऐसी जगहों से अगर दे रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी बात, इसमें एक्सपायरी डेट हमेशा चेक कीजिए, एक्सपायरी डेट उसमें दिया रहेगा, क्योंकि ये कोई साधारण केमिकल नहीं है, रसायन नहीं है जो आपको लंबे समय तक इसकी रहेगी। तो ट्राइकोडर्मा जो है एक जैव जीवनाशी है, जीवित ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें एक्सपायरी डेट को हमेशा चेक कीजिए कि उसमें एक्सपायरी डेट कब ख़त्म हो रहा है। जब ख़त्म हो रहा है उससे अगर 1 महीने पहले तक भी आप ले रहे हैं का सामान तो बहुत अच्छा ही है, वो काम करना चाहिए। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को ले लिए, सबसे पहली जो कॉशन आपको करना था कि जिस दुकान से ले रहे हैं यहाँ पे क्या क्या आपको सावधानियाँ लेनी थी वो आपने ले लिया, अब आप इसको घर ले आए, अब आपको कल इसको लगाना है तो आज आप शाम से इसकी प्रक्रिया शुरू कर लीजिए। तो इसको लेने के लिए 1 लीटर पानी में आप 50 ग्राम या 100 ग्राम तक गुड़ लेकर के उसको बढ़िया से उबाल लीजिए पानी में, और पानी को फिर पूरा ठंडा कर लीजिए। उबालने के बाद गुड़ मिल गया 50 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर, 50 से 100 ग्राम तक लेकर के फिर उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद फिर अब इस पानी का इस्तेमाल आप वो छिट्टा देने के लिए या इस काम बीज शोधन के लिए करेंगे, जिसमें कि आप पैकेट से निकाल रहे हैं। अगर चना है, माने कि बड़ा सीड है, बड़ा बीज है, तो आप इसमें 8 ग्राम लेंगे, और अगर मसूर है तो आप 5 ग्राम या 4 ग्राम लेंगे। अगर चना है, बड़ा बीज है, तो 8 से 10 ग्राम, और अगर मसूर है, छोटी बीज है, तो 4 से 5 ग्राम आप ट्राइकोडर्मा लेकर के, पाउडर लेकर के 1 किलो में मिलाइए, और उसमें वो गुड़ वाली पानी डाल के उसमें बढ़िया से मिक्सअप कर लीजिए, मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको वही विधि अपनानी है कि उसमें 2-3 बार सोने से पहले मिला देना है, और बढ़िया से वो मिल जाना चाहिए। आप लोग किसान भाई ऐसे इसको समझिए, क्योंकि ये जीवित प्राणी है और ये सीधे आपको पैकेट से निकलकर कहीं फ्रिज में रखी थी या दुकान में रखी थी, और पैकेट से निकलकर आप उसको बीज में डालें, और बीज में डालने के बाद आप उसको खेत में ले जा रहे हैं, तो उसको कितनी जगह पे बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, जब गर्मियों के दिनों में आप लोग कभी बैंक वगैरह में जाते हैं, बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर AC चलती रहती है, तो आप
1: जी
0: AC के चेंबर में घुसें और वहाँ पे 10 मिनट आधा घंटे का जो भी काम हुआ, और फिर जब आप अचानक से बाहर निकलते हैं तो कैसा दिक्कत होता है अचानक से निकलते हैं। तो हम लोग तो बड़े प्राणी हैं, हम लोग तो इंसान हैं, हम ही लोग को दिक्कत होता है, और आप सोचिए ये कितने सूक्ष्म जीव है जिसको कि 2-3 तरह के बदलाव से होकर के गुजरना पड़ रहा है, और फाइनली आपको फिर मिट्टी में जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए, इसको करने के लिए इसको कम से कम 12 घंटा 14 घंटा या और ज़्यादा अगर वक्त दे पाए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि कैसे ये शोध प्रक्रिया, कौन सी शोध प्रक्रिया है और क्या आपको सावधानी बरतनी है जब आप बीज खरीदने जाते हैं बाज़ार। तो और साथ ही यहाँ पर बीमारियों के बारे में भी हमने जाना कि दलहनी फसलों में कौन कौन सी जड़ वाली बीमारियाँ हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए, साथ ही उनका रोकथाम कैसे किया जाए। तो आप सभी को मैं बता दूँ किसान भाइयों, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर अभिजीत घटक, और ये थे असिस्टेंट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो आशा करूंगी कि आप सभी, जो आज बताया गया, आप सभी को हमारी ओर से 90.8 FM ग्रीन की ओर से आप उसे फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, और जब भी आप बीज खरीदने जाएंगे तो जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं आप उसे सोच समझकर ही खरीदेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, अगले दिन फिर आपसे मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए यूं ही रहें खुश और करें अच्छी खेती, बने सफल के साथ। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें।

0: भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
3: See you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
11: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं, आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
13: हर घर सूर्य घर।
14: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT presents the audio book Khel Yog, textbook of physical education and well-being for class 5.
1: Chapter 3, Strike the Object, page number 40. Striking an object while playing helps us gain various types of learning in an enjoyable way. Various racket sports are emerging nowadays. For example, pickleball, ball badminton, squash, etc., along with the more familiar badminton, table tennis and tennis. Learning to strike an object with a racket or striking surfaces can be fun. Let's try. On the bottom right of this page, there is an image in which a boy is in a striking position holding the racket. Page number 41. Striking the object with a bat, racket, stick. Various steps of striking an object with racket is depicted via images alongside. Let me explain these steps one by one. Step number 1. Hold the racket and stand sidewards with the knees slightly bent. Step number 2. Anticipate the object and move towards it. Step number 3. Reach and swing the racket. Rotate shoulders and hips. Step number 4. Hit the object while it's in motion. Step number 5. After hitting, follow through as given in the picture. Notes for the teacher. Ensure the following while the children practice hitting skills. 1. Stance. Stand sidewards. Legs are shoulder width apart. Ready to approach the object. The eyes are always on the object. 2. Grip. Firmly with the top hand and loosely with the bottom hand for direction. 3. Hitting. Step forward on the front foot. Swing and rotate the hips and shoulder while hitting. Keep eyes on the object. Extend arms fully at the contact point and hit. 4. Follow through. Swings the upper body along with the racket, which goes around the body and finishes over the shoulder. Page number 42. Receiving the object with a racket. Various steps of receiving an object with racket is depicted via images on this page. Let me explain these steps one by one. Step number 1. Stand with knees slightly bent and the racket facing the direction of the incoming object. Step number 2. Bend forward and hold the racket in both hands. Keep the hands gentle on impact. Notes for the teacher. Ensure the following while the students practice receiving with an object. 1. Stance. Keep the feet shoulder width apart, knees slightly bent, and the body facing the object and ready to approach. 2. Grip. Holds the racket gently with both hands. 3. Anticipate. Predict the path of the object. Approach the object and keep the body low and aligned with the body accordingly. 4. Receive. Align in line with the approaching object and receive, keeping your hands gentle. Page number 43. BM13 handle with care. Required material: rackets and tennis balls. On the top left of this page, there is a big and beautiful school building. This school building is completely surrounded by several beautiful plants. How to play? Mark a starting and finish line 10 meters apart from each other. Divide the students into groups of 5 and ask them to stand in a line. Students in the front will stand on the starting line with a table tennis racket or a hardboard and a plastic ball. On the sound of the whistle, they will start walking and tossing the ball until they reach the finish line. While returning, hold and balance the ball on the racket or hardboard and come back to the finish line. Other students will follow till all have completed the activity. On the center right of this page, there is an image in which two girls are holding the table tennis racket. Purpose: to develop concentration and balance. Variation: vary the distance between the start and finish lines. Vary the actions, such as balancing multiple balls, etc. Vary the tapping with forehand, backhand, and mixed. Circle time: identify the things that distracted you from concentrating on the task. What did you do to overcome them? Page number 44, BM 14, balloon strike. Required material: balloons or small sized ball. On the top left of this page, there's a big and beautiful school building. This school building is completely surrounded by several beautiful plants. How to play? Mark a rectangular playing area with a goal at both ends. Make two teams, each consisting of 4 to 5 students. Give one balloon to any team and they have to put the balloon in the opponent's goal. Every time, the student has to toss the balloon and strike it to pass the balloon to their teammates. The team with the most goals will win the match. On the bottom right of this page, there is an image in which first half of the rectangular area is being marked with a goal at the end. 4 students are standing in various positions. 2 students of the same team are wearing yellow t-shirt and red pants, and 2 students of other team are wearing red t-shirt and green pants. Page number 45. Purpose: develop coupling movements, hitting while running, with cooperation among teammates. Variation: vary the size of the playing area. Replace the balloon with softballs. Did you know? Spatial sense is important, that it helps in recognizing space, shape, sizes, positions, directions, and movements, and how objects relate to oneself and others. On the bottom left of this page, there is an image in which second half of the rectangular area is being marked. A student wearing red t-shirt and green pants is trying to catch the balloon. Circle time: discuss the difference in the path of the balloon at different contact points after tossing and hitting. Very high above the head, just above the head in front, or right of the head. Page number 46, BM 15, catch to win. Required material: cricket bat and tennis ball. On the top left of this page, there's a big and beautiful school building. This school building is completely surrounded by several beautiful plants. How to play? Divide the students into two teams, A and B. Mark a square as required and ask team A to take position inside the square. Team B will stand 10 meters from the square with one student with a bat and one with ball. On the bottom of this page, there is an image that depicts a square which is being marked on the playground, in which 5 students are placed in various positions and postures inside the square. One is outside the square. One student inside the square is trying to catch the ball. Page number 47. On the blow of the whistle, one student from Team B will throw an underarm ball to the student with the bat. The student will hit the ball into the square. If Team A catches the ball, they will score 1 point. If the ball falls on the ground, then Team B will score 1 point. Students take turns to hit the ball one by one, and each student will hit the ball at least 5 times before changing positions with Team A. The team with the maximum points will win the match. Purpose: to develop hand-eye coordination, accuracy, and range of striking with a sense of force. Variation: vary the size of the square and the distance between students. Vary the size of the ball or the hitting apparatus. Hit the ball high, straight or low to add variations. On the bottom right of this page, there is an image in which 4 students are holding bats in their hands and they are placed at various positions. Circle time. Discuss the difference between striking the ball and hitting the ball high, straight or low. Page number 48. BM 16. Corner tennis. Required material: racket and tennis balls. On the top left of this page, there is an image in which there is a rising sun surrounded by beautiful clouds. Many beautiful houses are also there with attached solar panels that are surrounded by several trees. How to play? Mark a big square and divide it into 4 zones. Place 4 students at each corner of the square. A student at zone 1 will hit the ball so that it bounces into the zone of any other student. The student in whose zone the ball bounces in will try to hit it in any other student's zone after 1 bounce. If a student fails to hit or land the ball in the other student's zone, they will leave the racket and give it to the students waiting for their turn. Did you know? Playing outdoor games improve motor skills, balance and coordination. Page number 49. On the top of this page, there is an image that depicts a big square of green color which is being marked on the ground, and it is divided into 4 equal parts and they are numbered as 1, 2, 3 and 4. 4 students are standing outside on each corner of this square holding rackets in their hands. Purpose: to develop accuracy and anticipation with quick decision making. Variation: use your palm to hit the ball instead of the racket. Vary the size of the playing area. Vary the size of the ball. Circle time. Discuss the factors that you will keep in mind to reach the ball. For example, the path, bounce, and the speed of the ball. To hit the ball, it is vital to judge the position of the body and find an easier angle to hit. Page number 50. BM-17, hit and cover. Required material, a long stick or bat and tennis balls. On the top left of this page, there is a big and beautiful school building. This school building is completely surrounded by several beautiful plants. How to play? Divide the students into equal teams and mark a square of 10 into 10 meters with three bases and a smaller square at one corner. One team will bat and the other will field. Place three balls in the smaller square and the first batter will hit all the balls quickly. The batter will run after hitting the third ball and try to cover as many bases. The fielders will try to gather the balls and quickly put them back in the small square. The batting team will get points equal to the bases covered by the batter. After this, the next batter will come and his points will be added to the score. Once everyone has battled in the batting team, the roles will be reversed. The team with the maximum score at the end will win the game. Page number 51. On the top of this page, there is an image in which a big square is marked on the ground and on one of the corner of this big square, a smaller square is drawn outwards. Purpose: to develop upper body strength, speed and hand-eye coordination. Variation: vary the size of the balls, vary the size of the field. Circle time: this activity will help you develop upper body strength. Discuss other activities that involve upper body movement to strengthen your muscles. Page number 52. BM-18, hidden ball. Required material: stick, tennis balls, soft cushion balls. On the top left of this page, there is an image in which there is a rising sun surrounded by beautiful clouds. Many beautiful houses are also there with attached solar panels that are surrounded by several trees. How to play? Mark a circular area with a chair in the middle and a ball placed under the chair. 6 to 7 students, each with a tennis ball and a stick in their hand, stand outside the marked circle. The aim of each student is to hit the ball under the chair and move it to the other side of the circle. The students will retrieve balls from other students and try to hit the ball under the chair. Did you know? A game played with a stick and a ball called hockey has given India 8 Olympic gold medals. Page number 53. On the top of this page, there is an image in which a circular field is there. There are 6 students that are standing in a circle holding sticks in their hand. One of them has hit the tennis ball with a stick and it passes under the chair. Purpose: to develop sense of coordination and improve accuracy when hitting a target. Variation: vary the size of the circle. Place a goalkeeper to guard the center. Circle time: how did you adjust your position while retrieving the ball hit by your teammates?
0: Khel Yog. You were just listening to this audiobook. textbook of physical education and well-being for class 5. Narration, Meha Kheda. Sound recordist, Manju Kumari. Assistance in production, Chetna Sharma. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: Namaste class. टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर,
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ एफएम ग्रीन, और अभी हम सुन रहे हैं, लेकर आए हैं आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में जानेंगे धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं इस विषय को लेकर डॉक्टर अर्णब रॉय चौधरी, जो कि एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से हैं। तो आज विशेष जानकारी इस विषय पर देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब।
12: नमस्ते मैडम।
10: तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में खरपतवार नियंत्रण क्यों करना चाहिए?
12: देखिए, खरपतवार ऐसा चीज़ है जिसका जो डैमेज है, ये आमतौर से किसान भाई अपनी आँख से देख नहीं पाते। जैसे हमारा कीड़ा होता है, वो काट देते हैं, फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, तो ये मतलब किसान भाई डायरेक्टली देख पाते हैं अपने आँख से, या कोई भी बीमारी होती है उसको देख पाते हैं। लेकिन जो खरपतवार होता है, इसका जो डैमेज है, ये मतलब खुले आँख से कई बार नहीं दिखता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए हम कहना चाह रहे हैं सब किसान भाइयों को कि खरपतवार एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारा सबसे अधिक करीब 33-50% की जो उपज है वो ख़राब हो सकता है, अगर आप ठीक से इसको नियंत्रण ना करें तो। जबकि हमारा जो कीड़ा मकोड़ा से केवल 26% हो सकता है, या जो बीमारी है उसमें 20% हो सकता है, लेकिन इसका करीब करीब दोगुना, यानी कि करीब 33-50% लॉस हमारा हो सकता है उपज में, अगर हम खरपतवार को नियंत्रण ना करें। क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं, हमारा जो फसल के साथ वो अपना उसका फसल का जो पोषक तत्व है वो भी वो खा जाते हैं अपने जड़ से, उसका जो उसके लिए जो जगह है फसल को मतलब बड़ा होने के लिए जो जगह है, जो स्पेस है, उसको वो उसमें भी वो मतलब दखल अपना कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो मतलब हमारा फसल के जगह पे वो खरपतवार वो अपना जड़ से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारा जो फसल को जो बड़े होने में ना तो उसको ठीक से न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व मिलता है, ना उसको बड़ा होने में उसको जगह मिलता है, ना तो उसमें उसको बड़ा होने में लाइट मिलती है। तो ये सब के कारण हमारा उपज काफ़ी हद तक मतलब डैमेज हो प्रभावित होते हैं। तो इसलिए खरपतवार नियंत्रण हमको धान में अवश्य अवश्य करना चाहिए
10: जी। तो धान में खरपतवार से बचाव के क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए किसान भाइयों को?
12: तो किशन भाई देखिए, कुछ ऐसे तो है, हम सीधे तौर पे हम लोग जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण से हम लोग बोलते हैं कि अगर हम जैसे हम कोई भी बीमारी होती है, हम सीधे तौर पे पहले दवाई नहीं लेते, जो एलोपैथिक दवा जो अंग्रेजी दवा जो मिलते हैं वो सीधे जाके नहीं लेते हैं, पहले जो घरेलू उपाय कुछ ढूंढते हैं ताकि हमारा बीमारी ठीक हो जाए। ऐसे ही हमारा खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ सावधानियां हैं। एक तो है कि हम फर्स्ट यही कहेंगे कि आप कोई जाने पहचाने दुकान से या कोई जाने पहचाने विश्वविद्यालय से आप सर्टिफाइड सीड, केवल मात्र सर्टिफाइड सीड्स ही लें, जहाँ पे आपको कोई तरह का मिलावट, कोई अन्य फसल का या कोई खरपतवार का जो बीज होता है उसका कोई मिलावट ही ना रहे। दूसरा चीज़ है, ये फसल को लगाने के पहले आप उसको जो नमक पानी में घोल बनाकर उसको सीड उसमें डाल दे, बीज उसमें डाल दे, ताकि जो हमारा हल्का सीड्स है, जो खाली सीड्स है, जो या वीड्स का जो सीड्स है वो ऊपर में आ जाए, और जो एक्चुअल जो धान का जो सीड है वो भारी भरा हुआ सीड है वो नीचे चला जाए। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप 20 ग्राम नमक लीजिए, 1 लीटर पानी में उसको मिश्रण बनाइए और उसको घोल में उसमें सारा सीड्स डाल दीजिए। डाल देने के बाद जो हमारा जो खराब सीड्स होगा, जो खरपतवार दूसरा सीड होगा ऊपर आ जाएगा, उसको पहले निकाल लीजिए। उसके बाद जो बचेगा जो नीचे चला जाएगा उसको आप अलग से बाल्टी में डालिए, फिर से अच्छा पानी से, जो मीठी पानी से, उसको अच्छा से धो के सुखा के फिर उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर हम खेत में जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या कोई जो गोबर खाद जो है, देसी खाद जो है वो डालते हैं, तो हमको सड़ा हुआ एकदम से सड़ा हुआ गोबर का खाद ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर सड़ा हुआ नहीं होगा उसके साथ हमारा जो कई जो खरपतवार के बीज है उसमें मिला हुआ रहता है, तो वो खेत में आ जाएगा, वो खामोखा आपको खेत में फसल के साथ वो कंपटीशन में आ जाएगा और फसल का उपज को कम कर देगा। नेक्स्ट है कि अगर धान का खेत, आप एक ही खेत में बार बार धान को लगा रहे हैं, तो हर एक 3 साल के बाद गर्मी के सीजन में, धान को लगाने के पहले करीब अप्रैल मई महीना में आपको एक बार गहरी जुताई करनी चाहिए, डिस्क से गहरी जुताई करिए, या हाथ से भी कर सकते हैं तो अगर छोटा खेत है तो उसमें क्या है कि हमारा जो मिट्टी के नीचे हमारा जो मोथा का जो उसमें जो मोथा का प्रोपाग्यूल्स हम लोग बोलते हैं, मतलब जिससे वो मोथा का जो तना जो निकलता है वो जो नीचे छिपे हुए होते हैं वो ऊपर आ जाएगा, और एकदम जो कड़ी धूप में वो आ जाएगी तो वो सूख जाएगा और हमारा जो मोथा का जो दुष्प्रभाव है वो काफ़ी हद तक वो कम हो जा सकता है। और सही फसल चक्र जो है वो अपनाना है, धान के साथ कोई भी पल्स लेके, मतलब दलहनी फसल लेके या तिलहनी फसल लेके, ताकि क्या है कि हमको जो बार बार एक तरह का फसल लेने के लिए जो हमारा खेत में जो उसका जो खराब प्रभाव है वो कम हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर क्रॉप रोटेशंस। और दो ऐसे जो चीज़ है ये हम बोलेंगे वो काफ़ी हद तक आपको ये खरपतवार को कम करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं स्टेल सीड बेड टेक्निक, यानी कि बासी बीज थली, बासी स्टेल का मतलब हो गया बासी। इसके लिए क्या करेंगे, हम खेत को पहले तैयार कर लेंगे, जिस खेत में हमको धान को लगाना है, रोपना है, उसको खेत को तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद उसको हल्का से इरिगेशन दे देंगे, हल्का से सिंचाई दे देंगे, या थोड़ा सा अगर बारिश पड़ जाए तो उसको हम, बारिश पड़ने के बाद उसको खेत को हम कुछ नहीं करें, उसको हमको वैसे ही थोड़ा सा गीला खेत, तैयार हुआ गीला खेत हम उसको रख देंगे, ताकि ताकि क्या है कि उसका मिट्टी के नीचे जो भी आपका खरपतवार का सीड है वो जर्मिनेट करके उसका अंकुरोद्गम होके वो ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ऊपर वो आ जाएगा आप उसको कोई भी हर्बिसाइड्स, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स जैसे पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट करीब एक टैंकी मतलब 15 लीटर पानी में 90 ml या 100 ml उसको डाल के आप छिड़काव कर देंगे तो सारा जो खरपतवार है वो मर जाएगा जो ऊपर आ गया है। उसके बाद एक दिन वेट करके आप खेत को रोपाई के लिए तैयार कीजिए, फिर से तैयार कीजिए, फिर से तैयार करके आप उसमें खेत को इस्तेमाल कीजिए। इसको बोलता है स्टेल सीड बेड टेक्निक, यानी कि बासी सीड बीज थली। नेक्स्ट एक टेक्निक है उसको बोलते हैं हम लोग ब्राउन मैन्योरिंग टेक्निक। ब्राउन मैन्योरिंग मतलब आप धान के साथ हमारा जो कोई भी जो हरी खाद, जैसे हमारा सेसबिनिया जो सुबह बोल हम लोग धैंजा बोलते हैं, धैंजा का सीड मिला के आप लगा दीजिए। लगाने के बाद वो जैसे ही थोड़ा सा घुटनों के ऊपर आ जाएगा उसका करीब, आप ये लगाने के लिए करीब आपको थोड़ा सा हायर मतलब ज़्यादा बीज दर से लगाना पड़ेगा, करीब 40 से 50 केजी पर हेक्टर के हिसाब से, यानी कि 25 से 30 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप अगर लगा दीजिएगा। तो धैंचा क्या होगा, अब थोड़ा सा जैसे ही उसमें बारिश की पानी, जैसे अप्रैल मई महीना में काल वैसे कि यहाँ पे बिहार राज्य में होता है, उसका जो बारिश से वो जो पानी आता है तो मिट्टी में जो नमी आ जाएगी उससे वो ऊपर आ जाएगा, उसका अंकुरोद्गम होकर ऊपर आ जाएगा। तो करीब ये 25-30 दिन में करीब घुटनों के बराबर इसका लंबाई हो जाती है, तो उतना दिन तक रोके रहिए। उसके बाद उसको कोई भी आप दो तरीक़े से कर सकते हैं, कोई भी अगर खरपतवार नासी से उसको एकदम जला दे सकते हैं जैसे ग्लाइफोसेट, या जैसे मैंने बोला कि 15 लीटर पानी में 90 ml डालकर, या हल्का सा डिस्क चला के, डिस्क प्लाऊ चला के जो मतलब कल्टीवेटर चला के या डिस्क प्लाऊ चला के मतलब जुताई करके उसको मिट्टी में मिला दीजिए। तो इसमें क्या होगा, एक तो है मिट्टी में आपका जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो जो जैव जैव जो अंश है वो मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगी, और उसके साथ साथ वो जो आपका जो खरपतवार का जो सीड है उसको काफ़ी हद तक वो मतलब रोक, उसको ऊपर आने में काफ़ी हद तक उसको रोक लेगी। तो ये है ग्रीन मैन्यूरिंग या ब्राउन मैन्यूरिंग टेक्निक। तो ये कुल मिला के ये जो 6-7 जो तरीका है ये अगर हम लोग अपनाएंगे तो हमारा काफ़ी हद तक हमको रासायनिक जो प्रयोग कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा मिट्टी मतलब खरपतवार भी कम हो और मिट्टी में ज़्यादा दवाई ना देना पड़े, किसान भाई का जो लागत है वो कम हो जाए और हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब ना हो।
10: इसके बाद बारी आती है धान के बिचड़ा में खरपतवार नियंत्रण की, कैसे करेंगे?
12: धान के बिचड़ा हमारा किसान भाई जनरली हम लोग धान का बिचड़ा लगाते हैं। धान का बिचड़ा में अगर ठीक से हम बिचड़ा तैयार करें तो बहुत ज़्यादा खरपतवार की समस्या नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर समस्या अगर आ गए हैं तो एक दवा है जो जिसका नाम है पाइराजो सल्फ्यूरॉन, बाजार में कई नाम से बिकता है, एक UPL का ये है साथी नाम की वो बहुत ज़्यादा मिलता है, या अन्य कंपनी भी है पाइराजो सल्फ्यूरॉन, एक्चुअल दवा का नाम है पाइराजो सल्फ्यूरॉन, जिसका 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कितना आपका बिचड़ा का जगह है, तो उस हिसाब से 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको मतलब बीज छिड़काव करने के 1 से 2 दिन के अंदर उसको आप डाल दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमर्जेंस, मतलब हमारा खरपतवार या कोई भी फसल अंकुरोद्गम के पहले जो देते हैं मिट्टी में प्रयोग होता है, ये उस टाइप का खरपतवार नासी है। तो 80 से 100 ग्राम के हिसाब से अगर बिचड़ा में अगर हम पाइराजो सल्फ्यूरॉन दे देंगे हम बीज डालने के 1 से 2 दिन के अंदर, तो हमारा इन मोस्ट ऑफ द केस ज़्यादातर हमारा जो कोई भी खरपतवार का समस्या उतना नहीं रहेगा, हल्का फुल्का अगर रहता है वो किसान भाई वो अपना हाथ से ही निकल सकते हैं।
10: जी, बिचड़ा लगाने के बाद मुख्य भूमि में खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे?
12: हम लोग जानते हैं कि बिचड़ा लगाने के करीब 21 से 25 दिन के बाद आमतौर से हमारा किसान भाई वो बिचड़ा से जो पौधा होते हैं पौधा को उखाड़ के जो मेन फील्ड मुख्य भूमि में रोपाई करते हैं। तो रोपाई के लिए भी जो मुख्य भूमि है एक तो है उसको रोपाई के पहले ये देख लेना है कि उसमें ठीक तरह से कादवा हो, क्योंकि कादवा होने से क्या होता है ठीक तरीके से कादवा होने का क्या तरीका है मेरे ख्याल है सभी किसान भाई जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि जिस फील्ड में

उतारेंगे हमारा पैर काफ़ी हद तक धंस जाएगी, एकदम हम लोग नीचे चला जाएगा, तो हम लोग को पता चलेगा हाँ अच्छा तरीका से कादवा हुआ है। अच्छा तरीका से कादवा होने के दो हमारा बेनिफिट है जो हमको उपकारिता है। एक तो है कि हमारा उस खेत में जो पानी है वो जल्दी नीचे नहीं भाग जाएगी, एक बार हम उसको पटाएंगे तो जल्दी नहीं, या बारिश होगी बारिश का पानी उस खेत में जमा रहेगा काफ़ी दिन तक। और खेत में पानी जमा रहने के कारण कई तरीका सा जो हमारा खरपतवार है, जैसे मोथाकुल का खरपतवार, हमारा सावा है, जो भी थुका है, ये सब जो खरपतवार धान में अक्सर आता है, तो ये सब खरपतवार काफ़ी हद तक वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें जैसे ही पानी होगा उस वो सब खरपतवार का जो सीड्स है उसका अंकुरोद्गम नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको ठीक तरीका से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो ठीक तरीका से अंकुरोद्गम नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारा मतलब आधा समस्या तो यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम कादवा करके अच्छा तरीका से हम उसमें लगाएंगे, फिर भी हमारा कुछ कुछ खरपतवार नाशी है जो हमारा किसान भाई को यूज़ करना चाहिए। एक है देखिए जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, मतलब जैसे पहले में मैं बोला हूँ प्री मतलब पहले, इमरजेंस मतलब ऊपर आने के, मिट्टी के ऊपर आने के पहले कोई भी खरपतवार नाशी, जैसे प्रेटिलाको रिफ्ट नाम से बाजार में बिकता है 50% जो दवा है, इसको करीब 600 से 800 ml प्रति एकड़ में डालना है। अब कैसे डालिएगा, क्योंकि खेत में थोड़ा थोड़ा उस टाइम पानी होता है तो आप खेत में स्प्रे नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा आप 20 से 25 kg थोड़ा सा मिट्टी या सबसे अच्छा होता है बालू लाइए, बालू में करीब 600 से 800 ml वो खरपतवार नासी जो बोले प्रेटिला क्लोर 800 ml मिला दीजिए, मिला के उसको छिड़काव कीजिए, वो मतलब जो बालू में खरपतवार नासी मिला के उस बालू को खेत में छिड़काव कर दीजिए। कब करना है कि हम रोपने के 3 से 4 दिन के अंदर, एकदम आज रोप दिए कल ही छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि 1 से 2 दिन वो जो मिट्टी स्टेबल होने में लग जाएगा, अगर खेत में पानी रहेगा तो पानी भी स्टेबल होगी, तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा मिट्टी आज रोप दिए आज से लेके 3-4 दिन के बाद हमको 25 kg बालू में 600 से 800 ml आपको प्रेटिला क्लोर मिला के 1 एकड़ आप जो मुख्य भूमि है जहाँ पे हम रोपाई कर रहे हैं उसमें आप छिड़काव कर देंगे, तो ये काफ़ी हद तक कोई भी घास कुल की खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार दोनों को ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा, अपना पहला 10-15 दिन ये खरपतवार का समस्या नहीं होगी। आप मान लीजिए कोई भी कारण से या कोई भी बारिश हो रही है या किसान भाई के पास उस तरह का खरपतवार प्रेटिला क्लोर नहीं है, तो वो कोई भी प्री इमरजेंस खरपतवार नहीं डालें। अब खरपतवार 10-15 दिन हो गया रुपाई करते हुए, फिर देख रहे हैं कि कहीं खरपतवार जो है आ रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब रुपाई के 10 से 15 दिन के बाद अगर देखिएगा कि ज़्यादा मोथा का समस्या होता है उस टाइम में, ज़्यादा मोथा का समस्या है, तो उस टाइम में एक इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन बोल के एक दवा आता है, इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन जो 40 से 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन रोपाई के 15 दिन के बाद आप स्प्रे कर दीजिएगा तो काफ़ी हद तक, लेकिन खास करके चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और मोथा कुल की खरपतवार को एकदम ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा दवा है इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन, बाजार में कई नाम से बिकता है, जैसे सनराइज नाम है बायर कंपनी का और भी कुछ कुछ नाम से बिकता है, कोई भी आप लीजिएगा अच्छा कंपनी वाला दवा इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन 40 से 25 ग्राम पर एकड़, तो वो अब जो खास करके मोथा कुल का जो खरपतवार है उसको काफ़ी हद तक उसको मार देगी। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि 15 दिन के बाद जैसे 20-25 दिन हो रहा है उसमें कोई भी घास कुल का जो खरपतवार आ रहा है, जैसे हमारा अक्सर आता है धान के खेत में सावा, तो घास कुल का खरपतवार अगर आता है तो फेनोक्साप्रोपीइथाइल बोल के एक दवा है, व्हिप सुपर नाम से बायर कंपनी का भी मिल

0: है, दूसरा कंपनी का भी है, क्विप सुपर फिनोक्साप्रॉप पी इथाइल, इसका 250 से 280 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। और कोई भी दवा लीजिएगा, कोई भी दवा लीजिएगा स्प्रे करने के लिए, हमको एक एकड़ में 200 लीटर पानी की करीब करीब ज़रूरत पड़ती है, 200 से 250 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो 200 से 250 लीटर पानी में 250 से 280 ml फिनोक्साप्रॉप पी इथाइल मिला के आप 20 से 25 दिन के बाद स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप देखिएगा कि घास कुल के खरपतवार के साथ चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार भी है, जैसे थूका हो गया, भिंगराज, एक्लिप्टा एल्वा या अल्टरनेंथरा, ये सब का भी अगर दिक्कत है, मतलब चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार, घास कुल का खरपतवार, अगर दोनों ही हैं तो फिनोक्साप्रॉप पी इथाइल के साथ 2,4-D जो बहुत कॉमन है, बहुत हर एक दुकान पर आपको मिल जाएगा, 2,4-D नामों के नाम का एक दवा, जो आप 350 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए वही 200 लीटर पानी में आपको 350 या 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दवा डाल के आपको स्प्रे करना है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 200 लीटर पानी में फिनोक्साप्रॉप पी इथाइल का 250 से 280 ml और 2,4-D का आपको 350 से 500 ml दोनों आप एक साथ मिला के आप स्प्रे करेंगे तो आपको घास कुल का खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार दोनों को आपको कंट्रोल हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप मोथा कुल का तो पहले ही 15 दिन के बाद इथॉक्सीसल्फ्यूरॉन स्प्रे करके आप उसको नियंत्रण कर चुके हैं। तो ये कुल 3-4 दवा है जिससे आप जो मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि में आप खरपतवार को काफ़ी हद तक इसको इसका जो जो नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी। अगर किसान भाई खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें भी ये ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं डॉक्टर साहब, वो जानना चाहेंगे।
0: हाँ, ये बहुत अच्छे सवाल आपने किए हैं कि खरपतवार नाशी छिड़काव करने के बाद कई बार ऐसे कॉम्प्लेन आता है कि सर आपने जो बोले हैं हम लोग छिड़काव किए हैं लेकिन उसका असर नहीं हुआ, तो इसका कुछ कारण होता है। देखिए क्या है कि कोई भी खरपतवार नाशी को अच्छा से स्प्रे करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करनी होती है, जैसे प्री इमरजेंस, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि प्री इमरजेंस मतलब फसल या खरपतवार नाशी ऊपर आने, मिट्टी के ऊपर आने के पहले ही जो स्प्रे करना है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में ठीक मतलब प्रॉपर मॉइस्चर रहे, मतलब नमी बरकरार रहे, ऐसे एकदम सूखी मिट्टी, अगर धान की मान लीजिए आप धान रोप दिए किसी कारण, खेत में एकदम पानी नहीं है, एकदम सूख गया, उसके दरारे पड़ गए हैं, तो उसी खेत में अगर आप कोई भी जैसे प्रिटलैक्रोल मैंने बताया उसको आप डालिएगा तो उसका असर ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक तो है जो हमारा जो प्री इमरजेंस, जो मतलब खरपतवार मिट्टी के ऊपर आने के पहले हम जो खरपतवार नाशी डालते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालते हैं, उसको डालने के पहले मिट्टी में प्रॉपर मॉइस्चर होनी चाहिए, एक नंबर। दूसरा चीज़ है कि अगर कोई भी हर्बिसाइड्स आप डाल रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि धान में स्पेशली, क्योंकि धान में अक्सर बारिश होती है, तो कम से कम हमको 2 घंटा बारिश ना हो, तो आपको जो जो मौसम का जो पूर्वानुमान, ये आपको जानकारी पहले लेके उसके बाद आपको खरपतवार नाशी डालना चाहिए। आप अभी डाल दिए, आधा घंटा के बाद बारिश हो गई, तो आपका जो खरपतवार जो है एक तो पानी के साथ, बारिश के साथ धो के बह जाएगा, तो उसको आपको कोई असर उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। और चीज़ क्या है, अगर हम स्प्रे कर रहे हैं हर्बिसाइड्स तो उसके ऊपर किसान भाई ना चले, क्योंकि खास करके मिट्टी के ऊपर जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हम स्प्रे कर रहे हैं उसके ऊपर मिट्टी में हम चल जाते हैं तो हमारा पैर के नीचे वो खरपतवार नाशी लग जाता है, तो काफ़ी हद तक उसका जो असर कम हो जाता है। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है खास करके पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स के लिए, जो मतलब जो पोस्ट इमरजेंस क्या है, क्या खरपतवार ऊपर आने, मिट्टी के ऊपर आने के बाद हम जो स्प्रे करते हैं वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स है, इसके लिए हमको ये देखना चाहिए कि इसको प्रॉपर स्टेज में हमको 2-3 लीफ स्टेज, मतलब जब खरपतवार में 2 से 3 पत्तियाँ हों, गांठे हों, उसी अवस्था में हमको स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा खरपतवार, उसमें कड़ापन आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा उडीनेस आ जाएगी, तो क्या होगा, खरपतवार हम जो स्प्रे कर रहे हैं वो ठीक तरह से उसका जो सेल

0: है, सेल के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगा और उसका असर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो उसी लिए जब हमारा खरपतवार छोटा रहे, उसी अवस्था में हमारा मतलब 2 से 3 लीफ या मैक्सिमम 4 लीफ स्टेज, 4 पत्तियाँ तक हो, तो उसमें हमको खरपतवार नाशी छिड़काव कर देना है। ज़्यादा बड़ा होने तक वेट नहीं करना है, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम उसमें कड़ापन आ जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा मतलब लकड़ी का जो मतलब वुडीनेस हम बोलते हैं, वुडीनेस आ जाएगी, तो हमारा खरपतवार जो है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वीड्स, तो उसका जो असर है, उसका एफिशिएंसी है, वो काफ़ी हद तक वो घट जाती है। तो इसीलिए ठीक टाइम पर खरपतवार नाशी जो जिसका मैंने बोला, खास करके ये है कि हम कोई भी रोपा वाला में जो है जो प्री इमरजेंस डालते हैं रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर, और जैसे इथॉक्सी सल्फीरोन वाला दवा हम रोपाई के 10 से 15 दिन के अंदर, और 2,4-D या फिनॉक्साप्रॉप जो भी दवा बोलें 20 से 25 दिन के अंदर रोपाई के हमको डाल देना चाहिए। तो अगर नहीं डालेंगे तो इसका प्रभाव ठीक से हमको नहीं मिलेगा, और तभी आप फिर से आके कहिएगा कि सर हमने अपने जो बोले हैं हमने डाले हैं लेकिन इसका असर ठीक से नहीं हुआ। तो ये सब जो चीज़ है ये थोड़ा सा किसान भाई आपका उसको ध्यान दीजिएगा इस पे, तो इसके इससे क्या होगा आपका जो आप लगा रहे हैं हर्बिसाइड के पीछे, इसको आपको ठीक ठीक आपको रिटर्न मिलेगा।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धान में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले दिन। नमस्कार। उन्नत कृषि। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
2: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो आओ।
3: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
4: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
5: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
6: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
4: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
6: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
4: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
4: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
9: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरी बेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरी जोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंत शुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र

0: संक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा एक की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरे नमस्कार के साथ आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं खेलों के बारे में। वही खेल जो आप सब खेलते हैं, कुछ खेल जो घर के अंदर खेले जाते हैं और कुछ खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं। जब आप खेलों के बारे में याद कर ही रहे हैं तो आप याद कर रहे होंगे अपने खेल खेलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे याद कर रहे होंगे स्कूल का वह मैदान जहां वे अपने दोस्तों के साथ अलग अलग तरह के खेल खेलते थे। जैसे ही भोजन के लिए घंटी बजती है, टन टन टन टन टन टन टन टन, सारे बच्चे जल्दी से अपना भोजन समाप्त करते हैं और पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में। और मैदान यूं खचाखच भर जाता है बच्चों से कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास का है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पहली क्लास के बच्चे पांचवी क्लास के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि दसवीं क्लास में पढ़ने वाला रोहित अपनी पहली क्लास में पढ़ने वाली बहन से मिलने जाता है और फिर पूछता है कि तुमने खाना खाया था कि नहीं। अब जो रोहित की बहन है बहुत छोटी सी है तो कहती थी, हाँ रोहित भैया मैंने तो भोजन कर लिया, आपने किया? रोहित ने कहा, हाँ मैंने तो कर लिया और अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। तो रोहित की बहन नंदिनी ने भी कहा कि भैया मैं भी अपनी सहेलियों के साथ खेलने जा रही हूँ। और नंदिनी अपनी क्लास के बच्चों के साथ खेलने में लग जाती है। नंदिनी जब शुरू में आई थी स्कूल तो अक्सर रोती थी, उसे अपनी मम्मी की याद आती थी क्योंकि दिन भर पहले तो वह मम्मी के साथ रहती थी। अब जब नंदिनी को स्कूल आना पड़ा तो फिर मम्मी पास में नहीं थी तो नंदिनी शुरू शुरू में रोती थी मम्मी को याद करके। तब रोहित नंदिनी को चुप कराते थे कि नंदिनी रो मत, हम यहाँ खूब मस्ती करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे और खेलेंगे भी, देखो तुम्हारी क्लास में कितने सारे दोस्त हैं। धीरे धीरे धीरे धीरे नंदिनी की दोस्ती उसकी क्लास के बाकी बच्चों के साथ भी हो गई। उसकी क्लास में थी एक का नाम था कन्हैया, एक का नाम था केशव, एक थी कावेरी, एक थी पलक, नामना, रूहिना, रूबिना, जॉन और बहुत सारे बच्चे उसकी क्लास में थे। तो सारे बच्चे खेल के मैदान में पहुंच गए। पता है कौन क्या खेल रहा था? बच्चे अलग अलग तरह के खेल खेल रहे थे। नंदिनी और कावेरी तो रस्सी कूद रही थी, उन्हें रस्सी कूदने में बहुत मजा आ रहा था। वे रस्सी कूदती और गिनती गिनती जाती, एक दो तीन। जैसे ही रस्सी जमीन पे टच करती, जमीन को छूती, टप की आवाज आती और फिर उसके साथ हमारी एक गिनती पूरी हो जाती। तो नंदिनी और कावेरी तो रस्सी कूद रही थी, लेकिन उन्हीं की क्लास के कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे और खूब तेज तेज झूला झूल रहे थे। कुछ बच्चे खेल के मैदान में जो छोटा सा तालाब बना था जिसमें ढेर सारा पानी भरा था, वहां कागज की नाव बनाकर तैरा रहे थे और ये देख रहे थे कि किसकी नाव सबसे ज्यादा समय तक टिकती है। कुछ बच्चे पिट्ठू खेल रहे थे। पिट्ठू जानते हैं क्या होता है? वही खेल जिसमें हम एक के ऊपर एक करके सात पत्थर रखते हैं और फिर उसे बॉल से तोड़ते हैं और फिर एक टीम वापस एक के ऊपर एक सात पत्थरों को रखती है और जो दूसरी टीम होती है वह उस बॉल से बाकी बच्चों की तरफ फेंकते हैं और जिस बच्चे को वह बॉल छू जाए वह बच्चा आउट हो जाता है। तो इस पिट्ठू खेल में बहुत मजा आता है क्योंकि आपको गेंद से भी बचना है और पत्थरों को भी एक के ऊपर एक लगाना है। कुछ जगह इस पिट्ठू खेल को कहते हैं सतोलिया। आप सोच रहे होंगे कि सतोलिया क्यों कहते हैं? सोचिए, क्योंकि सतोलिया में शब्द है सात, तो पिट्ठू में भी या सतोलिया में सात पत्थर होते हैं जिसे हमें एक के ऊपर एक रखना होता है। जो पत्थर सबसे नीचे होता है वह सबसे बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर उससे छोटा पत्थर, फिर उससे ऊपर उससे छोटा पत्थर, और जो पत्थर सबसे ऊपर होता है वह सबसे छोटा होता है। तो तभी तो मीनार बन पाएगी। तो कुछ बच्चे पिट्ठू खेल रहे थे, कुछ बच्चे बाजा बजा रहे थे और कुछ बच्चे स्टापू खेल रहे थे। मुझे स्टापू खेलना बहुत पसंद है। तो कुछ बच्चे स्टापू खेल रहे थे, कुछ बच्चे एक कोने में बैठकर कहानी की किताब पढ़ रहे थे। जानते हैं कौन सी किताब पढ़ रहे थे? वे पढ़ रहे थे गिल्ली डंडा। ये कहानी की किताब है और ये कहानी की किताब आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर। बरखा सीरीज में एक कहानी की किताब है गिल्ली डंडा। तो क्लास के दो बच्चे बैठकर गिल्ली डंडा कहानी पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे बॉल खेल रहे थे और कुछ बच्चे अभी भी भोजन कर रहे थे। उन्हें ज्यादा समय लग रहा था भोजन करने में, लेकिन भोजन के साथ साथ वे बच्चों के खेल का भी आनंद ले रहे थे। और वहीं पर खेल के मैदान में उनकी क्लास की टीचर और एक सर आपस में बात कर रहे थे। तभी टीचर दीदी का ध्यान गया अकरम के ऊपर। अकरम गुलेल से आम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो दीदी ने सर को एकदम वहां से हटा लिया। देखिए, अकरम गुलेल से आम पर निशाना लगा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि निशाना उसका चूक जाए और सीधा पत्थर हमारे ऊपर आकर गिरे। लेकिन अकरम तो बहुत निशानेबाज है, उसने गुलेल में पत्थर लगाया और आम की तरफ निशाना किया और टक से आवाज आई और आम नीचे गिर गया। तो सबने अकरम की तरफ पलट कर देखा। तो दरअसल अकरम ने जो आम तोड़ा था वह गिरा था सर के पैर के पास। अब उसे लगा कि अगर वह सर के पास जाकर आम उठाएगा तो सर उसे पकड़ लेंगे। तो अकरम चुपके चुपके दबे पांव सर के पास गया और उन्होंने कहा, नमस्कार सर, आप कैसे हैं? टीचर को पता चल गया था कि अकरम दरअसल अपना आम उठाने आए हैं। तो टीचर दीदी ने खुद ही आम उठाया और अकरम को दिया और कहा, अकरम तुम्हारा निशाना बहुत बढ़िया है, शाबाश, ये लो अपना आम। अकरम को टीचर दीदी की ये बात बहुत पसंद आई। तब अकरम ने सोचा कि आगे से मैं ये ध्यान रखूंगा कि अगर पेड़ के पास या निशाना जहां लगाना है वहां कोई ना हो तभी मैं अपना निशाना लगाऊंगा। तो खेल के मैदान में इतना सब कुछ हो रहा था। अब आप बताइए कि आपके खेल के मैदान में क्या क्या होता है? क्या आपके खेल के मैदान में बच्चे रस्सी कूदते हैं? क्या आपके खेल के मैदान में बच्चे पिट्ठू खेलते हैं, स्टापू खेलते हैं, बाजा बजाते हैं, कागज की नाव बनाते हैं, झूला झूलते हैं, कहानी की किताब पढ़ते हैं या फिर भोजन करते हैं? क्या आपके स्कूल के खेल के मैदान में एक छोटा सा तालाब भी बना है? तो आप सब अपने स्कूल को याद कीजिए और याद कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं। इतना ही नहीं, आप अभी भी अपने घर के अंदर रहकर भी बहुत सारे खेल खेल सकते हैं। ये खेल दिमाग के खेल हो सकते हैं और ये खेल फिजिकल भी हो सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है, आप एक पुराना टायर ले लीजिए। अगर घर में पुराना टायर नहीं है तो चौक से ही जमीन पर एक गोल घेरा बना लीजिए और घर के सभी सदस्यों को आमंत्रित कीजिए और उनसे कहिए कि जब मैं ये शब्द कहूंगा अंदर तो आपको उस घेरे के बाहर रहना है और जब मैं कहूंगा बाहर तो आपको उस घेरे के अंदर आना है। यानी कि जब हम कहेंगे अंदर तो सबको अंदर नहीं आना, सबको बाहर रहना है, और जब हम कहेंगे बाहर तो सबको बाहर नहीं रहना, सबको अंदर आना है। तो ये बहुत मजेदार खेल है, आप भी खेल कर देखिएगा और बताइएगा कि आपके घर के सदस्य में कौन जीता। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हमें खेल खेलने के लिए खेलना होगा। तो इसमें दिमाग भी लग रहा है और हमारी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है जब हम घेरे के अंदर जाते हैं और घेरे से बाहर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं बच्चों, जो आप इस समय अपने घर के अंदर रहकर अपने बड़ों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं। पता है कि जीत और बबली को कौन सा खेल पसंद है? जीत और बबली वही जो रोहित के पड़ोस में रहते हैं। ये भाई बहन हैं और बहुत सारे खेल खेलते हैं। कभी छुपन छुपाई खेलते हैं तो कभी गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो आइए हम आगे सुनते हैं जीत और बबली की कहानी गिल्ली डंडा। बच्चों पता है जीत और बबली के बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके दोस्त हैं, खूब सारे। तो एक दिन सब गिल्ली डंडा खेल रहे थे। जीत ने गिल्ली को उछाला, सब लोग गिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन क्या हुआ, अरे गिल्ली तो तालाब के पार चली गई। ओहो, अब गिल्ली वापस कैसे आएगी? बबली तालाब के पार ही खड़ी थी और अपने घर में सजाने के लिए फूल चुन रही थी। तो गिल्ली बबली के पास जा गिरी

बबली ने सोचा कि ये क्या चीज मेरे पैरों के पास आकर गिरी है। तो उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि अरे ये तो गिल्ली है। बबली ने गिल्ली उठाई और उसे तालाब के पार फेंकने लगी, लेकिन गिल्ली तालाब के पार खड़े बच्चों के पास नहीं पहुंच पाई और बीच तालाब में ही गिर गई। अब सारे बच्चे फिर शोर मचाने लगे, ओह हमारी गिल्ली तो तालाब में चली गई, अब तालाब में से कौन लेकर आएगा गिल्ली। सब गिल्ली को लेकर बहुत परेशान हो गए, लेकिन बबली को तैरना आता था। वह तालाब में कूदी और गिल्ली के पास पहुंची और उसने गिल्ली को उठा लिया। जब उसने गिल्ली को उठा लिया तो सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, अरे वाह बबली, तुमने तो हमारी गिल्ली को उठा लिया, शाबाश, लो हमारे पास वापस फेंक दो गिल्ली। सारे बच्चे खूब शोर मचा रहे थे, खूब खुश थे कि बिल्ली ने गिल्ली को उठा लिया। पता है आगे क्या हुआ? तो अब आगे ये हुआ कि बबली सबके साथ गिल्ली डंडा खेलने लगी, क्योंकि जैसे ही बबली ने गिल्ली सब बच्चों को दी तो उसने कहा कि देखो मैं गिल्ली लेकर आई हूँ, तो अब मेरी बारी है, अब मैं गिल्ली डंडा खेलूंगी। बबली ने जोर से डंडा घुमाया और गिल्ली आसमान में गई और गिल्ली फिर तालाब में गिर गई। ओहो हमारी गिल्ली तो फिर तालाब में गिर गई। सारे बच्चे फिर मायूस हो गए, और पता है अब सब बच्चे किसको देख रहे थे? बबली को, क्योंकि पहले भी बबली ने ही तालाब में से गिल्ली को खोजा था और वह सब बच्चों के पास उसे वापस ले आई थी। तो सब बच्चों ने कहा कि बबली प्लीज आप गिल्ली ला दीजिए, बबली प्लीज आप गिल्ली ला दीजिए। तो बबली ने कहा कि ठीक है मैं गिल्ली लेकर तो आऊंगी, लेकिन गिल्ली डंडा खेलने की बारी मेरी रहेगी। सारे बच्चे खुश हो गए और उन्होंने कहा हाँ बबली, सबसे पहले तुम ही गिल्ली डंडा खेलना, लेकिन पहले गिल्ली तो ले आओ। तो बबली वापस तालाब में कूदी, उसने गिल्ली उठाई और वह उठाकर वापस बच्चों के पास आ गई और सब बच्चे फिर से गिल्ली डंडा खेलने लगे। तो बच्चों आपने जीत और बबली की एक कहानी सुनी जिसका नाम था गिल्ली डंडा। कैसी लगी आपको कहानी? खूब मजा आया होगा। अब जीत और बबली सिर्फ गिल्ली डंडा थोड़ी ना खेलते हैं, वो तमाम तरह के खेल खेलते हैं। कभी गिल्ली डंडा खेलते हैं, कभी पेड़ के ऊपर पुराना टायर टांग देते हैं और फिर झूला झूलते हैं। पता है एक दिन वे कौन सा खेल खेल रहे थे? तो आइए हम चलते हैं जीत और बबली के पास और ये देखते हैं कि आज वे कौन सा खेल खेल रहे हैं। इस कहानी का नाम है आउट। आउट शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। कहां सुना है? बिल्कुल ठीक, आपने यह आउट शब्द सुना है क्रिकेट में, और जब आप छुपन छुपाई खेल रहे थे धप्पा आता है और फिर हम कहते हैं कि अब तुम आउट हो गए, या फिर पिट्ठू खेलते समय जब हमारी तरफ कोई बॉल फेंकता है और बॉल हमें छू जाती है तो फिर हम आउट हो जाते हैं। याद आया सभी को, ये आउट शब्द तो हम अपने खेलों में अक्सर सुनते हैं। तो पता है एक दिन क्या हुआ? छुट्टी का दिन था, जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। उन्होंने बहुत सारे खेल खेले, पता है कौन कौन से? दोनों ने रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेली, उसके बाद गिल्ली डंडा खेला, और अब बबली ने क्रिकेट खेलने के लिए कहा। क्रिकेट का नाम सुनकर आपके सामने बहुत बड़ा स्टेडियम, बहुत सारे खिलाड़ी, दर्शकों की तालियां, हुटिंग, बॉल, विकेट, ये सब आपको नजारा याद आ रहा होगा। ये है क्रिकेट का मैदान, जहां तीन गिल्लियां एक तरफ लगती हैं और दूसरी तरफ लगती हैं तीन गिल्लियां। एक बैट होता है, एक बॉल होती है, एक बॉल फेंकी जाती है, बैट से उसे मारा जाता है और दूर पहुंचाने की कोशिश होती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रन ले सके। भाई ये तो है खेल का मैदान, यानी कि क्रिकेट खेला जा रहा है। लेकिन बबली और जीत ये दोनों तो घर के अंदर थे। तो बबली ने जीत से कहा कि जीत भैया आज हम क्रिकेट खेलते हैं। तो जीत ने कहा ठीक है बबली, तो मैं गेंद फेंकूंगा और तुम बैटिंग करना। जीत ने जोर से गेंद फेंकी और बबली ने भी उतने ही जोर से बल्ला घुमाया और गेंद पर दे मारा। पता है क्या हुआ?
वही जो रमा आंटी के साथ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर खिड़की नहीं टूटी, बल्कि गेंद मोहित के आंगन में चली गई। अब मोहित के आंगन में चली गई तो क्या दिक्कत है, मोहित के आंगन में जाइए, अपनी बॉल उठाइए और वापस आ जाइए। ये इतना आसान नहीं था। अब दोनों के चेहरे बहुत उदास हो गए, यानी कि जीत और बबली बहुत उदास से लग रहे थे। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि मोहित के घर पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब मोहित के आंगन तो क्या, मोहित के घर में भी कौन जा सकता है। लेकिन बबली और जीत ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अगर हमारी गेंद मोहित के आंगन में चली गई है तो हम उसके आंगन में चले जाते हैं। लेकिन जीत ने कहा कि बबली दीदी, मोहित के घर में तो क्या उसके आंगन में भी जाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। बबली ने मोहित का घर सब तरफ से देख डाला, लेकिन मोहित के आंगन में जाने की कोई जगह उन्हें नजर नहीं आई। मोहित के घर ताला लगा हुआ था, अब वे गेंद कैसे उठाएंगे। जीत और बबली का सारा खेल रुक गया। तो बबली ने सोचा कि कोई तो उपाय करना होगा। पता है बच्चों, उन्होंने क्या किया? बबली ने गेंद बनाई। बबली को गेंद बनाना आता था, तो उसने जीत से कहा कि आप पुराने कपड़े, कागज और पन्नी ले आइए, और वह ये सारा सामान खुद भी ढूंढने लगी। उन्होंने अपने पूरे घर को छान मारा, ये अलमारी, वो अलमारी, ये दराज, वो दराज, पलंग, सब कुछ देख डाला, और जहां से उन्हें ये सामान मिला वे सारा सामान खोज खाज कर ले आए, यानी कि पुराने कपड़े, पुराने कागज, पन्नी, बहुत सारा सामान वे लेकर आ गए। तो आगे क्या हुआ, क्या वे बॉल बना पाए, देखते हैं। दोनों ने खूब सारी कतरने और पन्नियां इकट्ठी कर ली थी। तब बबली सुतली का टुकड़ा भी ले आई। बबली ने सब सामान को मिलाकर गोल मोल करके और एक गोला सा बना दिया, और उस गोले को सुतली से कसके बांध दिया। यानी कि बबली ने क्या बनाया, पुराने सामान से बॉल बनाई, और जब चीजों को जोड़ जाड़ कर गोल गोल सा कुछ बना दिया तो उसे सुतली से बांध दिया, ताकि ये जो सामान है ये गिरे ना। अब क्या होगा देखते हैं। बबली ने गेंद फेंकी और अब बारी थी जीत की। जीत ने जोर से बल्ला घुमाया, टक, और पता है बच्चों क्या हुआ, और ये हुआ कि गेंद खुलकर हवा में फैल गई। बबली ने उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया और उसने क्या कहा, और उसने कहा आउट, और इतना जोर जोर से आउट आउट आउट चिल्लाती कि जीत हैरान था कि बबली को ये कैसे पता चला कि मैं आउट हो गया। तो उसने पूछा कि मैं कैसे आउट हुआ, क्योंकि गेंद तो हवा में बिखर गई है। तो उसने कहा कि गेंद बनी किससे है, पुराने कपड़ों से, पन्नी से और सुतली से। तो बस मैंने भी कपड़े का एक हिस्सा पकड़ लिया, और यूं समझ लीजिए कि मैंने गेंद पकड़ ली, तो इस तरह से जीत तुम आउट हो गए। अब आप सोचिए कि अगर आप जीत की जगह होते और बबली की जगह आपकी अपनी बहन होती तो फिर क्या होता, वह भी आउट आउट कहकर चिल्लाती, तो क्या आप मान जाते कि आप आउट हो गए हैं? ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल है, बहुत ही टेढ़ा सवाल है, क्योंकि आउट होने का तो हमारा मन नहीं है। हमने बहुत मुश्किल से तो गेंद बनाई और एक ही बार में गेंद जो थी खुलकर बिखर गई। तो अगली बार गेंद बनाते समय ये जरूर देख लीजिएगा कि गेंद मजबूत हो, सुतली को अच्छे से लपेटिएगा और कस कर गांठ बांधिएगा, ताकि जब कोई बहुत जोर से शॉट लगाए तो फिर गेंद हवा में खुलकर ना बिखरे। तो बताइए कि क्या जीत सचमुच आउट हो गया? क्या बबली का कपड़ा पकड़कर ये कहना कि आउट हो गया, ये बात सही थी? या फिर जीत ने दोबारा से गेंद बनाई होगी, या बबली ने जीत से कहा होगा कि चलो भैया हम एक और बार गेंद बनाते हैं, तो क्या जीत ने बबली का साथ दिया होगा? और सोचिए कि जब जीत और बबली ये खेल खेल रहे हैं तो उन्हें मोहित के घर के पास कोई आवाज आई, तो उन्होंने क्या सोचा होगा? शाबाश, उन्होंने सोचा होगा, लगता है कि मोहित आ गया, और वे दौड़कर मोहित के घर के पास पहुंचे।
अरे ये क्या, ये तो मोहित आ गया।

0: तो फिर दोनों बहुत खुश हुए और खुशी में उन्होंने कहा, मोहित पता है हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे? मोहित ने कहा, मैं अपनी नानी से मिलने गया था और मैं अपनी नानी को साथ लेकर आया हूँ। और पता है मेरी नानी को एक काम बहुत अच्छा लगता है। तो जीत और बबली ने एक दूसरे का चेहरा देखा और ने कहा, क्या अच्छा लगता है? तो मोहित ने कहा कि मेरी दादी को गेंद बनाना आता है और मेरी दादी पुराने कपड़ों से, पुराने कतरनों से, पन्नियों से, सुतली से तरह तरह की चीजें बनाती है। गुड्डा गुड़िया बनाती है, गेंद बनाती है और पन्नियों से टोकरी भी बनाती है। तो जीत और बबली ने कहा कि हम भी नानी से गेंद बनाना सीखेंगे। लेकिन तब तक जीत ने मोहित से कहा कि पता है आज खेल में क्या हुआ था, हमने गेंद तो बनाई थी और लेकिन जैसे ही मैंने शॉट लगाया वह गेंद हवा में खुलकर बिखर गई और बबली ने कपड़े का एक हिस्सा पकड़ा और तब से वह आउट आउट चिल्ला रही है। अब तुम ही बताओ मोहित, क्या मैं आउट हूँ? ये सारी बातें नानी सुन रही थी। उन्होंने कहा,
1: अरे बेटा जीत, तुम तो सच में आउट हो गए थे।
0: लेकिन नानी, मैं कैसे आउट हो गया था? बॉल तो हवा में खुलकर बिखर गई थी।
1: यही तो, जब बॉल हवा में बिखर गई तो बबली ने उसका एक कपड़ा पकड़ लिया, तो यूं समझ लो कि बबली ने गेंद पकड़ ली और तुम आउट हो गए।
0: नहीं नानी, ये तो कोई सही बात नहीं हुई। बॉल कहाँ पकड़ी थी? बबली ने तो एक कपड़ा पकड़ा था।
1: अरे भाई, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि बबली ने बॉल का एक कपड़ा पकड़ लिया तो तुम आउट हो गए। अरे भाई, मान क्यों नहीं लेते?
0: ठीक है नानी, आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप हम सबको गेंद बनाना जरूर सिखाइएगा ताकि जब हम शॉट लगाएं तो गेंद हवा में न बिखरे।
1: ठीक है बच्चों, पहले ये सारा सामान अंदर तो लेकर चलो कि सारी बात बाहर खड़े खड़े ही कर लोगे।
0: तो सारे बच्चों ने सामान उठाया और झटपट वे मोहित के घर के अंदर चले गए, सामान को घर के अंदर रखने लगे और फिर उन्होंने चाय बनाई, पकौड़े बनाए और आराम से वे आपस में बतियाने लगे। लेकिन बात क्या हो रही थी? बात यही हो रही थी कि नानी अब उन्हें गेंद बनाना कब सिखाएंगी। तो सारे बच्चे नानी के पास बैठ गए थे। तो नानी ने सब बच्चों से सामान लाने के लिए कहा और गेंद बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो आप सब बच्चे भी पुराने कपड़ों से, पुराने कतरनों को जोड़ जाड़ कर गेंद बना सकते हैं और एक लकड़ी से आप अपना बल्ला बना सकते हैं और आप घर के आंगन में बाहर ये क्रिकेट खेल सकते हैं। आप अपनी गेंद बनाइए और हमें बताइएगा कि आपने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट का खेल कैसे खेला, और ये भी बताइएगा कि किसने कितने रन बनाए और कौन कितनी जल्दी आउट हो गया। तो इस कहानी के साथ मैं उषा आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्दी आपके साथ एक और नई कहानी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार।
2: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
6: So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
8: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
9: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
10: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम बहुत ही चाव से खाते हैं, किसान भाई बहन बहुत ही चाव से उगाते हैं और उससे अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन शर्त इतनी होती है कि वो अपनी फसलों को रोगों से बचा सके। अगर रोग लग जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है और आज हम परवल के प्रमुख रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो सब्जी है परवल। परवल के कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और किस प्रकार से उनसे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पाटिल। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं रोग विज्ञान विभाग से BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे परवल में आने वाला रोग, इससे कैसे पहचानें और इसका कैसे प्रबंधन करना है। अभी हम परवल, हम सोचते परवल ऐसे एक सब्जी है इसमें रोग लगता ही नहीं, हम सोचते पहला इसमें रोग और कीट का प्रभावित नहीं होता था। आजकल जलवायु परिवर्तन से वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं परवल एक ऐसे हुए सब्जी है इसमें भी रोग बीमारी और कीड़ा लगने के लिए शुरू हुआ है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से ये रोग और कीट से क्या हो रहा है, इसका उत्पादन भी घट रहे और इसका गुणवत्ता भी प्रभावित भी हो सकता है।
4: जी सर, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले रोग देखने को के लिए कम मिलते थे, तो अगर अभी रोग दिख रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो परवल में लगते हैं?
12: परवल में होता है अभी तीन चार तरफ का होता है। पत्ता में दिखने वाला रोग होता है, मृदु जनित रोग होता है, और नंजन और विष वायरस का रोग होता है, और आजकल जंतु हम बोल देते हैं नेमेटोड का भी तरफ से फैलने वाला रोग भी हम लोग को दिख रहे हैं आजकल।
4: जी सर, तो सर जैसे कि आपने बताया कि पत्तों में भी लगते हैं, फिर विषाणु जनित भी रोग होते हैं और भी कई तरह के रोग होते हैं। हम शुरुआत करते हैं परवल के पत्तों के रोग के बारे में, तो परवल के पत्तों में कौन कौन से रोग आते हैं?
12: परवल के पत्तों में दिखता है झुलस रोग एक होता है और असित रोग होता है। हाँ, इसी में दो तरफ को होता है, चूर्णित असित रोग होते हैं हम लोग बोलते हैं इसका पाउडर मिल्ड्यू, और मृदरोमित असित रोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ऐसा ही पत्ता में दिखने वाला रोग होता है।
13: जी सर, सबसे पहले आप हमें हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि जुलास रोग किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उसे किस प्रकार से पहचाने और उसका बचाव क्या है।
12: हाँ, अभी हम बात करेंगे परवल

0: में जुलास रोग के बारे में। जुलास रोग क्या होता है, इसी का पत्ता में दिख देता है हम लोग का, हम लोग को वहाँ पे पत्ता में ऊपर आपको निगरानी कैसे करना है सारा पत्ता को हम लोग को देखना है, उसी के ऊपर हम लोग को दिखता है भूरे से काले रंग का छोटे छोटे चब्बी दिख जाते हैं। अनुकूल जब वो अनुकूल मौसम होता है, अभी हम लोग देखते हैं शाम में हम लोग का ये बरसात आ जाता है, दिन में हम लोग का वो सनलाइट ज़्यादा हो जाते है, वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं वातावरण उम्र ज़्यादा हो जाए, तभी हम लोग को ये पत्तियों को सूखने के लिए दिख सकता है। जब भी हम दिखते हैं सूखने वाला पत्ता, हम उसी के सामने जाके उसी का देखने से हमको पता चलता है वहाँ पे भूरे से काले रंग के छोटे छोटे छब्बे दिखते थे, वो जो छोटे छोटे छब्बे एक दो मिलकर कैसे हो जाएगा, पूरा जुलास रोग हो जाएगा। इसी से क्या हो जाते है, पत्ता पूरा सूख जाता है, इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्षमता कम जाता है, वो इसी की वजह से हम लोग का ये उत्पादन और गुणवत्ता भी कम हो जाएगा।
1: जी सर, बचाव के लिए क्या करेंगे?
0: बच्चा के लिए हम लोग को क्या, पहला भी जो भी रोग होते हैं हम लोग को निगरानी अच्छा से करना है, रोगग्रस्त पत्तों को पहला निकाल कर नष्ट करना है, खेत में जल भराव ना होना चाहिए और बालों में पुरिया दूरी से नहीं होना चाहिए। आवश्यक पर हम लोग को जो आवश्यक है, जो खाद देता है, जो पानी हम देते हैं, जो आवश्यकता वजह से ही देना पड़ेगा। हमारे पास जो खाद ज़्यादा है तो ज़्यादा खाद दिया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पत्ता हो जाएगा, पत्ता ज़्यादा हुआ तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो जुलास रोग का प्रॉब्लम से दिख जाता है। इसी के आवश्यकता से जो भी आवश्यकता है, जब भी हम बोल देते परवल में छिड़काव करो परफ्यूम नाशक, नहीं ऐसा कोई हो नहीं होगा, आवश्यकता से आवश्यकता जरूरत हुआ तो हम लोग जो ग्रीन लेबल्ड जो होता है फफूंद नाशक, उसी का ही किसी का कृषि विज्ञानी का संपर्क करें, उसी के करें, जो आपको लिए आपको जानकारी होना है तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन डाइजिम है, जो जैसे फफूंद नाशक हम लोग छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही छिड़काव
0: करना चाहिए,
1: उतनी ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर, मतलब जुलास रोग से अगर बचना है तो खादों का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना
0: है, जो खाद और पानी कम देना, जितना चाहिए उतना। जी, जब हम पानी ज़्यादा देते खाद ज़्यादा देते पत्ता ज़्यादा हो जाएगा, बाद में वो सूखने के लिए वो जो फफूंद है वो जुलास रोग करने वाला फफूंद है वो पत्ता में आराम से जिग जाएगा, इसी वजह से हम लोग का गुणवत्ता और उत्पादन भी घट जाएगी।
1: जी, तो हमारे किसान भाई बहनों इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप खाद का इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से आप सिंचाई करें। सर, अब हम असीता रोग के बारे में बात करते हैं। तो असीता रोग कितने प्रकार के होते हैं और उसकी पहचान क्या है?
0: असीता में इसमें दो तरफ होता है, असीता रोग में दो तरफ होता है, चूर्णित असीता एक हो जाते हैं और मृदु रोमित असीता होता है। हम लोग ये बोल देते मिल्ड्यू, इसमें मिल्ड्यू बोल देते पाउडरी मिल्ड्यू नहीं तो डाउनी मिल्ड्यू। चूर्णित असीता क्या होता है, इसमें कैसे दिखता है ना, आपको पत्तिया के ऊपर आपको आराम से वो देखते थे सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ आपको दिख जाते हैं, जो भी पत्तिया आप देखते हैं उसी के ऊपर सफ़ेद का चूर्ण जैसा पदार्थ दिख सकता है, उसी का पत्ता के नीचे आपको पूरा पीला रंग हो जाता है, जो आपका पदार्थ जो है वो सफ़ेद पूरा पत्ता में हो जाएगा ना, इसी वजह से क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्षमता पूरा घट जाएगा, बाद में इसी में बाद में जो पत्ता हो जाते हैं ना वो पूरा सूखने के लिए चला जाएगा, जो पूरा पौधा सूख जाएगी, इसी वजह से उत्पादन बहुत घट जाता है इसमें। और एक है इसमें असीता मृदु रोमित असीता, अभी हम बोल रहे थे वो सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ ऊपर दिखते थे, अभी मृदु रोमित में क्या होते हैं उसमें उल्टा हो जाते, उसमें ऊपर आपको दिखता है पीला रंग का जैसा, पीला रंग श्रेणिया के जैसे आपको ऊपर दिखता है, नीचे नीचे आप

0: होता है, क्योंकि हम लोग शाम में हम लोग दिख सकते हो, बारिश आते रहते हैं। अभी अभी जो आजकल हम देखते हैं ना, वही वातावरण, शाम में बारिश होता है, दिन में बहुत इसी का सनलाइट ज़्यादा होता है, इसी के वजह से उम्र ज़्यादा, जब उम्र ज़्यादा होता है मृदुरोमित का डाउन मिल्ड्यू का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा।
1: जी सर, इनसे बचाव के लिए क्या करें?
0: दोनों के बचाव के लिए हम वही बोले थे, जो भी परवल में पत्ता में आने वाले हैं उसमें पहला हम लोग को वो खाद और इसका पानी देने में जितना चाहिए उतना दीजिए। जितना आप ज़्यादा खाद दिए होते हैं, ज़्यादा पत्ता हो जाता है, पत्ता वजह से पत्ता ज़्यादा होने से पत्ता जनिक फफूंग हो जाते हैं ना, उसी का फैलने का ज़्यादा अवकाश मिलेगा। और कित और खेती में क्या होते हैं ना, जो भी पत्ता दिखता है, आप अभी आप चूर्ण जनिक दिखाए और मृदु जनिक दिखे, जब भी आप दिखते हैं उसी का पत्ता का पहला हटा दीजिए और नष्ट कर रहे हैं वो पहले के, क्योंकि वो फफूंग हवा से फैल जाता है और पानी से फैल जाते हैं। जो आप पहले देखते हैं ना उसी का पहला निकाल कर इसको नष्ट करना है। खेत में जल प्रभाव अच्छा से देखना पड़ेगा। और बालों में पूर्णित दूरी से, जब भी जैसे हम करते हैं प्लांटिंग का प्लान, एक पौधे से दूसरा पौधे को थोड़ा डिस्टेंस अच्छा से करें, जैसे होना चाहिए सूर्य का रश्मि अंदर घुसना है और हवा पूरा अच्छा से सफाई होना चाहिए। जो जो फफूंग होता है, ये फफूंग दोनों का फफूंग हो जाता है, जो जो कचरा हाँ पत्ता का कचरा हो नीचे गिरता है ना उसी से फैलता है, इसीलिए हम लोग को अच्छा से रखना है खेत को।
1: जी सर, तो मतलब अगर कोई ऐसे पत्ते दिख जाए जिनके ऊपर ये रोग लगे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि उसे नष्ट करें
0: पहला
1: जी, और साथ ही खाद और पानी का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए।
0: जब भी ये रोग ज्यादा हो जाते हैं ना, तब भी हम लोग को फफूंग नाशक का छिड़काव करना है। जब भी इसमें फफूंग नाशक के चूड़ियाँ असिता में हम लोग फफूंग नाशक एक्साकोनाजोल एक फफूंग नाशक है, 1 ml/L छिड़काव कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत चीप एंड बेस्ट है, उसी का भी कर सकते हैं। और मृदुरोमित के लिए हम लोग मेटालाक्सिल MZ है, उसमें उसी का छिड़काव करने से रोग पूरा घट जाएगा।
1: जी, यानी कि अगर कम है तो आप पत्तों को नष्ट कर दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है तो फिर आप छिड़काव।
0: वही बोल रहा हूँ, अभी ये जैसा परवल इतना क्रॉप है, इसमें ज्यादा फफूंग नाशक के लिए हम लोग ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। जो भी आपको करना है तो प्रिकॉशन कीजिए ना, उसी से हम ये इसका कम कर सकते हैं।
1: जी सर, सर अब विषाणु जनित रोगों के बारे में आप हमें बताइए कि वो रोग कौन कौन से हैं और पहचान कैसे किया जाए।
0: अभी हम सुना है पत्ता में आने वाला फफूंग का, फफूंग वजह से होने वाले दो रोग जो जुलास के उसी के बारे में, और वैसे ही पत्ता में वो जब हम लोग का मार्च अप्रैल में होता है ना, इसी में विषाणु रोग दिख सकते हैं, इसी का हम लोग बोलते हैं वायरस रोग बोलते हैं ना। इसी में क्या होता है, पूरा पत्ता पीला रंग हो जाता है, इसी को सब लोग को जानते हैं। जब पत्ता इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पत्ता में एक जगह हरा रंग होता है, एक जगह पीला हो जाता है, ऐसा नहीं एक पत्ता पीला हो गया दूसरे वजह से, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और दूसरे वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं, मोज़ेक होना चाहिए। जैसा एक एक पीला और हरा रंग का मोज़ेक, दोनों मिक्सचर हो सकता है, इसी के हम बोल देते हैं मोज़ेक वायरस। ओके, और पीलापन भी हो जाता है, पूरा पत्ता दूर से भी हम लोग को दिख सकते हैं, पीलापन हो जाता है। और पौधे पूरा वृद्धि जो भी होता है ना, फूल और फल आने वाला पूरा अचानक वो घट सकते हैं, क्योंकि वो जो वायरस आता है पूरा पूरा पौधों को नुकसान करेगा। वो ये विषाणु रोग फैलता है कीड़ा से, क्योंकि ये वायरस से कीड़ा से फैलता है। जो हमारा जो कीड़ा हम देखते हैं उसमें सफ़ेद मक्खी देखते हैं, ये फिर देखते हैं, थ्रिप्स देखते हैं, ये सब चीज़ें ना, यही चीज़ वो ये कीड़ा ये वायरस को फैलता है।
1: जी सर, तो

0: अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन कैसे करें?
1: हमेशा हमको क्या करना है, पहला स्वास्थ्य रोग मुक्त रोशन को पहला सेलेक्ट करना है। जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना सर, प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, उसी टाइम में रोग मुक्त सामग्री को सेलेक्ट करना है। और रोगग्रस्त पौधा, जो भी एक रोगग्रस्त पौधा आप देखते हैं ना, इमीडिएटली हम लोग को ये पौधा का पूरा निकल के नष्ट करना है, ये पहला हम लोग करें। क्योंकि एक पौधा से पूरा जो सफ़ेद मक्खी आता है उसी के बैठते हैं, उसी से पूरा फैल जाता है। एक भी नहीं रुकना है, रखना है जो विषाणुजनक रोगग्रस्त पौधा को पहला हटाना है, नष्ट हटा के नष्ट करना है। और खेत में जो भी खाद हम देते हैं, जो भी जितना ही कम देना पड़ेगा। अवसर मिलने से अभी हम लोग को कीटनाशक क्योंकि ये सब चीज़ फैलता है कीट से ना, इसलिए हम लोग को कीटनाशक स्प्रे करने। अभी इसमें फॉर्मल में हम लोग जो वो केमिकल कीटनाशक थोड़ा कम करना है। जो भी होता है नीम ऑयल, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, वो इसी का स्प्रे कर सकते हैं, हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और ये सफ़ेद मक्की दिखाने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप भी कर सकते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं येलो स्टिकी ट्रैप के ऊपर सफ़ेद मक्की देखते हैं, तभी हम लोग छिड़काव कीजिए नीम ऑयल से। इसी से हम लोग ये कीड़ा को, कीड़ा के संख्या घटने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली रोग का भी प्रबंधन हो जाएगा।
0: जी सर, तो अब हम मृदा जनित रोगों के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से रोग हैं जो मृदा जनित रोग होते हैं?
1: इसमें जड़ एव थना सड़न रोग होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग इसी को ये बोलते हैं उकुट रोग। अच्छा। उकुट रोग भी बोलते थे। इसमें क्या होता है ना, पौधा अचानक क्या होते हैं, सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक से उसे एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा तरफ ठीक लगता है, एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। जड़ और थाने में निचल हिमसड़न हो जाता है, इसी से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये मृदा जनक होता है। फफुंग और जंतु जो हम बोल देते हैं नेमेटोड, आजकल जो भी पुराना खेती होती है ना, जब भी आप परवल डालने के बाद दो साल हो गया, अभी तीन साल चार साल दो साल के बाद आप रखे, तो जो जंतु फफुंग होता है ना, इसी से फैलने के लिए ज़्यादा हो जाते, इसी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी ये मृदजनिक होता है, पूरा पौधा सूख जाएगा, पौधा सूखने से क्या होता है, पूरा आपका उत्पादन गुणवत्ता सब चीज़ घटने से स्टार्ट हो जाएगा।
0: जी सर, तो इन जैसे कि अभी आपने बताया कि कौन कौन से मृदा जनित रोग हैं और उनकी पहचान क्या है, तो अब प्रबंधन के बारे में बताएं।
1: ये क्योंकि मृदा जनित फफुंग होता है, इसी के लिए हम लोग ज़्यादा वो फफुंग नाशक नहीं डाल सकते, क्योंकि जितना भी फफुंग नाशक होगा इतने भी ज़्यादा आवश्यकता बेसिस से हम लोग फफुंग नाशक करते हैं। जो भी पहला ये करना है हम लोग को, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को लेना है जब भी आप करते हैं। और खेत में जल निकास अच्छी से स्वास्थ्य रखे, और संक्रमित पौधों को निकाल कर, वही बोल रहे हो हम लोग, जो भी हम जिसी में होते हैं, एक संक्रमित रोग हम देखने से पहला उसको पूरा निकालना है, वो कैसे बाहर हटाना है, ये देखना है, ये ध्यान में रखना है कैसे बाहर हटाना है। और जो भी जैविक फफुंग नाशक होता है, ट्राइकोडर्मा हम बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, वही जब जैविक फफुंग नाशक होते हैं उसी को हम लोग मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और जो भी FIM से यूज़ करते हैं उसी टाइम में भी मिल सकते हैं। ये ट्रेकोडर्मा और सुडामनास ये दोनों यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, फफुंग का फफुंग निर्बंधन हो जाएगा, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी, जो पौधा का उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, इसी का यूज़ करने से फ़ायदा ज़्यादा है।
0: जी सर, सर अगर हम बात करें अब समग्र प्रबंधन के बारे में, तो किसान भाई बहन किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: किसान उनके लिए हम क्या बोलते हैं, पांच हम वही बोलते पांच महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों, परवल रोग बचाने के लिए हमेशा पांच बात हम बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक पहला बात है हम लोग स्वस्थ एवं रोग मुक्त रोशन का सामग्री का प्रयोग करें। जो भी आप प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं बाहर से, स्वस्थ और रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को भी हम लोग प्रयोग करना है। और दूसरी बात है खेत में जल भराव ना देना है। जो भी वही जिसी का भी रोग होता है जल भराव से हो जाएगा। तीसरी बात है रोगग्रस्त पत्तियों और पौधा होते उसी को हटाकर तुरंत हटाना है, इसी को खेत से दूर नष्ट करना है। और चौथी बात होते है खेत में स्वच्छता रखे और इसी को नियंत्रित निगरानी करना है, हमेशा हम लोग खेत को निगरानी करना है। पांचवा बात होते रासायनिक दवाई जहाँ पे होता है रासायनिक दवाई की केवल अवसर बेसिस में, जब भी अवसर होते उसी टाइम में रासायनिक दवाई को छिड़काव कीजिए, नहीं तो हम लोग के पास जो प्लांट बेस्ड है और बायो कंट्रोल है, जैविक शिलिंद्र है, जैविक नाशक है, उसी से हम लोग छिड़काव करके वो इसी परवल को हम लोग उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
0: जी सर, यानी कि पूरी चर्चा में एक बात जो समान रही कि जितना कम से कम हो सके आप खाद कीटनाशक या जो भी इस प्रकार के आप छिड़काव करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बेहतर है, और सिंचाई भी तभी करें जब ज़रूरत हो, है ना सर? जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और रोग के बारे में अगर आप हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहें?
1: वही ये जो हम बात किए था इसी के बारे में ध्यान में रखना है, ये वही पांच चीज़ रोग हम डिस्कस किए ना उसी, अभी यहाँ बागा बिहार कंडेश में ज़्यादा होने वाला रोग है।
0: तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी जो परवल की खेती करते हैं प्रमुख तौर से।
1: धन्यवाद
0: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
14: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
15: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल

प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की डीकेसी 981, डीएचएम 117 और रागी की वीएलएम 389, आरयू 8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं, उन्हें बता दें कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पाइरीबेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पाइरेजोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं, उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहे। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंतशुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज उन किसान भाई बहनों के लिए बातें होने वाली है जो श्री अन्न की खेती करते हैं, और वो परेशान होते हैं कि श्री अन्न में बहुत अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं और किस प्रकार से उन कीटों को पहचाने, उनका प्रबंधन कैसे करें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण कुमारी। आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, आप हमें ये बताइए कि श्री अन्न के कौन कौन से कीट होते हैं?
1: श्री अन्न में जो कि काफ़ी ही पोषक अनाज है, और इसमें जो है ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी इत्यादि फसल आते हैं, और लगभग इन सभी पर एक ही प्रकार के कीट लगते हैं, और ये

0: सारे कीट जो हैं, जितने भी स्त्री अन्न हैं वो उन पे इसका प्रकोप होता है।
1: जी मैम, तो जो आपने अभी कीटों के नाम बताए उन कीटों के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। और मैम शुरुआत करते हैं ज्वार के तना छेदक कीट के बारे में, आप हमें बताइए शुरुआत में।
0: ज्वार का तना छेदक कीट, वो उसका भी जो वयस्क होता है वो मौत होता है, जिसे पतंगा भी कहते हैं, और ये हल्के पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंख तिनके के रंग के होते हैं, यानी क्रीम कलर का, और इसके जो पंख होते हैं उसके अंतिम छोर पर दो पंक्ति में काले बिंदु पाए जाते हैं, और इसका जो नर है उसके पिछले पंख पर जो धुएंधार कलर का, मतलब थोड़ा डल कलर का होता है, और मादा में सफ़ेद कलर का होता है, और मादा के उदर भाग के अंतिम भाग में बालों का एक गुच्छा होता है। इस तरह से इसकी वो पहचान करते हैं कि ये ज्वार तना छेदक है। और इसका ये जो ज्वार तना छेदक है उसका जो पिल्लू है वही इसको हानि पहुंचाता है, और इस जो ये पिल्लू है वो पत्तियों को खुरच खुरच कर खाता है, बाद में फिर यही सुई के समान छेद करके खाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे जो तना है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ज़मीन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से बीच का जो होता है भाग उसको खाते हैं, और जिससे कि पत्तियां सूख जाती हैं, और जिसे खींचने पर सूखी हुई जो पत्ती होती है बीच वाली उसको खींचने पर वो आसानी से खींचा जाता है। ये इसको डेड हर्ट कहते हैं, या मृत कल्ला भी इसको कहते हैं। और ये जो इस तरह से जो डेड हर्ट बन जाता है, और तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गांठ के से टूटकर गिर जाते हैं। और इसके बचाव हेतु जो है कीट ग्रस्त पौधों को जिसमें डेड हर्ट दिखाई दे रहा है उसको उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फिर फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए ठूठ हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में उसके जो पिल्लू हैं और पीपा हैं वो उसमें रहते हैं। इसलिए कटाई के बाद जिस खेत में अगर इसका प्रकोप हो गया है तो कटाई के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है, ठूठ है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो इसके वयस्क हैं उस पर आकर्षित हों, और वो चूँकि लाइट ट्रैप के नीचे पानी आप रख दें तो उसमें वो गिरकर मर जाएंगे। फिर तना छेदक का जो ये कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप भी जो 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, और प्रकोप अधिक हो जाए तो 2 से 3 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करें, या फ्लुवेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और इस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं।
1: जी मैम, अब मैम आप हमें प्ररोह मक्खी के बारे में बताइए कि प्ररोह मक्खी की क्या पहचान होती है और इसके प्रबंधन के लिए क्या करें।
0: हाँ, ये जो प्ररोह मक्खी है इसे सूट फ्लाई भी कहते हैं, और ये एक तरह की मक्खी है जो घरेलू मक्खी होती है उससे आकार में थोड़ी छोटी होती है, और इसमें जो है इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन नहीं होता है, थोड़ा मोटा बाल, घना बाल पाया जाता है, और इसका जो नर होता है उसका एंटीना जो है पीला कलर का होता है, ये इसकी पहचान है। और ये इसका जो पिल्लू होता है वो तना में छेद कर वो खाता है, और ये भी तना में अंदर जाकर बीच के पार्ट को खाता है, और जिससे कि ऊपर वाली पत्ती सूख जाती है, जो ऊपर में जो बीच की पत्ती है, तो इसलिए ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये ज्वार तना छेदक जो है वो भी डेड हर्ट काउज करता है, और प्ररोह मक्खी ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्ररोह मक्खी है वो जब पौधे करीब 6 से 8 इंच तक के रहते हैं तभी तक उसका प्रकोप होता है, उसके बाद नहीं होता, और ज्वार तना छेदक का थ्रू आउट पूरे फसल तक इसका प्रकोप होता रहता है। दोनों में यही अंतर है। और

0: इस कीट से बचाव हेतु जिन पौधों में जो डेड हर्ट पाया गया हो तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और बीजोपचार भी करना चाहिए इस कीट से बचने के लिए। तो क्लोरपाइरीफॉस 3 ml या इमिडाक्लोप्रिड दोनों में से कोई एक कीटनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं। तो अगर इमिडाक्लोप्रिड लेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड का 48 FS का 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। और प्रकोप खड़ी फसल पर अधिक हो जाए तो रासायनिक कीटनाशी में फ्लुविंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में या डेल्टा मेथ्रिन का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम ज्वार बाली कीट से क्या हानि होती है और इससे कैसे बचा जाए?
0: ज्वार बाली बग ये जो है ये पतले हरे रंग का होता है, कभी कभी ये धान के ऊपर भी दिखाई देता है और इसका शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और ये जो है ज्वार धान पे भी मक्का रागी इत्यादि को भी हानि पहुंचाते हैं। और ये जो है इसके वयस्क और जो इसके शिशु होते हैं निम्फ इसको बोलते हैं, वयस्क और इसके जो वयस्क होते हैं और निम्फ तो दोनों एक समान होते हैं, केवल निम्फ में इसके पंख नहीं होते हैं और वयस्क में पंख हो जाते हैं, बाकी रंग दोनों का हरा ही होता है। और ये जो है दोनों वयस्क और निम्फ यानी शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूस कर इसको बर्बाद करते हैं और जिससे पत्तियां सूख जाती हैं। और किसी किसी में बाली में तो दाने ही नहीं लगते हैं। और इसके बचाव हेतु फसल पर नीम बीज चूर्ण जो नीम का बीज है उसका पाउडर बनाकर भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml या थायोमेथेक्सम 25 WG का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम पत्र लपेटक कीट किस प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करें?
0: पत्र लपेटक कीट जो है ये भी इसका वयस्क जो है वो मौत पतंगा होता है और जिसके पंखों पर भूरी धारियां होती हैं और सफ़ेद जो शरीर इसका सफ़ेद होता है और उस पर भी जो है हल्की भूरी धारियां होती हैं, यानी इसके पंख और शरीर दोनों पे धारियां होती हैं। और ये भी ज्वार है, मक्का है, बाजरा, इवन जो गन्ना है उसको भी हानि पहुंचाते हैं। और इसके जो पिल्लू हैं वो भी शुरू में इसके पत्ती को खुरच खुरच कर खाते हैं, बाद में जैसे जैसे ये जो पिल्लू के साइज मतलब बढ़ते हैं इस पिल्लू में जो इसका जैसे विकास होता है तो पत्तियों को वो क्या करते हैं कि मोड़ करके रेशम सी डोरी जैसा पत्तियों को मोड़ देते हैं और उसके अंदर घुसकर खाते रहते हैं। और पत्तियों की जो नोक होती है वो सूख जाती हैं और पत्तियां सफ़ेद भी पड़ जाती हैं और देखने से जैसे मालूम होता है कि वो कागज़ हैं, क्योंकि अंदर अंदर वो क्लोरोफिल को खा जाते हैं। और एक पिल्लू लगभग 5 से 6 पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती हैं। और इस कीट से बचाव हेतु जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं, जो पत्र लपेटक पत्र ये लपेटी हुई जो पत्तियां दिखाई देती हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और अगर ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में नीम बीज चूर्ण का भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में फिप्रोनिल 1 ml का 3 प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम एक और कीट लगता है जिसे कहते हैं गुलाबी तना छेदक कीट।
0: हाँ, ये भी तना छेदक जो है वो जैसे ज्वार का जो तना छेदक कीट है उसी की तरह ये भी हानि पहुंचाता है। अंतर ये है कि इसका जो पिल्लू होता है वो गुलाबी रंग का होता है और ये भी उसी तरह से शुरू में तो इसके जो है पिल्लू पत्तियों को थोड़ा सा खुरच कर खाते हैं, जैसे ये बड़े हो जाते हैं तने के अंदर घुसकर उसके बीच वाले पार्ट को खाते हैं और इस तरह से पत्तियां सूख जाती हैं और डेड हर्ट ये भी काज करता है। तो इसका ये भी जो है ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, जई, गेहूं में भी दिखाई देता है कभी कभी, वो तो धान में भी ये इसको भी हानि पहुँचाता है। और ये जो है जहाँ से ये प्रवेश करता है वहाँ पर इस पिल्लू का मल दिखाई देता है और इस तरह से ये जो जिस पौधे पे वो खाते हैं वहाँ वो पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार जो है वो भी रुक जाती है, और जब अंदर के पार्ट को खाते हैं तो ये भी जो है डेड हल्ट जो मृत केंद्र बनाते हैं जिसे खींचने से आसानी से खींचा जाता है, ये इसकी पहचान है। और इसका बचाव के लिए मई जून महीने में गहरी जुताई कर देना चाहिए, और ये लाइट ट्रैप जो है उसका भी प्रयोग करना चाहिए, तना छेदक से बचाव हेतु ट्रैप भी लगाना चाहिए जो 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से इसको लगाना चाहिए। और अगर कीटनाशी का प्रयोग करना हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में, या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर में, या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो मिक्सचर कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम लाही कीट की पहचान कैसे करें?
0: लाही कीट ये हरे काले रंग का जूं जैसा उसको कहते हैं, ये पौधों का जूं है, और ये माहू मेचा एफिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है अचानक से 6-7 दिन के अंदर में इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो है ये 6 से 7 दिन में इसके वयस्क बन जाते हैं, और फिर ये इस तरह से वो इसकी जो है वो अंडे नहीं देती है बल्कि मतलब शिशु ही पैदा करते हैं, इसलिए इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तनों के निचले हिस्से में समूह में रहते हैं, तनों से रस चूसते हैं, पत्तियों से भी रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। विकसित अवस्था में जब इसका प्रकोप होता है तो जब दाने सिकुड़ कर छोटे रह जाते हैं, दाने कभी कभी लगते भी नहीं हैं, इस तरह से इसका जो है वो हानि करते हैं। और इसका बचाव के लिए ये एक लेडी बर्ड बिटल जो कि नारंगी रंग का होता है, इस पे काले धब्बे भी होते हैं या काले लहरदार धब्बे होते हैं, ये इस एफिड को खाते हैं, यानी ये लेडी बर्ड बिटल जो है वो मित्र कीट है, ये जो एफिड है लाही है जो चूसकर जो खा रहे हैं हानि पहुंचा रहे हैं उनको ये खाते हैं। तो इनको देखने जब भी खेत में अगर रहे तो इसका बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, इसके लिए रासायनिक कीटनाशी का कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मित्र कीट ये जो लेडी बर्ड बिटल है जो इन लाहियों को खाते हैं वो मर जाएंगे। तो इसके लिए अगर छिड़काव करना भी है तो कोई भी नीम आधारित दवा का 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, ये कोई डब्बा हो उसको पेंट करके और उसको लकड़ी गाड़ कर खेत में और उसके उस पर उल्टा लगा देना चाहिए जिससे कि उस पर ग्रीस पे वो आकर जो है लाही सट जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा उपाय है।
1: जी मैम, मैम बाली मिर्च ये श्रीयन के फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: हाँ, ये जो मिज है वो ये भी छोटी मक्खी के जैसा होता है, छोटी मक्खी या मच्छर कहें दोनों के बीच का जैसा वो छोटा होता है, और इस कीट का जो उदर भाग होता है वो चमकीला नारंगी रंग का होता है और पंख मक्खी जैसा पारदर्शी ही होता है। और ये जो मिज है वो फूलों पर अंडे देते हैं और फूलों के पराग गिर जाते हैं, दानों से उजले पीपा के कोष दिखाई देते हैं, मतलब इस जो पिल्लू होते हैं वो बाद में पीपा बनते हैं तो उसका जो कोष होता है वो भी दानों की जगह दिखाई देता है, और जो पिल्लू दानों को खाते हैं वो दाने खकरी हो जाते हैं। और बाली मिर्च से बचाव के लिए लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए, नीम आधारित कीटनाशी नीम बीज चूर्ण अर्क का 5% का छिड़काव करना चाहिए, रासायनिक कीटनाशी में इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml यानी 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% दवा का जो कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो ये आपने जिस प्रकार से बताया कि श्री अन्न में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
1: तो उम्मीद है हमारे किसान भाई बहन जो श्री अन्न की खेती करते हैं उनके लिए हमारी आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, जो भी बातें मैम ने बताई उन बातों का आप ध्यान रखें, और साथ ही जिस प्रकार से मैम ने कहा कि हमारे कुछ जो कीट होते हैं वो मित्र कीट भी होते हैं, तो उन कीटों का बचाव करते हुए ही आपको प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
6: So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
3: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
5: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीजें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो जमाना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो AI है ना वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
0: उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी के
1: आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो AI जब कदम रख रहा था तो, या अभी भी जिनके लिए AI नया है, तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पर ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि AI को अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन न समझें, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है। होगी नहीं या ये इस बार ज्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाए। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें तो एआई के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है, जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ के क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
0: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
1: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाव की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल को बुआई कर सकते हैं।
0: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा, उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दी। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है, तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है ये जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
0: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये

दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें। लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई

0: ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ, देखिए जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती है। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टीलेज से की बुआई कर रहे हो तो क्या होता है कि जीरो टीलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही होगा।
1: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुंचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है।

0: तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार में मांग आने वाली है। एआई क्योंकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पे होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहां पर भी इसकी जानकारियां आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उसके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएँ, कितना दूरी पर लगाएँ, किस मौसम में लगाएँ, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती है उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें तो देखिए, आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए, एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है। आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो। आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल। तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। AI जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने AI से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से AI की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 24 अगस्त के दौरान आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चलेगी। किसान भाई बहनों के लिए कुछ सामान्य सलाह ये है, कमजोर मानसून में वैकल्पिक फसलें अपनाएं। मक्का की DKC 981, DHM 117 और रागी की VLM 389, RU8 और वाकुला, इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कमजोर मानसून में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम, बंडिंग, रिचार्ज पिट, कुएं और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाना जरूरी होता है। जो किसान भाई बहन चावल की खेती करते हैं उन्हें बता दें, कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और इसके बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बिस पायरी बेक सोडियम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरी जोस ल्यूफ्रान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें और ध्यान दें कि स्प्रे करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना जरूरी होता है। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें तना छेदक कीट के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहें। आपको बता दें कि अगर आपके पौधों में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो ऐसी स्थिति में प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर बहुत ही आसानी से निकल आती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें गोभी की मध्य अवधि वाली किस्में पूसाहिम, ज्योति, D96, पंतशुभ्रा, इन किस्मों की बुआई जल्दी ही कर ले। 350 ग्राम से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर रोग के लक्षण दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। पशुओं को संतुलित आहार दें और उनके लिए साफ एवं ताजा पीने के पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई बहनों के लिए एक विशेष सलाह ये भी है कि आंधी, बिजली और तेज हवा से फसलों को नुकसान हो सकता है, फूल या फल झड़ सकते हैं, कीट रोग का प्रकोप भी अधिक होता है और सब्जियों और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचता है। और साथ ही पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि पशुओं पर भी तनाव बढ़ता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए सुने हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
2: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
3: जी,
2: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
3: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो अभी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे, बच्चे को अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
2: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
3: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इंफॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती है। बीच तबके के लोग जो हैं, ना बहुत ज्यादा अमीर ना बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
2: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
3: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
2: हाँ,
3: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने तो भैया।
2: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में, और दूसरी चीज अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
3: देखिए जो बच्चे कुपोषित है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब करने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
2: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
3: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती है या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना माने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
2: बिल्कुल।
3: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
2: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए, हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
3: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह दे कि हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुमका उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी, गप्पे मारोगी, इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहाँ थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है, फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दो दोनों वर्किंग हैं, काम कर रहे होते हैं, वो तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को।

0: तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
1: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है। एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
0: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है। कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, निमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है। और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन्स की हम बात कर रहे हैं, वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन्स, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई, तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूं कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
0: बिल्कुल करता है। जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं, तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा
0: सा। बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं, ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी, तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए, तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं, क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है। माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक मतलब टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और एनम की भी होती है, क्योंकि वो रोज़ हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूँगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीज़ें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हों।
0: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है वेरी नाइस, लड़का हुआ है बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में गाँव में घरों में माओ का दादियों का चाचियों का सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रिएश्योर कर देगी और हो जाएगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवीं बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज़ है। आशा दीदी लोग जो भी हमारी प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। इसमें क्या जो समुदाय का वृहद, मतलब इनकी तो एक तरह से कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी, जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है, क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं।
0: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग, अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहाँ के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए? या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
0: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा। तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियां ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात की टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए, एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर। जब माए राशन लेने जाती है ना वहाँ पर दूसरी माओ से बातचीत होती है, तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा अरे हम तो उस दिन गए थे फला दिन तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाति इसलिए है कि हमें राशन लेने जाना है। और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहाँ दूसरों से जब बातचीत करती है जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फलां के बच्चे को लगवाया था देखो और फलां ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम, एक और चीज में मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है, किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रीअश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको किससे, ना बार बार रीअश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे। और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रीअश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
1: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीज़ों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम अपने पॉडकास्ट के अंत में हैं, फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेकर होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाएगा। तो तीन चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है, हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है जैसा आपने कहा कि उनकी बात को सुनना, उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो आपको कल ऑफिस जाना है तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा, कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं इसे खिलाइएगा। तो वो जब रीअश्योर हो जाता है ना तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी, पॉडकास्ट से पहले मैडम से मेरी बात हो रही थी और मैम ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि टीकाकरण जो है ना वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
0: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं।
1: मैम अंत में मैं चाहूंगी आप एक संदेश के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, सबके लिए एक संदेश।
0: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आए माता पिता, अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं, टीकाकरण जरूर करवाएं।
1: बिल्कुल। तो धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे से हमें बताया, इतनी सरल भाषा में सहज तरीके से हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
2: तो दोस्तों, उम्मीद है कि सेहत सही लाभ कई का ये प्रयास आपके जीवन में जागरूकता और विश्वास की एक नई किरण लेकर आया होगा। याद रखिए, सही जानकारी ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। टीकाकरण न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज को सुरक्षित रखने का एक मजबूत कवच है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, क्योंकि जब सेहत सही होती है तो लाभ सच में कई होते हैं। नमस्कार।

0: കൃഷി. नमस्कार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम, और यहाँ पर आप सभी के बीच मैं आरजे अनु, और हमारे बीच हमारे एक खास जो आज के एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, और वो हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. और आज हमारा जो विषय है चर्चा का वो है मक्का में समसामयिक प्रबंधन. दोस्तों आपको बता दें कि रवि मक्का की बात करें तो लगभग 8 लाख हेक्टेयर में इसका उत्पादन किया जाता है, और बिहार की बात करें यानी रवि मक्का के उत्पादन में बिहार की बात करें तो भारत में, पूरे भारत में बिहार सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है. और अगर हमारे बिहार के किसानों की बात करें तो और अधिक जानकारी चाहिए उन्हें, या पूरे भारत की बात करें तो उन्हें और अधिक जानकारी अगर इनके बारे में चाहिए कि मक्का का उत्पादन हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे करें, तो उसके लिए ज़रूरत है मक्का में समसामयिक प्रबंधन. तो इसके बारे में पूरी नॉलेज और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, तो आइए जानते हैं इनसे.
1: धन्यवाद. जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार राज्य रबी मक्का के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. रबी मक्का करीब 8 लाख हेक्टेयर में उगाया जा रहा है, और इसकी उत्पादकता भारत के विभिन्न राज्यों से ज़्यादा है. तो इस समय जब हम बात करते हैं अपने बिहार राज्य में रबी मक्का की बुआई का, तो जो बेस्ट टाइम है, सबसे उपयुक्त समय होता है बुआई का, वो नवंबर का प्रथम सप्ताह एवं द्वितीय सप्ताह है. कुछ किसान भाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भी इसकी बुआई कर चुके थे. तो इस समय अगर हम देखें तो मक्का जो है, जो लोग अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बुआई कर चुके हैं उनका मक्का जो है इसमें धनबाल निकल रहा है. जो किसान भाई नवंबर के द्वितीय सप्ताह में बुआई किए हैं उनका मक्का अभी धनबाल निकलने वाला है, और कुछ लोग देर से बुआई करते हैं, लगभग 30% एरिया में जो है दिसंबर में बुआई हुई है, 15 से 20 दिसंबर के आसपास, तो वो मक्का अभी जो है घुटने की ऊंचाई तक है. तो मक्का की जो बुआई है, जो इसमें उसकी अवस्था है, उसके अनुसार हम समसामयिक प्रबंधन कुछ इस प्रकार कर सकते हैं. जो किसान भाई लोग समय पर मक्का की बुआई कर दिए हैं और उनका मक्का इस समय धनबाल निकलने की स्थिति में है, तो उसमें जो है उनको सिर्फ जल का प्रबंधन पर ध्यान देना है और जो है फर्टिलाइजर प्रबंधन पर ध्यान देना है. तो जल के प्रबंधन में जरूरी होता है कि धनबाल निकलने से लेकर के मक्का के दाना के भराव तक उस खेत में नमी बने रहना चाहिए. इसके लिए जरूरी होता है कि हम जो है जब धनबाल निकलने वाली स्थिति होती है उसी समय एक हल्की सिंचाई करें. जैसा कि अभी हम देख रहे हैं बरसात हो गई है, तो ये बरसात पर्याप्त है और एक हल्की सिंचाई के बराबर बरसात हो चुकी है, तो इसमें आप जो है अभी सिंचाई रोक दें. लेकिन ये नमी जो है इस बरसात के बाद जो नमी है खेत में वो अगले 8-10 दिन तक ही मेंटेन रह पाएगी, तो निश्चित तौर पे आपको 8-10 दिन बाद जब उसमें सिल्क अवस्था आ जाती है उस समय ज़रूर सिंचाई करें. और अभी जो नमी हुई है इस पर आप अगर यूरिया का टॉप ड्रेसिंग नहीं किए हैं तो 1/3 जो नाइट्रोजन का डोज होता है, जैसे हम रबी मक्का की बात करते हैं तो आज के डेट में हम जो अनुमोदन करते हैं वो कहते हैं 180 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देने की ज़रूरत है. तो उसका 1/3 मात्रा हम लोग जनरली इस समय देते हैं जब धनबाल निकलने वाला होता है. तो 1/3 का मतलब हमको करीब

0: दिसंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में किए हैं, तो उनका अभी मक्का जो है घुटना की ऊंचाई के बराबर आ रहा है। तो ऐसे अवस्था में अभी उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अगर नहीं किए हैं तो शीघ्रातिशीघ्र मिट्टी चढ़ाने का काम करें, और मिट्टी चढ़ाने के समय ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन की बात है, जो पोषक तत्व नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की बात करें तो एक तिहाई मात्रा नाइट्रोजन का हमको इसी समय यानी घुटने की ऊंचाई पर देना होता है। तो मिट्टी चढ़ाते समय या चढ़ाने के तुरंत बाद, चूँकि बरसात हो चुकी है, नमी है खेत में, तो आप एक तिहाई मात्रा जो कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन है, या यूरिया की बात करें तो करीब 130 से 135 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से अभी हमको दे करके मिट्टी चढ़ा देना है, या चढ़ा करके मिट्टी दिया जा सकता है, यूरिया दिया जा सकता है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, अभी जो है इस यह मौसम, ये जो अवस्था है, ये सिंचाई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि बरसात एक हो चुकी है अभी, तो अभी सिंचाई को रोक दीजिए, लेकिन 8 से 10 दिन बाद एक हल्की सिंचाई देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। सिंचाई इस तरह से करें कि आपके खेत में जो नमी है वो बनी रहे 8-10 दिन तक, लेकिन जल का जमाव ना होने पाए। आप सिंचाई करिए, उसके 4-6 घंटे के अंदर आपका खेत पूरा पानी सोख लेना चाहिए। तो 5 से 6 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करना जरूरी हो जाता है, और एक हल्की सिंचाई करने से नमी बनी रहती है। लेकिन चूंकि बरसात ऑलरेडी हो चुका है और ये पर्याप्त है एक हल्की सिंचाई के बराबर, तो अगले 8 से 10 दिन बाद ही हमको सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जिन किसान भाइयों का ऑलरेडी मिट्टी चढ़ चुका है, सिंचाई भी बरसात के रूप में हो चुकी है, तो वो लोग भी जो है जो एक तिहाई नाइट्रोजन हम देते हैं उसका प्रयोग करें। कुछ किसान भाइयों के खेत में देखा जा रहा है कि खेत में जो है जिंक की कमी के लक्षण आ रहे हैं, जैसे मक्के की पत्तियां, ऊपर की पत्तियां जो है सफ़ेद कलर ले रही हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें जिंक की कमी आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग जो है इस समय करीब 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट, जो 21% का आता है बाज़ार में, ले करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान देना होगा कि जिंक सल्फेट को बालू में मिलाएं और सीधे जड़ क्षेत्र पर उसका छिड़काव करें, पत्तियों पर उसको चिपकने ना दें, क्योंकि पत्तियों पर चिपक जाने से क्या होगा, पत्तियां झुलस जाती हैं। तो जिंक की कमी होने पर जिंक सल्फेट का भी व्यवहार किया जा सकता है। कुछ किसान भाई बहुत ही लेट कंडीशन में मक्का लगाए हैं, वो अभी मात्र उनका 1 महीना या 1.25 महीना का हो रहा है, तो ऐसे किसान भाई जो है मक्के की निराई गुड़ाई करें, या खरपतवार का प्रबंधन, अगर खरपतवार की प्रेशर है ज़्यादा तो खरपतवार का प्रबंधन खरपतवार नाशी दवा से भी कर सकते हैं। इसके लिए ये लोग एट्राजीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, या बाजार का एट्राट्रॉफ, एट्रागार्ड, सोलारो 50 इत्यादि दवा का 2.5 किलो मात्रा जो है लेकर के उसको 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, तो जिससे विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो लगभग नियंत्रण में आ देते हैं, और बचे खुचे जो खरपतवार रहेंगे वो निराई गुड़ाई करके जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो अपने आप वो पूर्णतया नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम मक्के में समसामयिक प्रबंधन कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट में हम कहें तो जो है जो घुटना की ऊंचाई है मक्के की, उसमें एक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों का मक्का धनबाल निकलने वाले स्थिति में है, वो लोग भी उस समय सिंचाई करें, और दोनों स्टेज में, दोनों अवस्थाओं में सिंचाई के बाद हमको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन अर्थात 130 से 135 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग करना है, जिससे कि नमी का भी बैलेंस बना रहे और पोषक तत्वों का भी एक समुचित बैलेंस बना रहे। जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है, आपका अगर नी हाइट स्टेज है, घुटने की ऊंचाई तक का मक्का है, जिंक की कमी दिख रही है, तो वहाँ 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट जो कि 21% का बाजार में उपलब्ध है, उसका भी बालू में मिलाकर उसको प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें।
1: जी, तो किसान भाइयों, आपने जाना कि आप मक्का में समसामयिक प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, साथ इसमें जाना आपने कि आप कैसे इसकी खेती कर सकते हैं, सिंचाई कब कर सकते हैं, खरपतवार प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ ही बहुत सारी जो कुल मिलाकर मैं कहूँ तो बहुत सारी जानकारी आपको मक्का की खेती के बारे में मिल चुकी है। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। फिलहाल आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि,
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। है ना टीचर जी?

0: सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
3: So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
11: हेलो, नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका अपना पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में होंगी उन्नत बातें और अपने वादे को पूरा करते हुए हम एक रोज़ अलग अलग विषय आपको सुनाते हैं और आज का भी ये खास विषय है। मैं आपको बता

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: साथियों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है, अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में AI की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में AI के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि AI किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि AI क्या है। देखिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं जो जीवित चीज़ें हैं उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है, लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है आने वाला है ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता आकलन करने की क्षमता ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो AI है ना वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए जितना भी दुनिया तरक्की कर ले लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है, तो देखिए पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं जवाब देता है,
0: उसमें मतलब अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी के आसपास
1: आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं, तो AI जब कदम रख रहा था तो या अभी भी जिनके लिए AI नया है तो उनके बारे में AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं, AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई, टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया बदलाव देख रहे हैं इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो AI इसका एक नया वर्जन है और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि AI को हम अगर हम अपना साथी बना ले, उसे दुश्मन ना समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी, इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है AI से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम AI की मदद ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना तो हम उसको अगर इसमें AI से हम पूछें तो AI के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है। लेकिन जो AI की जो अपनी जो AI भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में AI से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो AI पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, AI आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही AI आपको बता देगा। और हम लोग भी AI आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज हैं उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि AI आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज़ को AI बहुत तेज़ी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज़्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप AI के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सब के डेटा अगर आपके AI के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में AI आपको मदद करता है।
0: अच्छा, AI क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है AI हमें मौसम की सटीक जानकारी?
1: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो AI आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से यह तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाव की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है, AI से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
0: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में AI मदद कर सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद, पानी, जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है, या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने
2: जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें जो फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा, उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दी। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है, तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
0: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है। वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
0: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
2: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती है। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूँकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो ज़ीरो टीलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि ज़ीरो टीलेज में बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा। और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही होगा।
0: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
2: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम, तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाज़ार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है क्योंकि बाज़ार में मांग आने वाली है। एआई चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती है उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है, जैसे शेयर मार्केट में होता है। एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियाँ जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
0: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुँचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
2: देखिए एआई एक सुविधा एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पर लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं तो आने वाला दिन आपका रहेगा, बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लरिकल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे, वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है। आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फ़ायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
0: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो। आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
2: बिल्कुल। तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। एआई जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
0: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने एआई से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से एआई की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में एआई की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में एआई के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि एआई किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एआई क्या है। देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच और इंसान के बीच एक जो पतली सी जो सूत्र है ना, वो है बुद्धिमत्ता की। यानी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उसमें इंसान दिमाग लगाने वाला प्राणी है। लेकिन अब जो ज़माना आ चुका है, आने वाला है, ये हम नहीं कहेंगे, ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह एआई का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है, अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि जो पिछला वर्ष जो गुजरा, 2024 का जो वर्ष था, वो एआई एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था। फिर 2025 में एआई एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया। लेकिन अब जो एआई है ना, वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है, एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाती हैं। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में एआई का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि एआई का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। चैट जीपीटी से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
0: मतलब उसमें अब एआई बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
1: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो एआई स्टूडियो है, आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं। तो एआई जब कदम रख रहा था, तो या अभी भी जिनके लिए एआई नया है, तो उनके बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। एआई जॉब खा जाएगा, एआई हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पे ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर के ये जो दुनिया में बदलाव देख रहे हैं, इस कंप्यूटर के बदौलत ही हुई है। तो एआई इसका एक नया वर्जन है, और उस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और खेती में भी ये बदलाव हमारे सामने होगा।
0: यानी कि एआई को हम अगर हम अपना साथी बना लें, उसे दुश्मन न समझे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी।
1: बिल्कुल, ये ज़िंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीज़ें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है एआई से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम एआई की मदद ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज़्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें तो एआई के पास अगर इस तरह का डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था। पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में। अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है, तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है। जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब यह बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सबके डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
0: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
1: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप की आप बात करते हैं कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे, तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है एआई से जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल का बुआई कर सकते हैं।
0: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में एआई मदद कर सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ है या 10% ही मुनाफा हुआ है या फिर कोई मुनाफा तो हुआ ही नहीं, बस जो हमने जितना लगाया था उतना ही हमें निकल पाया। तो इस चीज़ को करने के लिए खेती के जो खेती से आमदनी को दोगुनी और तीनगुनी करने में सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं

0: कम रहती है जो एआई जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है कि आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दीजिए। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है, तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एआई अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा एआई जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या एआई की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन एआई जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि एआई को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से ही बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ देखिए, जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती हैं। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी।

0: आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है, और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पे की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हों तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में 20 की बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एआई कंट्रोल कर लेगा, और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा, और इस सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा, और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, वो एक सीध में होती है, और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में, और काम तेज और सही तरीके से ही हो जाएगा।
1: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुंचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं, जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो
1: खेती हो
0: रही
1: रही
0: है,
1: है।
0: जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है बड़ी मंडी में, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है, या हमें स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मिल रहा है, तो वो एआई के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। एआई यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाजार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार में मांग आने वाली है। एआई चूंकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पे करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पे करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, एआई आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियाँ जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब एआई बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये एआई अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छी जो अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या एआई से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है, या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए एआई एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। एआई के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उनके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है, थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है। जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पे इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियाँ हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में एआई को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती हैं उसमें अगर एआई के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप जरूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से एआई का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप एआई का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास एआई का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी एआई के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न हैं तो आने वाला दिन आपका रहेगा, बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप एआई वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए एआई से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा, बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था, तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया, तो क्या हुआ वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेज़ी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है, आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो, आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो, लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल, तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। एआई जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने एआई से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से एआई की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफी ज्यादा है और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है?
2: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है। आज हम इस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं। इसका चाय भी बनता है और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है। इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं। बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं। और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं। तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
1: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
2: जी जी।
1: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
2: एक एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूँ कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया है कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
1: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
2: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियां हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है, एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बुना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
1: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
2: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा, एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए, तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीज उपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थिरम है, थिरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं, एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजीम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से, ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है, लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके, एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है, एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में NPK का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से NPK की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 kg नाइट्रोजन एवं 20 kg पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है, इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है, लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500 से 650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए। डिटैचिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
2: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई, पिंक बोरर, तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं, तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है, चूंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है, तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
1: जी। और मैम, बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है, लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
2: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
1: मैम, आप बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
2: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के प्रभेद लगाए जाते हैं, तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पर हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
2: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुंचाएं वहां पे भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयू सवार की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से बेबीकॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि

0: हाय, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियाँ लेंगे कि पोषण के बारे में, कुछ पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ, तो छोटू भैया आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
0: जी।
1: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं
0: जी। जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है, तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में
0: जी। अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी,
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है तो पोषण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से, हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए, इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
0: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या कहना?
1: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है, उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक मेथी धनिया की चटनी हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए। ये अपना घरेलू उपचार है।
0: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी। उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

0: उन्नत कृषि। यह है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु को स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। एक खास विषय एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं। जी हां, हम आज बात करेंगे एरोबिक धान की खेती के बारे में। मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं इस विषय पर, तो इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एरोबिक धान की खेती ये तकनीक क्या है और परंपरागत धान की खेती से ये कैसे अलग है।
1: धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एरोबिक धान, मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान बिहार में पैदा की जाने वाली खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से धान की अच्छी फसल लेने वाले किसानों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बिहार में धान की खेती बड़े पैमाने पर 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जितनी चावल की खपत हुई थी उसकी तुलना में 2035 में 25% ज़्यादा चावल की जरूरत होगी, जो बदलते हुए पर्यावरणीय परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारे किसान बंधु का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक धान की खेती, पानी उपलब्ध होने की परिस्थिति में धान उगाने की एक आधुनिक तकनीक है। यह कम पानी में भी अच्छी हम उपज ले सकेंगे। अनुसंधान परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि एरोबिक धान की जल उत्पादकता, जो प्रचलित परंपरागत विधि से हम लोग जो धान उगाते हैं उसकी तुलना में अधिक होती है। एरोबिक विधि से धान उगाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली एरोबिक धान की संस्तुत अधिक उपजशील प्रजाति को सीड ड्रिल या देसी हल से सीधे खेत से बुआई करते हैं तथा गेहूँ के भांति धान को उगाया जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहते हैं। एरोबिक विधि से धान की खेती से बुआई के समय जो पानी बहुत कम लगता है, जैसे 67% कम पानी लगती है, और जो मजदूर जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगती है उससे 90% कम मजदूर इसमें लगते हैं, और 30% तेल की बचत होती है तथा 60-70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जबकि उत्पादन लगभग समान धान जैसा होता है।
0: तो इस तरीके से ये अलग है। और डॉक्टर साहब, धान, इस एरोबिक धान की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को, वो भी बता दें।
1: जैसे प्रारंभिक प्रचलित जो हमारे धान किसान भाई खेती करते हैं, वो पानी भरी एवं वायु संचारित दशा में धान की खेती करते हैं। उसके सापेक्ष में जो वायु संचारित एरोबिक धान की खेती से बहुत सारे लाभ हैं। इस पद्धति से धान की खेती में हम लोग सीधी बुआई करते हैं तथा खेत में नमी बनाई रखी जाती है। लेकिन जैसे हम लोग जो परंपरागत हम लोग खेती करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखी जाती है, इसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक नमी, केवल खेत में नमी बनाई रखी जाती है और खेत में लगातार पानी भरने रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि परंपरागत में नर्सरी लगानी पड़ती है तथा रोपाई की आवश्यकता होती है, एरोबिक धान में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं। इसमें हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं जिसके कारण बीज की कम मात्रा लगती है, और जो लेबर जो परंपरागत में ज़्यादा लगता है इसमें बहुत 50% से ज़्यादा इसमें हम लोग को लेबर नहीं लगता है, और सिंचाई जल 60% सिंचाई जल की बचत होती है तथा पौधा उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है और कीट एवं बीमारियों के प्रकोप में भी कमी आती है। एरोबिक धान लगाने से पर्यावरण में हानि पहुंचाने वाले मीथेन गैस के उत्सर्जन में 80-85% कमी आती है। इसमें मजबूत जड़ तंत्र विकास होने के कारण फसल में गिरावट नहीं होती है, और ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार लाता है।
0: तो ये तो बातें हो गई हैं हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिल सकता है अगर एरोबिक धान की खेती कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं शस्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही प्रभेद के बारे में। तो डॉक्टर साहब, एरोबिक धान की खेती में प्रयुक्त होने वाले प्रभेद और शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं।
1: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के संयुक्त रूप से एरोबिक धान की खेती तकनीक रूप से विकसित की गई है और एरोबिक धान की खेती ऐसे किस्म करीब करीब उतनी ही उपज देती है जितनी समान तौर से ज़्यादातर पैदावार देने वाली धान की किस्में देती हैं। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राई कल्टीवेशन कहलाता है। इसमें स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती है। यह एपो नाम के ब्राज़ील में एरोबिक राइस की दुनिया में सबसे अच्छी एरोबिक राइस माना जाता है। एपो को भारतीय धान के साथ क्रॉस ब्रीड करवाकर ऐसी तैयार किस्में की गई है जो भारतीय कृषि की परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। इन किस्मों में 40% कम प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है तथा इसका उपज 4.5 टन प्रति हेक्टेयर को उपज देती है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो भी किस्में एरोबिक धान के लिए अनुशंसित है उसमें हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सबौर अर्जल है जिसकी परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की है। इसकी औसत उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और दूसरी जो प्रभेद अनुशंसित है वह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा विकसित की गई है, वह है सीआर धान 201 और सीआर धान 202। यह 110 से 15 दिनों की है और इसकी भी औसत उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एरोबिक धान की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके जो सीडलिंग होते हैं वो पूर्ण अंकुरण देते हैं और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। और जो एरोबिक धान में सबसे बड़ा दिक्कत किसान भाई को आती है वो घास के और ये घास के प्रति प्रतिस्पर्धी होती है और इसका तीव्र बायोमास का विकास होता है जिसके कारण पैदावार अच्छी मिलती है। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एरोबिक धान की खेती में कितनी बीज की मात्रा लगती है और उसको हम लोग कैसे बीजोपचार कर सकते हैं। बुआई से पहले स्वस्थ बीजों को छटनी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करना चाहिए। नमक का घोल बनाने के लिए 2 किलोग्राम समान नमक 20 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में 25 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह लाएँ। इससे स्वस्थ एवं भारी बीज नीचे बढ़ जाएगा और जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। इस तरह साफ अस्वच्छ आटा हुआ बीज 20 किलोग्राम बीज वाले मशीन में 25 किलोग्राम मोटे दाने वाले पर्याप्त होते हैं। बीज उपचार के लिए 10 ग्राम बेबेस्टीन और 2.5 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 1 ग्राम एग्रीमाइसिन 10 लीटर पानी में घोल लें। अब 20 किलोग्राम जो छाटे हुए बीज या 25 मोटे दाने वाले 25 किलोग्राम यदि बीज हो उसको अच्छी तरह उसमें मिला लें और उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम लोग दूसरे सबसे बड़े बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन। इस कैसे करते हैं हम लोग एरोबिक धान की खेती में, तो अधिक उपज के लिए जैसे कि हम लोग समान जो परंपरागत धान की खेती के लिए 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास मात्रा की संस्तुति गई है, उसी तरह इसमें भी एरोबिक धान में भी 120 किलोग्राम नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर संस्तुति की गई है। उसके बाद एक तिहाई जो नेत्रजन फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय डालना अति लाभकारी होता है और नेत्रजन की शेष दो तिहाई मात्रा को बराबर बराबर भाग में बांटकर फूल निकलते समय तथा पुष्पावस्था पर दे देनी चाहिए।
0: जी, तो इसके साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कीट व्याधियों के बारे में कि कौन कौन से कीट लग सकते हैं इस एरोबिक धान में और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
1: कीट प्रबंधन में हमारे किसान भाई जो मुख्यतः कीट लगते हैं वो लगते हैं पौध के भूरे काले हम सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। उनके शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों के तने और रस को चूसकर फसल को हानि पहुँचाते हैं। फसल पर इस कीट की निगरानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फूद के तने पर रहते हैं और पत्ती पर नहीं दिखते हैं। इसकी निगरानी के लिए प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप का प्रयोग किया सकता है। आवश्यकता अनुसार इमिडाक्लोपीड दवा जो होती है वो 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर पानी का छिड़काव करें और छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना है कि नोजल पौधे के तनों पर रखें। और दूसरे सबसे प्रमुख कीट है वह तना छेदक कीट है और तना छेदक की केवल सुइयां ही फसल को हानि पहुंचाती है तथा वयस्क पतंगे फूलों को शहद आदि को निर्माण करते हैं। बाली आने से पहले इसके हानि लक्षणों को डेड हर्ट तथा बाली आने के बाद सफ़ेद बाली के रूप में जाना जाता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद ट्राइकोकार्ड जो आता है उसमें 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर उसके लार्वा रहते हैं, उसको हम लोग ट्राइकोकार्ड का उपयोग कर सकते हैं या रासायनिक कीटनाशक में दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरॉन 3G या कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा कीट गंधी बग है, यह कीट खेत में दुर्गंध फैलाता है, अतः इसे गंधी कीट कहा जाता है। इसके शिशु और व्यस्क दोनों ही दुधिया अवस्था में दानों के रस को चूसकर खाली कर देते हैं, ऐसे दानों पर काला निशान बन जाता है। आवश्यकता अनुसार किनॉल फॉस 25 cc 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। रोग प्रबंधन में ब्लास्ट एक प्रमुख रोग है, यह रोग फफूंद से फैलता है। फफूंद सभी भाग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर भूरे के रंग के रूप में दिखाई देता है। ट्राइसाइक्लोजोल जो दवा आती है उससे हम लोग को बीज उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद यदि पत्तियां पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1000 या ट्राइसाइक्लोजोल 500 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी पत्ती का जीवाणु झुलसा रोग है। यह बीमारी जीवाणुओं के द्वारा फैलाई जाती है। पौधों की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक यह बीमारी कमी हो सकती है। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग में शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगती है। इसमें सबसे पहला बीजोपचार सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोल में बीज को 12 घंटे तक डुबोकर बीजोपचार करें। और जिस खेत में बीमारी लगी हो उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें। इससे बीमारी फैलने की आशंका है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ खेत में पानी नहीं रहने देना चाहिए। खेत में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए खेत में समुचित जल निकास की व्यवस्था की जाए। बीमारी के नियंत्रण के लिए जो 74 ग्राम एग्रोमाइसिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस प्रकार हम लोग कटाई और मराई जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं तो बालियां निकलने में लगभग 1 माह बाद सभी किस्में पक जाती हैं। कटाई के बाद 80% बालियां 80% दाने भर जाएं, उसके बाद 20% उसमें नमी हो तो उस समय उपयुक्त होता है। मराई और सफाई के बाद धान को अच्छी तरह सुखा के भंडारण करना चाहिए। भंडारण के पूर्व दानों में 10% नमी तक सुखा देते हैं। उपज समस्त उपयुक्त संस्क्रियाओं को करके एरोबिक धान को अधिक उपजाऊ संस्तुत किस्मों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई पा सकते हैं।
0: जी, तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर जो बताई गई हैं आपको एरोबिक धान की खेती के बारे में। और हमारे बीच थे डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। नमस्कार, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए और साथ ही हमारे अन्य श्रोतागण के लिए। तो श्रोताओं, आज हम बता दीजिए, हमारा जो विषय है बहुत ही खास है। आज हम बोरो धान की उन्नत खेती के बारे में जानेंगे और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बोरो धान क्या होता है और साथ ही खरीफ धान से ये कैसे अलग होता है।
1: किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि बोरो धान क्या होता है। बोरो धान एक विशेष प्रकार का धान का मौसम है जिसमें बुआई जारा से पहले अक्टूबर नवम्बर, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, रोपनी जारा के बाद जनवरी फरवरी और कटनी अप्रैल मई महीने में होती है। और बोरो धान की उन्नत खेती ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां जल जमाव के कारण गेहूं या मक्का जैसी फसलों की खेती नहीं की जा सकती है। सबसे पहले इसकी खेती नदियों के किनारे होती थी जिसमें लंबी ऊँचाई एवं कम उपज देने वाली प्रजातियों का व्यवहार होता था। अब अधिक उपजशील धान के बौने प्रभेद होने के आगमन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसकी खेती का प्रचलन बढ़ा है और बोरो धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। अब इसकी खेती निचली भाग में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जमीन जहाँ सिंचाई की सुविधा होने लगी है। बिहार राज्य में बोरो धान की खेती सबसे पहले कोसी प्रमंडल अंतर्गत होती थी, लेकिन अब इसका प्रसार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी हो रही है।
0: जी डॉक्टर साहब, बोरो धान की अनुशंसित किस्मों को हम जानना चाहेंगे, कौन कौन सी अनुशंसित किस्म है?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के गहन अनुसंधान के बाद शीत अवरोधी बोरो धान के लिए प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं। बोरो प्रजातियों में अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, साथ ही प्रचुर नमी उपलब्धता, पूरे जीवन काल में तीव्र सूर्य के किरण की प्रचुरता, रोग कीट एवं मौसमी खरपतवार की न्यून संभावनाओं के कारण समान धान की तुलना में लगभग 30-50% तक अधिक बोरो धान की खेती से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोरो धान में बोरो संस्तुत अधिक उपशील प्रजातियों में गौतम, ऋचार्या, धनलक्ष्मी, प्रभात, सरोज, IR64 है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गौतम एक अनुशंसित बोरो के लिए महत्वपूर्ण प्रभेद है, तो गौतम बोरो मौसम के लिए यह एक बौनी उपशील किस्म है। इसमें कल्लों की संख्या अधिक, पत्तियां खड़ी तथा हरी होती है। इसके दाने महीन होते हैं तथा इसकी उपज हम लोग 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसकी अवधि, परिपक्वता अवधि 170 से 175

0: बातें हो गई अनुशंसित किस्मों की, अब इनके नर्सरी तैयार करने की विधि भी हम जानना चाहेंगे। कैसे नर्सरी तैयार करें बोरो धान के लिए?
1: सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बीज स्थली का चयन या नर्सरी तैयार करने के लिए हमें जहां पानी का टिकाव होता हो और मिट्टी भारी हो, उसके लिए हम लोग जमीन का चयन करते हैं। और खेत में एक हेक्टेयर के दसवें भाग के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की खाद, 2.5 किलो यूरिया, 6 किलो SSP, 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग पौध को के खेत को तैयार करते समय डालकर कदवा कर दें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना चाहिए। 80 से 100 ग्राम अंकुरित बीज की बुआई प्रति वर्ग मीटर में करनी चाहिए। बीज अंकुरण के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोने के पश्चात 24 घंटे छाया में भींगे बोरों से ढकना आवश्यक है। अंकुरित बीज को समान रूप से तैयार बीज स्थली में छींटें या टोप दें। बीज स्थली समतल होनी चाहिए। पौधों को पाला से बचाने के लिए बीज स्थली में हमेशा पानी रखना चाहिए और रात में पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। बीज को पहले सतह पर पानी में डुबोकर रखने के बाद नमी वाले बोरे में एक दिन रखें। बीज के अंकुरित हो जाने के बाद उसे तैयार बीज स्थली में डालना चाहिए। बीजों को उपचारित 2 ग्राम बेभेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करके बोना ही श्रेयस्कर होता है। किसान भाई बीजों की बुआई के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें ताकि नर्सरी में नमी पर्याप्त बनी रहे।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, ये बोरो धान की नर्सरी तैयार करने की विधि आपने बताई, लेकिन अब उन्नत खेती के लिए बहुत सारी जो हैं वो शस्य क्रियाएँ होती हैं, तो उन शस्य क्रियाओं के बारे में बताएं, किसान भाइयों को कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ अपनानी चाहिए जिससे कि वो उन्नत खेती कर पाएँ बोरो धान की।
1: बोरों के लिए बुआई का समय, बीज गिराने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है और बीज दर हम लोग को एक हेक्टेयर के लिए 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। रोपनी का समय, रोपनी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद 15 फरवरी तक की जा सकती है। एक स्थान पर एक या एक से दो बिचड़े रोपने चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। एक वर्ग मीटर में 35 से 40 मीटर झूर रखें। रोपनी के बाद अगर कहीं पौधे मर जाएँ तो वहीं पुनः रोपनी कर देने चाहिए। कल्लों की संख्या वृद्धि के लिए छिछली रोपनी आवश्यक है। पानी में हल्की परत रखना चाहिए ताकि घास पात न जम सके। उर्वरक का व्यवहार करते समय किसान भाई ये अनुशंसित जो उर्वरक का डोज है उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे 100 किलो नेत्रजन, 40 किलो सफूर, 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर अनुशंसित है उसको करना चाहिए। कदवा करते समय आधा नेत्रजन और सफूर एवं पोटास की पूरी मात्रा डाल दें। बचे हुए नेत्रजन का आधा रोपनी के 25 से 30 दिन बाद उपरिवेशन के रूप में और आधा भाग गाभा जब लगने लगे तो उसके पहले डाल दें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार में जैसे हम लोग जानते हैं शस्य क्रियाओं द्वारा खरपतवार नियंत्रण हेतु गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं, चाहे हरी खाद का प्रयोग चाहे पटलर आदि का प्रयोग करें। रासायनिक विधि के अंतर्गत विभिन्न खरपतवार नाशक फसल को रोपाई के पश्चात संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रेटीला क्लोर, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेटीला क्लोर 50% इसी 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 5 से 7 किलोग्राम बालू में अच्छी तरह मिलाकर पर्याप्त नमी की स्थिति में नर्सरी में डालने से 2 से 3 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह रोपाई की स्थिति में सक्रिय एवं चौड़ी पत्री वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो रसायन संस्तुत रसायन है उसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रेटीला क्लोर उसको हम लोग 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर को 50 किलो बारू में मिलाकर अच्छी तरह से उसके बाद 3 दिनों के अंदर प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बोरो धान की खेती होती है, बोरो धान में कीट रोग व्याधि का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन जो कीट में गंधिक कीट का प्रकोप होता है तो साधारणतः बोरो मौसम में रोग व्याधि को प्रकोप कम होता है। गंधिक कीट की रोकथाम हेतु फॉलीडॉल कीटनाशक धूल के भुरकाव पौधों की बालियों पर करनी चाहिए। इसका प्रयोग उस समय होता है जब दानों में दूध बढ़ने लगता है। फसल की कटनी जब बाली के निचले दाने करे हो जाएं और पर सिंचाई बंद करके सभी दानों को करे हो जाने पर जैसे फूल की अवस्था होती है उससे 30 से 35 दिनों के बाद कटाई करनी चाहिए। प्रभेद की अवधि के अनुसार पक जाने पर कटनी करनी चाहिए। कटाई के बाद दानों की सफाई करके छाया में 13 से 14% नमी तक सुखाकर भंडारित कर देनी चाहिए।

0: एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि पौधों को हम लोग जैसे बरो मौसम है तो उसमें हम लोग जैसे बिचड़ा को पौध से ठंडक से बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसमें पौधों की सिंचाई की समुचित रूप से करते रहना चाहिए। जैसे अधिक जब ठंडा पड़े तो उसे पौधों की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। पुआल और गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करनी चाहिए और प्रातः पत्तियाँ पर एकत्र ओस को गिरा देना चाहिए और पौधों को साथ प्लास्टिक सीट पर इसे ढक देते हैं और शाम में ढक देते हैं, प्रातः उसे हटा देते हैं। कुछ सीमा तक खेत के धुआं करके ठंडक को बचा जो बिचड़ा को है उसको बचा सकते हैं। बोरो धान हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसकी अधिक उपज होना है। इस मौसम में अधिक सूरज की किरणें पौधे को मिलती है, रात्रि में कम तापमान रहता है और अच्छा जल प्रबंधन बोरो सीजन में होता है, जिससे के साथ साथ कम रोग व्याधि प्रकोप एवं भरपूर उर्वरक का प्रयोग करने से जो हमारे प्रभेद हैं वह क्षमता से अधिक उपज देती है। लेकिन खरीफ मौसम में ऐसा संभव नहीं है, तो बोरो धान की खेती मुख्य रूप से किसान भाई जहाँ जल जमाव की समस्या रहती है, जहाँ हम लोग जो गेहूं और मक्का की फसल नहीं ले सकते हैं, उसकी खेती करके बोरो धान की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों, बोरो धान की खेती के बारे में आपने जाना, तो जो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं आप उनको सुने और जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो उस विधि में आप ज़रूर इसे डालें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आपकी फसल और आपकी फसलों की पैदावार ये सभी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। तो जी हाँ, बीज उत्पादन में हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रखना होता है। आज इसी विषय को लेकर हम आए हैं। हमारा विषय है धान के बीज उत्पादन हेतु तकनीकी सुझाव, और इस विषय को आप सभी के बीच लेकर आए हैं डॉक्टर सत्येंद्र। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बीज को लेकर किसानों के पास क्या क्या कानूनी वैधताएँ हैं इनके बारे में बताएं।
2: किसान भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक बीज को लेकर वैधता का सवाल है, तो भारत में एक इसके लिए कानून पास किया गया था सन 2001 में, जिसका नाम है पौधा किस्म संरक्षण एवं कर्षक अधिकार अधिनियम। इसको PPB एंड FR एक्ट 2001 के नाम से जाना जाता है। इसमें बीज से संबंधित या फिर किसानों के लिए क्या क्या छूट दिया गया है बीज से संबंधित, वो सारी बातें इस एक्ट में हैं, इस अधिनियम में निहित हैं। तो इसके अनुसार किसान भाई अपने बीज को अपना बीज खुद पैदा कर सकते हैं या फिर किसी से भी लेके हम लोग किसान भाई बीज लगा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई बिल्कुल फ्री हैं, और ये इस तरह का जो अधिनियम है ये भारत में ही ये इस तरह का बनाया गया है कि किसानों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसान भाई अपने बीज को या तो किसी को अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं, किसी का बीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। तो इसके लिए अलग से अधिनियम में, इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं जिसमें किसान भाई अपने बीज को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, उन्नतशील बीज ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है?
2: उन्नतशील बीज जो बीज की गुणवत्ता है उसको अगर हम देखेंगे तो बीज की गुणवत्ता कई पहलुओं पर निर्भर करती है। तो उसमें अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो तरह की गुणवत्ता उसमें होती हैं, एक भौतिक गुणवत्ता होती है और एक उसकी आनुवंशिक गुणवत्ता होती है। तो आनुवांशिक गुणवत्ता की जहाँ तक बात करें तो जैसे अलग अलग किस्म का बीज होता है, तो अलग अलग किस्म के बीज में कोई दूसरी प्रजाति का या दूसरे प्रभेद का तो मिक्सचर नहीं है, तो वो उसकी आनुवांशिक शुद्धता पे निर्भर करता है। दूसरा उसकी भौतिक शुद्धता होती है, तो भौतिक शुद्धता में कोई दूसरा इनर्ट मैटर या फिर कोई खराब तरह का बीज तो नहीं मिक्सर है। तो ये उसको भी ना एक तरह से उसका भी मापदंड बनाया गया है, तो ये सारा उसकी भौतिक शुद्धता पे निर्भर करता है।
1: जी, और धान की किस्मों की बात करते हैं तो बीज उत्पादन के लिए किसान भाई किन किन धान की उन्नतशील किस्मों को अपना सकते हैं?
2: धान की उन्नतशील किस्में तो काफ़ी हैं जो किसान भाइयों के बीच में प्रचलित हैं, और अभी अगर हम इस समय की बात करें तो ये धान का समय है, धान की फसल खेत में खड़ी है, तो किसान भाई जैसे निचले क्षेत्रों में हम लोग रिकमेंड करते हैं, थोड़ा जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है उस एरिया में राजेंद्र मैसूरी या फिर स्वर्णा सबवन, ये लंबे अवधि के हैं, सबोर संपन्न धान है, ये लंबी अवधि के प्रभेद हैं, इनको हम लोग संस्तुत करते हैं। इसी तरह से जो ऊपरी भूमि है जहाँ पे कम पानी लगता है या कम पानी की अवस्था में अगर हम देखें तो वहाँ पे कम दिन की जो प्रजाति हैं जैसे सबोर हर्षित है, सबोर दीप है, सहभागी धान है, ये सब प्रजाति हम लोग संस्तुत करते हैं।
1: जी, अगर धान में बीज उत्पादन से संबंधित किसी तकनीकी बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाता हो तो कृपया बताएं सर।
2: हाँ, इसमें देखिए किसान भाइयों, बीज उत्पादन से संबंधित कई सारे तकनीकी बिंदु होते हैं। उसमें एक तो है कि अगर आप जिस खेत में बीज उत्पादन कर रहे हैं वो, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, यानी आप अगर सर्टिफाइड बीज पैदा कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उनके जो मापदंड है सारे उसको फॉलो करना होता है, उसको मानना होता है। और अगर आप अपना खुद का भी बीज पैदा कर रहे हैं तो हमारा सुझाव यही रहता है कि किसान भाई उसमें भी सारे मापदंड जो हैं, जो उन्नतशील बीज पैदा करने के मापदंड हैं, वो सारे उसमें अपनाने चाहिए किसान भाइयों को। तो उसमें कुछ पहलू हैं जिनको किसान भाइयों को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला एक है कि एक एक खेत में से दूसरे खेत के एक बीज के खेत से दूसरे बीज के खेत की दूरी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि धान के लिए अगर आप बीज पैदा कर रहे हैं, आप जिस खेत में बीज पैदा कर रहे हैं, जिसको आप बीज का खेत मान रहे हैं, उस खेत से दूसरे खेत की दूरी यानी धान की दूसरी किस्म की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर हो या इससे ज़्यादा हो। तो दूसरे इसको तो बोलते हैं पृथक्करण दूरी, तो ये 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए। दूसरे अगर मान लीजिए किसान भाई एक कोई उनका कोई प्लॉट है जिसमें वो धान का बीज के लिए धान लगा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, और वो 3 मीटर का पृथक्करण जो दूरी वो नहीं दे पाए हैं, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि कटाई के टाइम 3 मीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो हटा सकते हैं, यानी चारों तरफ उस प्लॉट के चारों तरफ 3 मीटर तक का धान को आप बीज में इस्तेमाल ना करें, ये किसान भाई कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से पृथक्करण की दूरी जो थी वो उसका फुलफिल कर देगा। उसका फिर आपको 3 मीटर अगर नहीं भी छोड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 मीटर तक का धान को इस्तेमाल मत करिए बीज में। दूसरी एक तो ये चीज हो गया, दूसरी बात है रोगिंग की। रोगिंग मतलब के धान के खेत में, उस खेत में जिसका बीज आप इस्तेमाल करेंगे अगले साल, उसमें आपको रोगिंग करना है। रोगिंग होता है अवांछित जो पौधे हैं उनको निकालने का काम। तो ये काम जो है वो कई स्टेज पे होता है, कई अलग अलग जो उसकी अवधि होती है धान की फसल की उसमें होता है। तो जैसे किसान भाई एक बार जब टिलरिंग होती है, जब कल्ले निकलते हैं, तो उस समय पे भी अगर कोई आपको अलग तरह का धान दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि इसका नहीं है, उस प्रजाति का नहीं है या बाकी पौधों से अलग दिख रहा है, तो उसको निकाल दें। फिर इसी तरह से फूल आने के समय भी एक एक रोगिंग की जाती है, ताकि फूल के समय पे भी अगर कोई ज़्यादा ऊंचाई का पौधा है जो आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर हो सकता है, या दाने के आधार पे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस तरह के पौधे भी हमें हटा देने होते हैं। और उसके बाद एक बार फिर जब पक जाती है फसल, मैच्योर हो जाती है, तो कटाई से पहले भी ये रोग इनका काम करते हैं। तो इसके बाद कटाई में भी हमें बहुत सावधानी इसमें बीज के खेत में रखनी पड़ती है। तो ये सब कुछ तकनीकी पहलू हैं जिनका ध्यान किसान भाइयों को रखना होता है।
1: जी, अभी डॉक्टर साहब आपने इन तकनीकी बिंदुओं में पृथक्करण की बात की थी, ये पृथक्करण दूरी क्या है और किसान भाई इसमें कैसे ध्यान रख सकते हैं इसे लेकर?
2: हाँ, पृथक्करण दूरी जैसे मैंने बताया कि इसको एक खेत से उसी फसल का, जैसे धान का अगर आप बीज पैदा कर रहे हो तो धान के एक खेत से दूसरे धान के खेत की दूरी कितनी हो, ये होता है पृथक्करण दूरी, जिससे आपस में मिक्सचर ना हो। क्योंकि जो फूल आने के समय में क्या होता है कि जो पोलन होता है, जो उसका परागकण होते हैं, वो एक एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं, उसका या तो जो कीट होते हैं उनके द्वारा भी चले जाते हैं या हवा से भी चले जाते हैं, जिससे अगर दो वैरायटी, दो अलग अलग किस्म अगल बगल आपने लगाई है तो उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर होने का डर रहता है। तो उसको कम से कम करने के लिए ये अध्ययन करके ये पता किया गया है कि अगर हम 3 मीटर की दूरी रखते हैं दो किस्मों के बीच में जिनका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे हमारा कम से कम मिक्सचर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पृथक्करण दूरी ये हर फसल के लिए अलग अलग होती है। ये धान के लिए जो साधारण धान की फसल का उत्पादन है, साधारण किस्मों का जो उत्पादन है, उसके लिए दूरी कम होती है। और अगर हाइब्रिड का धान उत्पादन करेंगे, बीज उत्पादन करेंगे, तो उसमें वो दूरी बढ़ जाती है। तो क्यों, चूँकि हाइब्रिड का तो किसान भाई बीज उत्पादन नहीं करते हैं, तो जितनी भी है किस्में, जो साधारण किस्में हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, तो उसमें 3 मीटर की जो पृथक्करण दूरी है वो उसको एक मानक माना गया है।
1: जी, आगे बढ़ते हुए रोगिंग के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसे कैसे किसान करें?
2: हाँ, रोगिंग जैसे मैंने बताया, रोगिंग बोलते हैं जो अवांछित पौधे हैं उनको निकालने का। तो इसमें अवांछित पौधे आएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात यह है, और अवांछित पौधे होते क्या हैं। तो अवांछित पौधे वो सारे हैं जो आपको नहीं चाहिए या आप वहाँ उसको नहीं चाहते हैं खेत में कि ना हो। तो ये वो सारे पौधे जो अलग किस्म के हैं, भले ही वो धान के हैं लेकिन दूसरी किस्म के हैं, जिनका आप बीज उत्पादन नहीं कर रहे हैं और वो मिक्सचर हो गए हैं, मिक्स हो के उसमें आ गए हैं, वो पौधे होंगे। या कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं जो पिछले साल जो आपने धान की फसल ली थी उस खेत में, उसके कुछ पौधे भी अपने आप अगले साल धान के सीजन में अपने आप उग जाते हैं। तो ऐसे पौधे को भी हम अवांछित पौधे में गिनते हैं, उनको भी हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे किसी भी तरह का घास, खरपतवार, कोई दूसरा मिलता जुलता पौधा, किसी भी तरह का जो पौधा है धान के अलावा, वो भी सारा हमें निकालना होता है, वो भी अवांछित पौधे की श्रेणी में आता है। और जो ज़्यादा रोग या कीट लगे हुए पौधे हैं, भले ही वो उसी किस्म के हैं लेकिन उनमें ज़्यादा कीट या व्याधि आ गया है, तो उस तरह के पौधे भी हमारे लिए अवांछित की श्रेणी में आते हैं। तो उनको भी हमें निकाल के हटाना होता है, जिससे हमें शुद्ध बीज उत्पादन हम कर सकें।
1: जी, धान में फूल आने के समय भी कुछ जो बातें हैं उनका ध्यान रखना होता है, वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में बताएं?
2: हाँ, जैसे बीज उत्पादन के जो प्रक्षेत्र है धान का बीज उत्पादन का, उसमें जैसे मैंने बताया कि उसमें रोगिंग करनी होती है, तो वो अवांछित पौधों का हमें फूल आने के समय पे भी निकालना होता है। तो फूल आने के समय पे क्या है, जैसे हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है जिन पौधों की, उनको हम निकाल देते हैं, या जो दूसरे हमें लग रहा है कि ये अलग तरह के हैं उसको निकाल देते हैं। तो फूल आने के समय पे सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की है वो होती है, एक तो ऊंचाई की, ऊंचाई या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज़्यादा हाइट ऊंचाई है पौधे की तो भी निकाल दें, कम हाइट है बोना है पौधा जो उसमें नहीं होना चाहिए वो भी निकाल दें। दूसरे फूल आने के समय पे दाने का आकार किसान भाइयों भाई गौर से देखें कि ये अगर उस किस्म का दाना नहीं लग रहा है, या हो सकता है किसी किसी में ऑन्स होते हैं जो जिसको मुच्छल बोलते हैं, तो अगर वो उसमें तूड़ आया हुआ है, उसमें ऑन आया हुआ है, मूछ है, तो उसको और आप जिसका बीज पैदा कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पौधों को भी आप फूल आने के समय में पहचान सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं।
1: जी, और सबसे ज़रूरी बात जो कटाई के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं।
2: कटाई के समय में भी जैसे मैंने बताया कि बीज के खेत में किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो जो अगर उन्होंने पृथक्करण दूरी नहीं रखी है तो 3 मीटर का जो धान है वो खेत के चारों तरफ का धान वो बीज में इस्तेमाल ना करें, उसको बीज के लिए ना रखें। और इसके बाद बचे हुए खेत में उनको कटाई के समय में भी पकने के समय में भी फिर से रोगिंग करना होता है, तो वहाँ पे फिर से देखें कि कोई ऐसा पौधा तो नहीं रह गया है जो उनको लग रहा है कि वो मिक्सचर है, क्योंकि उस टाइम तक वो कई बार उसमें उसको देख चुके रहते हैं, उस उनको पता चल चुका रहता है कि ये ओरिजिनल जो इसका पौधा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसका दाना किस तरह का होना चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो एक एक पौधे को चेक करके, अगर हो सके तो हमें सारे पौधे चेक करके एक एक पौधे को निकाल दें ताकि हम शुद्ध से शुद्ध बीज पैदा कर सकें।
1: जी, अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे रिलेटेड हैं बीज उत्पादन तकनीक से, जो आप किसान भाइयों को बताना चाहेंगे सर?
2: अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यही है कि उसके बाद एक तो जो कटाई का काम है वो हम मशीन से ना करें, बीज के खेत का कभी भी मशीन से कटाई नहीं करें धान की, उसको हाथ से कटाई करें, हंसिया से जो हम काटते हैं परंपरागत तरीके से वो उसी तरीके से कटाई करें और उसको 2-3 दिन खेत में छोड़ दें ताकि वो पूरी जो नमी है करीब 18% नमी होनी चाहिए कटाई के समय में, और जब आप उसको फिर 2-3 दिन वहाँ छोड़ेंगे फिर थ्रेश करेंगे उसको अच्छे से सुखा लें। जो उसकी मड़ाई करते समय ये ध्यान रखें किसान भाई के जो थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे आप या वो जगह जहाँ पे आप थ्रेशिंग कर रहे हैं, मड़ाई कर रहे हैं, दाना निकाल रहे हैं, वहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई दूसरी प्रजाति या दूसरा किस्म का ढेर ना रखा हो, वो काट के वहाँ रखा ना गया हो, उसको साफ रखें उस जगह को, जिससे कि किसी भी तरह से मिक्स दूसरी किस्म उसमें ना हो पाए। और उसको मड़ाई के बाद उसकी दोनी करने के बाद में उसको अच्छी तरह से सुखा लें जिससे नमी जो है वो घट के 12-13% पे आ जाए। जब 12-13% पे नमी आ जाती है दाने की तो फिर हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों अभी आप सुन रहे थे धान के बीज उत्पादन तकनीक को, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं पर बातें की गई हैं। आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। अगले दिन आपसे फिर एक अलग विषय के साथ आपकी खेती से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं हम उनका हल देंगे। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। जी हाँ, हर रोज़ की तरह हम आपके लिए खास विषय लेकर आती हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे युवाओं के लिए भी जो खेती में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। जी हाँ, आज कई युवागण हैं जो खेती को अपना कर एक स्टार्टअप के तौर पर या फिर किसी अन्य तौर पर भी अपना कर अच्छी एक मोटी कमाई कर रहे हैं। तो आज जो हमारा विषय है बहुत ही अच्छा है, और हमें सुन रहे हैं यहाँ पर भागलपुर या उससे बाहर, वो भी इसकी चीज़ें जो हैं समझ सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण। बहुत ज़रूरी होता है कि भंडारण की व्यवस्था हम उचित रखें, और इससे जुड़े बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र, और मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु जी।
1: डॉक्टर साहब, आइए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि धान की फसल में भंडारण का सबसे पहले क्या महत्व है, क्यों हम भंडारण करें, ये क्यों ज़रूरी है, इसे बता दीजिए।
2: कृषक बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, धान बिहार की एक प्रमुख फसल है और हमारे यहाँ राज्य के लगभग सभी जिलों में धान उगाया जाता है। तो इससे संबंधित हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है कि जिस किसान का धान अच्छा होगा, वही किसान समृद्ध होगा। तो ये बहुत ही प्रचलित कहावत हमारे यहाँ है। तो इससे पता लगता है कि कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए धान का फसल है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस समय अधिकतर किसान भाइयों ने धान की फसल की कटाई कर ली है और सभी किसान भाइयों के यहाँ घर पे धान आ चुका है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ जानें कि उसका भंडारण कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें हम भंडारण करते समय, चाहे वो बीज के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई कोशिश करते हैं कि सीधे जाके मार्केट में धान को बेच दें, लेकिन धान की आवक बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसान भाइयों को उचित दाम नहीं मिल पाता। तो उस समय बेहतर है कि हम धान का भंडारण कर लें, धान को सुरक्षित रख लें और कुछ महीनों के बाद उसको अच्छा दाम मिलने के बाद बेचें। तो इस स्थिति में धान के भंडारण की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, सही से उसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि किसान भाइयों, हम जानते हैं कि धान की कटाई हम परंपरागत रूप में या तो हसिया द्वारा करते हैं या फिर आजकल जो बड़े किसान भाई हैं वो कंबाइन थ्रेशर से भी धान की कटाई करते हैं। तो हसिया से जब हम लोग कटाई करते हैं तो वो कटाई के उपरांत भी 2-3 दिन धान खेत में हम लोग सुखाते हैं काटने के बाद, तो उससे एक नमी की उचित मात्रा धान में बन जाती है। लेकिन कंबाइन से जो आजकल थ्रेशिंग की जा रही है, कटाई की जा रही है, उसमें थोड़ी समस्या आती है क्योंकि उसमें नमी की प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुल मिला के कटाई के वक्त अगर हम देखें तो 17-18 से लेके 24-25% तक नमी धान में रहती है, जबकि जो उचित नमी की मात्रा है वो कम से कम 13-14% से नीचे ही रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो हमें धान को अच्छी तरीके से सुखाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है
1: जी।
2: तो इसके अलावा जो घर में खाने वाला धान होता है, जो घर में किसान भाई खाने के लिए रखते हैं, उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है, और जो बीज के लिए किसान भाई रखते हैं उसके भी भंडारण की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 10% धान की जो बर्बादी है वो सही भंडारण ना होने की वजह से हो जाती है
1: जी। तो किसान भाइयों, आपने सुना कि जो धान की जो बर्बादी है वो 10% अगर भंडारण सही तरीके से नहीं हो इस वजह से होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भंडारण रखना। और डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से धान के भंडारण में बाधा आती है या प्रभावित होता है धान का भंडारण?
2: हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनु जी। इसमें देखिए, सबसे प्रमुख कारण अगर कोई भंडारण में आता है जो, वो है नमी। तो जैसे हमने पहले बताया कि कटाई के समय हमारा लगभग 20% धान में नमी रहती है। अच्छा। तो उसको अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नमी के अलावा सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं, और कई प्रकार की फफूंद होती है जो धान को हमारे ख़राब करती है। तो इसमें जीवाणु और विषाणु की अगर हम देखें तो वो खेत में खड़ी फसल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, भंडारण में उनका इतना प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन फफूंद एक बहुत बड़ा कारक होता है, बहुत सारी फफूंद होती हैं जो भंडारण में के समय में धान को हम ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा कई सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे घुन लग जाता है, या कई तरह का फुदका होता है, पिल्लू कई होता है, और दीमक इत्यादि होते हैं जो धान को भंडारण में खराब कर सकते हैं। और अगर सही से किसान भाइयों ने भंडारण नहीं किया तो उसमें कई तरह के कुतरने वाले जीव भी लगते हैं, जैसे
1: जी
2: चूहे, गिलहरी, चिड़िया वगैरह भी उसमें लग सकते हैं, जो जिससे कि धान के नुकसान होने का खतरा बना रहता है।
1: तो यहाँ पर आपने जाना कि कैसे ये प्रभावित होता है धान का भंडारण। और डॉक्टर साहब, अभी आपने नमी की बातें कही थी, तो नमी का क्या महत्व है धान के भंडारण में, और किसान भाई इसका कैसे ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा नमी ना हो, जिस वजह से फफूंद या कुछ और जो आपने सूक्ष्म जीव कहा था वो ना पनपे, तो कैसे वो ध्यान रखें इस बात का?
2: जी बिल्कुल, नमी देखिए, जैसे पहले बताया, नमी सबसे प्रमुख कारक है जिससे धान के खराब होने की संभावना रहती है। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कटाई के समय ही जो अच्छे से हमारी फसल पक जाए उस समय कटाई करनी चाहिए।
1: अच्छा
2: दूसरे जो बीज बीज की खासकर जो बीज के लिए हमें बीज रखना है, जिस फसल का, जिस खेत का हमें बीज रखना है, उसकी कटाई हम कोशिश करें कि हंसिया से ही करें, कंबाइन से हम उस खेत की कटाई ना करें, क्योंकि हम जैसे मैंने पहले बताया कि हंसिया से कटाई करने के बाद हम खेत में सुखाते हैं। इसके बावजूद कटाई आप किसी भी तरीके से करें तो उसके बावजूद 3 से 5 दिन आपको साफ फर्श पे, साफ जगह पे धान को अच्छी धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और धान को सुखाते टाइम किसान भाई कई बार गलती भी कर देते हैं, कई बार गर्मी के दिनों में धान को सुखा देते हैं। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर दोबारा आप भंडार गृह से निकाल के और धान को सुखाना चाह रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप में उसको ना सुखाएं, हल्की धूप में सुखाएं, नहीं तो धान अंदर से टूटने की कगार पे आ जाता है। और जब उसकी मिलिंग की जाती है, उसको उसका चावल बनता है, तो चावल ज़्यादा टूटता है। तो इसके अलावा धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। और नमी को 14%, अगर मान लीजिए आप कुछ महीने तक भंडार करना चाह रहे हैं तो 12 से 14% नमी उसमें बना लें, और नहीं तो अगर साल भर के लिए, जैसे हम बीज बीज को अगर हमें भंडारण करना है बीज का, तो 10 से 12% नमी ही उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर जो वैज्ञानिक तरीके से हम जो देखते हैं कि नमी दाने में कितनी है, उसके लिए हम मॉइस्चर मीटर होता है, कई तरह के मॉइस्चर मीटर आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो किसान भाई सीधे तौर पे उसको देख सकते हैं कि अपने दांत से, जब आप दाने को काटेंगे तो अगर कट कट से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसमें जो नमी है वो बिल्कुल उचित है। या फिर आप अगर दाने को कान के पास ले जाके और हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी कट की आवाज़ आएगी। तो अगर उस तरह से कट की आवाज़ आपको आ रही है तो इसका मतलब है कि धान बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है और वो अब भंडारण करने के लायक है। तो ये इस तरह से नमी का हम इस पूरा ध्यान इसमें रखेंगे।
1: जी, तो अभी डॉक्टर साहब ने आपको धान के भंडारण में नमी से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर जो नमी है वो है या नहीं, या फिर उससे अधिक नमी है। डॉक्टर साहब, अब धान के भंडारण में हम कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती है, कुछ सावधानियां बरतनी होती है उस दौरान, तो क्या कुछ वो सावधानियां हैं उनके बारे में बता दें।
2: जी बिल्कुल, धान का भंडारण की जब आप, पहले तो जैसे नमी की बात हो गई, नमी का हमने देख लिया कि उचित नमी उसमें अगर आ गई है, तो उसके बाद फिर आता है कि धान के भंडार जहाँ पे करना है भंडारण, वो जगह का चुनाव हमें करना पड़ेगा। तो वो जगह ऐसी हो जहाँ पे प्राकृतिक रूप से नमी ना आती हो, थोड़ा ऊंचा उसका फर्श हो, उस तरह की
1: मतलब
2: हम
1: जमीन से थोड़ा ऊपर।
2: जमीन से थोड़ा ऊपर रहे और नमी वहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसमें देख लें, उस कमरे में, जिस कमरे में भी आपको भंडारण करना है, उस कमरे की जो दीवारें हैं वो, उनमें किसी भी तरह की दरारें नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी तरीके से हमें चेक कर लेना है उस कमरे को कि कहीं पे दरारें या फर्श उसका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो दरारें या टूटे हुए फर्श को हमें पहले ही ठीक कर देना है, और उनको अच्छी तरह से बिल्कुल चूने से या सीमेंट से उनको, दरारों को बंद कर देना है। इसके बाद खिड़की या रोशनदान जो भी कमरे में हो वो इस तरह के हों कि जो बाहर को खुलते हों, खिड़की जो है वो बाहर को खुलती हो, रोशनदान भी जो है वो बाहर को खुलता हो, जिससे कि हम ज़रूरत के हिसाब से उनको जब ज़रूरत पड़े खोल लें या फिर उसको बंद भी कर सकें। इसके अलावा इस बात का भी हम ध्यान रखें कि उस जगह में या उस कमरे में जहाँ पे हमें धान का भंडारण करना है, पुराना धान नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से, अगर पहले से धान रखा है तो उसको अच्छी तरह से निकाल लें, उसको हटा लें पूरा, और वहाँ पे साफ सफाई कर लें। बिल्कुल भी कोई पुराना धान ना हो, क्योंकि इससे क्या है कि पुराने धान के साथ में जो फफूंद है या जो दूसरे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो आ सकते हैं, तो उससे हमारे ये नए धान के खराब होने का खतरा बना रहेगा। तो उसको भी बिल्कुल हम बंद कर दें। इसके अलावा जो एक किसान भाई ध्यान रखें कि जो खाने का के लिए आप जो भंडारण कर रहे हैं धान का, या जो आपको बेचना है बाद में, जो खाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है, उसमें कोशिश करें किसान भाई के रसायनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का रसायन उसमें ना रखें। जैविक रूप से ज़रूर उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। तो इसके अलावा बात है कौन सा बोरा यूज करें, किसमें धान को
1: कंटेनर।
2: रख,
1: हाँ
2: कंटेनर कौन सा इस्तेमाल करें। तो इसके लिए किसान भाई जूट के बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन या प्लास्टिक के बोरे का इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा आप, अगर आपके जूट के बोरे आपके पास हैं तो उनका इस्तेमाल करें। या इसके अलावा आप टंकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बीन्स होती हैं उनका
1: जी,
2: इस्तेमाल
1: गांव
2: कर
1: में हमने
2: सकते
1: देखा
2: हैं।
1: है कि वो मिट्टी के बने हुए होते हैं।
2: हाँ, मिट्टी की बनी हुई होती हैं, कुछ लोग सीमेंट की बनी हुई टंकियों का भी इस्तेमाल कर
1: और
2: सकते
1: आजकल
2: हैं।
1: स्टील के भी है।
2: हाँ, स्टील या लोहे की जो टंकियाँ होती हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें किसान भाई क्या करें कि जो सीमेंट का या मिट्टी का जो कंटेनर है, बिन है, उसमें अंदर से अगर कोलतार से उसको अच्छी तरह से लेप देंगे, तो उसकी एक परत लगा देंगे, तो उसमें किसी भी तरह की सूक्ष्म जीव आने का खतरा
1: नहीं
2: नहीं
1: रहेगा
2: रहेगा।
1: जी।
2: और इसके अलावा अगर कोशिश ये करें कि पुराने बोरों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, पुराना धान लगा हो सकता है। इसके बावजूद भी अगर मजबूरी में किसान भाई पुराने बोरों का इस्तेमाल किसान भाई को करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या हम क्या कर सकते हैं कि 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को खोलते पानी में डाल दें।
1: अच्छा।
2: तो अगर उबलते पानी में 20-25 मिनट तक पुराने बोरों को रखेंगे तो जो भी सूक्ष्म
1: सूक्ष्म
2: जीव
1: जीव वो
2: होंगे
1: मर
2: वो ख़त्म हो
1: जाएंगे।
2: जाएंगे। उसके बाद उन बोरों को अच्छे तरीके से सुखा लेना है, और सुखाने के बाद उसका उनको उसमें धान रखने के लिए इस्तेमाल करें।
1: और ये अभी कोविड का टाइम है तो इस समय और खास ख्याल रखना है उस
2: हाँ
1: बोरों का।
2: बिल्कुल। और इसके अलावा जो जैविक तरीके से, जैसे मैंने बताया खाने के लिए जो धान इस्तेमाल होना है उसके उसमें आप जैविक तरीके से उस रखने के बाद उसमें चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े में लपेट के चूना ले आप लेके उसको छोटी छोटी उसकी पोटली बना लें कपड़े में, और जो कंटेनर होता है, टंकी होता है, उसमें एक एक लेयर डालते जाएं और एक एक पोटली उस पर रखते जाएं। तो उसके लिए हम कई तरह के अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे चूने का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते
1: और
2: हैं।
1: कुछ गोलियां भी होती हैं डॉक्टर साहब जो दी जाती है
2: हाँ,
1: भंडारण।
2: आयुर्वेदिक गोलियां भी इसकी आती हैं, एक डाबर की एक गोली आती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी में करक्यूमिन होता है, तो जो इस हमें
1: और वो कर्पूर वगैरह भी हम डाल सकते हैं।
2: हाँ कर्पूर की गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े में बांध के। इसके अलावा कपड़े में बांध के माचिस की जो तिल्लियां हैं, माचिस की डिब्बियां हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। ये सब चीज़ें एक खासकर किसान भाई क्या करें कि जो सस्ता उपाय है उसमें किसान भाई हल्दी के गांठ ले लें, कच्ची हल्दी, और उसके साथ साथ ये माचिस की तिल्लियां ले लें, तो उसकी पोटली बना के भी हम
1: बीच बीच में
2: बीच
1: डाल
2: बीच में अगर टंकियों में रखेंगे, तो क्योंकि तिल्लियों में पोटेशियम क्लोरेट और रेड फास्फोरस होता है जो
1: बाद में
2: कीड़ों को
1: जी।
2: लगने से बचाता है, और हमें नुकसान भी किसी तरह का उससे नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें।
1: जी, तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको छोटे छोटे नुस्खे बताए हैं जिसे अपनाकर आप जो है सूक्ष्म जीवों से या फिर कीड़ों से अपने भंडारित धान जो है आप उन्हें बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं बीज के लिए प्रयोग किए जाने वाले धान के भंडारण के बारे में, तो ये कैसे करें हमारे किसान भाई बीज के लिए खास?
2: जी किसान भाइयों, बीज और दाने में अंतर होता है। अगर ये हमें ये बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा कि दाना क्या है और बीज क्या है। तो जो जब हम दाना बोलते हैं, दाना मतलब कि हम उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीज के लिए भी, लेकिन
1: रेडी टू फूड यार,
2: रेडी टू, हाँ मतलब वो खाने के लिए
1: रेडी टू ईट कह सकते हैं,
2: रेडी टू ईट। तो उसको उसमें मतलब जो भ्रूण होता है वहाँ पे हम भ्रूण की बात नहीं करते जब हम दाने की बात करते हैं, लेकिन हम जब बीज की बात करते हैं तो हम भ्रूण की बात करते हैं। भ्रूण मतलब बेबी प्लांट। उसके अंदर में अगर बेबी प्लांट भ्रूण होगा, सही होगा, तभी वो आगे अगले पौधे को जन्म दे सकेगा। तो बीज में भ्रूण सही भ्रूण का होना बहुत जरूरी है। तो बीज दाना तो कोई भी हो गया, आप अगर भ्रूण उसका
1: सही
2: नहीं है तो भी उसको हम दाना बोल सकते हैं, पर बीज हम उसी को बोलेंगे जिसमें भ्रूण बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का नुकसान उसको नहीं हुआ है। तो बीज के लिए किसान भाई एक चीज और जानकारी हम देना चाहेंगे कि किसान भाई संकर प्रभेद भी लगाते हैं और ये दूसरी प्रजातियां भी लगाते हैं। तो किसान भाई संकर प्रभेदों का बीज आगे अगले वर्ष इस्तेमाल करने के लिए ना रखें, ये एक सलाह किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि वो उसकी उपज बहुत कम हो जाती है अगले साल। तो संकर बीजों का इस्तेमाल बिल्कुल दोबारा अपने घर के बीज का नहीं करना है, लेकिन दूसरी किस्मों के बीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और उसके भंडारण के लिए उसमें जब कटाई करते हैं, एक तो शुरू से ही हम जो बीज की फसल होती है उसके उसका ध्यान अलग से रखा जाता है, जिसकी अलग विधियां हैं। उसमें फिर हम सीसा, जो पेनिकल जिसको बोलते हैं धान का, सीसे को निकाल सकते हैं। एक तरह के सीसे निकाल के हम एक पोटली बना लें और वो पोटली को हम रखें तो वो आसान होता है और आगे इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा वो सारी बातें जो हमने ऊपर बताई
1: धान के
2: भंडारण के लिए, जगह का किस तरह का कमरा होना चाहिए, उसकी दीवारें कैसी हों, उनमें किसी तरह की दरारें ना हो, वो सब चीज़ों का ध्यान हमें यहाँ भी रखना है जब हम बीज का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दीवारों पर, चारों दीवारों पे, फर्श पे हम मालाथियान का 50% ईसी का हम छिड़काव कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, 1:300 के अनुपात में हम इसका घोल बना सकते हैं और उस घोल को 3 लीटर 100 वर्ग मीटर के हिसाब से हम लोग अगर स्प्रे कर देते हैं उस कमरे की दीवारों पे और फर्श पे, तो हम फफूंद से और दूसरे सूक्ष्म जीवों से इससे बीज को हम बचा सकते हैं
1: जी।
2: और इसके अलावा बीज के लिए हमें, जब हमने भंडार गृह में उसको रख दिया है, तो इसके बावजूद भी हमें एक निश्चित समय पे उसकी देखरेख करती रहनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें बीच बीच में मालाथियान का ही 1:300 के अनुपात में जो हमने पहले घोल का इस्तेमाल किया था वही छिड़काव हम फिर से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में सोमिथियान का घोल भी 1:900 के अनुपात के रूप में 2-3 बार छिड़काव कर सकते हैं, या फिर एक DDBP या नुआन या वापोना का 0.25% का घोल तैयार करके 1 लीटर प्रति 200 घन मीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा धूमीकरण भी कर, फ्यूमिगेशन भी किया जाता है जहाँ पे बीज रखा रहता है उस जगह का। उसके लिए धूमीकरण के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइट की एक टिकिया जिसका के वजन 3 ग्राम होता है, प्रति टन बीज की दर से उसका हम व्यवहार कर सकते हैं। और इससे किसान भाइयों का जो बीज है वो बिल्कुल सही रहेगा। बस ध्यान ये रखें कि धूमीकरण जो है, जो फ्यूमिगेशन है, उसका 60 दिनों के अंतर पर अधिक से अधिक 3 बार इस्तेमाल करें, और धूमीकरण जैसे आज किया है तो उसके 4 दिनों के बाद ही गोदाम को खोलें, और कम से कम 6 घंटे तक खिड़की दरवाजे खुले रखें। तो इससे इस हिसाब से अगर हम बीज को रखेंगे तो हमारा बीज बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और अगले साल इस्तेमाल करने के लिए अच्छा रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा
1: जी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर धान की फसल में कटाई उपरांत भंडारण की पूरी विधि आपको डॉक्टर सत्येंद्र जी ने आपको बताई हैं, तो आशा करते हैं कि ये सारी विधि अपनाकर आप अच्छे से भंडारण करेंगे और अगले साल के लिए अपने इन धान को सुरक्षित रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
3: उन्नत कृषि

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।